0: जी बोली, ये जो है जो पंडित जी हैं बहुत भक्त हैं, इनकी कृपा से हमारा बहुत काम सफल हुआ। तो हमें जब पता लगा कि इनके यहाँ भंडारा है तो हम अपनी श्रद्धा से सामान लेके आए।
1: गांव वाले बोले वाह।
0: लेकिन तब तक बारिश आई। बामा खेपा ने फिर देखा बारिश में कोई भंडारा नहीं पाएगा, भंडारा खूब बन गया। तो फिर भगवती के मंदिर में गए, माँ आपकी कृपा से भंडारे की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब बारिश है और बारिश यदि आ जाएगी सब भोजन पाने बैठ गए, भंडारा रखा रहेगा सब गीले हो जाएंगे, कोई प्रसाद नहीं पा पाएगा। इनके मन में प्रेरणा जगी, एक लाठी ली और जितने में भंडारा चल रहा था उतने में एक लकीर को खींच दिया और देखते ही देखते सत्य घटना चरितार्थ हुई। पूरे पृथ्वी के जगह जगह गांव गांव में बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरी, पर जहां पर भंडारा चल रहा था वहां एक बूंद भी अंदर प्रवेश नहीं हुई। हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। हरते भय हनुमान, हरते ही तो हनुमान हुए। एक बात और दूसरी बात, मेरे पागलों शंकर जी का काम क्या है? शंकर जी के दो काम, पहला काम संहार करना और दूसरा काम जो भाग्य में नहीं लिखा यदि तुम शंकर जी की भक्ति करोगे तो वो भी मिल जाएगा। भाभी मैट सकें त्रिपुरारी, ये शंकर जी का काम है। और हनुमान जी का काम क्या है? बोले यही हनुमान जी का, क्या जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसके भाग्य में जो ना भी हो वो भी प्राप्त हो जाता है, वो भी मिल जाता है, ये हनुमान जी की कृपा है। ऐसा संभव है? बोले हाँ, कई लोगों को मिला, उनके भाग्य में नहीं था और हनुमान जी की चरण शरण ले ली, हनुमान जी ने कृपा कर दी, काम हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।

बगल में बैठाया, कान में पूछने लगे, एक बात बताओ, हमने सुना तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले हमने? राम जी बोले हाँ आपने। हनुमान जी बोले गलत फहमी हुई है, हमने नहीं जलाई। किसने जलाई? नाम तो आपका ही सुना है। हनुमान जी बोले गलत, हमने नहीं जलाई। राम जी कह रहे

लंका को कैसे जला रहा, लंका कैसी है, तुम लंका में गए कैसे और लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले, प्रभु जिसके हृदय में अभिमान भरा हो वो लंका चलाएगा भी कैसे। अभिमान से भरा रावण विचित्रता से लंका चला रहा, लेकिन पर तुम कैसे गए। हनुमान जी बोले, प्रभु हम अपने बल से नहीं गए, आपके बल से गए इसलिए लंका पहुंच गए, अपने बल से नहीं आपके बल से। अच्छा, कितना अच्छा संकेत है, हम लोग यदि अपने बल से जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, पर यदि भगवान के बल से जाएंगे तो भारत तो छोड़ो लंका में भी पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति हमसे बोला राजकोट नहीं आ सकते, हमने कहा कि हम अपने बल से जा रहे हैं, हनुमान जी के बल से जा रहे हैं, जब हमारे भाई साहब हनुमान जी लंका में घुस सकते तो हम भारत में नहीं आ सकते, अपने बल से हनुमान जी के बल से। तो हनुमान जी का बल, ऐसे ही हनुमान जी कह रहे किसके बल से लंका गए। हनुमान जी बोले,

हे प्रभु, हम अपने बल से नहीं आपके बल से गए, हमारा प्रताप नहीं आपका प्रताप। राम जी बोले पर लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले गए हम, पर पहुंचाया किसने? यात्रा दो प्रकार के से होती है। बोले कैसी? बोले एक यात्रा स्वेच्छा से, दूसरी यात्रा किसी के द्वारा भेजी हुई। जो स्वेच्छा से जाता वो टिकट अपनी खुद करवाता, होटल अपना खुद करवाता, कैब गाड़ी अपनी करवाता, तब यात्रा की मंजिल पर पहुंचता। लेकिन कोई यात्रा करवाए तो टिकट उसकी होती है, गाड़ी उसकी होती है, मंजिल कहाँ जाना वो लोकेशन भी उसकी ही होती है। हनुमान जी बोले यात्रा पे हम गए नहीं थे, पहुंचाए गए थे। राम जी बोले किसने पहुंचाया? हनुमान जी बोले आपने। तो राम जी बोले हमने पहुंचाया तो? हनुमान जी बोले फिर सीधा सा है, पहुंचाया भी आपने, यात्रा भी आपने कराई और मंजिल भी आपने पहुंचाया है। अच्छा, हनुमान जी से राम जी बोले एक बात बताओ। हाँ, किससे गए? हनुमान जी बोले उड़ के। अच्छा, इसका मतलब आप उड़ के गए, ये आपका बल है। हनुमान जी बोले हम अपने बल पे नहीं उड़े। बोले फिर? बोले वाह, आप भूल गए, आपने जाते समय हमको मुद्रिका दी थी, उसी मुद्रिका पर बैठ करके उड़ करके गए। वाह। लक्ष्मण जी धीरे से बोले इनसे फंसना मुश्किल है, इनको फंसाना कठिन है, फिर भी चेक कर लो। राम जी बोले रुको, देख रहे। अब राम जी ने फिर फंसाना चाहा हनुमान जी को। हनुमान जी को राम जी फंसा रहे बातों से। हनुमान जी चलो हमने मान लिया, हमारी मुद्रिका पर बैठ करके तुम लंका गए, पर लंका तो तुमने ही जलाई, ये तो तुम्हारा ही बल है। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले पूंछ ने। पूंछ ने? हाँ। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले काहे को झूठ बोल रहे प्रभु, हमारी कहां से है पूंछ? बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। साधारण सदस्य को, कोई पार्टी का सदस्य हो और उसकी किसी बड़ी नेता से ना बने तो वो मंच पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन कोई बड़े पद पे ना भी हो, साधारण सदस्य हो पर बड़े नेता से पहुंच हो तो वो मंच पे भी चढ़ जाता है और कलेक्टर को भी डांट आता है। हनुमान जी बोले यही हमारा हाल है, हमारी पूंछ नहीं है। बोले किसकी पूंछ है? बोले आपकी पूंछ है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। राम जी बोले चलो मान लिया, पूंछ हमारे कारण है, चलो पर लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले पांच लोगों, नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो पांचों लोगों के नाम। पहला नाम सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ये पांच लोग हैं, हमारे बाप ने लंका। तो राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, प्रभु श्री राम यानी हमें अपना प्रताप समझ में आ गया और ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले वाह, भूल गए, हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे बाप ने तो पूरी लंका जलाई। अच्छा, आपने एक ही मकान जलाया? बोले हमने तो एक ही मकान जलाया, बाकी तो हमारे पिताजी ने जलाया है। भैया ये कौन है पिताजी? बोले वाह सुनो प्रभु। अब हनुमान जी उदाहरण देके समझाने लगे। बोले सुनो, अच्छा आप ही बताओ, कहीं छोटी आग लगी हो, हवा चल जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। दिया बाहर रख दिया जाए बुझ जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन टेंट ही में आग लग जाए, बड़ी आग गोदाम में, और फिर हवा चल जाए, बुझेगी के बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी बोले वही हुआ। बोले क्या? बोले हमने तो एक घर जलाया, लेकिन जैसे ही आग बड़ी हुई सो हमारे पिताजी आ गए। बोले पिताजी कौन? बोले वाह आप भूल गए, हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े स्पष्ट रूप से लिखा,

0: राम जी बोले चारों तरफ से कैसे? बोले कभी हवा इस तरफ से चले सो इस तरफ के मकान स्वाहा, कभी उस तरफ से चली सो उस तरफ के मकान स्वाहा, लेकिन कोने के मकान रह गए सो बीच की बीच हवा चली बवंडर बन के, सो बीच के स्वाहा हो गए। इसलिए लंका हमने नहीं जलाई, पांच लोगों ने जलाई।
1: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
10: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन. अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन. हर तरफ हर हर महादेव की गूंज. पहलगाम के निर्माण बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था दर्शन के लिए रवाना. भक्तों में जबरदस्त उत्साह. मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट. प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. मुंबई के कई इलाकों में भारी जलभराव. वसई पूर्व में पानी के बीच घिरे 20 से 25 लोगों को दमकल की टीम ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला. जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया. पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे. एकसठ की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान. परिवार और करीबी दोस्त शादी में शामिल होंगे. शादी की तैयारी जारी.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबर.
10: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन. अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन. अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों का जोश हाई. बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा अमरनाथ यात्रा मार्ग. यात्रा मार्ग पर अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा पूरा ख्याल, अभेद सुरक्षा के बीच पवित्र यात्रा जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम की नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना, लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का चौथा जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हुआ रवाना, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था सफल दर्शन के बाद बानी हिल के रास्ते लौटा, बोले श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन से मन हुआ धन्य। जय भोले के जयकारों के साथ लौटा पहला जत्था, श्रद्धालुओं के चेहरों पर नजर आई खुशी और आस्था, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। अमरनाथ यात्रा के बीच गौरव का पल, पहलगाम में लहराया तिरंगा, चंदनवाड़ी बेस कैंप पर भारतीय सेना ने फहराया विशाल तिरंगा। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शान से लहराया राष्ट्र ध्वज, आस्था की राह पर देशभक्ति का भव्य संदेश, चंदनवाड़ी में भारत माता की जय की गूंज। तिरंगा बना आस्था, दृढ़ता और वीरता का प्रतीक, सेना और श्रद्धालुओं ने बढ़ाया राष्ट्रभक्ति का मान, दिखा शानदार नजारा। गुजरात को पीएम मोदी के विकास कार्यों की सौगात, सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट का किया उद्घाटन। सीजी सेमी के प्लांट में हर साल 20 करोड़ से ज्यादा चिप्स का होगा निर्माण, भविष्य में 500 करोड़ से ज्यादा का चिप बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने सानंद में सीजी सेमीकंडक्टर प्लांट का लिया जायजा, संयंत्र को 7600 करोड़ के निवेश से किया गया स्थापित। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर प्लांट के कर्मचारियों से मुलाकात की, मेक इन इंडिया के तहत काम करने वाले युवाओं का बढ़ाया हौसला। भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम, बोले पीएम 5 साल पहले लिया संकल्प आज हुआ पूरा। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन की अपील, लोग बेवजह घर से ना निकलें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। मुंबई में वसई पूर्व के मधुबन इलाके में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी में फंसे 20 से 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई के घाट के ऊपर इलाके में टला बड़ा हादसा, रिहायशी सोसाइटी में गिरा बड़ा पेड़। देर रात जब पेड़ गिरा तब वहां कोई नहीं था, मुंबई पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, पेड़ को काटकर रास्ते से हटाया गया। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर दिखा जल जमाव, मुंबई के जुहू इलाके में जलसा के बाहर भरा पानी। पालघर में सड़कों के दोनों ओर 3 से 4 फीट तक भरा पानी, लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में हो रही है परेशानी। पालघर में भारी बारिश का ज्यादा असर देखने को मिला, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर ट्रक पानी में फंसे। मूसलाधार बारिश के कारण नालासोपारा में रेलवे ट्रैक पानी में डूबे, वाटर लॉगिंग की तस्वीर आई सामने। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में उठी ऊंची लहरें, हाई टाइड देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारी बारिश के कारण मुंबई के भांडूप में फुटपाथ का छोटा सा हिस्सा धंसा, पानी में समाने का लाइव वीडियो आया सामने। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में हुआ जलजमाव, अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, कई गांवों का टूटा संपर्क। इंदौर में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें हुई जलमग्न, आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मॉनसून ने दस्तक दी, अंडरपास में पानी भरने से कार पानी में फंसी। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी उफान पर, डूबा जोबरंग पुल, 300 से ज्यादा आबादी वाले 3 गांवों की आवाजाही हुई प्रभावित। वसई कामंड सरजा मोरी इलाके में निर्माण कार्य के दौरान 5 मजदूर बाढ़ के पानी में फंसे, पुलिस अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ की टीम सबको बचा चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में 12 घंटे की झमाझम बारिश से विदर्भ हुआ तरबतर, किसानों के खिले चेहरे। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए चार बच्चों को बचाया। पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। अहमदाबाद में गरज के साथ तो हुई तेज बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, लेकिन जल जमाव की वजह से बढ़ी परेशानी। जूनागढ़ के मांगरोल में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, हाउसिंग सोसाइटी में भरा पानी। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होने के बाद प्राकृतिक गैस सप्लाई के नियमों में आया बदलाव, सरकार ने लागू किए कई विशेष प्रावधान हटाए। 9 मार्च 2026 को जारी किए गए आदेश में सरकार ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए कई विशेष प्रावधान लागू किए थे, नए आदेश के जरिए उन्हें हटाया गया। जेंजी के लिए गीता प्रेस की सौगात, गीता 1-3 भाषाओं में रोमन लिपि के साथ हो रही है प्रकाशित। गीता के नए संस्करण में संस्कृत के मूल श्लोक, उनका रोमन लिपि में उच्चारण, हिंदी अर्थ और अंग्रेजी अनुवाद सब कुछ एक ही पुस्तक में मिलेगा। सुपौल में खाकी वर्दी में जाबाज बेटियों के कदमों से गूंजा बीएसएपी बटालियन पासिंग परेड के बाद बिहार पुलिस में 1074 महिला सिपाहियों की एंट्री हुई। बेटे का सपना पूरा करने के लिए कोटा में रहकर फिर से पढ़ी मां, बीमार होने के चलते 3 महीने कोचिंग नहीं ले पाया गुंजन, मां के ऑनलाइन क्लास से बनाए नोट्स। बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गुंजन का सपना है आईआईटी में पढ़ना, साल 2023 में कोचिंग करने आया था कोटा। बिहार में आपराधिक मामलों में न्याय मिलना होगा आसान, सीएम सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। देवघर में श्रावणी मेले का सफल संचालन को लेकर झारखंड और बिहार इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। अभिनेता आमिर खान आज अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से करेंगे शादी, परिवार और करीबी दोस्त शादी में शामिल होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रचा इतिहास, 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड। खान आज अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से करेंगे शादी, परिवार और करीबी दोस्त शादी में शामिल होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रचा इतिहास, 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में किया डेब्यू। वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड, भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने। वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू पर बीसीसीआई का पोस्ट, बीसीसीआई ने ट्वीट कर ऐतिहासिक दिन बताया। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लिया चाय समोसा, बन मक्खन का स्वाद, हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। नितिन नवीन और सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, प्रदेश और जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। दिल्ली में 17वें टॉय बिजनेस इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, रंग बिरंगे और इनोवेटिव खिलौनों ने पहले दिन ही खींचा सभी का ध्यान। देश विदेश के खिलौना निर्माताओं का दिल्ली में संगम, बच्चों की सीख और मनोरंजन से जुड़े आधुनिक खिलौने बने आकर्षण का केंद्र। परंपरा और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल, टॉय बिजनेस एक्सपो 2026 में स्मार्ट टॉयज की शानदार झलक देखने को मिली। मेक इन इंडिया खिलौनों को मिला बड़ा मंच, स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता और रचनात्मकता ने खरीदारों को किया प्रभावित। टॉय बिजनेस इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 में कारोबार के नए अवसर, खूबसूरत डिजाइन और सुरक्षित खिलौनों ने उद्योग जगत को दिखाई नई दिशा। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, देखते ही बन रहा है मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह। चांदी के भव्य रथ को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कारीगर फाइनल टच देकर निखार रहे हैं रथ की भव्यता। मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के भजनों की मधुर गूंज सुनाई दे रही है, श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कर रहे हैं कीर्तन। रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा है। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, शहर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए तैयार। अमेरिका की आजादी के जश्न की 250वीं सालगिरह के मौके पर सेना का प्रदर्शन, वॉशिंगटन डीसी के आसमान में भरी उड़ान। आसमान में गर्जे F-16, F-22, C-130 जैसे फाइटर विमान, ब्लू एंजल्स के शानदार फॉर्मेशन ने लोगों को हैरान किया। वॉशिंगटन डीसी में हवाई प्रदर्शन में पैराशूट टीमें भी शामिल हुई, आर्मी गोल्डन नाइट्स और नेवी लीप फ्रॉग्स ने विमान से छलांग लगाई। आसमान में दिखा शानदार नजारा, लाल और सफेद धुएं की लकीर छोड़ते अमेरिकी झंडे के साथ नीचे उतरे पैरा जंपर्स। दुनिया भर से बड़े पाल वाले और नौसेना के जहाज न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचे, अमेरिका ने समुद्री उत्सव के साथ अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह मनाई।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: कौन सा तेल शनि ग्रह की समस्याओं को दूर कर देता है, किस तेल के प्रयोग से कर्जे उतर जाते हैं और कौन से तेल का प्रयोग करने से डायबिटीज में सुधार होता है, क्या है ज्योतिष में तेल का महत्व और क्या है इसके चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
3: कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
14: टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। कम उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले सोलापुर के 12 साल के छात्र अब्दुल्ला इमरान मंगलगिरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसने महज 9000 रुपए की लागत से ऐसी सोलर साइकिल तैयार की है जो सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों से चलती है। साइकिल में डिजिटल स्पीडोमीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। छात्र का यह अनोखा आविष्कार लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके केनाइन पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं, कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनके इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसका शानदार उदाहरण एक जंगली बकरी ने पेश किया है, जिसने तेज बहाव वाली उफनती रावी नदी को बेखौफ होकर पार कर लिया। नदी की रफ्तार और खतरनाक हालात के बावजूद बकरी का संतुलन देखने लायक था। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की जमकर सराहना कर रहे हैं। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: जो बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पढ़ाई पूरी करने के बाद या बहुत बार पढ़ाई के दौरान हम अलग अलग नौकरियों की तैयारी करते हैं। कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में जाना चाहते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का ग्रहों का हाल क्या है, क्या है ग्रहों की चाल। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, हर साल लाखों लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, पीसीएस की, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों की, लेकिन हर आदमी प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाता। कौन से ग्रह प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? देखिए, प्रशासन के दो प्रमुख ग्रह हैं सूर्य और मंगल। इनको आप परफेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेनेट या प्रशासन के ग्रह कह सकते हैं। सूर्य की मजबूती से राज्य का, गवर्नमेंट का उच्च पद मिलता है और मंगल की मजबूती से सेना में, पुलिस में या फोर्स में उच्च पद मिलता है। चंद्रमा भी राजसिक प्लेनेट है, गवर्नमेंट का प्लेनेट है, इसीलिए इसके अलावा चंद्रमा भी उच्च पद दिलाने में सहायता करता है। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत हो, अग्नि की राशियां प्रबल हो या पृथ्वी तत्व मजबूत हो तो भी व्यक्ति प्रशासन में जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियां करता है। तो मुख्य रूप से किसी कुंडली में करियर से अगर सूर्य का, मंगल का या चंद्र का संबंध बनता हो पॉजिटिवली, तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रशासन में या प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करता है। प्रशासनिक सेवा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि प्रशासनिक सेवा में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने में समस्या होती है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों कमजोर हो गए तो लाख प्रयास करने पर भी आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता हो तो आप मेडिकल में जाएंगे, आप एजुकेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे। और या वायु तत्व की प्रधानता हो तो लिखने पढ़ने वाला, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, ऐसा काम करेंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति मुख्य ग्रह हो जाए तो न्याय के क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रशासन में नहीं।
और अगर शुक्र मुख्य ग्रह हो जाए तो भी प्रशासन में जाना मुश्किल होगा। अगर शनि की साढ़े साती का या ढैया का अंतिम समय चल रहा हो तो बहुत प्रयास करने के बावजूद 60-70% तक ये संभावना बनती है कि आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, मार्जिन से आप असफल हो सकते हैं। यानी कुंडली में ग्रहों का योग भी होना चाहिए और ग्रहों की सही दशा भी मिलनी चाहिए। जब योग भी सही होंगे और दशा भी सही मिलेगी तब आप प्रशासनिक सेवा में जा पाएंगे। आगे प्रशासनिक सेवा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं लेकिन प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, मेष, सिंह और धनु या तो राशि हो या तो लग्न हो, प्रशासन में जाने की संभावना मजबूत होती है। कुंडली में अगर प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। वृषभ, कन्या, मकर राशि में प्रशासन के गुण बहुत होते हैं लेकिन संघर्ष भी इनको ज्यादा करना होता है। अगर इनको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो हनुमान जी की बहुत उपासना इनको करनी चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग चंचल दिमाग के होते हैं, एक लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाते। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो आपको लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग शासन करते हैं लेकिन ज्यादातर इन राशियों के लोग राजनीति से या सोशल वर्क के माध्यम से शासन करते हैं। अगर ये प्रशासन में सफलता चाहते हैं तो इनको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और प्रयास करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और संघर्ष ज्यादा है तो रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा गमले या जमीन में लगाएं और घर के पीछे की तरफ केले का पौधा लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धन का आगमन सरलता से होता रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहलगाम के ननवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था दर्शन के लिए रवाना, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। मुंबई के कई इलाकों में भारी जलभराव, वसई पूर्व में पानी के बीच घिरे 20 से 25 लोगों को दमकल की टीम ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित निकाला। जम्मू पुलिस और SDRF के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। 61 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, परिवार और करीबी दोस्त शादी में शामिल होंगे, शादी की तैयारी जारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: तो देखिए, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं तेल की। तो देखिए, तेल तो कई तरह के होते हैं, जैतून का तेल, नारियल का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम तेल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। हम तेल के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज पंडित जी बताने वाले हैं कि आखिरकार तेल का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है और इसके चमत्कारी प्रयोग से आपके जीवन को किस तरीके से बदला जा सकता है, इसके बारे में जानकारी जो है पंडित जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
5: देखिए, आपको किसी के विवाह का कार्ड मिले, कोई निमंत्रण पत्र मिले, उसका कार्ड आप पढ़ते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, तो विवाह के और निमंत्रण के कार्ड नहीं फाड़ने चाहिए। उस पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, श्लोक लिखा होता है, हल्दी लगी होती है। अगर आप इसको फाड़ कर या इधर उधर फेंकेंगे तो इससे बृहस्पति कमजोर होगा और आपके घर में जो शुभता है, जो शुभ चीजें हैं, वो घटनी शुरू हो जाएंगी। तो निमंत्रण पत्रों को या तो जल प्रवाहित कर दें या इनको मिट्टी में दबा दें, इधर उधर फाड़ कर कूड़े में फेंकना उचित नहीं है।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 5 जुलाई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
5: दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 1:30 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 3:12 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अनुकूल नहीं होगा।
4: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार तेल का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, तो पंडित जी सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि तेल के उपयोग से किस तरीके से हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है और क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिसे करके हमारे भाग्य को हम बदल सकते हैं।
5: जी देखिए, आज हम आपको तेल के बारे में बताएंगे, अलग अलग तरह के तेल और उसके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि तेल हमारे जीवन पर और हमारे भाग्य पर कैसे असर डाल सकता है। देखिए, किसी भी तरह का तेल वास्तव में रसायन है, केमिकल है और शुक्र बुध से संबंध रखता है। अलग अलग तरीके के तेल उनके गुणों की वजह से, उनके सुगंध की वजह से और रंगों के आधार पर अन्य ग्रहों से भी संबंध रखते हैं। तेल के विभिन्न प्रयोगों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और तेल का प्रयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं। अलग अलग तरीके के जो तेल होते हैं उसका कंपोनेंट, उसका प्रभाव आपके जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। खाने पीने से लेकर के पूजा पाठ तक में तेल का अलग अलग प्रयोग होता है और ये अलग अलग तरीके के तेल आपके जीवन पर गहरा असर डालते हैं।
4: तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सरसों के तेल की, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडियन हाउसहोल्ड्स में। तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्या कुछ अचूक उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
5: देखिए, अगर हम सरसों के तेल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, तो ऐसा तेल जो हर तरीके से प्रयोग में लाया जा सके वो सरसों का तेल ही है। खाने में, लगाने में, दीपक जलाने में, मालिश करने में, हर चीज में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल का सीधा संबंध होता है शनि देव के साथ। शनि संबंधी समस्याओं के निवारण में इसका प्रयोग अद्भुत लाभकारी होता है। शनि की अगर जीवन में समस्या है तो सरसों के तेल के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। शनि के कारण अगर शारीरिक कष्ट है तो शरीर और बालों में सरसों का तेल लगाना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में मंगल मजबूत है तो सरसों का तेल लगाने से बचना चाहिए। अगर आपकी शनि की 7:30 चल रही है तो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ है तो भोजन में अन्य तेलों के बजाय अगर सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे तो आपको

0: कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, बात तेलों की हो रही है, ऐसे में अब बात कर लेते हैं बादाम के तेल के बारे में। बादाम के तेल का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है आपकी कुंडली से, इसका क्या कनेक्शन है, और साथ ही में बादाम के तेल से जुड़े कौन से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: अब बात करते हैं बादाम के तेल की, यानी एलमंड ऑयल की। बादाम का तेल खाद्य पदार्थ भी है, सौंदर्य प्रसाधन भी है और औषधि यानी मेडिसिन भी है। बादाम का तेल शुक्र और बुध दोनों से संबंध रखता है। ये चेहरे को अत्यंत चमकदार और अत्यंत सुंदर बना देता है और बादाम का तेल बुद्धि और याददाश्त को बहुत तेज कर देता है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो इस तेल को खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए ताकि बुध प्रबल हो, दिमाग तेज हो। राहु के प्रभाव को कम करने में भी ये तेल अद्भुत भूमिका निभाता है, राहु के प्रभाव को कम करता है। जो इडेबल बादाम का तेल है, अगर उसको दूध में कुछ बूंदें डालकर ग्रहण किया जाए तो दिमाग बहुत तेज हो जाता है, दिमाग शार्प हो जाता है। जो इडेबल आलमंड ऑयल है, उसको दूध में दो चार बूंदें डाल करके पीने से, ग्रहण करने से दिमाग बहुत तीव्र होता है, दिमाग का प्रेशर कम हो जाता है।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करिएगा, धन खर्च पर ध्यान दें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें

0: कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रही हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अभिनव जी ने हमें लिखा है और अभिनव जी हमें इंदौर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 2002। जन्म का समय सुबह के 9:45 और जन्म का स्थान है इंदौर। अभिनव कह रहे हैं कि मैं आगे MBA करने जा रहा हूं, तो MBA करने के बाद मुझे नौकरी करनी चाहिए या मुझे व्यापार में जाना चाहिए, क्योंकि मैं व्यापार करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अभिनव, आपके लिए MBA करना कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर आपको व्यापार में ही जाना है जैसा आपकी कुंडली कहती है तो MBA करने से कोई बहुत लाभ होगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। हाँ, व्यापार करने का उपयुक्त समय चल रहा है, अगर आप व्यापार करना चाहें तो इस साल के आखिरी से 2026 के अक्टूबर के बाद आप व्यापार में एंट्री करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और MBA में समय नष्ट ना करें, व्यापार में जाएं, व्यापार में आपको बेहतर सफलता मिलेगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह और शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। इस वक्त आप देखेंगे कि टीवी स्क्रीन पर हमारी जो email ID है वो फ्लैश हो रही है। इसी email ID पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। ध्यान रखिए कि साथ में अपने बर्थ डिटेल्स आप हमें जरूर लिख दें। तो चलिए इसी के साथ पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न गुरुदयाल जी ने हमें लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1965, रात के 8:15 जन्म स्थान है खन्ना पंजाब। गुरदयाल जी कह रहे हैं कि संपत्ति को लेकर एक विवाद काफी समय से चला आ रहा है, ये विवाद कब तक हल होगा और कब तक सफलता मिलेगी इस बारे में जानना चाहते हैं। गुरदयाल जी, आपकी कुंडली देख करके लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो पारिवारिक है और आपकी कुंडली के हिसाब से ये संभावना लगती है कि आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल होगा, उसका समय चल रहा है, इस साल के आखिरी में आपसी सुलह समझौते से मामले के हल होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा कि आपकी संपत्ति का विवाद हल हो जाए। दूसरे नंबर पर एक मूंगा बनवा लीजिएगा, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चमेली के तेल के एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में। तो चमेली के तेल के उपयोग से किस तरीके से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: देखिए, सामान्य जीवन में हम चमेली के तेल का उतना प्रयोग नहीं करते। चमेली का तेल शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल से संबंध रखता है और चमेली का तेल ज्यादातर सुगंध के कारण और जलाने के काम में आता है। मंगल से संबंध रखने की वजह से इस तेल को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला करके सिंदूर लगाया जाता है। अगर कर्ज परेशान कर रहे हों, कर्जों से बहुत दिक्कत हो रही हो, तो आप नियमित पूजा में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक रोज शाम को जलाइए और चमेली के तेल का दीपक जला करके रोज अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ना हो तो बहुत जरा सा चमेली का तेल, मामूली सा, नहाने के बाद शरीर में या बालों में लगा सकते हैं। चमेली के तेल की जो खुशबू होती है वो थोड़ी मादक होती है, इसलिए युवावस्था में और शिक्षा काल में चमेली के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका मंगल खराब है, मंगल आपका निगेटिव है, तो हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चमेली के तेल का दान करिएगा। ऐसा अगर हर मंगलवार को करें तो आपको विशेष लाभ अवश्य होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, सेहत की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल के बारे में। तो किस ग्रह से इसका संबंध है और किस तरीके से जैतून के तेल के इस्तेमाल से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं।
0: जैतून के तेल की यानी ऑलिव ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल जैतून का तेल शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है। इसको प्रयोग करने से शुक्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है, शुक्र को ताकत मिलती है। अगर आपको डायबिटीज हो गई है या डायबिटीज होने की संभावना है तो भोजन में ऑलिव ऑयल का, जैतून के तेल का प्रयोग करें। अगर व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना है तो जैतून के तेल की मालिश कराने से लाभ होगा। छोटे बच्चों की मालिश अगर जैतून के तेल से की जाए तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आर्थिक रूप से दिक्कतें ज्यादा हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा है, तो घर में कम से कम शुक्रवार की शाम को जैतून के तेल का दीपक जलाइए, घर में समृद्धि बनी रहेगी। डायबिटीज की समस्या है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, पेट में दिक्कतें ज्यादा परेशान करती हैं, ऐसी स्थिति में अगर जैतून का तेल भोजन में प्रयोग करें तो स्वास्थ्य में सुधार होगा।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुमार मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी, आज का तीसरा प्रश्न दीपक जी ने हमें लिखा है और दीपक जी हमें वाराणसी उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। 16 नवंबर 1994 का जन्म है, शाम के 6:51, जन्म स्थान है भदोही, मेल लिखते हैं वाराणसी से। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपकी शादी होगी वाराणसी या वाराणसी के आसपास। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं तो कुंडली मिला करके ही निर्णय लेना ठीक रहेगा। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और अपने सवाल इस पर लिख करके हमें भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न इंद्रनील मुखर्जी जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1961, जन्म का समय सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। इंद्रनील जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर मुझे परेशानी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बेवजह की चिंताएं परेशान करती हैं। हालांकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ निगेटिव नहीं आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। इंद्रनील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार को लेके, खास तौर से संतान को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं और संतान की चिंताएं आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। संभवतः तनाव की वजह से आप बीमार पड़ गए हैं, मामला इतना गंभीर नहीं है। आपकी जो मुश्किलें हैं वो मुझे लगता है कि जनवरी 2027 से कम होंगी और उसके बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप दो काम करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनिएगा। रोज सुबह एक बार देवी कवच का, जिसको दुर्गा कवच भी कहते हैं, इसका पाठ करिएगा। ये दो उपाय करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 5 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, धन और कर्ज की समस्या दूर होगी, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अभी भी विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वालों को जीवन में ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। क्या ऐसा है? देखिए, पूजा उपासना अपने मन की शांति के लिए और ईश्वर की कृपा उनसे संबंध के लिए की जाती है, इसका कष्ट भोगने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप पूजा उपासना करते हैं तो आपके कष्ट बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएं, इसलिए कभी कभी बहुत तेजी से कष्ट आने लगते हैं, लेकिन वो दरअसल बहुत जल्दी खत्म होते हैं और आपको उससे मुक्ति मिले, इसलिए ऐसा हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो कष्ट भोगता है वो अपने कर्मों की वजह से और अपने मना स्थिति के कारण भोगता है।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर का समय और उसका उपाय।
0: दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 5 जुलाई रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कर्क। इस समय आपके विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हालांकि कर्क वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज हमने तेल के बारे में बात की है, तो आपको एक ऐसा तेल बनाने के बारे में बताते हैं जिससे आपको शरीर दर्द से छुटकारा मिलेगा। नीले कांच की बोतल ले लें, नीले रंग का ग्लास होना चाहिए, इसमें सरसों का तेल भर दें, थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा। इस तेल को धूप में लगभग 7 दिनों तक रखें। और 7 दिनों में इस तेल के अंदर गुण आ जाएंगे। जब भी कहीं दर्द हो, नींद आने की दिक्कत हो, इस तेल को लगाइए, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM, commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कौन से ग्रह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति प्रशासन में या फोर्स में जाता है? और अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रशासनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, come home. It's supper time.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
5: Hey, Jack, did you play that one song with the words?
3: Jack FM, playing what we want.
6: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं। मिलिए कश्मीर के शोपियां के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
2: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है। तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है। और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
3: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है। तो मैं चाहता हूं कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है। ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे। और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाई डिफ़ॉल्ट करेगा। बट जो हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
2: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
4: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है। और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
2: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमरलैंड एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारत मंडपम में आज से 7 जुलाई 2026 तक देश का सबसे बड़ा टॉय एक्सपो शुरू हो रहा है और इसका उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। टॉय बिज एक्सपो 2026 को लेकर ई कॉमर्स और रिटेल कारोबारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खिलौना इंडस्ट्री से जुड़े मैन्युफैक्चरर्स, थोक विक्रेता, इम्पोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स और नए सप्लायर्स को एक बड़ा मंच मिला है। ये एक्सपो न सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए बल्कि छोटे कारोबारियों और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। और यही नहीं, ये एक्सपो ऑनलाइन बिजनेस में काम करने वाले कारोबारियों के लिए भी बड़े अवसर खोल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट।
5: भारत मंडपम में टॉय बिज एग्जीबिशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर देश भर के वो व्यापारी पहुंचे हैं जो खिलौनों का निर्माण करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि ये एक B2B एग्जीबिशन है, मतलब इसमें से बिजनेस टू बिजनेस की बात होगी। वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो व्यापारी जो खिलौने बनाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, और वो लोग जो लोकल मार्केट में जाकर खिलौने को बेचते हैं, जिनके छोटे छोटे स्टोर हैं, छोटे छोटे टॉय की शॉप हैं, वो सब आज यहाँ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब भारत में भारतीय खिलौनों की मौजूदगी महज 20% हुआ करती थी, बाकी 80% जो खिलौने थे वो विदेशों से आते थे, उनका कब्जा रहता था भारतीय बाजार पर। लेकिन 2020 के बाद से तस्वीर बदली है और आज के वक्त में भारत के टॉय मार्केट में 80% से ज़्यादा, या आप यूं कहें कि उसके आसपास की जो बिक्री है वो सिर्फ भारतीय खिलौनों की ही होती है, यानी कि विदेशी ब्रांड पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। और या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय ब्रांड्स ने किस तरह से विदेशी टॉयज़ को, विदेशी ब्रांड को टक्कर दी है कि आज वो डोमिनेट करते हैं अपने बाज़ार में। सिर्फ इतना ही नहीं, 150 से ज़्यादा देशों में भारत के खिलौने भेजे जाते हैं, दूसरे देश हमसे खिलौना खरीदते हैं, इनमें गल्फ कंट्रीज़ सबसे आगे हैं। बहुत सारी बातें आज इस टॉय B2B एग्जीबिशन में होने वाली हैं। तमाम सारे वो लोग यहाँ पहुँचेंगे जो या तो पहले से ही खिलौनों के व्यापार में लगे हुए हैं, या फिर वो लोग जो कुछ यहाँ से सीख कर, समझ कर, आगे जाकर अपना बिजनेस शुरू करने के मूड में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 300 मैन्युफैक्चरर्स पहुँचे हैं और 400 ब्रांड जो भारतीय ब्रांड हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर एक भी विदेशी ब्रांड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर इस एग्जीबिशन के ज़रिए कोशिश ये की जा रही है कि जो लोकल दुकानदार है, जो लोकल स्टोर कीपर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़े, ताकि वो बजाय इसके कि विदेशी ब्रांड खरीदने जाए, अपने ही देश के खिलौनों को खरीदे और बेचे। लगातार भारतीय बाजार अपने खिलौनों की गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर, उसके डिज़ाइन पर काम करते आए हैं और आगे भी वो लगातार इस पर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है वो यही कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और ये बिजनेस जो इवेंट है B2B का, वो भी इसी तरफ एक बेहतरीन कदम बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: सोशल मीडिया की एयर हेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: कौन से ग्रह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति प्रशासन में या फोर्स में जाता है? और अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रशासनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
8: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
9: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
8: Big 12 Radio.
10: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
8: and
10: down.
8: And talk sports.
11: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
8: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
12: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है।
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
15: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
1: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहलगाम किनुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था दर्शन के लिए रवाना। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। वसई पूर्व में पानी के बीच घिरे 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू पुलिस और SDRF के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया। पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। इकसठ साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान। परिवार और करीबी दोस्त शादी में शामिल होंगे। शादी की तैयारी जारी। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न। भव्य परेड और शानदार फ्लाईपास के बीच पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब। जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
1: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन। अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों का जोश हाई। बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा अमरनाथ यात्रा मार्ग। यात्रा मार्ग पर अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। अभेद्य सुरक्षा के बीच पवित्र यात्रा जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहलगाम किनुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना। लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का चौथा जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हुआ रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था सफल दर्शन के बाद बनिहाल के रास्ते लौटा। बोले श्रद्धालु, बाबा बर्फानी के दर्शन से मन हुआ धन्य। जय भोले के जयकारों के साथ लौटा पहला जत्था। श्रद्धालुओं के चेहरों पर दिखी खुशी और आस्था। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। अमरनाथ यात्रा के बीच गौरव का पल। पहलगाम में लहराया तिरंगा। चंदनवाड़ी बेस कैंप पर भारतीय सेना ने फहराया विशाल तिरंगा। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में शान से लहराया राष्ट्रध्वज, आस्था की राह पर देशभक्ति का भव्य संदेश, चंदनवाड़ी में भारत माता की जय की गूंज। तिरंगा बना आस्था, दृढ़ता और वीरता का प्रतीक, सेना और श्रद्धालुओं ने बढ़ाया राष्ट्रभक्ति का मान, दिखा शानदार नजारा। मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर के भव्य कुंभ अभिषेक का आयोजन किया गया, समारोह में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं भक्त। मदुरई के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच है भगवान मुरुगन का मंदिर, प्राकृतिक खूबसूरती भरपूर। मुरुगन मंदिर की देवता को बनाए रखने के लिए कुंभ अभिषेक की परंपरा, गर्भगृह के कलशों का पवित्र नदियों के जल से किया गया अभिषेक। समारोह के लिए मंदिर की हुई भव्य सजावट, भक्तों पर भी पवित्र जल छिड़क कर दिया गया आशीर्वाद। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, ड्रोन से भी रखी गई नजर। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन की अपील, लोग बेवजह घर से ना निकलें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। मुंबई में वसई पूर्व के मधुबन इलाके में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी में फंसे 20 से 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में टला बड़ा हादसा, रिहायशी सोसाइटी में गिरा बड़ा पेड़। देर रात जब पेड़ गिरा तब वहां कोई मौजूद नहीं था, मुंबई पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, पेड़ को काटकर रास्ते से हटाया गया। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर नजर आया जलजमाव, मुंबई के जुहू इलाके में जलसा के बाहर भरा पानी। पालघर में सड़कों से दोनों ओर से 3 से 4 फीट तक भरा पानी, लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में हो रही है परेशानी। पालघर में भारी बारिश का ज्यादा असर, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर ट्रक पानी में फंसे। मूसलाधार बारिश के कारण नालासोपारा में रेलवे ट्रैक पानी में डूबे, वाटर लॉगिंग की तस्वीर आई सामने। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में उठी ऊंची लहरें, हाई टाइड देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारी बारिश के कारण मुंबई के भांडूप में फुटपाथ का छोटा सा हिस्सा धंसा, पानी के सामने का लाइव वीडियो आया सामने। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में हुआ जलजमाव, अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड से वाटर लॉगिंग की तस्वीरें आई सामने। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, कई गांवों का टूटा संपर्क। इंदौर में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें हुई जलमग्न, आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मॉनसून ने दस्तक दी, अंडरपास में पानी भरने से कार पानी में फंसी। लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी उफान पर, डूबा जोबरंग पुल, 300 से ज्यादा आबादी वाले 3 गांव की आवाजाही हुई प्रभावित। वसई कामंड सरजा मोरी इलाके में निर्माण कार्य के दौरान 5 मजदूर बाढ़ के पानी में फंसे, पुलिस अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ की टीम सबको बचा चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में 12 घंटे की झमाझम बारिश से विदर्भ हुआ तरबतर, किसानों के खिले चेहरे। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। अहमदाबाद में गरज के साथ हुई तेज बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, लेकिन जल जमाव की वजह से बढ़ी परेशानी। जूनागढ़ के मांगरोल में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, हाउसिंग सोसाइटी में भरा पानी। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होने के बाद प्राकृतिक गैस सप्लाई के नियमों में आया बदलाव, सरकार ने लागू किए कई विशेष प्रावधान हटाए। 9 मार्च 2026 को जारी किए गए आदेश में सरकार ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए कई विशेष प्रावधान लागू किए थे, नए आदेश के जरिए उन्हें हटाया गया। जेंजी के लिए गीता प्रेस की सौगात, गीता 1 साथ 3 भाषाओं में रोमन लिपि के साथ हो रही है प्रकाशित। गीता के नए संस्करण में संस्कृत के मूल श्लोक, उनका रोमन लिपि में उच्चारण, हिंदी अर्थ और अंग्रेजी अनुवाद, सब कुछ एक ही पुस्तक में मिलेगा। सुपौल में खाकी वर्दी में जाबाज बेटियों के कदमों से गूंजा बीएसएपी बटालियन। पासिंग परेड के बाद बिहार पुलिस में 1074 महिला सिपाहियों की एंट्री हुई। बेटे का सपना पूरा करने के लिए कोटा में रहकर फिर से पढ़ी मां, बीमार होने के चलते

डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने। वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू पर बीसीसीआई का पोस्ट, बीसीसीआई ने ट्वीट कर ऐतिहासिक दिन बताया। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लिया चाय समोसा, बन मक्खन का स्वाद, हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। नितिन नवीन और सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, प्रदेश और जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। दिल्ली में 17वें टॉय बिजनेस इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। रंग बिरंगे और इनोवेटिव खिलौनों ने पहले दिन ही खींचा सभी का ध्यान। देश विदेश के खिलौना निर्माताओं का दिल्ली में संगम, बच्चों की सीख और मनोरंजन से जुड़े आधुनिक खिलौने बने आकर्षण का केंद्र। परंपरा और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल, टॉय बिजनेस एक्सपो 2026 में स्मार्ट टॉयज की शानदार झलक देखने को मिली। मेक इन इंडिया खिलौनों को मिला बड़ा मंच, स्वदेशी खिलौनों की गुणवत्ता और रचनात्मकता ने खरीदारों को किया प्रभावित। टॉय बिजनेस इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2026 में कारोबार के नए अवसर, खूबसूरत डिजाइन और सुरक्षित खिलौनों ने उद्योग जगत को दिखाई नई दिशा। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, देखते ही बन रहा है मंदिर परिसर में भक्तों का उत्साह। चांदी के भव्य रथ को दिया जा रहा है अंतिम रूप, कारीगर फाइनल टच देकर निखार रहे हैं रथ की भव्यता। मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के भजनों की मधुर गूंज सुनाई दे रही है, श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर कर रहे हैं कीर्तन। रथ यात्रा को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, हर ओर उत्सव और श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा है। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, शहर भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए तैयार। अमेरिका की आजादी के जश्न की 250वीं सालगिरह के मौके पर सेना का प्रदर्शन, वॉशिंगटन डीसी के आसमान में भरी उड़ान। आसमान में गर्ज F-16, F-22, C-130 जैसे फाइटर विमान, ब्लू एंजल्स के शानदार फॉर्मेशन ने लोगों को हैरान किया। वॉशिंगटन डीसी में हवाई प्रदर्शन में पैराशूट टीमें भी शामिल हुई, आर्मी गोल्डन नाइट्स और नेवी लीफ फ्रॉग्स ने विमान से छलांग लगाई। आसमान में दिखा शानदार नजारा, लाल और सफेद धुएं की लकीर छोड़ते अमेरिकी झंडे के साथ नीचे उतरे पैरा जंपर्स। दुनिया भर से बड़े पाल वाले और नौसेना के जहाज न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचे, अमेरिका ने समुद्री उत्सव के साथ अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह मनाई। न्यूयॉर्क हार्बर में अमेरिका के 250वें जन्मदिन पर भव्य एयर शो, रेड व्हाइट एंड ब्लू एयर शो ने आसमान में बिखेरा रोमांच। यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स ने एयर शो की अगुवाई की, अमेरिका और सहयोगी देशों के 100 से ज्यादा विमानों ने भरी उड़ान। न्यूयॉर्क के आसमान में दिखा शानदार हवाई करतबों का नजारा, सेल 4250 समुद्री उत्सव का बना मुख्य आकर्षण एयर शो। न्यूयॉर्क हार्बर में हजारों दर्शकों ने एयर शो का लिया आनंद, लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा न्यूयॉर्क का आसमान। देशभक्ति के रंग में रंगा न्यूयॉर्क आसमान में दिखा शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी सेना के हवाई कौशल के दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। अमेरिका ने आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया, देश भर में शानदार आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया गया, लाखों लोगों ने आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा अमेरिका का आसमान, लोगों ने आजादी का उत्सव मनाया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों को 250वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। एकता लोकतंत्र देश के भविष्य को मजबूत बनाने का संदेश।

0: संदेश दिया। 250 साल पूरे होने के मौके पर अमेरिका में देशभक्ति का माहौल नजर आया। परेड, संगीत और भव्य आतिशबाजी के साथ स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक प्रदर्शनी की शुरुआत, तो वहीं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की दुर्लभ कॉपी प्रदर्शित। साउथ बीच में 13 स्टार वाला ऐतिहासिक अमेरिका झंडा आकर्षण का केंद्र बना। जॉर्ज वॉशिंगटन की 1795 की पेंटिंग भी प्रदर्शनी में शामिल हुई। अमेरिका की 250 साल के इतिहास को 5 थीम में किया गया पेश। 1820 में छपी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की दुर्लभ प्रति प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरें शामिल की गई। एडवर्ड हॉपर और जॉर्जिया ओकीफ की कृतियां भी प्रदर्शित। गार्डन पॉक्स की फोटोग्राफी ने भी खींचा दर्शकों का ध्यान। बार्कले हेंड्रिक्स की पेंटिंग्स भी बनी प्रदर्शनी का हिस्सा। क्रोएशिया के लोपार में रेत से बनी 15 मीटर लंबी विशाल मूर्तियां। 15वें सैंड आर्ट फेस्टिवल में 20 टन रेत से गढ़ी गई अनोखी कलाकृतियां। राजस्का बीच पर स्क्विड, कछुआ और मूंग सील की विशाल रेत मूर्तियां बनी। 15 मीटर की एक मूर्ति तैयार करने में लगे 4 दिन। ड्रोन फुटेज में दिखा रेत की विशाल कलाकृतियों का शानदार नजारा। इस साल की थीम है हर मूर्ति सुनाती है अपनी रेत की कहानी। सैंड आर्टिस्ट ने बीच को बनाया ओपन एयर आर्ट गैलरी। 8-10 मीटर लंबी मूंग सील की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। पर्यटकों ने रेत की विशाल मूर्तियों के साथ जमकर खिंचवाई तस्वीरें। बीच पर देखने को मिला कला और पर्यटन का शानदार संगम। चाइना में एम्बॉडीड इंटेलिजेंस का असल दुनिया में इस्तेमाल हुआ तेज। बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट चला रहा 24 घंटे खुला क्वीनियंस स्टोर। AI रोबोट पेमेंट लेने और सामान देने में हुआ सक्षम। लैब से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में पहुंची एम्बॉडीड AI। चाइना बना रहा एक दिमाग कई शरीर वाला AI मॉडल। बर्तन धोने और सफाई जैसे काम सीख रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी छात्रों ने चाइना की रोबोटिक्स कंपनी का दौरा किया। येल, ब्राउन और जॉन्स हॉपकिंस के 77 छात्र चेंगदू पहुंचे। अमेरिकी छात्रों ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ किया सीधा संवाद। इंजीनियर से एम्बॉडीड AI की तकनीक को करीब से साझा किया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ओमेगांग महोत्सव के दौरान घुड़सवारों ने ऐतिहासिक जॉस्टिंग का किया रोमांचक प्रदर्शन। 16वीं सदी की जंग का जीवंत प्रदर्शन। पारंपरिक कवच पहने कलाकारों ने भालों के साथ मध्यकालीन टूर्नामेंट का शानदार पुनर्निर्माण किया। यूनेस्को विरासत महोत्सव में 1200 कलाकार शामिल हुए। 1 से 4 जुलाई तक चले इस ओमेगांग फेस्टिवल में ऐतिहासिक परेड बनी आकर्षण। घुड़सवारी और परंपरा का अनोखा संगम। ब्रसेल्स की सड़कों पर निकली भव्य परेड में बच्चे से लेकर कई पीढ़ियों के परिवार हुए शामिल। रोमांच इतिहास और संस्कृति का उत्सव देखने को मिला। 2019 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल ओमेगांग महोत्सव लोगों ने अपनी विरासत को जानने का खूबसूरत जुनून दिखाया। बीजिंग के जू में स्टार पांडा मिंगलान ने मनाया 11वां जन्मदिन। जू प्रशासन ने खास केक को काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। 11वें बर्थडे पर मिंगलान के लिए हुई खास पार्टी। बीजिंग के जू में बड़ी संख्या में लोग जश्न के गवाह बने। शी जिनपिंग के तीसरे राजकुमार के नाम से मशहूर है मिंगलान। अनोखी हरकतों और हुनर की वजह से बना आकर्षण का केंद्र। पेड़ों पर चढ़ना, गड्ढे खोदना, पक्षियों को खाना खिलाना, यही है मिंगलान की खासियत। मिंगलान अपनी नटखट अदाओं की वजह से पूरे चाइना में लोकप्रिय हैं। मिंगलान को देखने के लिए चाइना के दूर दराज के हिस्सों से आते हैं पर्यटक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमेरिका में आजादी के 250 साल के जश्न की। अमेरिका में आजादी की 250वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर लड़ाकू विमानों ने शानदार एयर शो और फ्लाई पास्ट पेश किया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के नए एयरफोर्स एक विमान ने भी हिस्सा लिया है। आपको बता दें राजधानी वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सहित तमाम जगहों पर अब तक की सबसे बड़ी आतिशबाजी का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर पैरा जंपर्स ने भी कमाल के करतब पेश किए हैं। समुद्र में जंगी जहाजों ने भी अपना दमखम दिखाया है। देश भर में परेड हुआ, संगीत कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और सबसे बड़ी आतिशबाजी के जरिए लोगों ने 250वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया है। 4 जुलाई 1776 को नॉर्थ अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ब्रिटेन से अलग होने का फैसला किया था। अमेरिका ने आजादी के 250 साल पूरे होने पर इस अवसर पर मनाए जा रहे समारोह को अमेरिका 250 का नाम दिया है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क में लड़ाकू विमानों ने समुद्र के ऊपर जोरदार फ्लाई पास्ट किया। न्यूयॉर्क की हडसन नदी में नेवी परेड निकाली गई और इस दौरान यूएसएस किरसाज और आरएमएस क्वीन मैरी समेत कई जहाज भी इसमें शामिल हुए और कर गए। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। सभी 50 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। Humanly Despite Universe में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। वंदे में है दम श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: कौन से ग्रह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति प्रशासन में या फोर्स में जाता है? और अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रशासनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था दर्शन के लिए रवाना, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। वसई पूर्व में पानी के बीच घिरे 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। इकसठ साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, परिवार और करीबी दोस्त शादी में शामिल होंगे, शादी की तैयारी जारी। अमेरिका में आजादी की 250 सालों का जश्न, भव्य परेड और शानदार फ्लाईपास के बीच पैरा जंपर्स ने भी दिखाई कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दाव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना, स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
7: प्रणब मुखर्जी।
3: आलिया की जिंदगी की गहराई गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: आई एम सो प्रेजेंट जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफकोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, कोई मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी ले, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टीजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थीं। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थीं। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7।
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म। एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यूं तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं। पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टंग करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, office आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
8: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है. एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी. तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ.
3: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है. 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है. उड़ता पंजाब के एक महले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा है जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे. उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया. ...2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई. वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया. गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं. 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई. संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया. गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया.
9: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट.
3: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ. साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई. 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही. 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया. साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं. साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं. आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं.
0: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
10: कौन से ग्रह व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति प्रशासन में या फोर्स में जाता है? और अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या उपाय करने चाहिए? प्रशासनिक सेवा का और ग्रहों का क्या है कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन.
11: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasio.
12: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
13: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
12: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
13: Remember, around here, we use the F Word,
12: never the S Word.
11: The S Word, available now on TuneIn,
14: wherever you get your podcasts,
11: and on the S Word YouTube channel.
15: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
19: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहलगाम किनुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था दर्शन के लिए रवाना, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। वसई पूर्व में पानी के बीच घिरे 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जम्मू पुलिस और SDRF के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। इकसठ साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बनेंगे आमिर खान, परिवार और करीबी दोस्त शादी में शामिल होंगे, शादी की तैयारी जारी। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, भव्य परेड और शानदार फ्लाईपास के बीच पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पढ़ाई पूरी करने के बाद या बहुत बार पढ़ाई के दौरान हम अलग अलग नौकरियों की तैयारी करते हैं। कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में जाना चाहते हैं। तो प्रशासनिक सेवा के योग क्या होते हैं और प्रशासनिक सेवा में सफलता कब मिलती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:30 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:12 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का ग्रहों का हाल क्या है, क्या है ग्रहों की चाल। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, हर साल लाखों लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, पीसीएस की, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों की, लेकिन हर आदमी प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाता। कौन से ग्रह प्रशासनिक सेवा में ले जाते हैं? देखिए, प्रशासन के 2 प्रमुख ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। इनको आप परफेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेनेट या प्रशासन के ग्रह कह सकते हैं। सूर्य की मजबूती से राज्य का, गवर्नमेंट का उच्च पद मिलता है और मंगल की मजबूती से सेना में, पुलिस में या फोर्स में उच्च पद मिलता है। चंद्रमा भी राजसिक प्लेनेट है, गवर्नमेंट का प्लेनेट है, इसीलिए इसके अलावा चंद्रमा भी उच्च पद दिलाने में सहायता करता है। कुंडली में अगर अग्नि तत्व मजबूत हो, अग्नि की राशियां प्रबल हो या पृथ्वी तत्व मजबूत हो तो भी व्यक्ति प्रशासन में जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियां करता है। तो मुख्य रूप से किसी कुंडली में करियर से अगर सूर्य का,
मंगल का या चंद्र का संबंध बनता हो पॉजिटिवली, तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रशासन में या प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करता है। प्रशासनिक सेवा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू होगा, खान पान का ध्यान रखें, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन खर्च पर ध्यान दें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि प्रशासनिक सेवा में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाने में समस्या होती है। अगर किसी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों कमजोर हो गए तो लाख प्रयास करने पर भी आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता हो तो आप मेडिकल में जाएंगे, आप एजुकेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे। और या वायु तत्व की प्रधानता हो तो लिखने पढ़ने वाला, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, ऐसा काम करेंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति मुख्य ग्रह हो जाए तो न्याय के क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रशासन में नहीं। और अगर शुक्र मुख्य ग्रह हो जाए तो भी प्रशासन में जाना मुश्किल होगा। अगर शनि की साढ़े साती का या ढैया का अंतिम समय चल रहा हो तो बहुत प्रयास करने के बावजूद 60-70% तक ये संभावना बनती है कि आप प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, मार्जिन से आप असफल हो सकते हैं। यानी कुंडली में ग्रहों का योग भी होना चाहिए और ग्रहों की सही दशा भी मिलनी चाहिए। जब योग भी सही होंगे और दशा भी सही मिलेगी तब आप प्रशासनिक सेवा में जा पाएंगे। आगे प्रशासनिक सेवा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन

कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं लेकिन प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, मेष, सिंह और धनु या तो राशि हो या तो लग्न हो, प्रशासन में जाने की संभावना मजबूत होती है। कुंडली में अगर प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। प्रातः काल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। वृषभ, कन्या, मकर राशि में प्रशासन के गुण बहुत होते हैं लेकिन संघर्ष भी इनको ज्यादा करना होता है। अगर इनको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो हनुमान जी की बहुत उपासना इनको करनी चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग चंचल दिमाग के होते हैं, एक लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगा पाते। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो आपको लाभ होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग शासन करते हैं लेकिन ज्यादातर इन राशियों के लोग राजनीति से या सोशल वर्क के माध्यम से शासन करते हैं। अगर ये प्रशासन में सफलता चाहते हैं तो इनको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग हैं और प्रयास करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और संघर्ष ज्यादा है तो रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही ना करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको

बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा गमले या जमीन में लगाएं और घर के पीछे की तरफ केले का पौधा लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धन का आगमन सरलता से होता रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें, इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: जुलाई के महीने में किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? जुलाई के महीने में कौन सी राशि वाले का करियर बदलेगा? जुलाई के महीने में किस राशि के व्यक्ति को दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा? क्या है जुलाई के महीने का राशियों का हाल, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में.
9: एक बहुत ही अच्छे भगत हुए, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी हुए. आहा, माँ तारा के परम साधक हुए और माँ तारा को बहुत भाव पूर्वक मानते थे. उनका नाम था बामा खेपा. क्या नाम था? बामा खेपा. माँ तारा के साधक थे. ऐसा संत कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भी यही गुरु थे. इनका नाम बामा खेपा. पश्चिम बंगाल में एक गांव है, इनके नाम से ही बामाचरण नाम का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ. कुछ दिनों बाद इनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, माताजी गरीब थी, तो इनको पालन पोषण के लिए इनकी जीवन यापन बढ़िया हो सके, इसलिए बामा खेपा जी को मामा के पास भेज दिया। बामा खेपा के जो मामा जी थे वो तारापीठ के पास के गांव के रहने वाले थे। आहा, धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि साधु की संगति में बढ़ने लगी, संतों का संग करने लगे, भक्ति करने लगे। कभी शमशान की चिता के पास जाके बैठ जाएं, कभी जो है गांव के बाहर बैठ जाएं। गांव के आधे लोग इनको पागल समझते थे। एक रात इन पर भगवती मां तारा की बड़ी कृपा हुई। भाद्रपद के महीने में तृतीया तिथि को, उस दिन मंगलवार का दिन था, ये भगवती मां तारा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय मध्य रात्रि में चिता के किनारे पर भगवती मां तारा प्रकट हो गई और उन्होंने इनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम हमारे भगत हो और प्रेम पूर्वक तुम हमारी सेवा करो। रानी के द्वारा बनाए हुए मंदिर में ये कुछ दिनों बाद पुजारी नियुक्त हो गए तो मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन इनकी पूजा का एक नियम था। बोले क्या? बोले भैया इनका जब मन लगता तब ये पूजा करते, कभी कभी चार चार दिन पूजा करते, कभी बिल्कुल नहीं करते, कभी 2 बजे रात को करते, कभी बिल्कुल ही नहीं करते। तो किसी ने बामा के पास से पूछा, ये तो गलत बात है भाई, भगवती की पूजा तो प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रातः काल स्नान करवाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती होनी चाहिए। बामा खेपा ने बहुत तार्किक बात कही। बोले सुनो, हम प्रार्थना रोज करते, पूजा रोज करते, पर बाहर से यदि पूजा करें अंदर से मन ना लगे तो पूजा व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। हम पूजा तभी करते जब हमारा मन लगे, हमारा मन गवाही दे, हमारा मन भगवती की साधना में तल्लीन हो जाए, तब हम भगवती की उपासना करते। गांव के लोगों में जब ये बात गई तो गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई ये तो पुजारी बनने लायक नहीं है, हटाओ इनको। तो रानी के कहने पर बामा खेपा को हटा दिया। गांव के बाहर जब ये गए उसी दिन से इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, ना अन्न लिया ना जल लिया। तो भगवती माँ परांबा तारा माता रात्रि में बामा खेपा के पास गई। बेटा क्या हुआ? बामा खेपा मुंह उल्टा करके बैठ गए। माँ हमसे बात मत करो। अरे क्या हुआ बताओ? 2 दिन हो गए आपकी पूजा, हमने आपको देखा तक नहीं 2 दिन से, पूजा तो दूर की बात है, उल्टा हमको मंदिर से और हटा दिया, पुजारी पद से हटा दिया। हमें पुजारी वुजारी बनने का लालच नहीं है, हमारे मन में यही लालच है कि हमारे अंतिम श्वास तक आपकी चरणों में समय गुजरे, सेवा में गुजरे। भगवती मां ने कहा तारा ने, चिंता मत करो, तुम हमारी सेवा में कल ही आओ। रात्रि में स्वप्न में जाकर के मां तारा ने रानी को आज्ञा दी कि सुनो, प्रातः काल होते ही बामा खेपा को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर देना, वरना सब बर्बाद कर देंगे हम, क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। रानी को जब यह खबर स्वप्न में मिली तो प्रातः काल ही रानी ने बामा खेपा को बुलाया, तो बामा खेपा ने जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हमको भगाया पहले, बुला रहे हो, क्या पता फिर भगा दो, बेइज्जती कर दो। रानी ने कहा हम वचन देते हैं, जब तक तुम्हारा तन, तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम ही मां भगवती तारा देवी की पुजारी बने रहोगे। आहा, ये सुनते ही बामा खेपा घर मंदिर आए पूजा की। इसी बीच में इनकी माताजी खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, भक्त की भाव की बात है। पंडित जी जब इनकी माताजी खत्म हुई तो गांव भगे भगे गए, माताजी को जलाना था, अंतिम संस्कार करना था, तो सोचा अंतिम संस्कार यहां ना करके तारापीठ पर करें। तो गांव वालों से कहा कि चलो जरा मदद कर दो हमारी, तारापीठ तक ले चलो माताजी को। तो तारापीठ तक जो है लेकर के बामा खेपा की माताजी को आए, लेकिन नदी के किनारे ही एक घटना हुई। पूछो क्या? देवयोग से पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई। कभी कभी प्रकृति बहुत परीक्षा लेती है, ध्यान से सुनना, बुरा न मानना। भक्त जब भगवान के मार्ग पर चलता तब केवल व्यक्ति भर परीक्षा नहीं लेते, प्रकृति भी परीक्षा लेती। और वही हुआ, भयंकर बारिश हुई और भैया बारिश में नदी भयंकर पानी से भर गई। गांव वाले बोले अब पार नहीं जा सकते हैं, तैरना बहुत मुश्किल है, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं जला दो। बामा खेपा बोले नहीं, हमारा तो प्रण है, उस पार जलाएंगे। गांव वाले तो छोड़कर भग गए। बामा खेपा ने अपनी माताजी को कंधे पर टांगा और मार दी छलांग, और जैसे तैसे करके माताजी के शव के साथ बामा खेपा पार लग गए। वहां गए अंत्येष्टि की, गरीब तो थे, गांव के नहीं 13 गांव के लोगों को भंडारे का निमंत्रण दिया 13वीं पर। अब गांव के जो मजा लेने वाले लोग थे वो बोले अब पता चलेगा, अब मजा आएगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये कैसे कहां से अब जो है भंडारा कराएंगे, अब देखते हैं। गांव के लोग मजा लेने के लिए सब घर घर से सब परिवार से भंडारा खाने आए। उसी समय बारिश का फिर मौसम आया। बामा खेपा ने भगवती तारा से प्रार्थना की, मां हे भगवती, आपके अलावा हमारा कोई नहीं, और आज यदि हमारी हंसी हो गई तो आपकी भक्ति पर उंगली उठ जाएगी। मां हमारा भले ही कुछ बिगड़ जाए पर आपकी भक्ति पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। और ये प्रार्थना करके जैसे ही बाहर निकले भगवती को चिंता सताई। मां तारा स्वयं वृद्ध का रूप धारण करके बैलगाड़ियों में सामान लेकर के बामा खेपा के यहां पर आ गई। खूब सामान लेकर के आई। देखते ही देखते बैलगाड़ियों से सामान भंडारे का उतरने लगा। लोग पूछने लगे सामान कहां से आया, तो वृद्ध रूपा भगवती बोली, ये जो है जो पंडित जी हैं बहुत भक्त हैं, इनकी कृपा से हमारा बहुत काम सफल हुआ, तो हमें जब पता लगा कि इनके यहां भंडारा है तो हम अपनी श्रद्धा से सामान लेके आए। गांव वाले बोले वाह, लेकिन तब तक बारिश आई। बामा खेपा ने फिर देखा बारिश में कोई भंडारा नहीं पाएगा, भंडारा खूब बन गया, तो फिर भगवती के मंदिर में गए। माँ आपकी कृपा से भंडारे की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब बारिश है और बारिश यदि आ जाएगी सब भोजन पाने बैठ गए, भंडारा रखा रहेगा, सब गीले हो जाएंगे, कोई प्रसाद नहीं पा पाएगा। इनके मन में प्रेरणा जगी, एक लाठी ली और जितने में भंडारा चल रहा था उतने में एक लकीर को खींच दिया, और देखते ही देखते सत्य घटना चरितार्थ हुई। पूरे पृथ्वी के जगह जगह गांव गांव में बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरी, पर जहां पर भंडारा चल रहा था वहां एक बूंद भी अंदर प्रवेश नहीं हुई। हनुमान जी ही शंकर जी है और शंकर जी ही हनुमान जी है। हरते भय हनुमान, हरते ही तो हनुमान हुए। एक बात और, दूसरी बात, मेरे पागलों शंकर जी का काम क्या है? शंकर जी के दो काम, पहला काम संहार करना और दूसरा काम जो भाग्य में नहीं लिखा यदि तुम शंकर जी की भक्ति करोगे तो वो भी मिल जाएगा। भाभी मैट सके त्रिपुरारी, ये शंकर जी का काम है। और हनुमान जी का काम क्या है? बोले यही हनुमान जी का, क्या जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसके भाग्य में जो ना भी हो वो भी प्राप्त हो जाता है, वो भी मिल जाता है, ये हनुमान जी की कृपा है। ऐसा संभव है? बोले हाँ, कई लोगों को मिला, उनके भाग्य में नहीं था और हनुमान जी की चरण शरण ले ली, हनुमान जी ने कृपा कर दी, काम हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो।

बगल में बैठाया, कान में पूछने लगे, एक बात बताओ, हमने सुना तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले हमने? राम जी बोले हाँ आपने। हनुमान जी बोले गलत फहमी हुई है, हमने नहीं जलाई। किसने जलाई? नाम तो आपका ही सुना है। हनुमान जी बोले गलत, हमने नहीं जलाई। राम जी कह रहे

लंका को कैसे जला रहा, लंका कैसी है, तुम लंका में गए कैसे और लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले, प्रभु जिसके हृदय में अभिमान भरा हो वो लंका चलाएगा भी कैसे। अभिमान से भरा रावण विचित्रता से लंका चला रहा, लेकिन फिर तुम कैसे गए। हनुमान जी बोले, प्रभु हम अपने बल से नहीं गए, आपके बल से गए इसलिए लंका पहुंच गए, अपने बल से नहीं आपके बल से। अच्छा कितना अच्छा संकेत है, हम लोग यदि अपने बल से जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, पर यदि भगवान के बल से जाएंगे तो भारत तो छोड़ो लंका में भी पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति हमसे बोला राजकोट नहीं आ सकते, हमने कहा हम अपने बल से जा रहे हैं, हनुमान जी के बल से जा रहे हैं, जब हमारे भाई साहब हनुमान जी लंका में घुस सकते तो हम भारत में नहीं आ सकते अपने बल से हनुमान जी के बल से, तो हनुमान जी का बल। ऐसे ही हनुमान जी कह रहे किसके बल से लंका गए, हनुमान जी बोले सो

हे प्रभु, हम अपने बल से नहीं आपके बल से गए, हमारा प्रताप नहीं आपका प्रताप। राम जी बोले पर लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले गए हम, पर पहुंचाया किसने? यात्रा दो प्रकार के से होती है। बोले कैसी? बोले एक यात्रा स्वेच्छा से, दूसरी यात्रा किसी के द्वारा भेजी हुई। जो स्वेच्छा से जाता वो टिकट अपनी खुद करवाता, होटल अपना खुद करवाता, कैब गाड़ी अपनी करवाता, तब यात्रा की मंजिल पर पहुंचता। लेकिन कोई यात्रा करवाए तो टिकट उसकी होती है, गाड़ी उसकी होती है, मंजिल कहाँ जाना वो लोकेशन भी उसकी ही होती है। हनुमान जी बोले यात्रा पे हम गए नहीं थे, पहुंचाए गए थे। राम जी बोले किसने पहुंचाया? हनुमान जी बोले आपने। तो राम जी बोले हमने पहुंचाया तो? हनुमान जी बोले फिर सीधा सा है, पहुंचाया भी आपने, यात्रा भी आपने कराई और मंजिल भी आपने पहुंचाया है। अच्छा, हनुमान जी से राम जी बोले एक बात बताओ। हाँ, किससे गए? हनुमान जी बोले उड़ के। अच्छा, इसका मतलब आप उड़ के गए, ये आपका बल है। हनुमान जी बोले हम अपने बल पे नहीं उड़े। बोले फिर? बोले वाह, आप भूल गए, आपने जाते समय हमको मुद्रिका दी थी, उसी मुद्रिका पर बैठ करके उड़ करके गए। वाह। लक्ष्मण जी धीरे से बोले इनसे फंसना मुश्किल है, इनको फंसाना कठिन है, फिर भी चेक कर लो। राम जी बोले रुको, देख रहे। अब राम जी ने फिर फंसाना चाहा हनुमान जी को। हनुमान जी को राम जी फंसा रहे बातों से। हनुमान जी चलो हमने मान लिया, हमारी मुद्रिका पर बैठ करके तुम लंका गए, पर लंका तो तुमने ही जलाई, ये तो तुम्हारा ही बल है। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले पूंछने। पूंछने? हाँ। तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले काहे को झूठ बोल रहे प्रभु, हमारी कहां से है पूंछ? बोले क्यों? बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु राम से ही तो है पूंछ हमारी। साधारण सदस्य को, कोई पार्टी का सदस्य हो और उसकी किसी बड़ी नेता से ना बने तो वो मंच पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन कोई बड़े पद पे ना भी हो, साधारण सदस्य हो पर बड़े नेता से पहुंच हो, तो वो मंच पे भी चढ़ जाता है और कलेक्टर को भी डांट आता है। हनुमान जी बोले यही हमारा हाल है, हमारी पूंछ नहीं है। बोले किसकी पूंछ है? बोले आपकी पूंछ है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। राम जी बोले चलो मान लिया, पूंछ हमारे कारण है, चलो पर लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? हनुमान जी बोले पांच लोगों, नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो पांचों लोगों के नाम। पहला नाम सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ये पांच लोग हैं, हमारे बाप ने लंका। तो राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, प्रभु श्री राम यानी हमें अपना प्रताप समझ में आ गया और ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले वाह, भूल गए, हमने तो एक ही घर जलाया, हमारे बाप ने तो पूरी लंका जलाई। अच्छा, आपने एक ही मकान जलाया? बोले हमने तो एक ही मकान जलाया, बाकी तो हमारे पिताजी ने जलाया है। भैया ये कौन है पिताजी? बोले वाह, सुनो प्रभु। अब हनुमान जी उदाहरण देके समझाने लगे। बोले सुनो, अच्छा आप ही बताओ, कहीं छोटी आग लगी हो, हवा चल जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। दिया बाहर रख दिया जाए बुझ जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन टेंट ही में आग लग जाए, बड़ी आग गोदाम में, और फिर हवा चल जाए, बुझेगी के बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी बोले वही हुआ। बोले क्या? बोले हमने तो एक घर जलाया, लेकिन जैसे ही आग बड़ी हुई सो हमारे पिताजी आ गए। बोले पिताजी कौन? बोले वाह, आप भूल गए, हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े स्पष्ट रूप से लिखा,

0: राम जी बोले चारों तरफ से कैसे? बोले कभी हवा इस तरफ से चले सो इस तरफ के मकान स्वाहा, कभी उस तरफ से चली सो उस तरफ के मकान स्वाहा, लेकिन कोने के मकान रह गए सो बीच के बीच हवा चली बवंडर बन के सो बीच के स्वाहा हो गए। इसलिए लंका हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई।
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
2: What you got for me, Jack?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
4: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
10: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
11: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
11: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
13: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
13: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
13: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
7: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
15: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
13: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
17: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
13: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
18: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
13: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं, तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं, तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
19: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
13: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
20: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, घर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
21: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
13: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
13: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
13: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
13: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए, कहीं रिश्ते सुलझेंगे तो कहीं रिश्तों में होगी उलझन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
22: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
26: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
27: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
28: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
28: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकलें बाहर, आज कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू पुलिस और SDRF के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: हाल के अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जॉइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दाव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी की होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजिशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पल्टन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब आश्रम प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नि प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नि ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
0: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे।

0: आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10 से 500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
1: शक्तिवान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिवान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिबाण में तब्दील नहीं होंगी, उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे।
2: पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है।
1: दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं, वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे, वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
1: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
0: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
1: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे,

0: शिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है।
1: साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है, जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास।
0: एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक IBG एक आत्मनिर्भर इकाई है, जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। IBG की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स, इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो IBG एक सैन्य ग्रुप है, जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स जो है युद्ध भूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है, क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्ध भूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है, ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। IBG के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। IBGs पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं, जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे।
1: इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार।
0: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे।
1: रणक्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: और अब बात करते हैं मॉडर्न वेलफेयर फोर्स भैरव की, जिसमें करीब 1,00,000 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स की फौज तैयार की जा रही है और इन्हें खासतौर से LOC पर तैनात किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन पर निगरानी रखना, और ये भारतीय सेना के लिए एक सबसे बड़ा हथियार होगा। वैसे इसमें कोई दो राय है भी नहीं है कि आज की तारीख में LAC हो या फिर LOC, हमारे सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमारे देश की हिफाजत में लगातार जुटे हैं।
1: भारतीय सेना आधुनिक और हाइब्रिड युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को लगातार बदल रही है, और इसी कड़ी में सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी है। सेना पुराने तरीकों से हटकर टेक्नोलॉजी और स्पेशल फोर्स पर भरोसा कर रही है। भैरव जैसे कमांडो भविष्य के खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
2: मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेस किया जा रहा है।
1: भैरव बटालियन पैरा स्पेशल फोर्सेस और आम इन्फेंट्री बटालियन के बीच की दूरी को भी कम करेगी। इन्हें सामरिक से लेकर स्पेशल ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भैरव बटालियन में स्नाइपर्स को भी शामिल किया गया है, ताकि सैकड़ों मीटर दूर छिपे दुश्मन को पलक झपकते ही मौत की नींद सुलाया जा सके।
2: पिछले 5 महीनों से हम लोग लगातार नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को गर्व है इस बटालियन पे कि जिस तरीके से इन ट्रुप्स ने ट्रेनिंग के दौरान ये क्षमता हासिल की है और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है, वो सराहनीय है। इनफैक्ट सदन कमांड के एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान इस बटालियन का सक्सेसफुल ऑपरेशनल वैलिडेशन भी किया गया। एंड हम समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट आज भी ये बटालियन किसी भी दिए गए टास्क के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से सशक्त है।
1: दक्षिणी कमान के तहत काम कर रही डेजर्ट भैरव बटालियन रेगिस्तानी इलाकों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यहाँ सहन शक्ति, खास स्किल्स और तकनीक का सटीक इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। ये यूनिट स्वतंत्र रूप से काम करने और भविष्य की मल्टी डोमेन लड़ाइयों के लिए तैयार की गई है। भैरव बटालियन के जवानों को कठिन हालातों में लड़ने, तेजी से मूवमेंट और सीमित संसाधनों में मिशन को अंजाम देने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है।
3: इस भैरव बटालियन का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बटालियन में आने के बाद नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, स्किल वाइज ट्रेनिंग दी गई। स्किल वाइज ट्रेनिंग में मेडिकल, डेमोलेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दी गई। यह ट्रेनिंग शुरू शुरू में मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन कठिन मेहनत और लगन के साथ मैंने इस ट्रेनिंग को बखूबी अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग के बाद आज मैं नई टेक्नोलॉजी, नई इक्विपमेंट, ड्रोन्स इत्यादि को बखूबी हैंडल कर सकता हूँ। हमारी बटालियन में PT, रूट मार्च, एंडोरेंस ट्रेनिंग, डेजर्ट ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। हमारी बटालियन की ताकत एक दूसरे का विश्वास और साथ है। आज इस भैरव बटालियन ने मुझे इतना सुदृढ़ बना दिया है कि भविष्य में आने वाली बड़ी से बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती को मैं बखूबी अंजाम दे सकता हूँ।
1: डेजर्ट भैरव बटालियन की एक और खास बात है सन्स ऑफ द सॉयल का सिद्धांत। ज्यादातर जवान राजस्थान से लिए गए हैं, जिससे उन्हें स्थानीय भूगोल, मौसम, भाषा और संस्कृति की गहरी समझ है।
4: हमारे जवान पिछले
3: कई महीनों से डेजर्ट सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम नए मिशन के लिए नए टेक्नोलॉजी और नए वेपन, नए इक्विपमेंट पर काफी स्पेशल ट्रेनिंग की है। हम पूरी ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।
1: भैरव बटालियन को वैश्विक युद्ध से मिले सबक और भारत के अपने ऑपरेशनल अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। मकसद है एक ऐसी तेज, आक्रामक और लचीली फोर्स बनाना जो जरूरत पड़ने पर स्पेशल फोर्स जैसे मिशन को भी अंजाम दे सके।
0: सेना का मकसद एक ऐसी बटालियन तैयार करना है जो हर वक्त तैयार रहे, अलग अलग फोर्सेस में भी काम कर सके और अलग अलग मोर्चों पर दुश्मन से लोहा ले सके। भैरव यही काम करेगी। अभी तक देखा जाए तो कुल 15 भैरव बटालियन बनाई जा चुकी हैं और लक्ष्य 25 तक का है।
1: भैरव लाइट कमांडो बटालियन सेना की नई खतरनाक यूनिट है जो स्पेशल फोर्स की अत्याधुनिक और घातक यूनिट की तरह ही काम करेगी।
4: भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है।
1: एक भैरव बटालियन के अंदर 800 सैनिक हो सकते हैं। भैरव लाइट कमांडो बटालियन का मेन फोकस सीमा पर अचानक हमला और दुश्मन को बैकफुट पर ढकेलना है। भैरव लाइट कमांडो बटालियन हल्के हथियार से लैस है जो पहाड़ों और जंगलों में आसानी से चल सके। इन्हें MP5 सब मशीन गन और स्वदेशी ड्रोन बम से लैस किया गया है। सीक्रेट ऑपरेशन के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। इन्हें रात में या फिर कोहरे में दुश्मन पर अचानक हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। ये बटालियन दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ सकती है, उनके ठिकानों को तबाह कर सकती है। ये यूनिट्स LAC या LOC पर भारत को बढ़त दिलाएंगी।
5: इंडियन आर्मी अब स्पेशल फोर्सेस से और कमांडो यूनिट्स से, खास तौर से पैरा कमांडो यूनिट्स से छांट छांट कर ऐसे सोल्जर्स को जमा कर रही है जो कि एक कोर ग्रुप में काम करेंगे। इनका नाम दिया गया है भैरव कमांडो फोर्स। ये एक छोटी सी लेकिन हाईली मोबाइल और बहुत ही इफेक्टिव कमांडो यूनिट होगी। इसके जो कमांडो होंगे वो पहाड़ में, रेगिस्तान में, हवा से, पानी से, जंगल से, कहीं से भी ऑपरेट कर पाएंगे। इनके पास अपनी इंटीग्रेटेड फायर होगी, यानी इनके पास अपनी मोटर होंगी, हैवी मशीन गन होंगी, स्पेशल स्टन ग्रेनेड्स होंगे ताकि युद्ध भूमि में इन्हें फायर सपोर्ट के लिए और किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े।
1: हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर खुद की एक प्लाटून होती है, उससे भैरव लाइट कमांडो बटालियन कितनी अलग है ये भी जानना बहुत जरूरी है।
0: भारतीय थलसेना की इन्फेंट्री बटालियन की अगर संगठन की बात की जाए तो कुल मिलाकर 4 बटालियन होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। इनके अलावा हेडक्वार्टर अलग है जहां इंटेलिजेंस सिग्नल, मेडिकल लॉजिस्टिक, मोटर, असॉल्ट और MMG के सेक्शंस होते हैं। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो अलग है। जो 4 राइफल कंपनियां हैं उनमें से 3 राइफल कैरी करती हैं और 1 RCL गन कैरी करती है।
1: अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये सारी कंपनी कुछ इस तरह से कंपोज होती हैं तो घातक यूनिट की प्लेसमेंट क्या होती है। तो आपको बता दें कि घातक की कोई अलग से प्लेसमेंट नहीं होती। ये अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा कंपनी में से कुछ लोग होते हैं।
0: अभी तक भारतीय सेना की तरफ से रेड्स या तो फिर स्पेशल फोर्सेस करती थी या फिर घातक प्लाटून करती थी, लेकिन भैरव के आ जाने के बाद ये काम और ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ये जिम्मेदारी अब भैरव की हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस अपने काम पर फोकस कर पाएंगी और घातक जिसके लिए उसे तैयार किया गया है वो उस पर ज्यादा फोकस करेगा।

चीन और पाकिस्तान से बढ़ते सैन्य खतरे को देखते हुए भारत अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों मोर्चों पर खतरा चिंता का विषय है। ऐसे में अब भारतीय सेना अपनी आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने और सीमाओं पर क्विक रिस्पांस देने के लिए नई रुद्र ऑल आर्म ब्रिगेड का गठन कर रही है।

0: आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्रक के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है।
1: ऑल आर्म ब्रिगेड क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या होगी इसकी ताकत और ये कैसे पुरानी ब्रिगेड से अलग होगी, इसे जानना बहुत जरूरी है।

अभी तक देखा गया था कि सेना की केवल सिंगल ब्रिगेड हुआ करती थी, मतलब इन्फेंट्री ब्रिगेड में केवल पैदल सैनिक और टैंक ब्रिगेड में केवल टैंक ही हुआ करते थे। रण क्षेत्र में इमरजेंसी जैसे हालात में अगर कहीं किसी को एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ गई तो उसमें फिर डिविजन से मंजूरी मिलती थी और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन रुद्र इन तमाम खामियों को दूर करेगा और युद्ध में यानी कि रण क्षेत्र में हमारी फौज तत्पर निर्णय ले सकेगी।

0: रुद्र ब्रिगेड को पावर देने के लिए ताकत की कई इकाइयों को साथ जोड़ा गया है। यानी रुद्र ब्रिगेड में एक ही कमांड में इन्फेंट्री होगी, यानी पैदल सैनिक जो जमीन पर मोर्चा संभालेंगे। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सैनिक होंगे। आम यूनिट्स होंगी जिसमें टैंक और भारी हथियार होंगे। आर्टिलरी होगी जिसमें तोपखाने की ताकत को शामिल किया जाएगा जो दूर से हमला करते हैं। स्पेशल फोर्सेस होंगी जिसमें खास मिशन के लिए ट्रेनिंग पाए सैनिक होंगे। साथ ही ड्रोन होंगे जिसके जरिए जासूसी और हमले की ताकत होगी,
1: जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट हो।
0: माना जा रहा है कि रुद्र ब्रिगेड में 3,000 से ज्यादा लोग होंगे और इसका मतलब खतरे से निपटने के लिए लंबा इंतजार नहीं, बल्कि दुश्मन पर बिजली की रफ्तार से एक्शन।
2: भविष्य के युद्ध में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अब भारत की सेना रुद्र ब्रिगेड बना रही है। यह ब्रिगेड जो होंगी ये इंटीग्रेटेड ब्रिगेड होंगी, यानी इसमें 3 से 4 इन्फेंट्री बटालियन तो होंगी ही होंगी, साथ में इनका अपना इंटीग्रेटेड, अपना टैंक फॉर्मेशन, बख्तरबंद गाड़ियां और अपना तोपखाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इन ब्रिगेड्स में अपनी ही सपोर्ट सर्विसेज जैसे कि सप्लाई लॉजिस्टिक्स चेन, कोर ऑफ ASC, कोर ऑफ ऑर्डनेंस और अपनी ही इंटीग्रेटेड वर्कशॉप कोर ऑफ EME की होगी, ताकि युद्ध भूमि में अगर कमांडर को कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो उसे दूसरी तरफ ना देखना पड़े, पीछे ना देखना पड़े। जितनी सपोर्ट सर्विसेज हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सिग्नल्स, कम्युनिकेशंस, ये सब कमांडर के पास ऑन द स्पॉट उसको अपने नीचे ही उपलब्ध होगी।
0: दुनिया के तमाम देशों के पास अपनी खास कमांडो फोर्स होती है। अमेरिका से लेकर चीन और रूस के पास अपनी कमांडो फोर्स है। वहीं भारत के पास भी ऐसे परमवीरों की टोली है जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं है।

0: कमांडो एक स्पेशली ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के हों। इनको हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है, गुरीला वारफेयर, जंगल वारफेयर और हाई अल्टीट्यूड, हर तरह की टेरेन के अंदर इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मेंटली और फिजिकली बहुत टफ हो जाते हैं। आपको याद होगा कि 2016 को उड़ी अटैक के बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक 4 घंटे के अंदर भारत के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो वो पाकिस्तान के 3 किलोमीटर तक अंदर गए। वहां पर उन्होंने 7 टेररिस्ट कैंप जो है उनको उड़ाया और तकरीबन 38-40 जो टेररिस्ट हैं उनको भी नेस्तनाबूद किया।
1: भारत के पास एक से बढ़कर एक स्पेशल फोर्सेस हैं, जो रणभूमि में शौर्य का इतिहास लिखने के लिए तैयार रहती हैं।

0: दुश्मनों की मौत का दूसरा नाम है मार्कोस, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप उठती है। इंडियन नेवी के ये मरीन कमांडोज ऐसे योद्धा हैं जो पाताल में दुश्मनों की समाधि तैयार करने की ताकत रखते हैं। लहरों पर राज करने वाले मार्कोस के महाबली चुटकियों में दुश्मन की ताबूत में आखिरी कील ठोक सकते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडोज फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडोज हैं। हिंद महासागर की निगरानी करने वाले मार्कोस कमांडोज खाली हाथ भी दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। दरअसल इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। कठिन ट्रेनिंग के बाद मार्कोस कमांडो तैयार होते हैं। यहां तक कि एक रिकॉर्ड ये भी है कि 27 सेकंड में ये दुश्मन को मौत के घाट उतार सकते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स की गिनती भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में की जाती है। इसे भारत का नेवी सील्स भी कहा जाता है। मार्कोस को भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल नौसेना के लिए ही काम करते हैं, बल्कि जल थल नभ हर जगह पर मार्कोस अपनी ताकत से दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी सेना का सबसे अभिन्न अंग मार्कोस को माना जाता है। इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि हर किसी के लिए इसे क्वालिफाई कर पाना आसान नहीं होता। पहले मार्कोस कमांडो के लिए चुने गए लोगों का 4 सप्ताह टेस्ट चलता है। टेस्ट में अगर सफलता मिली तो 1.5 साल की हार्ड तोड़ ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि 1000 जवानों में से कोई एक ही ट्रेनिंग पूरी कर पाता है। मार्कोस कमांडो वर्षों की ट्रेनिंग में खुद को खपाते हैं ताकि देश पर कोई आंख उठाने की हिमाकत न करे। मार्कोस कमांडो समंदर की सतह से 55 मीटर नीचे 15 मिनट तक बिना ऑक्सीजन उपकरण के रह सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। समंदर की सतह से 35 मीटर नीचे करीब 20 मिनट तक रहने की क्षमता विकसित की जाती है। जांघों तक भरे कीचड़ में भागना होता है, कंधों पर 25 किलोग्राम का बोझ होता है, फिर 2.5 किलोमीटर की बाधा दौड़ का कोर्स भी होता है। यही नहीं, कई कमांडो सो ऐसे होते हैं जो आधे घंटे तक पानी में मुश्किल हालात से जूझ सकते हैं, फिर चाहे वो बर्फ से लबालब वुलर झील हो या फिर अरब सागर।
1: मार्कोस यानी मरीन कमांडो फोर्स, ये भी इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। इनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दे के उनको तैयार किया जाता है, और ये समुन्द्र के अंदर या कहीं भी ऐसी जगह पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम करने की हालत में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समुन्द्र के अंदर या पानी के अंदर ये काम कर सकते हैं अपना, ये हर जगह काम कर सकते हैं। इनको स्पेशल वेपन सिस्टम दिए जाते हैं, इनके लिए खास ट्रेनिंग के वेपन होते हैं जिसके ऊपर मेंटल और फिजिकल टफनेस के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि हर कमांडो एक इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि वो दुश्मन के किसी भी इरादे को नेस्तनाबूद कर सकता है।
0: मार्कोस कमांडो को सेना में मौजूद हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुकरी से लेकर सब मशीन गन तक चलाने में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस कमांडोस को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने की प्रैक्टिस कराई जाती है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने के 8 सेकंड के भीतर पैराशूट खोलना होता है। ये ट्रेनिंग 40 डिग्री के तापमान पर दी जाती है। मार्कोस कमांडो का कॉम्बिनेशन बेजोड़ है। इनकी हर चाल और गोली पर दुश्मन का नाम होता है। पलक झपकते ही खेल खत्म।
1: इनकी ट्रेनिंग जो है कई जगह की जाती है, जैसे बेलगाम में जूनियर कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है वहां पर किया जाता है, इसी तरह से राजस्थान में सोनमर्ग में जहां पर हाई अल्टीट्यूड का है वहां पर किया जाता है, और जंगल वारफेयर में अंदर हर तरह की ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है।
0: अमेरिका की नेवी सील से हिंद के इन सूरमाओं की तुलना की जाती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये नेवी सील से भी ज्यादा घातक है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेवी के इन स्पेशल कमांडोज का निशाना अचूक है, बार अचूक है। दुश्मन का ऐसा कोई किला नहीं जिसे ये भेद न सके। आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समंदर तक वॉरफेयर या फिर कॉम्बैट ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल है। फिलहाल मार्कोस फोर्स में 1200 कमांडोज हैं जो हर वक्त अलर्ट मोड पर रहते हैं। मरीन कमांडोज को खुले आसमान का सरताज कहा जाता है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 4 दशक से अगर हमारी समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं तो इसका पूरा क्रेडिट मरीन कमांडोज को ही जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तीन तरफ से समुद्री सीमाओं से भारत घिरा हुआ है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, फिर चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे कमांडोज, मरीन कमांडोज, पूरी तरह से तैयार और तत्पर रहते हैं। देश पर जब जब बाहरी खतरा मंडराया, मार्कोस को याद किया गया। स्पेशल फोर्स ने हर मौके पर खुद को साबित किया। मार्कोस 1987 से अब तक कई बड़े ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभा चुकी है और उन्हें एक सफल अंजाम तक पहुंचाया भी है। साल 1987 के पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन, साल 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में करगिल वॉर, 2008 में ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल कमांडो फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन में शानदार प्रदर्शन किया है। इनके बुलंद हौसलों के सामने दुश्मन ने हमेशा घुटने टेके हैं और जिन्होंने घुटने नहीं टेके उनके कदम इन्होंने हमेशा के लिए उखाड़ दिए।

0: नेवी की तरह ही भारतीय वायुसेना की स्पेशल घातक फोर्स है गरुड़, जिनके कंधों पर आतंकवाद के खात्मे से लेकर सरहद पर दुश्मन से सीधा मुकाबला करने का जिम्मा होता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। वायुसेना के गरुड़ कमांडोज वॉलेंटियर नहीं होते, बल्कि उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही भर्ती किया जाता है। एक बार गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये कमांडोज अपने पूरे करियर में इस यूनिट के साथ ही रहते हैं। गरुड़ कमांडो बनना आसान नहीं होता। लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद गरुड़ कमांडोज तैयार होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना पड़ता है। बिना किसी सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और घने जंगल में रात गुजारनी होती है। गरुड़ कमांडोज बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। गरुड़ कमांडोज के सभी रंग रूटों के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 52 सप्ताह तक चलता है। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर्स और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होती है। गरुड़ कमांडोज की शुरुआत के 3 महीने बेहद मुश्किल होते हैं। शुरुआत के 3 महीने के बाद रंगरूटों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही ट्रेनिंग के अगले चरण में प्रवेश करता है। साल 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत पड़ी। इसके बाद साल 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ने ही किया था। मौजूदा दौर में भी कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडोज आतंकियों से कई मोर्चों पर मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्पेशल फोर्स को अमेरिकी 6 और असॉल्ट राइफल्स जैसे हथियारों से भी लैस किया है। इनके पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स, इजरायली टेवर राइफल और इनके कई वेरिएंट्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी मौजूद है, जो कि 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन सैनिक को मार गिरा सकती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
2: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकलें बाहर, आज कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू पुलिस और SDRF के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहलगाम के नंदवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था दर्शन के लिए रवाना, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जुलाई का महीना आरंभ हो चुका है और जब कोई नई शुरुआत होती है, नया महीना, नया साल आता है तो उम्मीदें भी आती हैं कि आने वाला समय बेहतर होगा। आज हम आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना कितना महत्वपूर्ण है और जुलाई के महीने में अलग अलग राशियों को क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जुलाई माह के पर्व और त्योहार कौन से हैं और अपनी राशि के अनुसार आप जुलाई के महीने में कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ऐं गुरुवे नमः, ऐं गुरुवे नमः। अगर आपको जीवन में ज्ञान भी चाहिए, आध्यात्म भी चाहिए और ईश्वर की कृपा भी चाहिए तो ऐसी स्थिति में पूरे जुलाई के महीने में इस मंत्र का रोज सुबह जप करिएगा। जुलाई का महीना गुरु को समर्पित महीना है, इसीलिए इस माह में अगर आप इस मंत्र का जप करें तो एक तो आपको ज्ञान मिलेगा, विद्या बुद्धि का वरदान मिलेगा और भगवान की कृपा मिलेगी। जिनको योग्य गुरु पाने की इच्छा हो, जिनको सद्गुरु पाने की इच्छा हो, वो नित्य प्रातः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे, उन्हें गुरु की कृपा अवश्य मिलेगी। जुलाई का महीना अभी अभी शुरू हो रहा है। जुलाई के महीने में ग्रहों का हाल और कुल मिला के स्थितियां कैसी रहने वाली हैं पहले ये जानते हैं। देखिए, साल 2026 में जुलाई के महीने में आषाढ़ का महीना रहेगा। इस महीने के अंत में सावन के महीने का आरंभ होगा। लगभग पूरे महीने आषाढ़ चलेगा। जुलाई के महीने में मध्य जुलाई से वर्षा ऋतु का आरंभ भी माना जाता है। मध्य जुलाई से लेकर मध्य सितंबर तक लगभग वर्षा ऋतु मानी जाती है और वर्षा ऋतु का संबंध होता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। इसलिए इस महीने में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव प्रबल होगा। जुलाई के महीने में सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी होगा। जुलाई में सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क संक्रांति जुलाई के महीने में आएगी। जितनी महत्वपूर्ण मकर संक्रांति है, लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण कर्क संक्रांति भी है जो जुलाई के मध्य में आएगी और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के अवसर पर दान पुण्य और स्नान आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। जुलाई के महीने में कौन से पर्व आएंगे,
कौन से त्योहार आएंगे ये भी जान लेते हैं। जुलाई के महीने में चूंकि आषाढ़ का महीना रहेगा तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जुलाई के महीने में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, यानी देवी की गोपनीय और तंत्र साधना इस बार जुलाई के महीने में की जाएगी। जुलाई के महीने में विश्व विख्यात भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी और जुलाई के लगभग अंतिम समय के आसपास, लगभग 25 जुलाई के आसपास देवशयनी एकादशी आएगी। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, देवता सोएंगे, इसलिए इस तिथि से देवशयनी एकादशी से शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाया जाएगा। वर्ष के सारे पर्व अपने आप में अनूठे हैं, मूल्यवान हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा की बराबरी कोई नहीं है। तो जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा का महान पर्व मनाएंगे और जुलाई के अंत से सावन का पवित्र महीना आरंभ होगा। यानी इस बार जुलाई के महीने में आपकी पूजा के लिए, आपकी उपासना के लिए, साधना के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जिनका लाभ आप जुलाई के महीने में उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो 12 राशियों के लोग हैं उनके लिए जुलाई के महीने की संभावना क्या है और जुलाई के महीने में कौन कौन सी चीजें अलग अलग राशि के लोगों के साथ होने की संभावना बनती है। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस महीने के परिणाम मिले जुले हैं। कुछ मामलों में जुलाई का महीना अच्छा होगा और कुछ मामलों में जुलाई का महीना अच्छा नहीं होगा। रोजगार की तमाम समस्याएं आप

विवाह के मामलों में और रिश्तों के मामले में अभी इस महीने में विलंब दिख रहा है। रिश्तों का जुड़ना, विवाह का तय होना, वैवाहिक जीवन का बेहतर होना, ये इस महीने में उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेष वालों के करियर और पैसे का मामला बढ़िया है, लेकिन रिश्तों का मामला और स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है। क्या उपाय करेंगे? पूरे महीने में, जुलाई में, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर, पूरे महीने चढ़ाइए और रोज शाम को पूरे जुलाई में 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे महीने रोज शाम को जप करिएगा तो ये महीना आपके लिए अनुकूल और बेहतर बना रहेगा। अब जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी, तमाम समस्याएं हल होंगी, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो रिश्तों की हो। इस महीने आपकी रुकावटें दूर होंगी और आपके रुके हुए तमाम काम इस महीने पूरे होंगे, खास तौर से मध्य जुलाई के बाद। अगर आप मेहनत करें, मध्य जुलाई के बाद अगर आप फोकस करें तो आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। रोजगार और करियर की तमाम मुश्किलें भी आपकी दूर होंगी, करियर का प्रेशर कम होगा और अगर रोजगार के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। विवाह तय करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए उत्तम समय है। इस समय जुलाई के महीने में अगर आप विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। क्या ध्यान देना है वृषभ वालों को जुलाई में? पैसा लगाने में, पैसे के इन्वेस्टमेंट करने में, पैसे का निवेश करने में ध्यान दें। प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, मार्केट में लगा रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। पूरे महीने रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को पूरे महीने शनि मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पूरे जुलाई में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप पूरे जुलाई में ऐसा करते हैं तो आपको लाभ होगा। आपके लिए लाभ का समय है। अपने महत्वपूर्ण

जाने की कोशिश करें, बुद्धिमानी से ध्यान से बड़े निर्णय लें तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने में सावधान रहेंगे और स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का और अपनी आंखों का ध्यान देंगे। आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत भी इस महीने बिगड़ सकती है, अपने स्वास्थ्य के अलावा परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान दें, उनको चोट ना लगे, कोई दिक्कत ना हो। मिथुन वालों के करियर में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है करियर में कोई बड़ा बदलाव ना भी करें तो आंतरिक रूप से इंटरनली करियर में बदलाव हो सकता है। मिथुन वालों के लिए ये समय इस मामले में अच्छा है कि अगर संपत्ति खरीदना चाहें, संपत्ति बेचना चाहें, संपत्ति का कोई काम करना चाहें तो इस समय मिथुन वालों को फायदा हो सकता है। धन की स्थिति मिथुन वालों की कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी, पैसे को लेकर के दिक्कतें या प्रेशर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुख्यतः मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, धन संपत्ति का मामला अच्छा है, करियर में कोई परिवर्तन अगर होता है तो कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आप पूरे महीने में हर रविवार को गुड़ का या मीठी चीजों का दान करिएगा। अगर आप गुड़ या मीठी चीजों का दान पूरे महीने में करेंगे तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार का माहौल ठीक होगा, चिंताओं की स्थिति समाप्त होगी। कर्क राशि, जुलाई का महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है क्योंकि जुलाई के महीने में बड़े परिवर्तनों के योग बन रहे हैं। इस महीने में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और हो सकता है कि आप इस समय में किसी नए काम का आरंभ करें, व्यापार में कोई नई चीज आप जोड़ें या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नई नौकरी की तरफ जाएं, ऐसी संभावना आपके लिए बन सकती है। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान इस महीने में रखिएगा। कर्क राशि वालों के परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। और अगर आपकी राशि कर्क है, आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा ताकि बेवजह दुर्घटना के या बेवजह चोट चपेट के शिकार ना हो जाएं। राहत की बात यह है
की आर्थिक स्थिति, पैसे रुपयों का मामला, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी, पैसे आते जाएंगे। तो करियर में जो नया बदलाव या नई शुरुआत आप करेंगे इस समय में, उसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इस महीने दुर्घटनाओं से बचिएगा और परिवार के बड़े बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा पूरे महीने में। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगे। और जुलाई के शुरुआत में ही एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, दाहिने या बाएं हाथ में पहन लेंगे तो आपकी रक्षा होगी, आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। तो सिंह राशि के लोग इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, चोट चपेट ना लगे, यूरिन या किडनी से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। करियर में किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। जैसा काम चल रहा है, जैसा करियर चल रहा है, वैसा चलने दें। इस समय रिस्क लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। देखिए, पैसे रुपए का मामला आपके लिए ठीक रहेगा, धन आपके पास निरंतर आता रहेगा, पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। पैसे जिस रफ्तार से आएंगे इस महीने में, उसी रफ्तार से आपके पैसे खर्च होंगे, ये संभावना बन रही है। परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। परिवार में छोटे छोटे विवाद होते हैं, मन मुटाव होते हैं, उनको अपने दिल से मत लगाइए, सबको साथ में लेकर आगे बढ़िए। हो सकता है इस महीने तीर्थ यात्रा पर जाएं, कोई यज्ञ हवन करें, कोई पूजा उपासना करें, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो मुख्यतः सिंह वाले अगर परिवार में शांति रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो ज्यादा मुश्किलें उनको परेशान नहीं करेंगी। पूरे महीने अगर आप हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम रोज सुबह एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ पूरे जुलाई में हर रविवार को गुड़ का या मिठाई का दान करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। इस महीने
आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो। इस महीने में तमाम समस्याएं हल होंगी और आपको इस महीने प्रमोशन मिल सकता है। करियर में बड़ी जिम्मेदारी इस महीने में आपको मिल सकती है और इस महीने में बड़ा पद मिल सकता है, बड़े पद का और प्रतिष्ठा का लाभ इस महीने में होता हुआ दिख रहा है। यानी आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर के मामले में विशेष लाभ होगा, परिवार में कोई शुभ या मंगल कार्य हो सकता है, किसी का विवाह हो, किसी का गृह प्रवेश हो, ऐसी संभावना बन सकती है। सब कुछ आपका ठीक दिख रहा है। जुलाई के महीने में बेवजह की चिंता ना करें, व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से बचाव करें। रोज सवेरे अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चिंताओं को कम करने के लिए, तनाव को घटाने के लिए पूरे महीने रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अब बात करते हैं तुला राशि की। जुलाई का जो महीना तुला वालों के लिए आया है, ये इनके जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। जुलाई के महीने में तुला वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। परिवर्तन कुल मिला जुलाकर आपके लिए फायदेमंद बने रहेंगे। करियर और स्थान के मामले में परिवर्तन की संभावना ज्यादा दिख रही है कि आपका करियर भी बदले और आपका स्थान भी बदले, ये संभावना बन रही है। पैसे रुपए की स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। संपत्ति की स्थिति ठीक रहेगी। हो सकता है इस महीने में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई वाहन खरीदें, ये संभावना बन सकती है। संतान पक्ष की समस्याएं आपकी इस महीने में हल होंगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं दूर होंगी। करियर का मामला, पैसे का मामला, परिवर्तन का मामला आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इस महीने में सावधानी रखिएगा। डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर और आंखों को लेकर के इस महीने में दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी स्वास्थ्य के अलावा सारे मामले आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं। पूरे महीने में शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें और शनिवार को खाने पीने की चीज का पूरे जुलाई में दान करें। जुलाई में जितने भी शनिवार आते हैं, हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करना अच्छा रहेगा।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह में मेहनत करेंगे तो फायदा होगा। ये महीना जुलाई का आपके लिए बहुत मेहनत दिखा रहा है। आपको काफी परिश्रम इस महीने में करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत सफल होगी और आपको लाभ होगा। जहां जहां आप मेहनत करेंगे वहां वहां पर लाभ की संभावना बन रही है। करियर में बड़ा बदलाव करें, स्थान परिवर्तन करें, मध्य जुलाई के बाद ऐसी स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं। संतान पक्ष की उन्नति इस महीने में होगी, संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी और संतान अपने करियर में तरक्की करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ चाहते हैं, तो जुलाई के पहले 15 दिनों में संपत्ति संबंधी काम करने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। और संपत्ति खरीदना, बेचना, बनवाना ये जुलाई के शुरुआती समय में अगर आप करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो वृश्चिक वाले बहुत परेशान ना हो, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो कठिन से कठिन काम इस महीने में कर लेंगे। पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करिए। जब मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें और कम से कम इतना करें कि रोज सुबह एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों को जुलाई के महीने में सावधानी रखनी है। हर छोटी छोटी बात में, करियर में, स्वास्थ्य में, फैमिली लाइफ में, हर बात में सावधानी बनाए रखना है धनु राशि वालों को। करियर के मामले में धनु राशि के लोग कोई लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपने करियर में कोई रिस्क लिया या कोई जोखिम लिया तो करियर के मामले में एकदम से मुसीबत आ सकती है। करियर में लापरवाही मत करिएगा। पैसा कहां लगाना है

0: इन्वेस्टमेंट करिएगा, पैसे के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पूरी जुलाई में शांति और सावधानी रखिएगा। हालांकि महीने के अंत तक जाते जाते स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। राहत की बात यह है कि इस कठिन समय में, इस मुश्किल समय में धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पैसा निरंतर आपके पास आता रहेगा। धनु वाले अपने स्वास्थ्य और अपने करियर को लेकर के जुलाई के महीने में सतर्क रहेंगे। रोज सुबह और शाम पूरे महीने शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो जुलाई का महीना कुछ बेहतर होगा, मुश्किलें कुछ कम हो जाएंगी। मकर राशि। जुलाई के महीने में काम का दबाव काफी दिख रहा है। वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। दूसरों का काम भी इस महीने आपको करना पड़ेगा। आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन के योग इस महीने बन रहे हैं, लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो आपके लिए राहत होगी, आपका प्रेशर कम होगा। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन में आपके प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मकर राशि वालों को इस महीने में संतान की शिक्षा को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन ये चिंता आप मैनेज कर लेंगे, मामला गंभीर नहीं होगा। मकर राशि वाले इस पूरे महीने में अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, अपने रक्तचाप का, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, क्योंकि प्रेशर की वजह से हड्डियों की दिक्कत, सरदर्द आदि की दिक्कत आपको हो सकती है। क्या उपाय करेंगे? पूरे महीने सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। नित्य प्रातः सादा जल, और जल चढ़ाने के बाद प्रातः काल सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बेहतर दिखाई दे रहा है। करियर में तमाम सफलताएं आपको प्राप्त होंगी इस महीने में। करियर का प्रेशर, करियर का तनाव और दबाव कम होगा। धन की स्थिति में लगातार सुधार होता हुआ इस महीने में दिख रहा है, और मध्य जुलाई के बाद अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए तमाम काम भी पूरे होंगे। मध्य जुलाई के बाद प्रयास करने पर आपको ज्यादा लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में जुलाई के महीने में बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। करियर जैसा चल रहा है वैसा ही करियर चलने दीजिए। करियर में कोई बड़ा रिस्क बड़ा जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय करियर में बदलाव आपको मुश्किल में मुसीबत में डाल सकता है। तो कुंभ वालों का समय अच्छा है, बुद्धिमानी से रहें तो स्वास्थ्य और जीवन बेहतर बना रहेगा, करियर स्थिर रहेगा। पूरे महीने शिव जी की उपासना करें, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद 108 बार आपको जपना चाहिए। मीन राशि, जुलाई के महीने में आपको करियर में नए मौके मिल सकते हैं जो आप पहले से प्रयास कर रहे थे। इस महीने शुभ सूचना और सफलता करियर के मामले में आपको मिल सकती है। करियर में नया मौका भी दिख रहा है, करियर में बदलाव भी दिख रहा है और स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान पूरे महीने बनाए रखें, पेट को लेकर डाइजेशन को लेकर के और चोट चपेट को लेकर के मीन वाले पूरे महीने सावधानी रखेंगे। धन की स्थिति मीन वालों की कुल मिलाकर ठीक रहेगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर पैसा ले रहे हैं कर्जा लेने जा रहे हैं तो भी, कहीं पैसा दे रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। तो मीन वाले अगर थोड़ा अलर्ट हो करके चलें तो उनके लिए महीना अच्छा दिख रहा है। एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में किसी भी सोमवार की रात को पहन लीजिएगा, पूरे महीने पहने रहिएगा, चिंता कम होगी। और रोज सुबह शाम पूरे जुलाई में नमः शिवाय का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। जुलाई का पूरा महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
4: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: को मिल जाओ मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
1: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकलें लोग, आज कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू पुलिस और SDRF के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहलगाम के ननवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था, दर्शन के लिए रवाना, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अमेरिका में आजादी की 250 साल का जश्न, शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, पूरे भक्ति और उत्साह के साथ भक्त कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। पहलगाम के ननवान बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला तीसरा जत्था, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजी घाटी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का चौथा जत्था, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रा के चौथे जत्थे में 6,721 तीर्थयात्री शामिल, बालटाल और पहलगाम रूट के लिए बांटी गई यात्रियों की संख्या। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के बीच डमरू बजाते हुए दिखे सीएम धामी, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज, पुंछ में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले गीता प्रवचन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का काउंटडाउन हुआ शुरू, पुरी से लेकर लखनऊ तक भव्य आयोजन की तैयारी। मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर में भव्य कुंभ अभिषेकम का आयोजन किया गया, समारोह में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे भक्त। मदुरई के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच है भगवान मुरुगन का मंदिर, प्राकृतिक खूबसूरती भरपूर। मदुरई

0: समारोह के लिए मंदिर की हुई भव्य सजावट, भक्तों पर भी पवित्र जल छिड़क कर दिया गया आशीर्वाद। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, ड्रोन से भी रखी गई नजर। दिल्ली में 80वें फिट इंडिया इवेंट का आयोजन किया गया, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। फिट इंडिया इवेंट साइकिल रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने भी दौड़ाई साइकिल। रायपुर में चिंतन योग शिविर का आयोजन किया गया, सीएम विष्णु देव साय ने भी शिरकत की। खंडवा जिले के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विधि विधान से पूजा अर्चना की। अलनीनो जागरूकता के लिए रेत पर बनाई गई आकर्षक मूर्ति, लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का दिया गया संदेश। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बादल, सड़कों पर भी भरा है पानी। बारिश के बीच बदला मरीन ड्राइव का नजारा, लोग समंदर के किनारे मस्ती करते नजर आए। मुंबई में भारी मॉनसून के चलते मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अंधेरी स्टेशन के पास तेज हवा के साथ बारिश। मुंबई के माहिम इलाके में जोरदार बारिश, जगह जगह पर सड़कों पर भरा पानी। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश से भरा पानी, यातायात पूरी तरह से बाधित। फिल्म अल्फा के सपोर्ट में उतरे करण जौहर, आलिया भट्ट के हुनर की तारीफ की। ऋतिक रोशन परशुराम पटेल की फिल्म की खबरें निकली अफवाह, तो वहीं होमले फिल्म्स ने साफ की स्थिति। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई, सलमान खान फिल्म्स ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बताया बेबुनियाद। 14 सालों के बाद बॉलीवुड में सलीना जेटली की वापसी, सिस्टर निवेदिता की बायोपिक से करेंगी कमबैक, हुई इमोशनल। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल तय हुआ, विकेट सनी के नाम से होगी रिलीज, अलग अंदाज में कॉमिक किरदार निभाते हुए नजर आएंगे अक्षय कुमार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहु और बेटियां में आज देखिए, कहीं रिश्ते सुलझेंगे तो कहीं रिश्तों में होगी उलझन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहु और बेटियां में।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी

होती है और क्यों होती है, बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना।

0: आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है, पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है, और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकले लोग, आज कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे हुए 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, अब तक 30,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से चौथा जत्था दर्शन के लिए रवाना, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।
7: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूँ पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। आज तो है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट जो आपके संडे को बना देगा कंप्लीटली फंडे। तो क्या आप हैं तैयार? क्योंकि हम तो तैयार हैं आपको परोसने एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज। आज तो है हमारे पास ट्विस्ट का मसाला और ड्रामे की करी, यानी आपके लंच टाइम में भी आ जाएगा भरपूर मनोरंजन। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।

एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए, पोदार हाउस लौटेगी अभीरा, दादी सा करेंगी सेवा खुशामत, मांगेंगी अभीरा से माफी।

0: सहरा उठाकर और हाथ पकड़कर तेजस्वी करेगी गुरु से शादी, लेकिन फिर भी होगी दूल्हे की अदला बदली। शिव प्रसाद के हाथों लगेगा षड्यंत्रकारी, होगी पिटाई, साथ ही होगा सच का खुलासा भी। शिवाय ने किया जगधात्री से शादी से इनकार, कैसे होगी जगधात्री अब कामयाब। और साथ ही करेंगे मुलाकात फिल्म तेरा मेरा नाता के सूरज कुमार और अंबिका वानी से, चलेंगे इनके साथ रोड ट्रिप में, लेंगे महाकाल का आशीर्वाद, चखेंगे इंदौर का स्वाद और मिलेंगे कई सारे फैंस से, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: हम सब तो सेलिब्रेट कर रहे हैं संडे की छुट्टी, मैं तो आ पहुंची हूँ इस खूबसूरत से कैफे में और यहीं पर एंजॉय करूंगी अपना संडे ब्रंच। लेकिन क्या हो रहा है अनुपमा की कहानी में आज? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग ड्रामा, या फिर से आएगा कहानी में कोई ऐसा मोड जो लेकर आएगा यहाँ पर कोई ना कोई मजेदार ट्विस्ट? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास।
0: दुल्हन बन

शादी में लगा खुशियों का तड़का। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फाइनली अनुपमा के अंश और प्रेरणा दोनों की शादी होने जा रही है। ऐसे में अनुपमा बहुत खुश है और सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही है प्रेरणा। तभी तो देखिए, मैडम दुल्हन तो बन गई है लेकिन साज श्रृंगार कर पहुंच गई है सबके सामने अपने डांस का टशन दिखाने और दूल्हे राजा को अपने प्यार में रिझाने। ऐसे में प्रेरणा तो जमकर नाच रही है और घर वाले भी प्रेरणा की खुशी में शामिल है और अनुपमा उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है।

भाई प्रेम और अंश की इस शादी से तो सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं प्रेम और राही भी। और तो और अब शादी होने वाली है, ऐसे में जयमाला की रस्म भी होगी। तभी तो देखिए कैसे जयमाला की रस्म में भी प्रेम और अंश के बीच हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा। लेकिन दोनों अब एक होने जा रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे का साथ निभाने के लिए एक दूसरे को फूलों की माला पहना रहे हैं। और तो और इसके अलावा शादी के मंडप में पहुंचकर शादी की बाकी रस्में भी अदा की जा रही है।

0: भाई अनुपमा की आंखों में आंसू आना तो लाजमी है क्योंकि उनके प्यारे बेटे समर के बेटे की शादी जो हो रही है।
1: हरे ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु हो मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।
2: एक फ्रेश न्यूज है गौतम जी।
3: क्या?
2: बलती हुई इन्फॉर्मेशन है, इसे डायरेक्टली आकर आपको दे दूंगा तो फिर मेरे हाथ जल जाएंगे। मेरी हथेली पे कुछ रख देंगे तो मैं ट्राई कर लूंगा।
3: काम की बात होगी तो तुम्हारी हथेली भी गर्म हो जाएगी।
2: काम की ही बात है गौतम जी।
0: खैर, प्रेरणा और अंश दोनों शादी के लिए बैठ तो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम अपनी चाल चल रहा है और उसके साथ तोशु ने भी हाथ मिला लिया है। तभी तो देखिए कैसे सभी की नजर छिपाकर तोशु उसको सारे राज बता रहा है और गौतम उसे षड्यंत्र के आगे की चाल बता रहा है।
2: वेरी नाइस गौतम जी, थैंक यू सो मच।

0: और इन दोनों को बात करते हुए अनुपमा ने भी देख लिया है। उसे डाउट हो गया है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वैसे जल्द ही तुषु सभी के सामने प्रेम को नीचे गिराने के लिए प्रेम का राज खोलेगा, जो कहानी में नया ट्विस्ट लाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मुझे एक राज की बात पता है प्रेम।
2: चोरी डायरी।
1: तुम कंपटीशन जीत गए तो 40 लाख रुपए जीतोगे। तुम सिर्फ 10% दे देना।
3: तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें धमकी दोगे और हम तुमसे डर जाएंगे? अगर मैं चाहूँ ना तो 1 घंटे के अंदर तुम्हें अहमदाबाद से गायब करा दूंगी।
4: मेरी जो डायरी, ये डायरी कहाँ चली गई?
5: एक्चुअली मम्मी की डायरी मिल नहीं रही है।
1: अरे अरे अरे, कैसे मिलेगी? प्रेम बाबू ने मम्मी की डायरी चुराई है।
6: गुरु और रूहानी, आज तो बुक कर दी है मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल, जिससे आप एंजॉय करें आज एक कैंडल लिट डिनर डेट। वैसे मुझे पता है क्या होगा, अगर आप दोनों यहाँ पहुँच भी गए ना किसी तरह तेजू के जाल से बचकर, वो यहाँ भी आ जाएंगी, कुछ ना कुछ नया ड्रामा करेंगे और लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियाँ। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज? क्या यहाँ पर छाया है इश्क का जुनून या फिर किसी नाइट ट्विस्ट का? लेट्स फाइंड आउट।
7: हे शुक,

सपनों की दहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। गुरु तेजस्वी की शादी।

0: टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु दूल्हा तो बन गया है, लेकिन उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा है। तभी तो देखे कैसे अपने कमरे में वो अपनी ही अलमारी पर अपने हाथ को बार बार मार रहा है, दुख पहुंचा रहा है। वो तो शुक्र है कि तभी वहाँ पर गुरु की माँ आ जाती है, जो गुरु को रोक तो लेती है, लेकिन उसके जख्मों पर उसकी माँ के भी आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे का दिल जो दुख रहा है।
1: क्या किया बेटा,
2: पैसे खो जाने के लालच से बचा लिया उसने अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के, तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा की संभावना। सही नाम दिया कंपाउंडर ने हमारे रिश्ते, चाहते रहे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कम बन गया। हम सब लोग तरसते ऐसे साथी के लिए ना मिले, जैसे बंदर सिंह को वो साथी मिला और उसका साथ नहीं मिल पाया। वहां
0: भाई कुसुम भी बखूबी जानती है कि वो चाहकर भी अपने बेटे गुरु का दुख दूर नहीं कर पाएंगी, इसीलिए तो जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे के सामने वो शर्त के पेपर ला दिए, जिसे देखकर गुरु टूट गया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी। खैर, नीचे शादी के मंडप तैयार है, सभी घर वाले इंतजार कर रहे हैं। गुरु भी शादी के मंडप में पहुँच जाता है, तेजस्वी भी अपनी शादी की रस्में निभाने के लिए उस मंडप में पहुँचती है और पंडित जी पूजा भी शुरू कर देते हैं, लेकिन तेजस्वी उसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि सहरी में कोई और तो नहीं, इसीलिए वो सभी के सामने पंडित को रोककर गुरु को सहरा हटाने के लिए कहती है।
3: गुरु, अपना सहरा हटाओ। गुरु, मैं कह रही हूँ ना, अपना सहरा हटाओ।
4: हमें
0: लगता है तेजस्वी ने बहुत फिल्में देखी हैं, तभी तो उन्हें पता है कि दूल्हे की अदला बदली की जा सकती है। खैर, गुरु का चेहरा देखकर तेजस्वी पंडित जी को पूजा जारी रखने के लिए कहती है। ऐसे में पूजा शुरू भी होती है, हवन की अग्नि भी जलने लगती है और गुरु शर्त के मुताबिक तेजस्वी से शादी रचाने लगता है। हालांकि वो अब भी कहीं न कहीं रूहानी की यादों में खोया हुआ है। खैर, हवन सामग्री डालने के बाद तेजस्वी और गुरु की शादी की पूजा संपन्न हो जाती है। अब बारी आती है सात फेरे और सिंदूर की। ऐसे में पंडित जी ने तेजस्वी और गुरु को अपना चेहरा ढकने को कह दिया।
5: पूजा संपन्न हुआ, अब विवाह भी आरंभ करते हैं। शादी पूरी होने से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखेंगे। आप चेहरा नीचे कर लीजिए, आप घूमना नीचे कर
3: लीजिए। उसी चीज के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस बार सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ही शादी करूं।
5: आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं।
0: भाई यहाँ तो तेजस्वी एक भी मौका नहीं छोड़ रही गुरु को अपने से दूर जाने का। ऐसे में गुरु तेजस्वी की सारी बातें मान तो रहा है, लेकिन सिर्फ मौका ढूंढ रहा है कि कब वो यहाँ से फरार हो सके। वहीं दूसरी ओर दूल्हे के भेष में पहुँच गया है रूहानी का भाई संदीप भी, जिसकी मुलाकात हो गई है जस्सी भाभी से।
6: ये सब चल क्या रहा है?
7: ये सब बताने का समय नहीं आया। गुरु को बताना होगा कि शारदा सेवा की संस्था में दान देने का
0: खैर, यहाँ जस्सी के मन में एक उम्मीद जाग उठी है। तो वहाँ शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ गुरु बैठा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी, बीच में है शादी के लिए पर्दा। लेकिन तेजस्वी अभी गुरु का हाथ पकड़े हुए है, लेकिन इन्हीं शादी के बीच जब सिंदूर लगाने की रस्म आती है तब जाकर तेजस्वी गुरु का हाथ छुड़ाती है, लेकिन दूसरा हाथ पकड़ लेती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने गुरु का हाथ छुड़ाया है और संदीप का हाथ पकड़ा है, क्योंकि इसी दौरान दूल्हे की अदला बदली जो हो गई है।

0: अब ये गोलमाल तो होना ही था, क्योंकि अपनी बहन की खातिर संदीप ने अपने जीजा जी की मदद कर दी है और मजबूरी में तेजस्वी से उसका रिश्ता जुड़ गया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी अब भी जासूसी में लगी हुई है, क्योंकि उसे सच का पता जो लगाना है। देखना होगा क्या तेजस्वी सभी के सामने राज खोल पाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: तो चलिए आप भी हंसने के लिए हो जाइए तैयार। सही पहचाना आपने, अब हम लेकर चल रहे हैं आप सबको आपके फेवरेट लाफ्टर शेफ्स के पास। तो कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग? वेल, यहाँ तो है रसोई में खाना पकाने के साथ साथ फुल ऑन लाफ्टर थेरेपी। क्या आप हैं तैयार? क्योंकि ये तो है एकदम रेडी।
2: एक मिनट, भारती को देखो भागो मैं।
3: भाई उसने पेट भी आगे किया हुआ है ऐसे।
4: बोल लिया ना तुम लोगों ने, बोल लिया ना तुम लोगों ने, बोल लिया ना तुम लोगों ने, अब मैं बोल सकती हूँ ना।
2: दीदी आराम से,
5: आज हमारी छुट्टी हो गई भाई।
4: बहुत देख ली तुम लोगों की ये। क्यों बाजी?
6: सही कहा भारती जी।
3: और बाजी।
2: अरे बाजी कितने प्यारे।
7: अरे बाजी बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे।
4: अरे बाजी आपको कितनी बार समझाया है कि हर बात में बोलना जरूरी नहीं है, आपके चार लाइन तो फिक्स है ना शो में।
5: चार लाइनें फिक्स है।
2: क्या बात है यार।
4: एक सेकेंड, बाकी सारे शेफ्स कहाँ रह गए?
3: अच्छा बाकी भी है।

0: वाले शोशे कॉल आ रहा है। हेलो याया, दैट इज डाउन मार्केट।
1: एग्जैक्टली,
0: वी आर रिच पीपल।
1: एग्जैक्टली,
0: बांदा बिग फ्लैग।
1: या बांदा राइट।
0: यस यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश नॉन स्टॉप फॉर 2.5 मिनट।
2: 2.5 मिनट्स।
3: अंकिता, अंकिता जेलेस। अंकिता से ज्यादा अंकिता वो है भाई।
1: अंकिता
0: बिट्टी कहाँ है मेरा? बिट्टी
2: बिट्टी बिट्टी कहाँ? अरे बिट्टी आए, बिट्टी।

0: में समर्थ वो गाना तू अंजा तू
1: सही बात है, इसको डस्टबिन से इतना प्यार है कि कलर्स वाले इसको लेके एक शो भी बना रहे हैं कचड़ों के खिलाड़ी।

मानसून के इस मौसम का मतलब है रोड ट्रिप, लेकिन ये जो रोड ट्रिप है ना, ये तो है थोड़ी सी हटके, क्योंकि यहाँ पर सूरज और अंबिका निकल पड़े हैं अपने ऑडियंस का लाइव रिएक्शन जाने। जी हाँ, रिलीज हो गई है उनकी फिल्म तेरा मेरा नाता, और ये कर रहे हैं चार शहरों की रोड ट्रिप, जहाँ है उज्जैन, इंदौर, सूरत और बड़ौदा। तो चलिए हम भी हो जाते हैं इनके साथ इस रोड ट्रिप में शामिल।

0: एक रोड ट्रिप, चार शहर, मंजिल एक, ढेर सारे दर्शक, ढेर सारी मस्ती और कुछ ऐसे अनजाने पल जो पर्दे पर नहीं मिलेंगे। यह सूरज कुमार और अंबिका वाणी, जिनकी फिल्म तेरा मेरा नाता देश भर में रिलीज हुई है। वही फिल्म रिलीज होने के बाद कलाकार उसका रिएक्शन लेने के लिए लाइव सिनेमा घरों में जाते हैं और ऐसी ही एक रोड ट्रिप पर निकले हैं सूरज और अंबिका अपनी फिल्म का रिएक्शन लेने के लिए। भाई ये दोनों चार शहरों में जाने वाले हैं। ये लेंगे धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद, जहां पर भोले बाबा के दर्शन करेंगे और साथ साथ अपनी फिल्म भगवान शिव को समर्पित करेंगे। उसके बाद ये पहुंचे इंदौर, जहां पर इन्होंने यहां के रॉयल पैलेस से शुरुआत की और उसके बाद यहां के मशहूर नाइट सराफा मार्केट में ढेर सारे खाने का मजा उठाया। इसके बाद ये लोग पहुंचे सूरत में, जहां पर इन्हें मिला दर्शकों का ढेर सारा प्यार। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबने इनकी फिल्म को देखा और दिया लाइव रिएक्शन। और उसके बाद ये पहुंचे रॉयल सिटी वडोदरा में, जहां पर इन्हें दर्शकों से मिला ढेर सारा प्यार। अंबिका और सूरज के साथ फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चंदा पटेल भी हैं और ये पूरी टीम आज इस रोड ट्रिप पर निकली है। तो चलिए, सास बहू और बेटियां भी शामिल हो जाता है इस रोड ट्रिप पे, जहां पर हम जाएंगे मुंबई से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर, इंदौर से सूरत और फिर बड़ौदा। चार शहर, एक कार और सूरज और अंबिका रेडी है अपने सफर में चलने के लिए। तो चलिए सूरज और अंबिका संग करते हैं रोड ट्रिप की शुरुआत, जो मुंबई से निकले हैं और पहुंच गए हैं गुजरात पे, जहां से वो जाएंगे अपनी पहली डेस्टिनेशन पर।
1: हेलो गाइस, मैं हूं सूरज कुमार।
2: हाय, मैं हूं अंबिका वाणी और आप देख रहे हैं हमें सास बहू और बेटियों,
1: और हम आ गए हैं आपको हमारे महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के टूर पे ले जाने के लिए। तो हम, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लाइव हमारे टूर का पूरा क्या बोलते हैं जर्नी हम दिखाने वाले हैं, जिसका शुरुआत होगा मुंबई से, देन सूरत, इसके बाद बड़ौदा है, बड़ौदा के बाद इंदौर एंड भोपाल एंड सो ऑन। तो बने रहिए हमारे साथ सास बहू और
2: बेटियां। ये मेरी पहली रोड ट्रिप है इस तरीके से प्रमोशन का जो मैं हिस्सा बनी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से प्रमोशन कर रही हूँ। सो लेट्स सी, मैं लाइव ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि क्या रिएक्शन रहता है उनका, तो काफी एक्साइटेड हूँ।
1: और फिंगर्स क्रॉस कि वहाँ पे सबको, सबका रिएक्शन हमें अच्छा ही मिले और होप्स हो कि रिव्यूज अच्छे मिले हमें बस हमारे मूवी के। जितना पसंद हमारे सॉन्ग को किया गया, उतना ही पसंद हमारी मूवी को किया जाए बस।
2: जी।
1: तो चलो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं।

0: सरोज और अंबिका सुबह सुबह मुंबई से निकले और गुजरात से होते हुए ये मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे और देखिए पहुंचते ही इनका मानसून ने स्वागत किया।
1: मैं बहुत बुरा गाती हूँ, मैं नहीं गाऊंगी बहुत बुरा गाती हूँ। तो गाइज सूरज जितना गाना गा रहा है ना उसी के माध्यम से आप प्लीज सुन लीजिए।
2: नहीं गाइज मेरी आवाज तो ऐसे ही अमृतपुरी वाली
1: है। I mean, बोरिंग नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग इतनी बातें करते हुए जा रहे हैं अपनी फिल्म के बारे में और कल जो हमारी स्क्रीनिंग हुई उसके बारे में, तो अभी तक हम इंजॉय कर रहे हैं और ऑब्वियसली लंबा रास्ता है तो
2: गाना सुन रहे हैं।
1: हाँ सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं, लंबा रास्ता है तो बीच बीच में ब्रेक लेते हुए तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बोरिंग नहीं जाएगा और मजा आ रहा है। अगर मुझे ऐसे चूज करने के लिए दिया जाए तो मुझे अपनी ही गाड़ी पसंद है, जिस तरीके से हम जा रहे हैं वैसे ही पसंद है कि आप कंफर्टेबली बैठ पाते हो, कंफर्टेबली आप कहीं पर भी रुकना चाहते हो तो रुक जाते हो, यू नो आपके अपने लोग होते हैं, कुछ भी आप बात करते जाओ बिना सोचे समझे हम लोगों से हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। तो अगर मुझे ऐसे चूज करने के लिए दे दिया जाए तो फिर मुझे ऐसे इसी तरीके से कार में खुद की पसंद है।
0: मुंबई शहर को चीरने के बाद एक खूबसूरत वादियाँ आती हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी फिल्म का मोमेंट रिक्रिएट किया। फिर भाई फिल्म एक इमोशनल लव स्टोरी है और यहाँ पर सरोज और अंबिका ने अपने किरदार गौरव और मीशा की यादें ताजा की इस रोमांटिक अंदाज में।
1: मुझे ये सब देख करके अपन को अपनी लोकेशन याद आ रही, राइट?
2: हमने मोर्नी हिल्स
1: या मोर्नी हिल्स हमें याद आ रहा है क्योंकि हम ऐसी ही वादियों में गए थे शूट करने के लिए। तो अभी हमें क्या बोलते हो,
2: नॉस्टैल्जिया
1: ओके, हमें हमारी पुरानी यादें आ रही है, ताजा हो रही है।
2: बस वहाँ इतनी ठंड थी, वो ठंड हम कभी नहीं भूलेंगे सबसे पहले तो। और वहाँ का खाना, वहाँ का जो दिल्ली मतलब जो खाना था वो अलग ही अमेजिंग था। आई थिंक
1: राइट बहुत ही अच्छा खाना और बहुत ही ठंड थी तो हमें कभी कभी मजा भी आता था, कभी कभी वो मजा हमारा सजा भी बन जाता था। बट हमने जब हमारी फिल्म देखी तो स्क्रीन पर देख करके हमें बहुत अच्छा लगा कि यार वर्थ इट जो हमें कष्ट
2: मिला, मेहनत किया था वो वर्थ था।
1: हाँ
2: हम यहाँ बातें कर रहे, तेरा मेरा नाता की और नेचर से हमारा नाता बन गया।
1: ब्यूटीफुल बढ़िया
2: क्या बात, क्या मौसम है वैसे तो।

0: इसके बाद दोनों ने फिर से अपना सफर शुरू किया।
1: ना कुछ खबर का।

0: मस्ती करते करते इनकी रोड ट्रिप शुरू हो गई और इनका पहला पड़ाव है महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ सब महाकाल यानी भोले भंडारी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ पर जाना हमेशा शुभ होता है क्योंकि यहाँ पर शिव जी का एक बहुत ही खूबसूरत रूप आपको आशीर्वाद देता है। और अपनी फिल्म के साथ सूरज और अंबिका पहुँचे उज्जैन, जहाँ वो चेंज करके रेडी है महाकाल के दर्शन के लिए।
1: हर हर महादेव। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं उज्जैन, शिव जी के मंदिर आ चुके हैं महाकाल, और यहाँ पे हम अपने मूवी को प्रमोट करने के लिए और उनसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हमारे मूवी को सक्सेस दें और जितना हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें
2: जी। और ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और मैं तो शायद एक बार पहले आ चुकी हूँ और ये मैं दूसरी बार आई हूँ, तो बहुत ही अच्छी है कि भगवान महाकाल जी के दर्शन हो जाएंगे शिव जी के, जो कि मेरे ईस्ट हैं। तो फीलिंग मैं थोड़ी थोड़ी भाग हो रही हूँ, होना स्टार्ट हो चुकी हूँ अंदर अंदर।
1: हम यहाँ पे अभी एकदम ट्रेडिशनल आए हैं, एकदम उस वाइब के साथ, ताकि शिव जी हमारी प्रार्थना कबूल कर लें। कोई मौका नहीं मिलना चाहिए शिव जी को, कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। आज हम अपने मूवी को साथ लेकर आए हैं, तो होप सो कि हमारी मूवी
0: सूरज और अंबिका पहुंच गए हैं महाकाल के प्रांगण में, जहां पर शिव जी की खूबसूरत प्रतिमा आपका स्वागत करती है।

0: Sim, ele tem que ficar. Só que शिव जी की ब्लेसिंग लेके हुए और उम्मीद करते हैं कि
1: महाकाल ऐसा माना जाता है कि महाकाल की महाकाल के दर्शन होने पे अकाल मृत्यु टल जाती है जी, यहाँ की खासियत।
2: यह है महाकालेश्वर मंदिर का प्रांगण, जहाँ पर ढेर सारे और छोटे छोटे मंदिर और भगवानों की तस्वीरें बनी हुई है। यानी मुख्य दर्शन से पहले आप इन सभी का दर्शन भी कर सकते हैं, और सूरज रंभिका ने भी इस प्रांगण में भगवान के दर्शन के और अपनी धार्मिक यात्रा का आरंभ किया।

वैसे आजकल मंदिर का प्रांगण बहुत खूबसूरत हो गया है, ढेर सारी ग्रेफिटी वॉल्स जहाँ पर शिव के अलग अलग रूप को चित्रों की तरह पूरे प्रांगण में दिखाया गया है। सुरोज रंबिका ने भी पूरी शिव गाथा इस प्रांगण में देखी और उसके बाद मुख्य मंदिर में महाकालेश्वर महाकाल के दिव्य दर्शन किए। इनके दर्शन बहुत ही शुभ हुए और दोनों ने इस दर्शन को देखी कैसे इन चित्रों में

0: हर एक साल में एक बार पट खुलता है दर्शन के लिए, तो हमें महाकालेश्वर की दर्शन तो करना है पर ओंकारेश्वर का होगा, लेकिन सर हमें वेट करना और अंदर आते जैसे कि मच दिख गई या कम हो गया इतना रिलैक्स इतना कूल वाइब लकी नहीं आ रहा था कि चमत्कार लग रहा था। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाकालेश्वर ओंकारेश्वर नाथ चंद्रेश्वर उनकी उनकी ये महाकालेश्वर जो है वो मृत्यु लोक में है और ओंकारेश्वर जो है वो धरती के तीन भाग बताए गए हैं, हाँ पांच बताए गए जैसे कि मृत्यु लोक स्वर्ग लोक और अहू लोक, ये इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। कोई बात नहीं, नाथ चंद्रेश्वर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे जब इसका नाग पंचमी के दिन खुलता है तो हम तब आने की कोशिश करेंगे, जरूर आएंगे।
1: शांति धन का हमारा दर्शन हो गया एंड ये बात सच है कि जब हम गेट से बाहर थे तब इतना ज्यादा लगने लग गई थी और मंदिर के अंदर अचानक से ठंडा लगने लगा, बहुत ही स्पिरिचुअल वाली भावना एकदम डिवाइन
0: चमत्कारी फील हुआ हमें,
1: बहुत ही
0: अच्छे से हमें दर्शन हुए। मुझे लगता है कि शिव जी हमें आशीर्वाद दे चुके हैं।
2: महाकाल के मंदिर में मंदिर के बाहर इन दोनों ने दिव्य धागा बंधाया और तिलक विलक लगाकर अपने इस दर्शन को पूरा किया। इसके बाद प्रसाद भी ग्रहण किया और यहाँ पर पंडित जी से आशीर्वाद भी लिया।

0: 반띠가 나한테 기제.
1: महाकाल के दर्शन के बाद सूरज और अंबिका ने पूरे मंदिर की परिक्रमा की और यहाँ पर अलग अलग जगह तस्वीरें खिंचाकर अपनी फिल्म के लिए प्रार्थना की और साथ साथ अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही स्पेशल बनाया।

0: तो चलते हैं जहाँ पर ढेर सारी भीड़, और क्योंकि ये वीकेंड पर तो आज इनकी फिल्म देखने ढेर सारे लोग आए हैं। यहाँ पर इन्हें ज्वाइन किया फिल्म की प्रोड्यूसर चंदा पटेल ने, और इन तीनों ने मिलकर और थिएटर में लाइव ऑडियंस के साथ फिल्म देखी और ऑडियंस का रिएक्शन लिया। इंदौर में सूरज, अंबिका और चंदा पटेल को फिल्म के ढेर सारे रिएक्शंस मिले। लोगों ने फिल्म देखी और पूरी टीम के साथ फोटो खिंचाई। वैसे पर्दे के पीछे जरा देखिए क्या चल रहा है पॉपकॉर्न के साथ।
1: जुदा हुए
2: आओ छोड़ दिया आपकी फेवरेट कौन है
1: ये अपोजिट अट्रैक्शन
2: तो
1: मैं तो
0: पड़ाव नंबर तीन, इंदौर का राजबाड़ा। भाई इंदौर है अहिल्याबाई की नगरी, जहाँ पर मराठा शासकों ने इस मालवा प्रदेश पर राज किया, और यहाँ का खूबसूरत राजबाड़ा इंदौर की शान है।

0: अपने फिल्म के रिएक्शंस के बाद सूरज और अंबिका पहुंचे इंदौर के राजबाड़े में और इस राजबाड़े की भव्यता देखकर दोनों ने उस रॉयल्टी को महसूस किया।
1: तो आज का दिन हमारा काफी हैक्टिक रहा है, तब भी हमने काफी एंजॉय किया है और अब हम फ्री हुए हैं तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से घूमने का राजबाड़ा। और जो कि बताइए,
2: ये फोर्ट इंदौर की एक्चुअली सबसे हेरिटेज और सबसे प्राइड है इंदौर की एक तरह से, और गौरव है यहाँ की। और ये एक्चुअल में होलकर फैमिली, मराठा साम्राज्य के होलकर फैमिली के की निशानी है। आप जैसा देख सकते हैं ये महल अराउंड 17वीं शताब्दी में बना गया था और आज तक ये कैसे अपने पूरे सम्मान और तख्तोताज के साथ कैसे खड़ा है, और इसकी नक्काशी, इसकी बनावट हमें उस टाइम के कलाकृतियों की याद दिलाती है कि कैसे उस टाइम पे भी क्या आर्किटेक्ट होते थे, क्या क्या आर्ट होता था लोगों के पास। इतना भव्य फोर्ट बनाया उन्होंने उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लिटरली इट्स अमेजिंग।
1: मंदिर भी श्री बांके बिहार जी का, एंड आई थिंक ये हमें बैक साइड से जो देखने को मिल रहा है, आई थिंक ये अहिल्या बाई जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो यह ब्यूटीफुल, मैं तो पहली बार देख रही हूँ और मुझे ये इंदौर का गौरव माना जाता है, यू नो। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी इंदौर आते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं अपने घूमने की, या सबसे बड़ी चीजें मानी जाती है। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने देख लिया। और आई थिंक इसको जला दिया गया था कुछ, उसमें
2: इंदौर का ही नहीं हर सनातनी का गौरव है।
0: सूरज और अंबिका ने पूरा दिन ट्रैवल किया था लेकिन यहाँ पर आकर इनकी थकान उतर गई, लेकिन अब इन्हें लग रही है भूख और इंदौर जाना जाता है अपने एक फेमस नाइट मार्केट के लिए। सूरज और अंबिका संग इस रोड ट्रिप का अगला पड़ाव है इंदौर का मशहूर सराफा मार्केट, जो दिन में तो ज्वेलरी शॉप होता है लेकिन रात में वेजिटेरियन फूड का हब बन जाता है, जहां पर तरह तरह के अलग अलग खाना पीना मिलता है, जहां पर तारक मेहता की चाट से लेकर जामुन शॉट्स और अमरूद शॉट्स से लेकर मिठाइयां मिलती हैं। और तो सूरज और अंबिका निकल पड़े इंदौर के मशहूर फूड नाइट मार्केट सराफा देखने के लिए।
1: तो हम आ गए हैं इंदौर के सराफा बाजार में। दिन में तो ये पूरा बाजार रहता है और ऐसा कहते हैं कि नाइट में ये पूरा फूड हब बन जाता है।
0: इंदौर का सराफा भारत का बहुत ही लोकप्रिय नाइट मार्केट है, जहाँ पर वेजिटेरियन खाना मिलता है और ये मार्केट रात में ही लगता है। और जरा देखिए तो रात में कैसे खाने की बहार लगी हुई है, जिसे देखकर सूरज और अंबिका हक्के बक्के रह गए, लेकिन इन्हें जोरों की भूख लगी है इसलिए यहाँ पर ही सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पर तरह तरह के खानों को चेक किया, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की जलेबी, तरह तरह की मिठाई और चाट वगैरह मिलती है, लेकिन सबसे खास होते हैं यहाँ पर मिलने वाले जामुन शॉट्स, जहाँ जामुन का जूस एक अलग अंदाज में यहाँ पर पेश किया जाता है। और देखिए अंबिका और सूरज ने कैसे इन जामुन शॉट्स को ट्राई किया, जो इस सराफा बाजार की स्पेशलिटी है।
3: ये बहुत ही हेल्दी और डिटॉक्स ड्रिंक है, जो कि पहले एक्सपेक्टेड नहीं था और ये बहुत टेस्टी निकला, अमेजिंग। देखो जिसको जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहले उसका खत्म हुआ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस सिर्फ और अभी तक मेरा इसलिए नहीं खत्म हुआ बिकॉज ये बहुत ज्यादा ठंडा है।
0: सराफा बाजार में खास है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की चाट। जी हाँ, मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठा भाई की दया और जेठा के नाम पर यहाँ पर एक चाट कॉर्नर है, जहाँ पर मिलती है जेठालाल चाट, दया भाभी की चाट और माधवी भाभी की चाट। और इसको सर्व करने वाली भी बिल्कुल तारक मेहता के अंदाज में रहते हैं। और भाई सूरज

0: Heru Pak Pasar.
1: Eva!
2: Betul je. हर कोई अपने को तब तारक मेहता ही लगा लेता है, कुछ भी मूड खराब हो तो तारक मेहता लगा लो, खाना खाने चाहो तारक मेहता लगा लो, बात बात पे तारक मेहता ही लगा लो।
3: आप तो
2: हम इतने बड़े हो गए उसके बावजूद भी हम देखते रहते हैं, मतलब मैंने बड़े बड़े लोगों को
4: एक जेठालाल बनाओ, चलो
5: जेठालाल खा लेंगे।
0: ये
5: महाशय इसका मुंह दिखाइए, ये महाशय का ना खाना नहीं जाता था अंदर बिना जेठालाल को देखे,
2: तो जेठालाल दिखा देते थे
0: इसके लिए जेठालाल
5: माना। इसको देखो बचपन में,
3: ये टप्पू था, टप्पू
5: इसका बचपन 4 साल ही पहले था,
2: तो खाना खाते थे तो जेठालाल जी के साथ उनसे तुरंत कविता दिखाई जाती थी, तब ये खाना खाता था।
3: ऐसा था क्या?
0: बबीता जी आई,
3: टप्पू सेना का पार्ट तो था ये।
2: Oh God.
4: जेठालाल स्पेशल।
3: कभी जेठालाल जी आए यहाँ पे आपके पास?
4: अभी तक तो नहीं आए,
5: मैं अब जल्दी आएंगे पक्का,
3: मैं उनको पहुँचा दूँ,
4: उनका इंतजार है सर।
5: और ये वीडियो सच में उन तक पहुँचेगा?
4: बिल्कुल बिल्कुल सर।
5: ये कौन कौन है?
4: टपोड़ा स्पेशल।
5: टपोड़ा टपोड़ा, अच्छा टपो टप्पू के ऊपर
4: मतलब भापड़ा।
5: चलो भाई प्लीज,
4: अरे तो टेस्ट करने का ना।
6: डरने से क्या डरना, यही रात है इसी रात के इसी पर देखो जाना, पास आके हम चाहे जो करे सुबह भूल तुम
5: जाओ।
7: तो भाई सराफा मार्केट का अट्रैक्शन है तारक मेहता की चाट, और यहाँ पर उन्होंने जेठालाल की चाट खाई। वैसे दया भाभी की चाट भी काफी मजेदार है और साथ में माधवी भाभी की चाट भी। तो सीरियल से इंस्पायर्ड ये चाट कॉर्नर इंदौर के नाइट मार्केट का अट्रैक्शन है।
4: ज्यादातर यही दोनों बिकता होगा, यही दोनों
8: हमारे दया पीछे है और बबीता जी अभी बाजार में घूमने गए।
3: ओह गॉड।

0: हिनॉर्फ के सराफा बाजार में इन्होंने यहाँ पर भुट्टे की घीस और कॉर्न चाट ट्राई की जो काफी मजेदार थी। प्यार से जो
1: मिलेगा

0: इंदौर के सराफा बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है इस शॉप में, क्योंकि यहाँ पर मिलती है सोने की कुल्फी, और उसे भी स्पेशल इन्हें सर्व करने वाले ये जनाब जो सोने से लदे हुए हैं। भाई ये सबको सोने की कुल्फी खिलाते हैं और खुद सोने में लदे रहते हैं। तो भाई देखते हैं कैसी है ये सोने वाली कुल्फी और कैसे हैं ये सोने में लदा लद ये कुल्फी वाले।
1: सराफा
2: हमारी स्पेशल गोल्डन कुल्फी खा लो, और ये भारत की क्या पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गोल्ड की कुल्फी मेरे यहाँ मिलती है।
3: हमारे ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड है।
0: सूरज अंबिका ने खाई ये सोने वाली कुल्फी और यहाँ के अनोखे सराफा बाजार के मार्केट का स्वाद इनकी चटोरी जुबान बन गया।
4: जो कि स्पाइसी था बट अमेजिंग था, जैसा आपने आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया कॉर्न चाट, और उसके बाद हम आए हैं प्रकाश गोल्ड कुल्फी के पास, जिनकी जो
5: प्रकाश शॉर्ट्स वाला था।
6: हाँ ये भी प्रकाश ही
4: गाइस गाइस सब मेरे को पता नहीं कैसे समझते हैं, मतलब क्यों गलत समझते हैं, मैंने तो पढ़ के बोला था। प्रकाश गोल्ड कुल्फी आए हम लोग, और फेमस ही है अपने गोल्ड के लिए, गोल्ड से ज्यादा फेमस
0: वैसे। सूरज अंबिका बिल्कुल मस्ती के मूड में है, दिन भर की थकान भी इनकी मस्ती को रोक नहीं पाई, और जरा देखिए इनका ये भोजपुरी अंदाज जो यहाँ पर सब क्या

0: 아까 게임으로 만나.
1: पांडे जी का बेटा हूँ।

इंदौर का सराफा बाजार अपने अतरंगी खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अंबिका को तो इमली वाला मिल गया और इनकी बचपन की यादें ताजा हो चुकी। जी हाँ, बचपन में जो इमली चूरन खाया जाता वो भी यहाँ पर मिलता है। और देखिए कैसे अंबिका ये इमली खा रही है।

0: इंदौर के सराफा बाजार में इतना कुछ खाने का है कि आपका मन तो भरेगा लेकिन पेट नहीं। और आखिर मैंने उन्हें ट्राई किया ये अमरूद शॉर्ट। देखिए जरा अमरूद को किस इको फ्रेंडली अंदाज में पेश किया गया है।
1: ये है गुआवा शॉर्ट, गुआवा शॉर्ट। और लेट्स सी, मैंने थोड़ा टेस्ट किया, अच्छा लगा तो मैंने भी बनाया। मजेदार। Oh my God. बढ़िया भाई, क्रेजी क्रेजी। जब भी आप लोग आइएगा प्लीज ये वाला पीजिएगा। ये हमारा ड्रिंक अंदर का खत्म होगा जो कि ये गुआवा का ही है, फिर उसके बाद हम ये खा सकते हैं।
0: तो भी कुछ इस मस्ती मजाक के साथ खत्म हुआ सूरज और अंबिका की उज्जैन और इंदौर यात्रा। इसके बाद बारी है अगले पड़ाव पर चलने की। अगला पड़ाव है गुजरात की टेक्सटाइल कैपिटल सूरत। जी हाँ, सूरत अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है और अंबिका और सूरज रेडी हैं अब सूरत में अपनी फिल्म का लाइव रिएक्शन के लिए। वैसे इनकी फिल्म की शूटिंग सूरत में भी हुई है, इसलिए ये शहर बहुत ही खास है और ये सूरज का होम टाउन भी है।
1: जैसी मैं फिल्म में दिख रही हूँ तो वैसी थोड़ी दिखा ताकि ऑडियंस और ज्यादा कनेक्ट कर सके।
0: जी,
2: और मैं तो थोड़ा गेटअप चेंज कर लिया है
0: जी,
2: अपना लुक भी चेंज कर लिया, बट होप सो कि लोग मुझे गौरव की तरह पहचान जाए एटलीस्ट।
1: पहचान जाएंगे, नहीं तो मैं बता दूंगी यही है वो। सूरत मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर शूट करने, तब भी बहुत कमाल था और आज भी बहुत कमाल है। और यहाँ का खाना, ओ माई गॉड, मतलब हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने सोचा था, मतलब जो लोग सूरत से बिलोंग नहीं करते हैं, हालांकि सूरत तो बोली ज़्यादा खाना देखना बहुत अच्छा है और मैं भी खा कर गई हुई हूँ, तब भी मैंने सोचा कि ट्रेवल के टाइम पर ना मैं थोड़ा कम खाऊंगी, यू नो कि रेस्टोरेंट में थोड़ा ऑयल वगैरह ज़्यादा डाल देते। इतना टेस्टी, इतना यम्मी कि हमने जब एक रोटी सोची खाने की, हमने चार चार रोटियाँ खाई। चार तो मैंने नहीं खाई, पहले मैंने ढाई या तीन खाई
2: है। गर्मी, हाँ गर्मी चल रही है,
1: बट अभी अभी अच्छी हवा चल रही है, बट बहुत अच्छी सब्जी है।
0: सूरज और अंबिका सवार होली गाड़ी में और अपनी शूटिंग की यादों को उन्होंने ताजा किया। वो लोकेशंस जहां पर उनकी फिल्म शूट हुई है,

0: इसके बाद ये लोग पहुंचे सूरत के इस मशहूर सिनेमा हॉल में जहां पर इनकी फिल्म का शो चल रहा है। भाई वहां पर इन्हें दर्शकों का इमोशनल रिएक्शन मिला क्योंकि यहां पर इनकी फिल्म देखने बच्चों से लेकर बूढ़े आए हुए थे। तो आइए देखते हैं कैसा था ये नजारा।
1: पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा रिपोर्ट देखती हूँ। आई डोंट नो ये कैसे बातचीत करता है।

0: सुनो जब अंबिका ने दर्शकों के साथ बैठकर फिल्म देखी और उसके बाद दर्शकों से रिएक्शन लिए। पर यहाँ पर आज सूरज की स्कूल की प्रिंसिपल भी आई हैं और ये सूरज के लिए आशीर्वाद था।
1: तो बचपन में मस्ती करके बहुत परेशान भी किया इनको मैंने। थैंक यू सो मच आने के लिए मैम। थैंक यू सो मच।
0: सूरज का होम टाउन है। आज यहाँ पर उनके सब फैमिली फ्रेंड्स बचपन के दोस्त यार फिल्म देखने आए हैं और सब ने फिल्म देखकर इमोशनल अंदाज में सूरज को उनकी फिल्म का रिएक्शन दिया जो उनके लिए बहुत इमोशनल था।
1: और ये हमारी नेक्स्ट मूवी में गुजराती मूवी में साथ में है और ये हमारे सेट का सबसे बेस्ट एक्टर है। ऐसे उम्र पे मत
0: सूरज अंबिका के साथ दर्शकों के इन लाइव रिएक्शन देखकर इमोशनल हो गई फिल्म के डायरेक्टर चंदा पटेल भी जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है।
1: तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं जिनके बिना शायद हमारी मूवी नहीं बन पाती या शुरू ही नहीं हुई होती। हमारी मैम प्रोड्यूसर मैम चंदा मैम
2: डायरेक्टर भी है।
1: हाँ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर चंदा मैम।
3: जब एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं तो उसको जब रिलीज होती है तो इतनी ज्यादा अंदर मतलब बता नहीं सकते। वो एग्जाम जो हम टेंथ में देखते हैं तो वैसा लगता है कि जैसे मेरी एग्जाम हो रही है कि पता नहीं क्या बोलेंगे कैसा किसको कैसा पसंद आएगा। तो उसके बारे में हम बयां नहीं कर सकते। वो वही समझ सकता है जिसने फिल्म बनाई इस चीज से गुजरा हुआ है।
0: अगला पड़ाव है गुजरात का एक और शहर जो अपनी रॉयल्टी के लिए जाना जाता है और वो है वडोदरा। तो सूरज और अंबिका अपनी फिल्म टीम के साथ निकल पड़े वडोदरा की ओर।
4: सर ये मेरे हाथ में है लेमन
1: बच्चों को जरूरत होता है
4: बिकॉज ट्रेवल करते करते कल से यात्रा कर रहे हैं और हमारा मन उतना अच्छा नहीं जा रहा है। मतलब हम अच्छा फील कर रहे हैं बट हमारा जो मन है ना वो थोड़ा सा ऐसे मचल रहा है तो उसके लिए हम
1: रुक जाए। बच्चों को थोड़ी जरूरत होती है ट्रैवलिंग
4: मजा आ जाता है भाई मजा आ जाता है। इंस्टेंट वर्क करता है अगर आपका सर घूम रहा है या आपका जी मतला रहा है तो ये प्रयोग कीजिए।
0: और बड़ौदा पहुंचते ही इन्होंने यहाँ की नमकीन का स्वाद लिया। तुम
4: सबका समझे लगिया तो एक्चुअली ट्रेवल के टाइम पे हम सबका थोड़ा बहुत जी मचला रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है थोड़े मूड स्विंग हो रहे हैं तो किसी को वोमिटिंग ना हो किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए हमने ये लिया है। एंड ओ थैंक यू सो मच। उसका एक ही नहीं ये है चिंतन हमारे हीरो साहब के भाई साहब के लिए यही हमारा दिल फिक्र
0: यहाँ गुजरात अपनी नमकीनों के लिए जाना जाता है। और देखिए सूरज ने पहुँचते ही थोड़ी नमकीनों की शॉपिंग की और साथ साथ अंबिका ने भी गुजरात का स्वाद लिया।
1: गुजरात इज फेमस वेरी फेमस फॉर उसके नाश्ते एंड यहाँ का खाना स्ट्रीट फूड्स। तो प्लीज जब आप गुजरात विजिट करें तो यहाँ का नमकीन जरूर टेस्ट करें।

0: खूबसूरत से बजोरा पहुंचते ही दोनों ने चेंज किया और पहुंचे उस थिएटर में जहां पर ये फिल्म चल रही थी। और यहां पर दोनों रेडी हैं दर्शकों से लाइव रिएक्शंस लेने के लिए।
1: हमारे ऑडियंस को हमारी मूवी कैसी लगी है, सब अंदर है, अभी जब बाहर निकलेंगे तो हम आपको उनके रिव्यू से रूबरू करवाएंगे।
2: ये जो तेरी यादें तड़पाए मुझको।
0: इंदौर और सूरत के तरह बड़ौदा में भी आज ढेर सारे लोग इनकी फिल्म को देखने आए हैं और यहाँ पर भी इन्हें प्यार भरे रिएक्शंस मिले। लोगों ने आकर इन्हें बधाई दी और इनके लिए बहुत ही इमोशनल लम्हा था। भाई सब ने इनके साथ ढेर सारी सेल्फी खिंचाई, बधाई दी और इनकी फिल्म को लाइव रिव्यू दिया। तेरा मेरा नाता एक पारिवारिक लव स्टोरी है जो इमोशनल है और एक क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट देती है, और ऐसी ही कोशिश पूरी टीम ने की और यहाँ पर दर्शकों के साथ उन्हें वही रिएक्शंस भी मिले जो सबके लिए बहुत ही इमोशनल थे।
1: अब लग रहा है कि नहीं किरदार निभाया
0: तो ये थी फिल्म तेरा मेरा नाता की रोड ट्रिप, जो मुंबई से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर, इंदौर से सूरत और फिर बड़ोतरा पहुंची, जहां पर फिल्म के कलाकार सूरज और अंबिका ने ना सिर्फ भगवान का आशीर्वाद लिया बल्कि इंदौर का स्वाद भी चखा, रॉयल्टी को भी देखा, यहां के लोगों से भी मिले, अपनी फिल्म का प्रचार भी किया और उसके बाद सूरत और बड़ोतरा में दर्शकों का प्यार लिया, वहाँ के स्वाद को चखा और ढेर सारी इमोशंस और यादें लेकर दोनों वापस मुंबई आ गए हैं। वही फिल्म थिएटर्स में आ चुकी है और तेरा मेरा नाता के कलाकार लगे हुए हैं इस फिल्म को अनोखे अंदाज में दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा पहुँचाने में, और रोड ट्रिप कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो इस फिल्म की टीम ने आज दिखाया। वही फिल्म बनती है लोगों के लिए और लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए उनसे मिलना जरूरी है, और तेरा मेरा नाता की टीम यानी सूरज और अंबिका और चंदा पटेल ने कुछ यही किया अपने ऑडियंस के साथ। तो उम्मीद है कि ये पारिवारिक लव स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को वही वैल्यू दे जिसके लिए फिल्म बनाई गई है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: अभिरा और अरमान, जिस तरह का ड्रामा चल रहा है ना आपकी कहानी में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी डिजर्व करते हैं एक संडे वाला ब्रेक। अरे निकल जाइए कहीं दूर, क्योंकि देखिए जब होंगे ना आप एक दूसरे के करीब, वो भी पूरे ड्रामा से दूर, तब हमारे लिए आएंगी रोमांस वाली गुड न्यूज। तो कैसे आगे बढ़ रही है ये कहानी, आज लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर।
1: दादी सा करे परेशान अभिरा की सेवा खुशामत। हाथ जोड़कर घर वालों ने मांगी माफी। पूरा हुआ अभिरा का परिवार। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पूरा पोदार परिवार पहुंच गया है अरमान अभिरा के घर पर, मांगने उनसे माफी और करने गुजारिश कि वो लोग वापस पोदार हाउस चले। ऐसे में अभिरा ने तो पोदार हाउस जाने के लिए हाँ कह दिया है, क्योंकि उसे पता है कि अरमान की हालत इस वक्त क्या है। ऐसे में अभिरा ने अरमान को समझाया, अरमान ने भी हाँ कह दिया। ऐसे में अरमान की दोनों बेटियाँ बेहद खुश हो गयी और उन्होंने अरमान को गले लगा लिया, क्योंकि अब मायरा और मुक्ति दोनों को ही पूरा पोदार परिवार जो मिलेगा।
2: एक तो रिकवरी के बाद अरमान ने 0.1% पॉसिबिलिटी थी, फिर भी उसकी सर्जरी, अरमान की कोशिश, अभिरा की प्रार्थना, सब कुछ जीत गई एंड अरमान मेड इट। बट रिकवरी भी उतनी टफ है, डॉक्टर प्रधान ने बोला, एंड बोला कि उतनी ही टफ है रिकवरी, और अभिरा को फिर ये दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लेना पड़ता है कि गराज वाले घर तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, सुविधा चाहिए होगी। एक पेशेंट को जिसने अभी अभी रिकवर किया है, उसको ऐसे घर में नहीं लेके जा सकते जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो पोदार हाउस आ जाती है उसे लेकर। ऑफकोर्स वो दोनों खुश नहीं है इस बात को लेकर, बच्चे भी खुश नहीं है, बट नीड ऑफ द आवर थी तो करना पड़ा।
1: खैर पोदार हाउस में अरमान अभिरा की एंट्री तो हो गई है, लेकिन अभिरा वो बहुत बेचैन है, बस यही सोच रही है कि कैसे अरमान को जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक किया जा सके। ऐसे में मनीषा अभिरा को समझाती है, उसे सोफे में आराम से बैठने के लिए कहती है कि तभी अभिरा की लग जाती है आंख, और ऐसे में वहां पहुंच जाती है दादी सा जो अभिरा का सर दबा रही है, और साथ ही पहुंच जाती है काजल भी लेकर अभिरा के लिए खाना।

0: अचानक अभीरा की आंख खुलती है, वो हैरान होती है और तभी तीनों ही मिलकर अभीरा के आगे माफीनामा पेश करती है। दादी सातू हाथ भी जोड़ लेती है।
1: एक्चुअली जब से उनको पता चला है कि अरमान ने दिशा पे हाथ नहीं उठाया था तो उस बात का गिल्ट है। बाद में पता चला अरमान को ट्यूमर भी है और ऐसी हालत में उन्होंने अरमान अभीरा को सबको घर से बाहर निकाल दिया। एक तो ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं है और ऊपर से ऐसी हालत में, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ऑफ कोर्स माफ़ करना इतना आसान नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर शादी होने लगती है, आपको तो पता ही है ट्रैक। उस समय फैमिली काफ़ी ज़्यादा एकजुट होकर मदद करने लगती है अरमान अभीरा की बहुत सारी चीज़ों में। तो आई थिंक अभीरा बहुत ज़्यादा दरिया दिल है, हालांकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतनी आसानी से किसी को माफ़ करना चाहिए, बट अभीरा ने माफ़ कर दिया है। ये वही सीन है जहाँ पे सब लोग आते हैं और सब हाथ जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और ये कर दो वो कर दो।
0: अभीरा के माफ़ करते ही दादी सा मनीषा और काजल ने अभीरा को गले लगा लिया और तो और वहाँ पर मनोज भी पहुँच गया क्योंकि उसका पूरा परिवार एकजुट हो गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अरमान की एंट्री हुई अपने दोनों बेटियों और माँ के साथ और अभीरा को इस तरह परिवार के गले लगा देखकर अरमान हैरान है। ऐसे में घर वाले तो अरमान से भी माफ़ी मांगते हैं और अभीरा अरमान को समझाती भी है, लेकिन अरमान उसे लगता है कि ये माफ़ी सिर्फ उस पर तरस है।
2: अरमान के भीतर जो एक जो दुख ने स्थान दे दिया कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला था, किसी तरह से वो यहाँ घर में आके तो रह गया है लेकिन वो इनको माफ़ नहीं कर पा रहा है। और मैं वही उसे बोलती हूँ, अभीरा माफ़ कर देती है और मैं उसे बोलती हूँ, बेटा देख जो नफ़रत है गुस्सा है ये हमारा खून ही अपना ही खून जलाता है, इसीलिए ये तो अपने हैं, अपने इस गुस्से को हटा दे और इन सबको माफ़ कर दे। तो वो अभीरा भी उसको आके ये समझाती है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ तो थे ही ना, चाहे जो भी है, तो इसलिए गुस्सा थूक दे अब। और अरमान बोलता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि इन्होंने मुझे माफ़ किया है लेकिन तरस खा के माफ़ किया है, अपनी गलती मान के माफ़ किया है, मुझे एक परिवार का सदस्य मान के माफ़ नहीं किया है। तो यहाँ मैं शौक हो जाती हूँ कि बेटा अभी भी उसी स्थिति में है और कैसे हम स्थिति को बदलेंगे वो तो हमें आगे ही पता चल जाएगा।
0: फिलहाल तो अरमान को समय लगेगा माफ करने में और अभीरा बखूबी समझ रही है, लेकिन अभीरा अरमान का अच्छे से ख्याल रख रही है। ऐसे में वो आराम तक करना भूल जाती है, इसलिए देखिए वो सिर्फ दवाइयों के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी आंख लग गई और अरमान वहाँ पर आता है। अभीरा को इस तरह आराम करता देखता है और उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि अभीरा उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर मायरा भी रसोई में अपने पापा के लिए अपने हाथों से खाना बना रही है। ऐसे में वहाँ पर दिशा भी पहुँच गई है उसे बताने के लिए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि इस कुकिंग क्लास में गलती से हल्दी का पूरा पाउडर सब्जी में गिर जाता है। अब देखना होगा क्या मायरा और दिशा के बीच में जो अनबन हुई है वो दूर हो पाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: मैं तो चाहती हूँ कि डॉक्टर आरंभी और ध्रुव को भी मिले एक संडे वाला ब्रेक, लेकिन सिर्फ एक दूसरे के साथ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अगर ये दोनों आ भी गए ना एक दूसरे के साथ? यहाँ विश्वास और अमंतिका तो बिल्कुल भी नहीं लेने देंगे इन्हें चैन की सांस। वैसे मुझे समझ में नहीं आता उनकी प्रॉब्लम क्या है, अब वो दोनों तो हो गए हैं ना एक साथ।

क्या कामयाब हो पाएगी अवंतिका की चाल। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में आज राज और नायरा की मेहंदी की रस्म है, जहां पर राज और नायरा तो अपने हाथों में मेहंदी रचवाने के लिए रेडी है। साथ ही साथ पूरा परिवार भी बहुत खुश हो रहा है, लेकिन ध्रुव उसकी नजरें अब भी आरंभी को ढूंढ रही है। लेकिन आरंभी नायरा की मेहंदी की तैयारियों में जुटी है। जरा देखिए कैसे आरंभी पूरी कोशिश कर रही है कि मेहंदी को अच्छे से पीस ले। इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि बात करते हुए पहुंच जाता है ध्रुव और गलती से वो पंखे का डायरेक्शन आरंभी की ओर कर देता है, जिसके चलते आरंभी के पास पड़ी पन्नियां उड़ जाती हैं, जिनसे आरंभी को कोन बनानी है। ऐसे में परेशान आरंभी उन पन्नियों को उठाने के लिए आगे जाती है और साथ ही ध्रुव भी पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन इन्हीं पन्नियों के उठाने में दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं।

0: वही जाने अनजाने नायरा और राज की मेहंदी लग गई है ध्रुव और आरंभी के हाथों में। हालांकि आरंभी हिचकिचा जाती है और ध्रुव को वो मेहंदी हटाने के लिए कहती है क्योंकि मेहंदी रच जो जाती है। ऐसे में ध्रुव ने भी उसकी बात मान ली है, लेकिन ध्रुव उसकी नजर घर के हर सदस्य पे है क्योंकि उसे पता है कि मेहंदी की रस्म में जरूर कोई न कोई ड्रामा होगा ही। खैर आरंभी तो वहाँ से झटपट निकल जाती है लेकिन गलती से चाबी छोड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर ध्रुव आरंभी को तलाशने लगता है और तभी उसके सामने आती है अवंतिका लेकर ध्रुव के लिए खीर क्योंकि उसने की है उस खीर में मिलावट। ऐसे में अवंतिका पूरी कोशिश कर रही है कि ध्रुव वो खीर खा ले लेकिन ध्रुव बार बार मना कर रहा है।
1: सो मेहंदी फंक्शन में तो बेसिकली नायरा तो खुश ही है, नायरा मेहंदी लगवा रही है। सो नायरा के लिए मेहंदी एक बहुत ही हैप्पी डे है। जैसे जैसे शादी के क्लोज आ रही है नायरा तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और बाकी जो अवंतिका दी का चलता रहता है ड्रामा डीसी और आरएमबी के अगेंस्ट जो भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं तो आई डोंट थिंक कि वो सक्सेसफुल होगी, बट यार लेट्स सी। सो आई थिंक कुछ तो उन्होंने मेडिसिन्स लाई है कुछ किसी खीर वीर में मिलाने के लिए, बट वो इस बार अपनी प्लानिंग में आई डोंट थिंक सक्सेसफुल हो पाएंगी क्योंकि शायद से वो आरएमबी दीदी ने डिटेक्ट कर लिया है।
0: फिलहाल तो ध्रुव खीर लेकर वहाँ से चला जाता है अवंतिका को ये दिखाने के लिए कि वो खीर खाने जा रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा और उसी ट्विस्ट के साथ जब ध्रुव विश्वास के सामने आएगा तो वो लड़खड़ाने लगेगा। उसे देखकर विश्वास को लगेगा कि दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और ही होगा क्योंकि यही ट्विस्ट तो असली ड्रामा लेकर आएगा जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

आपके संडे को बनाने फन डे हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन। यहाँ तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रही हैं आप सबका इंतजार, खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर।

0: स्टार प्लस के सीरियल परशुराम में आज परशुराम के हाथों लग गया है वो इंसान जो कश्मीर पहुंचा था उस पर हमला करने के लिए। ऐसे में आज शिव यानी कि परशुराम का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो न सिर्फ राजू को अपना इंट्रोडक्शन देता है बल्कि उसे जमकर मारता भी है ताकि वो सच उगल सके कि आखिर उसे किसने भेजा था।
1: तुझे किसने भेजा था और सुबह किसने दी थी? जल्दी बोल, जल्दी बोल।
0: भाई बंदूक की डर से तो राजू ने बब्बन का नाम ले दिया। ऐसे में शिव को पता तो चल गया कि बब्बन उसका जानी दुश्मन है, लेकिन शिव ये जानना चाहता है कि आखिर उस पर गोली चलाई तो चलाई किसने। इस पर राजू मना कर देता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है, लेकिन शिव वो तब भी नहीं मानता। और देखिए कैसे राजू से उगलवाने के लिए राजू की फिर से पिटाई करने लगता है।
2: तूने तो किसी को देखा हो वहां पर, किसी को भी गोली चलाते हो? किसको?
3: हां देखा था मैंने, शालिनी को गोली चलाते हुए देखा था, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट ने यह भी बोला था कि शालिनी के सर पर चोट लगी थी, उसको चोट लगी थी, ऊपर किसी ने उसको मारा था। शालिनी मुझे मारना चाहती थी जैसे सबके लिए, तो शालिनी को किसने मारा? इसका मतलब तीसरा था,
0: अब ये तीसरा है या तीसरी, इस बात का तो अंदाजा आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो शिव को अब शक हो गया है शीतल पर भी।

0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री ने मूसा का खात्मा तो कर दिया है, ऐसे में शिवाय चाहता है कि अब इस शादी पर ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि ये शादी मूसा को पकड़ने के लिए ही की जा रही थी। लेकिन अब मूसा है ही नहीं तो शादी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी जगधात्री शिवाय को सच बताती है कि मूसा ने मरने से पहले उसे क्या बताया है।
1: साधु से मैंने भी ये बात कही थी और आज मूसा ने खुद पूरा ही मेरी राय की मुख के तहत देश में खानी से कमी और सारा प्रूफ उस फाइल में, इसीलिए जब तक हम इस केस के तय तक नहीं जाते तब तक हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। ये शादी का नाटक हमें जारी रखना होगा।
2: तुम्हें अकेली बचा दिया था मुझे।
3: जगधात्री मूसा को मार देती है और तभी भी नाखुश सी लग रही हैं, तो शिवाय आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सब तो ख़त्म हो गया है, तुमने कर दिखाया और आई का बदला पूरा ले लिया तुमने और सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो जगधात्री बोलती है अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों जाते जाते मूसा बोल कर जाते हैं कि मैं तो बस एक प्यादा था इस खेल में, एक्चुअली इस हर चीज़ के पीछे कोई और है।
4: वो तो सिर्फ एक प्यादा था, असली मूसा मतलब जो भी है उसके तार इस घर से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है यार कि एक ज़माने के बाद मुझे मेरा परिवार मिला है, ठीक है, जहाँ पे फादर हैं, महेश देशमुख हैं, माया दी हैं, सब कुछ है, और अब ये बोल रही है कि इस परिवार में जो है मूसा की कनेक्शन है, यहाँ पे है जो भी है, तो शॉकिंग है। हम दोनों हैं और मैं जहाँ बोलता हूँ कि अगर कोई है भी तो हम बिना शादी के भी उसे ढूंढ सकते हैं ना, शादी करने की क्या ज़रूरत है, और ये फोर्स करती हैं कि हमें शादी करनी चाहिए। सो ये पूरा सीन है।
0: बस शिवाय ने तो जगधात्री के इस फैसले पर सीधा मना कर दिया है। वो नहीं चाहता कि अपने परिवार से कोई भी सवाल जवाब करे, क्योंकि उसे पता है कि उसके देश में परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन जगधात्री उसे यकीन है कि अब भी असली मूसा जिंदा है जो कि इस परिवार का सदस्य ही है। ऐसे में जगधात्री शिवाय को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो शादी से पीछे ना हटे।
1: शिवाय हमें ये झूठ बोलना होगा।
2: हर बार तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं खुद की प्रॉब्लम्स के सामने, मिशन के सामने, खुद के दुख के सामने किसी और के इमोशन दिखाई नहीं देती।
3: आसानी होगी ना अगर इसी घर में रहेंगे, क्योंकि हर कोई इसी घर से कनेक्टेड है, तो कितना ही हम ढूंढ लेंगे बाहर रहकर। तो इसीलिए इसी घर में रहना चाहती है जगधात्री, शादी का बंधन दिखाना चाहते हैं, शायद उससे क्लोजनेस क्रिएट हो विद द फैमिली मेंबर्स एंड फैमिली, और इस केस की तह तक जा पाए, इसीलिए ये शादी करना चाहते हैं।
0: शिवाय को तो लग रहा है कि जगधात्री ये शादी सिर्फ और सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए करना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं जगधात्री भी शिवाय से प्यार करती है, लेकिन मिशन आगे है। ऐसे में मिशन के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इतना ही नहीं, उसने तो अपने जज्बातों को मार दिया है सिर्फ इस मिशन को पूरा करने के लिए।

0: जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में ध्रुव उन्नति को लेकर पहुंच गया है उसके घर उसे छोड़ने के लिए, और तो और उसने अपनी बहन के सामने ये भी बता दिया कि अब वो उन्नति के साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे में रीत ये सुनकर बेहद हैरान है। वो तो उसे सच जानने की कोशिश भी करती है लेकिन ध्रुव सच बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में वहाँ पर राघव भी आता है जो अपनी बहन से सवाल करता है, लेकिन रीत उन्नति को गलत बताने के बजाय ध्रुव से ही सवाल कर रही है और उसको ही गलत बता रही है।
1: मेरी क्या गलती है रीतू, मैंने तो उन्नति को अपनाने की कोशिश की ना, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, उससे शादी की, अपने रेस्टोरेंट में पार्टनर भी बनाया। इसे मूव ऑन करना था जिंदगी में, मैंने इसकी हेल्प की मूव ऑन करने में। एक बच्चा जो इसके पेट में पल रहा है जिसपे मेरा कोई हाथ नहीं था, उसे अपना नाम दिया, एक सपना देखा कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो मुझे पापा कह के बोले। इतना कुछ किया मैंने, और उसने क्या किया पूछना इसे।
2: ये पहेलियां बुझाना बंद, साफ साफ बता क्या हुआ।
1: उन्नति चुप चुप के विक्रांत से मिल रही थी।
0: भाई ध्रुव से सच जानने के बाद रीत और राघव दोनों ही हैरान हैं और उन्नति वो खामोश है। ऐसे में राघव उन्नति से सवाल करता है और उन्नति जवाब में हाँ बोल देती है। वो तो ये भी बोलती है कि वो विक्रांत से फिर मिलेगी। ऐसे में राघव को गुस्सा भी आता है। रीत उसे रोकती है और उन्नति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तब उन्नति सबके सामने इस बात का खुलासा करती है कि वो सिर्फ विक्रांत से बदला लेना चाहती है क्योंकि आज भी उसका दिया हुआ दर्द उसे परेशान कर रहा है।
2: इस बदले में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारे बच्चे की जिंदगी पछतावा बन के रह जाएगी। हमें हर किसी की जिंदगी का मकसद अलग होता है। आप दोनों का बेबी आप दोनों के प्यार की निशानी थी, और मेरा बच्चा सिर्फ टॉर्चर और जुल्म की निशानी है। इसलिए आप मुझसे उम्मीद नहीं रख सकती कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करूँ जैसा आप करती, क्योंकि हमारे माँ बनने का एहसास में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप अपना दर्द मुझ पर मत थोपिए, मैं आपकी दर्द की इज्जत करती हूँ, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरा दर्द कैसे है। तो उससे पहले का सिचुएशन को समझिए और फिर कुछ कहिए।
0: उन्नति तो अपना फैसला बदलने से रही, लेकिन उन्नति ने ध्रुव को ये भी बता दिया है कि वो उसी से प्यार करती है। अब देखना होगा क्या ध्रुव उन्नति का इस बदले में साथ देगा।
3: संडे यानी टोटल रिलैक्सेशन का दिन। संडे की छुट्टी तो होती है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन अगर संडे की छुट्टी पर भी आपको करना पड़े ढेर सारा काम और यूं ही हो जाए आपकी छुट्टी खत्म, तो डेफिनेटली हो जाएगा शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। खबरें आ रही हैं कि मनीषा रानी और कृष्णा अभिषेक दोनों साथ में नजर आएंगे एक रियलिटी शो होस्ट करते हुए, और ये रियलिटी शो होगा कलर्स टीवी के भोजपुरी चैनल के लिए। खबरों की माने तो वो रियलिटी शो भोजपुरी भाषा पर बेस्ड होगा। शो का नाम होगा भोजपुरी बवाल। अब ये भोजपुरी बवाल किस आधार पर होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा।

लॉकअप सीजन 2 से आकांक्षा चमोला इन दिनों खबरों में है। असल में हाल ही में इनका जो सीक्रेट सामने आया है उस सीक्रेट को लेकर हर कोई बातें कर रहा है। ऐसे में नेहल चुडासमा सामने आई हैं जो आकांक्षा को सपोर्ट कर रही हैं। उनका मानना है कि ये सीक्रेट बहुत बड़ा है और ऐसे खुलकर बात करना वाकई एक हिम्मत का काम है। इसी के साथ लॉकअप सीजन 2 से एक और खबर सामने आ रही है। प्रतियोगी वरुण यादव, उनके दादाजी का देहांत हो गया है। ऐसे में वरुण यादव इस बात से अनजान है। इतना ही नहीं, घर वालों और दोस्तों ने फैसला किया है कि वरुण को इस बात की जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उससे उनके खेल में असर होगा। और ये बात खुद उनके दोस्त ने एक व्लॉग के जरिए बताई है।

सलमान खान की आने वाली फिल्म मातृभूमि कंट्रोवर्सी में पड़ गई है। ऐसी खबरें आ रही थी कि सेंसर बोर्ड से अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिली है इस फिल्म को रिलीज करने की, लेकिन सलमान खान की टीम ने इस बात को खारिज किया है और बताया है कि इस फिल्म को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है और ये फिल्म जल्द ही अगस्त 2026 में रिलीज हो सकती है।

टीवी एक्ट्रेस तन्वी ठक्कर, जो कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में नजर आ चुकी हैं, उन्होंने अपने सोशल अकाउंट से अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी है कि उनका और उनके पति आदित्य कपाड़िया के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, उनका सेपरेशन हो गया है।

0: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शौरा सिद्दीकी एक्टिंग करियर में अपनी शुरुआत करने जा रही है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शौरा सिद्दीकी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि एक थिएटर से है, यानी कि 25 साल बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी थिएटर में फिर से वापसी कर रहे हैं, वो भी अपनी बेटी के साथ। देख लीजिए कुछ तस्वीरें और वीडियोस।
1: हो गई ईशान के साथ तुम्हारी मुंबई की सोलो ट्रिप पूरी।
0: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नोएनिका के ऊपर घर वाले लगाएंगे इल्जाम, और यहाँ साथ देने पहुँचेगा ईशान, जो बताएगा सच। देख लीजिए प्रोमो।
1: नोएनिका मामा, हो गई ईशान के साथ तुम्हारी मुंबई की सोलो ट्रिप पूरी। घर की याद नहीं आई?
2: मैं किसी ट्रिप के लिए मुंबई नहीं गई थी।
1: किस लिए गई थी? अब तो सच बोल दे।
3: मैं सच बताता हूँ नोएनिका के बारे में, शायद आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे।
4: कौन लोग हैं ये? क्या हो रहा है?
0: कलर्स के सीरियल बरेली के बच्चन में कृष्णा की शादी हो गई है सरगम से, और वो उसे अपने घर ले आए हैं, जहां पर सरगम का स्वागत किया जा रहा है। देख लीजिए प्रोमो।
4: कौन लोग हैं ये? क्या हो रहा है?
5: सबको हमारी शादी के बारे में पता चल गया है।
4: पर ये शादी तो नकली है ना?
6: परिवार के बारे में सच बताया या झूठ बोल के लड़की लेके आया?
7: हमारे घर में बहू आई है।
8: ससुर,
5: अगर मैडम जी को सच्चाई पता चल गई तो ये हमें छोड़ के चली जाएंगी।
0: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। उनकी कुछ मेहंदी की तस्वीरें सामने आई हैं, साथ ही आए हैं वीडियोस भी, डाल लीजिए उन पर एक नजर।

0: तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़, सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटियां। एंजॉय योर संडे, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
10: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग फर्स्ट वेडिंग फोटो। 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने आमिर। दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी भारी कमी, लोगों ने मानसून की बारिश का भरपूर आनंद लिया। मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकलें, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में आज तीसरे दिन तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, प्राकृतिक नजारों का भी ले रहे हैं आनंद। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
10: मानसूनी बादलों ने दिल्ली NCR में डाला डेरा, तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली के कई इलाकों में बादल हुए मेहरबान, मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 10 जुलाई तक बारिश का दौर रहेगा जारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना, तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस नीचे। नोएडा के कई इलाकों में जबरदस्त बदल गया मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। नोएडा में बारिश के बीच विजिबिलिटी भी हुई कम, सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं वाहन। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से बदल गया मौसम, द्वारका एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में भर गया पानी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, पानी निकलने का तक रुकी गई गाड़ियां। गुजरात के गीर सोमनाथ में जबरदस्त बारिश, जगह जगह जल जमाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में भर गया पानी। पर्यटन नगरी लोनावला में मानसून पूरे शबाब पर, पिछले 24 घंटे में 10 इंच तक बारिश हुई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बरस रहे बदरा, सड़कों पर जल जमाव। बारिश के बीच बदल गया मरीन ड्राइव का नजारा, लोग समुद्र के किनारे मस्ती करते हुए नजर आए। मुंबई में भारी मानसून के चलते मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अंधेरी स्टेशन के पास तेज हवा। मुंबई के माहिम इलाके में जबरदस्त बारिश, जगह जगह सड़कों पर जल जमाव। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश से भर गया पानी, यातायात पूरी तरीके से बाधित। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, पूरे भक्तिभाव उत्साह के साथ भक्त कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। बेलगाम के नुनवान बेस कैंप में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए तीसरा जत्था, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का चौथा जत्था, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। अमरनाथ यात्रा के चौथे दिन में 6721 तीर्थयात्री हुए शामिल, बालटाल और पहलगाम रूट के लिए बांटी गई यात्रियों की संख्या। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के बीच डबरू बजाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, पुंछ में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले गीता प्रवचन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का काउंटडाउन हुआ शुरू, पुरी से लेकर लखनऊ तक भव्य आयोजन की तैयारियां। मथुरा में भगवान मुरुगन के मंदिर भव्य कुंभाभिषेकम का आयोजन किया गया, समारोह में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे भक्त। मदुरई के बाहरी इलाके के घने जंगलों के बीच भगवान मुरुगन का मंदिर मौजूद। मुरुगन मंदिर की दिव्यता को बनाए रखने के लिए कुंभाभिषेकम की परंपरा है, गर्भगृह के कलशों का पवित्र नदियों के जल से किया जाता है अभिषेक। समारोह के लिए मंदिर की भव्य सजावट की गई, भक्तों पर पवित्र जल छिड़क कर आशीर्वाद। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ड्रोन से रखी जा रही पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम का किया दौरा, अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा को लेकर एलजी सिन्हा ने बैठक की, यात्रा की व्यवस्थाओं को परखा। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों से भी एलजी अमरनाथ सिन्हा ने मुलाकात की, उनसे यात्रा से जुड़ी जानकारियों की समीक्षा की। तीसरी शादी के बंधन में बंध गए बॉलीवुड स्टार आमिर खान, पर्यटन पार्टनर गौरी स्प्रेट के साथ शादी की। आमिर खान ने अपने बांद्रा वाले घर पर निजी समारोह में शादी की, रजिस्टर्ड मैरिज में केवल परिवार के लोग शामिल। दिल्ली में 80वें फिट इंडिया इवेंट का आयोजन किया गया, जवाहरलाल स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। फिट इंडिया इवेंट साइकिल रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने दौड़ लगाई। रायपुर में चिंतन योग शिविर का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। खंडवा जिले के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानीश कुमार, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। एलनीनो जागरूकता के लिए रेत पर बनाई गई आकर्षक मूर्ति, लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए संदेश दिया गया। फिल्म अल्फा के सपोर्ट में उतरे करण जौहर और आलिया भट्ट के फुरन की तारीफ की। ऋतिक रोशन, परशुराम पेटला की फिल्म की खबरें निकली अफवाह, होमले फिल्म्स ने साफ की स्थिति। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई सलमान खान, फिल्म्स ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बताया बेबुनियाद। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलेना जेटली की वापसी हुई, सिस्टर निवेदिता की बायोपिक से करेंगी कमबैक। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल तय, विकेट सनी के नाम से होगी रिलीज।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं, न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं, इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं, दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है।

बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र। ये गंधपुरा पत्र में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों,
हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।

0: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: एवरी सिटी हैज हिडन स्टोरीज, द बिल्डिंग यू पास एवरी डे, the park where history was made, the person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life, and now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेडसन फर्स्ट वेडिंग फोटो, 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने आमिर। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भारी कमी, लोगों ने मानसून की बारिश का भरपूर आनंद लिया। मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकलें, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में आज तीसरे दिन तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, प्राकृतिक नजारों का भी आनंद ले रहे हैं श्रद्धालु। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। शिव में भक्ति और शक्ति में शिव समाये हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए शिव शक्ति की संयुक्त कृपा के बिना संसार गतिमान ही नहीं हो सकता। भगवान शिव की उपासना बिना शक्ति आराधना की अधूरी मानी जाती है। शिव शक्ति एक है और इसके सूचक हैं भगवान अर्धनारीश्वर। आज हम आपको भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा बताएंगे और जानेंगे शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए करते हैं देवादिदेव महादेव के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव सृजन भी करते हैं और संहार भी। सनातनी आस्था कहती है कि ब्रह्मांड का शक्ति पुंज है देवादिदेव महादेव। शिव निराकार भी है और साकार भी। प्रकृति और सृजन को समर्पित शिव का एक अद्भुत स्वरूप है अर्धनारीश्वर। माना जाता है कि शिव के इसी स्वरूप से सृष्टि का संतुलन जुड़ा है, ब्रह्मांड की गति जुड़ी है, क्योंकि शिव के इसी स्वरूप में समाई है प्रकृति रूपी शक्ति, जिसके आधे आकार ने प्रकृति को आधार दिया। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव के इसी स्वरूप से जीवन संभव हुआ है, क्योंकि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आप कह सकते हैं कि शिव में समाई है शक्ति, शक्ति में समाई है शिव। अद्भुत है शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की महिमा बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्वरूप समाज में स्त्री और पुरुष की पूर्ण समानता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार है।
1: ये भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप स्पष्ट हमें इंगित करता है कि भगवान की प्रकृति और भगवान के पुरुषत्व अर्थात भगवान की शक्ति को दो आयाम में नहीं कह सकते, एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं। तो हमारे यहाँ जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का अनुभव किया जाता है, ये दोनों भगवान की प्रदत्त शक्ति के द्वारा, पुरुष द्वारा संपादित है, यही भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें बताता है।
0: माना जाता है कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। सुख और समृद्धि के साथ ही आपके जीवन में एक साथ शिव और शक्ति की कृपा बरसती है। लेकिन शिव के स्वरूप का जन्म कैसे हुआ, तो हम आपको बता दें कि भगवान के इस परम कल्याणकारी स्वरूप से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसमें शिव के इस रूप में अवतरित होने का रहस्य छिपा है। आइए आपको वो कथा सुनाते हैं। एक ऋषि थे, नाम था भृंगी। वो महादेव के परम भक्त थे। ऋषि भृंगी भगवान शिव की आराधना करते थे, लेकिन माता पार्वती को नहीं पूजते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती को हमेशा ही शिव से अलग समझते थे। ऋषि शिव और केवल शिव को ही पूजते थे, उन्हें शिव के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। भृंगी ऋषि एक बार कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज जताया और कहा कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भृंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए बढ़े। ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सट कर बैठ गई। इस पर भृंगी ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा करनी चाही। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव पार्वती को बीच से कुतरने लगे। ऋषि की इस हरकत पर आदिशक्ति को क्रोध आ गया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है, वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा।
1: केवल शिव की ही उपासना करने वाले भृंगी ऋषि माता से उनको पृथक करते थे और भक्ति केवल शिव की करते थे। तो भगवान की परिक्रमा करते हुए माता को छोड़ते हुए शिव और माता के बीच से सर्प रूप में परिक्रमा करने का प्रयास किया, जिससे भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। और भगवान की इस स्थिति को देखते हुए माता ने उनको श्राप दिया कि आप माता को अपने पिता से अलग मान रहे हो, इस कारण से आपके शरीर में जो मात्र शक्ति है वो समाप्त हो जाए। तो माता के श्राप से जब ये अलग हो गए, भृंगी अनंत जो है पीड़ा में धरती पर पड़ गए। माता से क्षमा याचना की, तब माता ने उनकी पीड़ा दूर करके और तब उनकी गलती क्या है समझाते हुए भगवान अर्धनारीश्वर रूप से प्रकट हुए थे, जिसमें वामांगी माता सती थी और दाहिने हिस्से में त्रिशूलधारी भगवान शिव थे। यही भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा कहलाती है।
0: विज्ञान भी कहता है कि इंसान के शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती हैं, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। आज मानव के अस्तित्व की इस कथा का आरंभ हुआ था एक पौराणिक कथा से, अर्धनारीश्वर की कहानी। श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गया। भृंगी ऋषि निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। ऋषि भृंगी ने माँ पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। माँ पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, लेकिन भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। माना जाता है कि सृष्टि के निर्बाध संचालन के लिए शिव ने ये लीला रची। कहने को तो ये कथाएं हैं, लेकिन वास्तव में यही प्रकृति के जीवंत होने का आरंभ था। कहते हैं कि भक्त भृंगी के कारण ऐसे हुआ था महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का उदय। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी एक और रोचक कथा है, वो हम आपको आगे सुनाएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कथा कहती है कि जब परमपिता ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें जरूरत महसूस हुई कि सृष्टि की उत्पत्ति के बाद निरंतर इसका विकास कैसे हो। ब्रह्मा जी की इसी उलझन को सुलझाने के लिए परमात्मा शिव ने एक रूप धारण किया, जिसे अर्धनारीश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से जुड़ी है एक और रोचक कथा। आइए आपको वो परम कल्याणकारी कथा सुनाते हैं।

0: शिव की है शक्ति और शक्ति के है शिव। परम कल्याणकारी है अर्धनारीश्वर शिव। शिव की शक्ति का क्या कहना, शिव से ही संसार गतिमान है। हर तरफ शिव की महिमा का ही गुणगान है। माना जाता है कि अलग अलग रूपों में भगवान शिव अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। प्रभु के अलग अलग रूपों की अपनी परिभाषा और अपना महत्व है। शिव के कल्याणकारी उन्हीं रूपों में एक है अर्धनारीश्वर शिव। माना जाता है कि शिव के स्वरूप का विधिवत पूजन करने से न सिर्फ विवाह की अड़चन दूर होती है बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आती है।
1: किसी भी व्यक्ति को अगर प्रकृति से प्रेम है और प्रकृति प्राप्त न हो रही हो, अर्थात उसका विवाह संबंधी आदों में तकलीफ चल रही हो, विवाह न हो रहा हो, तब उसको अर्धनारीश्वर स्वरूप की कामना और उनका पूजन करने से विवाह संबंध आदि तय होते हैं और उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है, शक्ति उसके जीवन में अवश्य आती है।
0: शास्त्रों में शक्ति को शिव का अविभाज्य अंग माना जाता है। शिव नर के घोतक हैं तो शक्ति नारी की। शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करने में असमर्थ रहे तब शिव जी ने इसी रूप में प्रकट होकर उन्हें सृजन की प्रेरणा दी।
1: इस धरती पे जब ब्रह्मा जी ने नारायण के दर्शन करके कहा कि आप कौन हैं, उनकी कमल नाल से नीचे उतरते हुए, तब उन्होंने कहा कि मैं इस धरती का रचयिता हूँ। उसने कहा तो मैं हूँ रचयिता? तो कहने लगे आप तो मेरे नाभि कमल से रचना हुई है। तब उन्होंने कहा आप एक मूल प्रकृति को भूल रहे हो, उनका नाम है शिव, सदाशिव। तब उनके योग बल से शिव के दर्शन करके उनको एहसास हुआ कि सबसे प्रथम शक्ति ही भगवान शिव और नारायण है। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आप ये समझिए कि शक्ति तो भगवान की असीमित है, वो तो मूलधार है किसी भी प्रकृति किसी भी सृजन के।
0: भगवान शिव के इस अद्भुत और परम कल्याणकारी स्वरूप से जुड़ी एक रोचक कथा भी मिलती है जिसमें भगवान के अर्धनारीश्वर अवतार से जुड़ा रहस्य है। आइए आपको वो पौराणिक कथा सुनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में जीवों की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, परंतु तब तक शिव से शक्ति का उत्पन्न नहीं हुआ था। कथा कहती है कि तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की तपस्या से शिव संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके पास गए और अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपने अंश से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की रचना की जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया।
1: भगवान शिव ही इस सृष्टि के रक्षा करने वाले पालन करने वाले हैं, इसलिए शिव के साथ ही प्रकृति है, वही तो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और ब्रह्मा जी को इस स्वरूप का दर्शन उनको यही प्रेरणा देने के लिए दिया था है, क्योंकि नहीं तो ब्रह्मा जी जो मानस अपने है ना उत्पन्न करते जाते थे जीव, वो एक समय पश्चात समाप्त हो जाते थे। सृष्टि को पुनः पुनः ब्रह्मा जी को रचना पड़ता था, इसलिए भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि जैसा शिव और शक्ति है यानी कि अर्धनारीश्वर स्वरूप है, तो स्त्री और पुरुष संज्ञात्मक प्रजनात्मक सृष्टि का रचन करें, तब ये सृष्टि लगातार बढ़ती रहेगी।
0: शिव को समझना कतई आसान नहीं। बड़े बड़े योगी ज्ञानी शिव के रहस्य से आज तक अनजान है, क्योंकि परमात्मा शिव आदि और अंत से परे है। शास्त्रों में त्रिलोकी नाथ की महिमा की कोई था नहीं है, लेकिन शक्ति के बिना शिव साधना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शव समान हो जाते हैं।
1: शिव का नाम ही है कल्याण। शिव का अर्थ है जो शिव को भजेगा उसका कल्याण ही होगा। इस धरती के ऊपर ये जो भगवान का स्वरूप है केवल कल्याण करने के लिए आया है। अगर शत्रुओं का संहार भी किया तो धरती का संहार भी किया, प्रकृति का संहार भी किया, तो मात्र कल्याण की भावना से ही। और शिव और शव में वही इकार प्रकृति अर्थात माता सती की शक्ति का ही अंतर है। जब वो माता सती अगर कभी अलग हो गई तो शिव शव बन जाते हैं, ऐसा बताया गया।
0: शिव की शक्ति की महिमा। शिव कारण है और शक्ति कारक। शिव संकल्प करते हैं और शक्ति संकल्प सिद्धि। शक्ति मस्तिष्क है और शिव हृदय। शिव ब्रह्मा है और शक्ति सरस्वती। शिव विष्णु है और शक्ति लक्ष्मी। शिव महादेव है और शक्ति पार्वती। शिव रुद्र है और शक्ति महाकाली। शिव सागर के जल समान है और शक्ति सागर की लहर। यही है शिव और उनकी शक्ति का संबंध। तो प्रार्थना करें शिव शक्ति के इस अर्ध नारीश्वर स्वरूप की। भगवान अर्ध नारीश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। आगे हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ और खास बातें बताएंगे। भगवान शिव अर्ध नारेश्वर क्यों है और इसका अर्थ क्या है, शिव नाम का मतलब क्या है और क्या है शिवलिंग की महिमा, आइए इन सभी सवालों का जवाब भी अब हम आपको बता देते हैं।

0: जिनकी कृपा से ये संसार गतिमान है, जिनकी उपासना से हर मुश्किल आसान है, वही है देवों के देव महादेव। भगवान शिव को अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से भक्त याद करते हैं। इसी का एक रूप है अर्धनारीश्वर शिव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव ही अर्धनारीश्वर क्यों बने, बाकी देव क्यों नहीं? शिव अर्धनारीश्वर क्यों बने? इसका अर्थ ये नहीं कि शिव आधे पुरुष ही हैं या उनमें संपूर्णता नहीं। ये शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। ये सृष्टि के आधार और रचियता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से ये संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव का दाया भाग पुरुष तत्व यानी चेतना का प्रतीक है, जबकि शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती उनके बाएं भाग में समाहित है। माना जाता है कि ये स्त्री तत्व प्रकृति की ऊर्जा का प्रतीक है। ये रूप बताता है कि ऊर्जा के बिना चेतना निष्क्रिय है और चेतना के बिना ऊर्जा निरर्थक है। यानी शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप एक दूसरे के पूरक है।
1: तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में यही तो भगवान संदेश देते हैं कि शक्ति अर्थात प्रकृति और पुरुष यानी के भगवान शिव दोनों अलग ही नहीं है। तो भगवान की जैसे अलग अलग अवतार हुए, अलग अलग रूपों में भगवान अवतरित हुए हैं, उसी प्रकार से उनकी शक्तियां भी उनके समांगी ही अवतरित हुई हैं। तो पांच शक्तियों का कहना भगवान का गलत होगा, परंतु भगवान की शक्ति तो असीमित है।
0: भगवान शिव अंतर्यामी है, वो करुणा के सागर है। शिव ही परम सत्य है। शिव से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। शिव की शक्ति उनके नाम में समाई है, आप खुद ही देख लीजिए। शिव नाम से है जगत में उजाला। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ देने वाला यानी दाता। भगवान शिव की उपासना सबसे ज्यादा शिवलिंग स्वरूप में ही की जाती है, इसकी भी एक वजह है, आइए आपको बताते हैं।
1: शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप है। ये प्रकृति और पुरुष का सम्मिलित स्वरूप कहलाता है, जैसे अर्धनारीश्वर। तो ये कई लोग मन में भावना रख लेते हैं कि लिंग स्वरूप है। लिंग नहीं, वो प्रकृति और शक्ति का एकात्मकता दिखाता है। भगवान शिव का कल्याण स्वरूप और धरती का पालन करने वाला स्वरूप है।
0: शिवलिंग की महिमा। शिव की दो काया है, एक वो जो स्थूल रूप से व्यक्त किए जाए, दूसरी वो जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा शिवलिंग स्वरूप में ही की जाती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसी अर्थ में ये शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही होती है मनवांछित फलों की प्राप्ति। तो आप भी शिव का ध्यान पूरे मनोयोग से कीजिए, जिससे आपके सभी पापों का समूल नाश करके भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएं।
2: और चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
3: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
4: What about me, Jack? What about me?
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM, commercial-free.
5: Well played, Jack. Well played.
3: Jack FM, playing what we want.
6: रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपियां के रहने वाले राउफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां पर सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
10: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है, तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है, और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
11: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है, तो मैं चाहता हूं कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है, और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि ये आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए, ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है, ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे, और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, बट जो हमारी प्रॉब्लम है हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
10: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
12: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज जमीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
10: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालयन एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए वो आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
13: टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और इस नन्ही बच्ची ने इसे सच साबित कर दिखाया। सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। रस्सी पर संतुलन बनाते हुए वो मुश्किल करतब दिखाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। परिवार का सहारा बनने के लिए वो मेहनत कर रही है। ये वीडियो सिर्फ उसके हुनर की नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हौसले की कहानी भी बयां करता है। कम उम्र में बड़ा कारनामा करने वाले सोलापुर के 12 साल के छात्र अब्दुल्ला इमरान मंगलगिरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। उसने महज 9000 रुपए की लागत से ऐसी सोलर साइकिल तैयार की है जो सौर ऊर्जा और बैटरी दोनों से चलती है। साइकिल में डिजिटल स्पीडोमीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और वॉइस कंट्रोल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। छात्र का यह अनोखा आविष्कार लोगों को खूब प्रेरित कर रहा है। दोस्ती और भरोसे की मिसाल बन चुके ऑफिसर ब्रायन सैंटोस और उनके K9 पार्टनर कायरा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साल 2018 से दोनों साथ मिलकर ड्यूटी निभा रहे हैं। वीडियो में ऑफिसर जो भी मूवमेंट करते हैं कायरा भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका साथ देती नजर आती है। दोनों के बीच की गजब की समझ और तालमेल देखकर लोग उनके इस अनोखी जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसका शानदार उदाहरण एक जंगली बकरी ने पेश किया है जिसने तेज बहाव वाली उफनती रावी नदी को बेखौफ होकर पार कर लिया। नदी की रफ्तार और खतरनाक हालात के बावजूद बकरी का संतुलन देखने लायक था। ये रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी बहादुरी और आत्मविश्वास की जमकर सराहना कर रहे हैं। छोटी सी उम्र और बड़ा टैलेंट, इस बच्ची का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। सुरमेदानी गाने पर उसने शानदार एक्सप्रेशन और बेहतरीन डांस मूव से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। हर स्टेप में आत्मविश्वास और चेहरे के भाव इतने शानदार हैं कि उसकी ट्रेनर भी हैरान रह गई। लोग बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ Good News Today पर।
15: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. day or night. Today's Hits keeps the energy going. Start listening now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn.
2: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
9: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग फर्स्ट वेडिंग फोटो, 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने आमिर। दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, लोगों ने मानसून की बारिश का भरपूर आनंद लिया। मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकले लोग, अंधेरी सब्वे पूरी तरीके से बंद, कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में आज तीसरे दिन तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, प्राकृतिक नजारों का भी लिया आनंद। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन। देखिए इस समय शादी का सीजन चल रहा है, सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता शादी, ये सपनों यादों और बेशुमार भावनाओं से सबसे खूबसूरत उत्सव होता है। हर दुल्हन का सपना होता है कि अपने सबसे खास दिन पर वो सबसे खूबसूरत दिखे और सहज भी महसूस करे। आज की दुल्हन ऐसा परिधान चुन रही है जिसमें शान भी हो, सुकून भी हो, परंपरा भी और मॉडर्न स्टाइल भी। यही नहीं, नई सोच भारतीय ब्राइडल फैशन को नई पहचान दे रही है, भारी भरकम परिधान की जगह अब फोकस ऐसे डिजाइनर लिबास पर किया जा रहा है जो शादी के हर फंक्शन में अलग अंदाज दे और शादी के बाद भी वार्डरोब का हिस्सा बन जाए।
16: शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है एक बड़ा सवाल, 2026 वेडिंग ट्रेंड्स में एग्जैक्टली क्या है, हैवी लहंगास या एफर्टलेस ग्लैम, ट्रेडिशनल रेड्स या कुछ नए कलर्स। देखिए 2026 का ब्राइडल फैशन पुरानी परंपराओं के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट चाहता है, तो चलिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि इस सीजन में एग्जैक्टली क्या ट्रेंडिंग है।

0: भारतीय शादियां बदल रही हैं और उनके साथ बदल रहा है ब्राइडल फैशन भी। कभी जहां कढ़ाई वाला भारी लहंगा दुल्हन की पहचान माना जाता था, वहीं आज की ब्राइड हल्के, खूबसूरत और आसानी से पहने जा सकने वाले आउटफिट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। आज ब्राइडल कॉट्योर सिर्फ शादी के लिए तक सीमित नहीं रह गया है। अब दुल्हनें ऐसे कपड़ों में निवेश कर रही हैं जिन्हें वे शादी के बाद भी खास मौकों पर पहन सके। फैशन अब सिर्फ एक दिन की बात नहीं बल्कि लंबे समय तक साथ निभाने वाला स्टाइल बन चुका है। भारी भरकम लहंगे जो शादी के बाद हमेशा के लिए अलमारी में टंग जाते थे, अब धीरे धीरे बीती बात बन रहे हैं। उनकी जगह ले रहे हैं ऐसे डिजाइनर परिधान जो फैशन के साथ उपयोगिता को भी उतनी ही अहमियत देते हैं।
1: एक टाइम था जब ब्राइड्स बंदी होती थी, उनका सिर्फ ये था कि सेरेमनीज करें, वापस जाएं, सेरेमनी आफ्टर सेरेमनी। बट नाउ द ब्राइड्स, दे वांट टू एंजॉय देयर ओन वेडिंग। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डे उनके लिए भी। ये नहीं कि पूरी दुनिया सारे जो आए हैं गेस्ट वो मजा कर रहे हैं और वो थक हार के सोने जा रही है। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। एंड नॉट टुडे, इट इज़ बीन इन अ लास्ट वन डेकेड इट हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। आज की ब्राइड ना बड़ी कॉन्फिडेंट है एंड शी लव्स हर सेल्फ। शी वॉन्ट्स टू लुक प्रिटी, शी वॉन्ट्स टू लुक ग्लैमरस। वो खुश होना चाहती है, मजे करना चाहती है। सो हेंस दे ऑलवेज कम टू मी एंड से कि वी डोंट वॉन्ट टू वेयर हील्स। क्या हम इनको कंफर्टेबल शूज के साथ पहन सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, व्हाई कैन यू नॉट वेयर समथिंग लाइक दिस एंड हैव अ ग्रेट टाइम।
0: आज ब्राइडल के लिए ऐसे लिबास तैयार किए जाते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ पहनने में भी आसान हो और कई मौकों पर दोबारा भी पहने जा सके। दिल्ली का फैशन लेबल नॉट सो सीरियस इसी सोच को अपने डिजाइन्स में उतारता है।
1: फ्रेंड ने मुझे एनकरेज किया था टू कॉल इट नॉट सो सीरियस क्योंकि दे सेड आई एम वेरी नॉट सो सीरियस व्हेन आई एम हैविंग फन और मौज मस्ती जो भी, बट आई एम वेरी वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू माय वर्क। इसीलिए ये नॉट सो सीरियस नाम आ गया।
2: वैसे नॉट सो सीरियस से मुझे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वेडिंग इतना सीरियस बिजनेस है कि वेडिंग के टाइम पे, वेडिंग की शॉपिंग करते हुए आप इतना हर चीज, इतना प्रेशर होता है, यू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो मैंने स्टनिंग आउटफिट पहना है ये इतना लाइट वेट है, इट इज सो अमेजिंग, ये एग्जैक्टली है क्या पल्लवी?
1: सो दिस गाउन, सी आज की ब्राइड what they want to do, they want to have fun, they want to be comfortable. Destination weddings hoti hain, they don't like to be tied down. Freedom chahiye aaj ki bride ko. So whatever you see not so serious mein, chahe wo lehenga ho, chahe evening gown ho, chahe short dresses ho, you will find them bahut halka in weight but they give a very heavy glamorous look. So this is also not so serious ki USP. Lightweight, comfortable, jo ki you know makes you feel happy is the concept that we go by. So yes,
2: par yahi baat hai kyunki ye fabric itna light hai. Viewers, main aapko batana chahti hu, mujhe itna comfortable feel ho raha hai. Feathers hum dekh sakte hain, feathers seems to be coming back. Pallavi, aap feathers hamesha se karte aaiye, maine aapke bahut collection dekhe hain.
0: यहाँ मॉडर्न फैमिलिटी को भारतीय शिल्प कौशल के साथ जोड़ा जाता है। सॉफ्ट पेस्टल कलर्स, महीन हैंड एम्ब्रॉयडरी और बेहद हल्के परिधान, यही इसकी खास पहचान है। लेकिन इन खूबसूरत डिजाइन्स के पीछे सिर्फ फैशन नहीं, महीनों की मेहनत भी छिपी होती है। हर धागा, हर टांका, हर मोटिफ कारीगरों की बेमिसाल कला का परिणाम होता है। एक परिधान तैयार होने में हजारों टांके लगते हैं, कई हफ्तों की बारीक कढ़ाई होती है, तब जाकर तैयार होता है ऐसा लिबास जो पहनने वाले की खूबसूरती के साथ भारतीय हस्तकला की विरासत भी बयां करता है।
2: ये स्टनिंग कलेक्शन को देख सकती हूँ। अगर आप आज की मॉडर्न ब्राइड, जो 2026 की मॉडर्न ब्राइड है, जिसे ये हैवी लहंगाज नहीं पहनने हैं, हमें कंफर्टेबल रहना है, हम हमेशा हमारी शादी अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। आपके इस वेडिंग सीजन के क्या स्पेशल पिक्स होंगे?
3: सो नॉट सो सीरियस में आफ्टर पार्टी ड्रेसेस आपको लेना ही चाहिए, आपकी वेडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती हमारे आफ्टर पार्टी आउटफिट के बगैर। एंड इफ़ यू सी, जब आप देखोगे हमारे लहंगेज भी इस तरीके से बनाए हुए कि आपका एक टाइम यूज़ नहीं होगा, आप उन लहंगों को बाद में भी टोन डाउन करके पहन सकते हो। सो आज की ब्राइड ये नहीं चाहती कि हम ऐसी चीज़ लें जो कि एक ही बार पहने, वी वॉन्ट टू वेयर इट अगेन एंड अगेन। जो गाउन आपने पहना है इसके ऊपर अगर आपने अगर वाइट शर्ट, नॉटेड वाइट शर्ट डाल लिया होता और कैट्स पहन लिया होता तो ये आपका एक सेमी कैजुअल फॉर्मल लुक भी बन सकता है। सो इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ स्कर्ट, ऊपर नॉटेड शर्ट। सो यू कैन एक्चुअली स्टाइल एवरीथिंग सो एफर्टलेसली विद NSS। इफ यू कम हियर वी विल टेल यू हाउ टू डू दैट। जैसे कि मैंने शर्ट पहना है, आई एम वेयरिंग वन ऑफ माई केप्स, ये केप मैं साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ, आई कैन वेयर इट ओवर माई लहंगा, आई कैन वेयर इट ओवर माई सलवार सूट, आई कैन वेयर इट विद फॉर्मल पैंट। सो हर चीज आप रीयूज कर सकते हो, रीस्टाइल कर सकते हो।
0: रंगों की पसंद ही अब बदल रही है, चटक लाल और गहरे रंगों के साथ साथ आज की दुल्हन आइवरी, शैम्पेन गोल्ड, म्यूटेड ब्लश, पाउडर ब्लू और सॉफ्ट शिमर जैसे शेड्स को खूब पसंद कर रही है। इन रंगों में सादगी भी है, शालीनता भी, और एक ऐसी एलिगेंस जो बिना ज्यादा चमक दमक के अपनी अलग पहचान बना लेती है।
2: आपका 2026 ब्राइड के लिए क्या कलर पैलेट होगा?
3: पेस्टल्स रियली ट्रेंड में है, वाइट्स, ब्लश कलर्स बहुत पसंद कर रहे हैं, शिमर बहुत पसंद कर रहे हैं, गोल्ड बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये कलर्स आई थिंक आप 2026 में काफ़ी देखोगे। और इवनिंग फंक्शंस के लिए नेवी ब्लूज, बर्गंडी, जैसे कि ये देखिए आप।
2: वाह,
3: सो यस, इसमें भी सारा हाथ का क्या हुआ है, दे कैच लाइट रियली वेल, आपकी फोटोग्राफ्स अच्छी आती है। 2026 की ब्राइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी शूट्स, उनके फोटोज अच्छे आए,
2: फोटोज अच्छे आने चाहिए, दैट्स ट्रू।
3: दीज आर द काइंड ऑफ कलर्स जिससे फोटोग्राफ भी अच्छी आती है आपकी।
0: भारतीय शादी सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं होती, सगाई, मेहंदी, संगीत, हल्दी, कॉकटेल, शादी और रिसेप्शन, हर फंक्शन का अपना अलग रंग और अपना अलग मूड होता है, इसीलिए अब हर अवसर के लिए अलग स्टाइल तैयार किए जा रहे हैं। सगाई के लिए एलिगेंट गाउन, कॉकटेल के लिए स्टेटमेंट ड्रेप्स, संगीत के लिए डांस एंड फ्रेंडली लहंगे और रिसेप्शन के लिए रिफाइंड ग्लैमरस लुक।
2: क्या है ये?
3: They're very comfortable, like you said, lightweight cocktail outfits है, very easy to wear. And they are, so for example, ये वाला outfit आपकी जो है,
2: wow.
3: Now,

0: है, सिलुएट्स जिसको आप बहुत ही मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, उस शादी के लहंगे को जिसे आप अपने कबर्ड में बहुत बहुत सालों तक बंद करके रखा करते थे, अब वो दिन खत्म हो चुके हैं क्योंकि उस लहंगे को आप कम से कम 36 अलग डिजाइन में पहन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं क्षितिजा गोसावी GNT के लिए।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae
5: exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop
7: exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
15: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है, और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
16: क्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था, उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
17: प्राय घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं, तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक है मूल पाठ भी उसे कर सकता है, और इसमें प्रसंगानुकूल 4 रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
16: भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा, ताकि संस्कृत या हिंदी ना जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है, जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
17: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
16: तीन भाषाओं में एक साथ श्री

0: श्रीमद् भगवद गीता की इस विशेष संस्करण का प्रकाशन चार रंगों में आर्ट पेपर पर किया जाएगा, जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
1: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसे इंग्लिश का ज्ञान है, तो उस रोमन भाषा के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
0: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है, लेकिन अब एक ही साथ तीन भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब आपको कश्मीर से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो किसी मिसाल से कम नहीं है। मिलिए कश्मीर के शोपियां के रहने वाले राउफ से, जो पिछले 5 सालों से कश्मीर के उन तमाम पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां पर सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
3: बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी मखमली घास से सजे मैदान और दिल को छू लेने वाले नजारे, कुछ ऐसा है हमारा कश्मीर। वो कश्मीर जहां कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती का खजाना बिखेर रखा है। तभी तो हर साल लाखों सैलानी कश्मीर की इन बेहद हसीन वादियों को देखने के लिए उमड़ते हैं। लेकिन कभी कभी सैलानियों की ये रौनक इस हसीन और खूबसूरत घाटी के लिए चुनौती बन जाती है। जैसे जैसे पर्यटकों की तादाद बढ़ती है, कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर गंदगी और कचरा भी बढ़ने लगता है। और इसी चुनौतियों से निपटने के लिए कश्मीर के ही रहने वाले रऊफ ने एक बेहतरीन पहल की है।
4: लोग आते हैं, लोगों को आना चाहिए, ये आपके लिए ही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों का एसेट है, ठीक है, ये हर किसी बंदे का एसेट है और आप इसको उसी तरह से ले लो ताकि ये आपको अपना है, उसी हिसाब से इसको मेंटेन रखिए ताकि जो आपकी अपना जो सर्टिफिकेशन है, आपको ये हर तरह का पीस दे रहा है, ये नेचर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आप नेचर को हार्म कर रहे हो यहाँ पे। और जो है इसको हमें इसकी ज़रूरत है, नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 100 साल 50 साल भी ऐसे ही रहेगा तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, ग्रो बाई डिफ़ॉल्ट करेगा, बट जो हमारी प्रॉब्लम है हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम इसी को तबाह करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी अपकमिंग जनरेशन इसका मज़ा उठाएगी और इसका ये नज़ारा देख पाएगी।
3: कश्मीर की जन्नत को बेदाग रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां का एक युवा एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। मिलिए केलर इलाके के रहने वाले रऊफ से, जो पिछले 5 सालों से उन सभी पर्यटक स्थलों पर लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं जहां सैलानियों की वजह से कचरा जमा हो जाता है।
5: केलर के रहने वाले रऊफ ने एक प्रेरणा जरूर दी है उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए जो पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें जब बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से हमारी जो सरसब्ज ज़मीन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर इंसान में अच्छे इखलाक हो, अच्छा सोच हो, तो बंजर को आबाद कर सकता है, और अगर इंसान में गलत सोच हो, वो सरसब्ज ज़मीन को बंजर करने में कोई कसर बाकी पीछे नहीं रह सकता है।
3: रऊफ की इस पहल का असर भी हुआ। जो काफिला रऊफ ने शुरू किया उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। युवाओं के साथ ही आज इस अभियान में रिटायर्ड पेशेवर और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी अनदेखी खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालयन एलिगेंस नाम की एक किताब भी लिखी है। इस किताब में दक्षिण कश्मीर के उन खूबसूरत लेकिन अनदेखे पर्यटक स्थलों का जिक्र है जो अब तक आधिकारिक टूरिज्म मैप से गायब है। शोपियां की इन खूबसूरत और मनमोहक वादियों के बीच रऊफ की ये पहल साबित करती है कि जब युवा अपने समाज और पर्यावरण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो तस्वीर यकीनन बदलती है। रऊफ की ये कोशिश न सिर्फ कश्मीर को साफ रख रही है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। शोपियां से इरशाद मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भगवान भोले का प्रिय सावन महीना आने वाला है। सावन महीने के हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की न केवल पूजा आराधना करते हैं बल्कि दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। सावन महीने से पहले बाबा भोले के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा झारखंड के देवघर का भी है, जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
6: बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िये अर्घा के माध्यम से यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वही हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
7: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पे बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके, डेटा शेयरिंग करके, और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है, या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से करें।
6: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
8: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
6: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
10: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन। वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका। मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान। आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
12: Schwarber to right field, and it will leave.
11: From the first pitch of the season to the stretch run,
12: that's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेड संग फर्स्ट वेडिंग फोटो। 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, लोगों ने मानसून की बारिश का भरपूर आनंद लिया। मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन ने लोगों से अपील की बेवजह घरों से ना निकलें। अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में आज तीसरे दिन तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, प्राकृतिक नजारों का लिया आनंद। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने की जबरदस्त करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। इस खास शो में आपको दिखाने जा रहे हैं हम तस्वीरें अमेरिका में आजादी के 250 साल के जश्न की। अमेरिका में आजादी की 250वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लड़ाकू विमानों ने शानदार एयर शो और फ्लाईपास पेश किया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के नए एयरफोर्स वन विमान ने भी हिस्सा लिया। वहीं पर देखिए, राजधानी वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सहित तमाम जगहों पर अब तक की सबसे बड़ी आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैरा जंपर्स ने भी कमाल के करतब पेश किए। वहीं पर समुद्र में जंगी जहाजों ने भी अपना दमखम दिखाया। देश भर में एयर शो, परेड, संगीत कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताओं और आतिशबाजी के जरिए लोगों ने 250वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया। अमेरिका में आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इस अवसर पर मनाए जा रहे समारोह को अमेरिका 250 नाम दिया गया है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क में लड़ाकू विमानों ने समुद्र के ऊपर जबरदस्त फ्लाईपास किया। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में नेवी परेड निकाली गई और देखिए, इस दौरान यूएस किर्सार्स और एसएमएन क्वीन मैरी समेत कई जहाज भी इसमें शामिल किए गए। देखिए, अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर देश में जश्न का माहौल है। सभी 50 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम संपन्न किए गए। आपको दिखाते हैं इनकी शानदार तस्वीरें और बताते हैं कहानी अमेरिका की। देखिए, 4 जुलाई 2026 को अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक जश्न मनाया। देश भर में परेड, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशिष्ट समारोह आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी से लेकर फिलाडेल्फिया तक इस अवसर को केवल एक उत्सव के रूप में नहीं मनाया गया, बल्कि 250 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों के प्रतीक के रूप में मनाया गया। देखिए अमेरिका में जश्न आजादी पर यह खास रिपोर्ट।

स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर विमान की उड़ान।

हैडसन नदी के ऊपर आसमान में लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। अमेरिकी नौसेना के ऐतिहासिक जंगी जहाजों की भव्य परेड। अमेरिकी ताकत और विरासत की भव्य नुमाइश की ये तस्वीरें अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के अवसर की है। इस खास अवसर पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी का भी आसमान लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा।

0: F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-22 रैप्टर सहित ब्लू एंजल्स स्क्वाड्रन के फाइटर्स जेट ने अलग अलग फॉर्मेशन के जरिए बादलों से घिरे अमरीकी आकाश में जाबाजी की एक अनूठी मिसाल पेश की। वाशिंगटन डीसी में हुए इस एयर शो में लॉकेट C-130 हर्क्यूलस ने भी भाग लिया, तो साथ ही बेल बोइंग B-22 विमानों ने भी अपने खास फॉर्मेशन से सबका मन मोह लिया। एयर शो की खास बात ये रही कि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एयरफोर्स वन बेड़े के नए विमान ने भी वाशिंगटन डीसी के आसमान में F-22 के साथ उड़ान भरी। ये खास विमान कतर की ओर से अमेरिका को गिफ्ट किया गया है। वहीं अमेरिकन आर्मी की गोल्डन नाइट्स और नेवी की लीप फ्रॉग्स नाम के मशहूर पैराशूट टीम्स ने भी देश की आजादी के इस जश्न में अपने कर्तव्यों से चार चांद लगा दिए। नेशनल मॉल के ऊपर उड़ान भरती पैराशूट टीम के पैरा जंपर्स अमेरिकी झंडा लिए हुए नीचे उतरे तो लोग देखते ही रह गए। आजादी के जश्न के इस खास मौके पर अमेरिका के शहर शहर में जश्न देखने को मिला। कहीं अमेरिकी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया तो कहीं आम लोग आजादी के उत्सव में उत्साह के साथ शरीक होते नजर आए। तस्वीरें देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की, जहां कई दिनों से फ्रीडम 250 उत्सव मनाया जा रहा है। और जब 4 जुलाई को ऐतिहासिक मौका आया तो माहौल देखने लायक था। तेज गर्मी और मौसम के बदले तेवरों के बावजूद लोग आजादी का जश्न मनाने में मशगूल दिखे।
1: This is America 250. We should celebrate no matter who you are, who you support. And this isn't about politics, this is about our country. And this is the most important thing we have as an independent nation of freedom. And we thank God every single day that we are the ones that are not going to get our heads chopped off because we wanted to protest something. And we're not going to be pulled into jail because we wanted to protest something. We have these abilities to have the freedoms within reason. And we've got to thank God every day for the USA.
0: वाशिंगटन के नेशनल मॉल में दिन से रात तक इस जश्न में शरीक होने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। हालांकि लोगों को मौसम के उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई।
2: Well, 250 years of great power, kind people, wonderful country. Just love it. I'm a patriot. I'm so thankful to be here. I think every American should get on their knees and thank God that they were born here or came here and can be here.
0: अमेरिका में आजादी के इस उत्सव का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ। जबरदस्त आतिशबाजी से जगमग हो उठा था आसमान। हर तरफ आतिशबाजी के कारण बेहद रंगीन नजारा दिखा। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी की है। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के अवसर पर वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में करीब 40 मिनट तक शानदार आतिशबाजी हुई। आधी रात के बाद आसमान लाल, सफेद और नीले रंग की आतिशबाजी से जगमगा उठा। इस दौरान 8.5 लाख फायरवर्क शेल दागे गए। आतिशबाजी के लिए राजधानी में 50 अलग अलग लॉन्चिंग पॉइंट बनाए गए थे। व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिका के इतिहास में स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ी आतिशबाजी करार दिया है। आतिशबाजी की ऐसी ही तस्वीरें न्यूयॉर्क से भी सामने आई। न्यूयॉर्क में करीब 25 मिनट तक चली आतिशबाजी के दौरान करीब 85,000 फायरवर्क्स शेल्स दागे गए। स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने पर सिर्फ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी ही नहीं बल्कि अमेरिका के शहर शहर में आतिशबाजी के साथ इसी तरह दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न का मुख्य कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया और देश की 250 साल की उपलब्धियों को याद भी किया।
3: Over 250 years, the world has seen the great empires, vast kingdoms, mighty nations, and terrible tyrants. They came and they went. But after 2.5 centuries, this American Republic still stands tall and strong, and we love each other. That showed tonight. You heard it was over, and what happened? You came back. And this American flag still waves proud and free and beautiful. We have thrived and flourished because our founders were great. Our cause was just, our people are brave, our culture is exceptional.
0: अमेरिका की आजादी के इस ऐतिहासिक उत्सव के खास अवसर पर फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंट नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में सभी 50 राज्यों की महत्वपूर्ण वस्तुओं के संग्रह वाला एक टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर डाला गया। इस कैप्सूल में ऐसी कुछ खास चीजें रखी गई हैं जो अमरीकी जीवन शैली, संस्कृति और इतने बरसों में देश में हुए नवाचार की झलक को पेश करती है। ये कैप्सूल सन 2276 में देश की आजादी के 500 साल पूरे होने पर खोला जाएगा। अगली पीढ़ियों को इससे ये संदेश मिलेगा कि 2026 में अमेरिका कैसा था, लोग तब क्या सोचते थे और वो भविष्य में क्या उम्मीदें रखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्तियों में गिने जाने वाले अमेरिका की कहानी केवल 250 साल पुरानी नहीं है। ये कहानी हजारों साल पहले इस धरती पर रहने वाले मूल निवासियों से शुरू होती है, फिर यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम, गृह युद्ध, औद्योगिक क्रांति और दो विश्व युद्धों से होते हुए आधुनिक महाशक्ति बनने तक पहुंचती है। आखिर कैसे एक समय ब्रिटेन का उपनिवेश रहा देश दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकत बन गया, आइए जानते हैं अमेरिका के इतिहास की इस रोचक और प्रेरणादायक यात्रा की कहानी।
0: दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया में सबसे विकसित और सबसे आकर्षक देश, जहां जाने, रहने और काम करने की तमन्ना भला विश्व के किस कोने में रहने वाले इंसान के दिल में नहीं होती। वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका डंका दुनिया भर में बज रहा है। दुनिया के हर कोने में अमेरिका का दबदबा है, इसीलिए पूरी दुनिया हमेशा हसरत भरी निगाहों से अमेरिका की ओर देखती है। वो देश अमेरिका जब 250 साल का हो चुका है। अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना के 250 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस मकाम तक अमेरिका ने अपना सफर पूरा कैसे किया? अमेरिका की खोज सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो असल में भारत की खोज में निकला था। अंत तक कोलंबस अमेरिका को भारत ही मानते रहे, लेकिन 1501 में इटली के ही यात्री अमेरिगो वेस्पुची ने कोलंबस की मान्यता को गलत करार दे दिया। अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका को एक नई दुनिया करार दिया। 1507 में जर्मनी के एक नक्शानवीस ने अमेरिको की मान्यता पर मोहर लगा दी और उनके नाम पर इस जगह का नाम अमेरिका कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाने शुरू किए। करीब 270 साल तक इस इलाके पर यूरोपीय देशों का राज रहा, लेकिन 1776 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अमेरिका के पूर्व तट पर स्थित 13 उपनिवेशों ने बगावत कर दी और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में आजादी का जश्न मनाया जाता है। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1776 में इसी दिन अमेरिका की आज़ादी का ऐलान किया गया था। फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस हॉल में हुई बैठक में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी मिली। घोषणा में कहा गया कि हर इंसान बराबर है और उसे जीवन, आज़ादी और अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। इसी के साथ अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनियों ने खुद को ब्रिटेन से अलग और स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस महत्वपूर्ण कदम से ही संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ था। हालांकि इसके बाद भी युद्ध चलता रहा। करीब 7 साल बाद 1783 में पेरिस की संधि हुई, तब जाकर ब्रिटेन ने अमेरिका को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1787 में अमेरिका में संविधान लागू हुआ और संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। हालांकि 4 जुलाई को स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को अपनाए जाने की याद में हर साल इसी दिन अमेरिका में आजादी का जश्न मनाया जाता है। 1876 में अमेरिका की आजादी के 100 साल पूरे होने पर फिलाडेल्फिया में भव्य कार्यक्रम हुआ था। तब यूलिसिस एस ग्रांट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सेंटेनियल एक्सपोजिशन के नाम से हुए कार्यक्रम में 37 देशों के करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 1926 में अमेरिका की आजादी के 150 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम फिलाडेल्फिया पे हुआ था। तब कैल्विन कूलिज अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1976 में अमेरिका की आजादी के 200 साल पूरे होने पर साल भर शानदार राष्ट्रीय उत्सव मनाए गए, जब जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 2026 में अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में USA@250 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार आजादी की वर्षगांठ के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत 31 दिसंबर 2025 को टाइम्स स्क्वायर में नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के साथ ही हो गई थी। स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में 2026 में साल भर खास कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके
4: मानसूनी बादलों ने दिल्ली एनसीआर में डाला डेरा, तापमान में भी दर्ज की गई कमी. दिल्ली के कई इलाकों में बादल हुए मेहरबान. मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का रेड अलर्ट जारी किया. दिल्ली में 10 जुलाई तक बारिश का दौर रहेगा जारी. मौसम विभाग ने जताई संभावना, तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे. नोएडा के कई इलाकों में जबरदस्त सा बदल गया मौसम का मिजाज. तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश. नोएडा में बारिश के बीच विजिबिलिटी भी हो गई कम. सड़कों पर हेडलाइट चलाकर चल रहे हैं लोग. गुरुग्राम में झमाझम बारिश से बदल गया मौसम का मिजाज. द्वारका एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में भर गया पानी. द्वारका एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से यातायात प्रभावित. पानी निकालने की चल रही हैं कोशिशें. गुजरात के गिर सोमनाथ में जबरदस्त बारिश, जगह जगह जल जमाव. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जोरदार बारिश जारी. कई इलाकों में भर गया पानी. पर्यटन नगरी लोनावला में मॉनसून पूरे शबाब पर. पिछले 24 घंटे में 10 इंच तक हुई बारिश. महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं वदरा. सड़कों पर भारी जल जमाव. बारिश के बीच बदल गया मरीन ड्राइव का नजारा. लोग समुद्र के किनारे मस्ती करते हुए नजर आए. मुंबई में भारी मॉनसून के चलते मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट. अंधेरी स्टेशन के पास तेज हवा के साथ बारिश. मुंबई के माहिम इलाके में जोरदार बारिश, जगह जगह सड़कों पर जल जमाव. मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश से भर गया पानी. यातायात पूरी तरीके से बाधित. वसई कामण सरजा मोरी इलाके में निर्माण कार्य के दौरान 5 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए. पुलिस, अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने सबको बचाया. महाराष्ट्र के कोला अमरावती में 12 घंटे तक झमाझम बारिश से विदर्भ हुआ लबालब. किसानों के खिले चेहरे. जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे 4 बच्चों को बचाया. पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे. अहमदाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश. गर्मी से लोगों को मिली राहत. जलजमाव की स्थिति उत्पन्न. जूनागढ़ के मांगरोल में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किलें. हाउसिंग सोसाइटी में घुस गया पानी. पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, पूरे भक्ति और उत्साह के साथ भक्त कर रहे हैं दर्शन। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से बाबा बर्फान के दर्शन करने के लिए निकला तीसरा जत्था हर हर महादेव। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकाला गया श्रद्धालुओं का चौथा जत्था, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। अमरनाथ यात्रा के चौथे जत्थे में 6721 तीर्थयात्री शामिल हुए, बालटाल और पहलगाम रूट के लिए बांटी गई यात्रियों की संख्या। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के बीच डमरू बजाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। गोड़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, पुंछ में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला तेज। गोड़ा अमरनाथ यात्रा से पहले गीता प्रवचन का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का काउंटडाउन हो गया शुरू, पुरी से लेकर लखनऊ तक भव्य आयोजन। मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर भव्य कुंभाभिषेक का आयोजन किया गया, समारोह में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। मदुरई के बाहरी इलाकों में घने जंगलों के बीच भगवान मुरुगन का मंदिर प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर। मुरुगन मंदिर की दिव्यता को बनाए रखने के लिए कुंभाभिषेकम की परंपरा, गर्भगृह के कलशों का पवित्र नदियों से जल से किया गया अभिषेक। समारोह के लिए मंदिर की हुई भव्य सजावट, भक्तों पर पवित्र जल छिड़क कर आशीर्वाद। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, ड्रोन से भी नजर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम में दौरा किया, अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक की, यात्रा की व्यवस्थाओं को परखा। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों से भी एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की, उनसे यात्रा से जुड़ी जानकारियां ली। तीसरी शादी के बंधन में बंध गए बॉलीवुड स्टार आमिर खान, पार्टनर गौरी स्प्रेट के साथ शादी की। आमिर खान ने अपने बांद्रा वाले घर के निजी समारोह में शादी की, रजिस्टर्ड मैरिज में केवल परिवार और कुछ दोस्त।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: सोशल मीडिया की एयरहेड का डेडली एक्शन, वुमनली डिस्पाई यूनिवर्स में आलिया का धमाका, मेंटल हेल्थ से लड़कर इंडस्ट्री में बनाई पहचान, आलिया के फिल्मी सफर की अनकही दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
7: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
8: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
4: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग फर्स्ट वेडिंग फोटो। 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने आमिर। दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी कमी, लोगों ने मानसून की बारिश का भरपूर आनंद लिया। मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकले लोग, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में आज तीसरे दिन तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, प्राकृतिक नजारों का भी लिया आनंद। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दांव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता है, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूव कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
8: Sorry, sorry.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है, लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर रहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
9: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। March 15 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
9: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती है।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों के सामने डांस करना फ्री बनना ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास और मैंने बोला हाँ श्यामक सर लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू तो मैंने बोला 7 But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
3: दिलचस्प बात तो ये है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए

0: आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
1: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाद अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
2: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यूं तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है, लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
1: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था।

0: फिर दुपट्टा उठा के कैमरे में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
1: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
0: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
1: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
2: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
1: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
3: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
1: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
2: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Right field, and it will...
4: From the first pitch of the season to the stretch run.
5: And that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अडानी ग्रुप कर रहा है 2500 करोड़ रुपए का निवेश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जल स्तर बढ़ने से पुल निर्माण का काम कर रहे 14 मजदूर फंसे। नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। तापमान में कमी, लोगों ने मानसून की बारिश का उठाया आनंद। मुंबई में जमकर हो रही है बरसात, प्रशासन की लोगों से अपील, बेवजह घरों से ना निकलें। अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में आज तीसरे दिन तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन, प्राकृतिक नजारों का उठाया आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रैट संग फर्स्ट वेडिंग फोटो। 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शहर शानदार आतिशबाजी और लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। पैरा जंपर्स ने दिखाए कमाल के करतब, जंगी जहाजों ने किया शक्ति प्रदर्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: मानसूनी बादलों ने दिल्ली एनसीआर में डाला डेरा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली के कई इलाकों में बादल मेहरबान, मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में आंधी और हल्की मध्यम बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 10 जुलाई तक बारिश का दौर रहेगा जारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना, तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे। नोएडा के कई इलाकों में जबरदस्त सा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। नोएडा में बारिश के बीच विजिबिलिटी भी हुई कम, सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से बदल गया मौसम का मिजाज, द्वारका एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में भर गया पानी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, पानी निकालने की कर रहे हैं कोशिश। गुजरात की गिर सोमनाथ में जोरदार बारिश, जगह जगह जलजमाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी ही पानी। पर्यटन नगरी लोनावला में मानसून पूरे शवा पर पिछले 24 घंटे में 10 इंच तक बारिश हुई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जबरदस्त तरीके से हो रही है बारिश, सड़कों पर भी चल जमाव। बारिश के बीच बदला मरीन ड्राइव का नजारा, लोग समुद्र के किनारे मस्ती करते हुए नजर आए। मुंबई में भारी मानसून के चलते मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अंधेरी स्टेशन के पास तेज हवा के साथ बारिश। मुंबई के माहिम इलाके में जोरदार बारिश, जगह जगह जलजमाव। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर बारिश से भर गया पानी, यातायात पूरी तरीके से बाधित। वसई कामड़ सरजा मोरी इलाके में निर्माण कार्य के दौरान 5 मजदूर फंस गए, अग्निशमन विभाग एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। महाराष्ट्र के कोला अमरावती में 12 घंटे की झमाझम बारिश से विदर्भ हुआ लबालब, किसानों के खिले चेहरे। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे 4 बच्चों को बचाया, पानी का स्तर अचानक बढ़ने से फंस गए थे बच्चे। अहमदाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, लेकिन जल जमाव की स्थिति उत्पन्न। जूनागढ़ के मांगरोला में भारी बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, हाउसिंग सोसाइटी में घुस गया पानी। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, पूरे भक्ति और उत्साह के साथ भक्त कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। बेलगाम के नुनवान बेस कैंप से बाबा बर्फान के दर्शन करने के लिए तीसरा जत्था हर हर महादेव। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का चौथा जत्था, श्रद्धालुओं में देखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रा के चौथे जत्थे में 6721 तीर्थयात्री शामिल हुए। बालटाल और पहलगाम रूट के लिए बांटी गई यात्रियों की संख्या। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के बीच डमरू बजाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, पुंछ में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला तेज। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले गीता प्रवचन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का काउंटडाउन हो गया शुरू। पुरी से लेकर लखनऊ तक भव्य आयोजन। मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर में भव्य कुंभाभिषेकम की तैयारी, समारोह में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे भक्त। मदुरई के बाहरी इलाके के घने जंगलों के बीच स्थापित है ये मंदिर। मुरुगन मंदिर की दिव्यता को बनाए रखने के लिए कुंभाभिषेकम की परंपरा है। गर्भगृह के कलशों का पवित्र नदियों के जल से किया जाता है अभिषेक। समारोह के लिए मंदिर की भव्य सजावट, भक्तों पर पवित्र जल का छिड़काव। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, ड्रोन से भी नजर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बेलगाम का दौरा किया, अमरनाथ यात्रा बेस कैंप हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। बेलगाम में अमरनाथ यात्रा को लेकर एलजी सिन्हा ने बैठक की, यात्रा की व्यवस्थाओं को परखा। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों से भी एलजी अमरनाथ सिन्हा ने मुलाकात की, उनसे यात्रा से जुड़ी जानकारियां ली। तीसरी शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड स्टार आमिर खान, पार्टनर गौरी स्प्रेट के साथ शादी। आमिर खान ने अपने बांद्रा वाले घर का निजी समारोह में शादी संपन्न की। रजिस्टर्ड मैरिज में केवल परिवार और दोस्त। दिल्ली में 80वें फिट इंडिया इवेंट का आयोजन किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। फिट इंडिया इवेंट साइकिल रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने दौड़ाई साइकिल। रायपुर में चिंतन योग शिविर का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल। खंडवा जिले के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विधि विधान के साथ पूजा। एल नीनो जागरूकता के लिए रेत पर बनाई गई आकर्षक मूर्ति, लोगों को जागरूक किया गया। मिडल ईस्ट में युद्ध विराम और हॉर्मुज के जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होने के बाद प्राकृतिक गैस सप्लाई के नियमों में हुआ बदलाव। 9 मार्च 2026 को जारी किए गए आदेश में सरकार ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए विशेष प्रावधान लागू किए। जनसी के लिए गीता प्रेस की सौगात, गीता एक साथ 3 भाषाओं में रोमन लिपि के साथ हो रही है प्रकाशित। गीता के नए संस्करण में संस्कृत के मूल श्लोक, उनका रोमन लिपि उच्चारण, हिंदी अर्थ और अंग्रेजी अनुवादन भी शामिल। सुपौल में खाकी वर्दी में जामाज बेटियों के कदमों से गुंजायमान हुआ BSAP बटालियन।
2: भवानी कुमारी जो मुजफ्फरपुर जिला पूर्ण निष्ठा रखते हुए
0: अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर वॉशिंगटन DC में भव्य आतिशबाजी, शानदार पोश। सालगिरह के जश्न में उमड़ा हजारों लोगों का सैलाब। 39 डिग्री की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटा लोगों का उत्साह। अमेरिकी इतिहास और मूल्यों के जश्न पर लोगों ने जताई खुशी, इतिहास साक्षी बना, आतिशबाजी ने जीत लिया सभी का दिल। रोशनी, रंग और उत्साह से सजा अमेरिका के ऐतिहासिक समारोह, 250वीं सालगिरह का जश्न यादगार। वॉशिंगटन डीसी में देखा रोशनी और बिजली का अद्भुत नजारा, वॉशिंगटन की रात आतिशबाजी और बिजली की चमक यादगार। अमेरिका की आजादी के जश्न की 250वीं सालगिरह के मौके पर सेना का प्रदर्शन, वॉशिंगटन डीसी के आसमान में भरी उड़ा। आसमान में गरजे F-16, F-22, C-130 जैसे फाइटर विमान। वॉशिंगटन डीसी में हवाई प्रदर्शन में पैराशूट टीमें भी शामिल हुई, आर्मी गोल्डन नाइट्स और नेवी लीप फ्रॉक्स ने विमान से छलांग लगाई। आसमान में देखा शानदार नजारा, लाल और सफेद रंग के धुएं नजर आए। दुनिया भर से बड़े पाल वाले और नौसेना के जहाज न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचे। न्यूयॉर्क हार्बर में अमेरिका के 250वें जन्मदिन पर भव्य एयर शो हुआ, रेड व्हाइट एंड ब्लू एयर शो ने आसमान को बिखेरा रूप। यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स ने एयर शो की अगुवाई की, अमेरिका और सहयोगी देशों ने 100 से ज्यादा विमानों की भरी उड़ान। न्यूयॉर्क के आसमान में देखा शानदार हवाई करतबों का नजारा, न्यूयॉर्क हार्बर में हजारों दर्शकों ने एयर शो में आनंद लिया, लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हुआ आसमान। देशभक्ति के रंग में रंगा न्यूयॉर्क आसमान में देखा शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी सेना के हवाई कौशल मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक प्रदर्शनी शुरू हुई, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की दुर्लभ कॉपी प्रदर्शित हुई। सोटबीज में 13 स्टार वाला ऐतिहासिक अमेरिकी झंडा आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। अमेरिका के 250 साल के इतिहास को 5 थीम में किया गया पेश। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को भी शामिल किया गया। गार्डन पार्क्स की फोटोग्राफी भी सभी का ध्यान आकर्षित करती हुई नजर आई, बाकले हैंड्रिक्स की पेंटिंग्स भी खींचा सभी का ध्यान। क्रोएशिया के लोपार में रेत से बनी 15 मीटर लंबी विशाल मूर्तियां 15वें सैंड आर्ट फेस्टिवल में 20 टन रेत से गढ़ी गई अनोखी कलाकृतियां। राजस का बीच पर स्क्विड, कछुआ और मूंग सील की विशाल रेत मूर्तियां बनी। ड्रोन फुटेज में देखा रेत की विशाल कलाकृतियों का शानदार नजारा। सैंड आर्टिस्ट के बीच को बनाया उसने ओपन एयर आर्ट गैलरी, आर्ट से 10 मीटर लंबी सील की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। पर्यटकों ने रेत की विशाल मूर्तियों के साथ जमकर तस्वीरें खिंचाई, बीच पर देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। दक्षिण कोरिया के ह्यूमनॉइड रोबोट ने सॉकर मैदान में दिखाया दमखम, रोबो कप 2026 के फाइनल में रोबोट्स का हाईटेक मुकाबला। सिंघुआ यूनिवर्सिटी की टीम हेफेस्टिक बनी चैंपियन। गिरते पड़ते भी रोबोट्स ने खेल पूरा करके जीता सबका दिल, सॉकर मैदान पर रोबोट्स की शानदार तकनीक। टीम हेफेस्टस का सपना 2050 में फीफा चैंपियन बनना। रोबो कप 2026 में 45 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए, सॉकर के साथ रेस्क्यू मिशन भी शामिल। चीन का रोबोट एक्सपोर्ट पहले 5 महीनों में 20 अरब युआन तक पहुंचा। 150 से ज्यादा देशों तक पहुंची चीन की रोबोट तकनीक। यू और एशियान बने चीन के सबसे बड़े रोबोट बाजार। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बढ़ी स्मार्ट रोबोट्स की मांग। विजुअल रिकॉग्निशन वाले रोबोट्स ने बढ़ाई काम की रफ्तार। चीन के गुआंगडोंग में लायन डांस में नन्ही कलाकारों ने बिखेरा मासूमियत का जादू। शेर की पोशाक में बच्चों का शानदार डांस सोशल मीडिया पर वायरल।

0: चीन में एम्बॉडीड इंटेलिजेंस का असर दुनिया में इस्तेमाल तेज, बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट चला रहा 24 घंटे खुला एनवीनियंस स्टोर। एआई रोबोट पेमेंट लेने और सामान देने में हुआ सक्षम। चीन बना रहा है एक दिमाग कई शरीर वाला एआई मॉडल, बर्तन धोने और सफाई जैसे काम करने में भी माहिर। अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी छात्रों ने चीन के रोबोटिक्स कंपनी का किया दौरा, येल, ब्राउन और जॉन्स हॉपकिंस के 77 छात्र पहुंचे। अमेरिकी छात्रों ने ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ साथ किया सीधा संवाद। फिल्म अल्फा के सपोर्ट में उतरे करण जौहर, आलिया भट्ट के हुनर की तारीफ की। ऋतिक रोशन, परशुराम पेटला की फिल्म की खबरें निकली अफवाह। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई, सलमान खान की फिल्म्स ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बेबुनियाद बताया। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलेना जेटली की वापसी, सिस्टर निवेदिता की बायोपिक में नजर आएंगी। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल हुआ तय, विकेट सनी होगा नाम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: भगवान भोले का प्रिय सावन महीना आने वाला है। सावन महीने के हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले की न केवल पूजा आराधना करते हैं बल्कि दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक भी करते हैं। सावन महीने से पहले बाबा भोले के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने लगी हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा झारखंड के देवघर का भी है, जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
6: के बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िए अर्घा के माध्यम से यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वही हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
7: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से।
6: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
8: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
6: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in how to
9: A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
0: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश। अंधेरी सब भी पूरी तरीके से बंद। गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का भी आनंद। 3री बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान। सामने आई पत्नी गौरी स्प्रैट संग शादी की पहली तस्वीर। 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा। और अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न। शहर शहर शानदार आतिशबाजी, लड़ाकू विमानों का फ्लाईपास्ट, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। जरा सोचिए, कहीं आग लगी हो और मिनटों में नहीं महज सेकेंडों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस जगह के लिए निकल पड़े। जरा सोचिए, मौके पर पहुंचने से पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रास्ते में ही ड्रोन के जरिए जिस इमारत में आग लगी हो उसकी हर तस्वीर देख रही हो। और तो और, जरा ये भी सोचिए कि किसी बिल्डिंग में आग लगी हो, फायर हेल्पलाइन नंबर पर कोई फोन करे, उससे पहले ही फायर कंट्रोल रूम को उसकी खबर मिल जाए। यकीन नहीं होता ना, पर यकीन मानिए, ये आने वाले वक्त का सच है। नई टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर दिल्ली फायर सर्विस ने दिल्ली को आग से बचाने के लिए आने वाले 25 सालों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। फिलहाल जो ब्लूप्रिंट कागज पर है, जिस दिन ये जमीन पर सच हो जाएगा, आग की लपटें इंसान के काबू में होंगे। कहते हैं, आफत सर तक और आग घर तक ना आ जाए तब तक खतरे का एहसास नहीं होता। सिर्फ इस साल के पहले 6 महीने में दिल्ली ने मालवीय नगर, पालम और विवेक विहार की शक्ल में शोलों का जो गुस्सा देखा, उसने पूरी दिल्ली को परेशान कर दिया। बेलगाम आग की लपटों और दम घोटू धुएं ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ली। बीते कुछ बरसों का हिसाब किताब लगाएं तो सिर्फ आग की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करोड़ों अरबों की संपत्ति उन्हीं आग की लपटों में खाक हो गई। दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया के बेहतरीन शहरों में इसकी गिनती करने वाले कम नहीं है। लेकिन अगर आग जैसी चीज पर भी वक्त पर काबू ना पा सके तो शहर पर सवाल उठते हैं। देर से ही सही, पर जब आफत सर तक और आग घर तक पहुंच ही गई, तब ख्याल आया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कम से कम आग से तो लोगों को मरने से बचाया जा सके। और इसी ख्याल ने जन्म दिया दिल्ली और दिल्ली वालों को आग से बचाने के एक नए आइडिया को। जी हाँ, तय करने वालों ने तय किया है कि अगले 25 सालों में दिल्ली फायर सर्विस एक ऐसी फायर सर्विस होगी जो वर्ल्ड क्लास होगी। विजन, टेक्नोलॉजी, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर बुनियादी सुविधाओं से लैस एक ऐसी फायर सर्विस जिसके पास अपना ड्रोन भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का हथियार भी, और घर घर, बिल्डिंग बिल्डिंग आग को बिगड़ने और बिखरने से पहले उन्हें काबू करने वाले जरूरी उपकरण भी। पर ये सब कैसे होगा, तो चलिए आज आपको बताती हूँ दिल्ली फायर सर्विस के अगले 25 साल के उस ब्लूप्रिंट के बारे में जिसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई है। अगर ये ब्लूप्रिंट हकीकत में सच हो गया तो अगले 25 सालों में यानी 2051 तक दिल्ली फायर सर्विस के अपने 196 फायर स्टेशन होंगे, करीब 29,000 स्टाफ होंगे, 1568 फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां होंगी, 390 QRV गाड़ियां होंगी, 225 वो मोटरसाइकिल और ई बाइक होंगी जो संकरी गलियों में घुसकर भी आग को ठंडा करेंगे। तब फायर सर्विस का कोई भी स्टाफ लगातार 24 घंटे की ड्यूटी नहीं करेगा, फिर 3 शिफ्ट में वो लोग 8-8 घंटे ड्यूटी करेंगे। तब तक हर बिल्डिंग में फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर्स यानी पानी छिड़कने वाली मशीन के साथ साथ हाइड्रेंट सिस्टम भी होगा जो सीधे वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी से फायर सिस्टम के कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। यानी तब आग लगने पर 101 नंबर पर फोन करने से पहले ही कंट्रोल रूम को ये पता चल चुका होगा कि आग कहाँ लगी है। इसके बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फायर स्टेशन से आग बुझाने के लिए निकलेंगी, तब तक आसमान में ड्रोन उड़ चुका होगा और जहां आग लगी है वहां की लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में बैठे फायर फाइटर्स लाइव देख सकेंगे। यानी जब तक वो मौके पर पहुंचेंगे, उन्हें पता चल चुका होगा कि आग कहां कहां भड़की है, किस फ्लोर, किस कमरे में कहां पर लगी है। इससे आग बुझाना न सिर्फ आसान होगा बल्कि वक्त से पहले होगा।
1: दिल्ली फायर सर्विस ने अगले 25 साल के प्लान को अमल में लाने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले 5 सालों में फायर डिपार्टमेंट के विस्तार पर काम किया जाएगा। इसके बाद अगले 5 सालों में फायर ब्रिगेड को अपग्रेड करने और उसे और ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर होगा। फायर सर्विस के साथ नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना और फिर दिल्ली के इलाकों के हिसाब से कम वक्त में कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचेंगी, इस पर काम शुरू होगा। दरअसल दिल्ली फायर सर्विस ज्यादातर अब भी पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहा है। अगले 25 सालों में इसे पूरी तरह से बदल देने का फैसला लिया गया। दिल्ली फायर सर्विस को बेहतरीन बनाने के लिए अगले 25 सालों का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उस पर 4 चरणों में काम होगा। शुरुआती 5 सालों यानी 2031 तक का जो रोड मैप तैयार किया गया है उसकी शुरुआत फायर सर्विस के बरसों पुराने सिस्टम, टेक्नोलॉजी और काम के ढर्रे को बदलने के साथ साथ हर चीज अपग्रेड की जाएगी। बुनियादी चीजें ठीक करने के बाद अगले 5 सालों में फायर सर्विस को बेहतरीन और आग बुझाने के अलग अलग तरीकों पर काम होगा। इसके साथ साथ फायर सर्विस को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने, AI, इंटरनेट, ड्रोन, स्मार्ट व्हीकल मुहैया कराने के साथ साथ रिस्पांस टाइम को कम करने पर भी खास जोर दिया जाएगा। लेकिन इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिल्ली फायर सर्विस ने ये प्रस्ताव रखा है कि 2026 से दिल्ली में बनने वाली हर बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया जाए, जबकि जो बिल्डिंग पहले ही बन चुकी है उनमें भी 2030 तक स्मोक डिटेक्टर और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम को लगाना कानूनन अनिवार्य कर दिया जाए। दरअसल दिल्ली में जितनी भी आग की घटनाएं हुई हैं, उनमें ये बात सामने आई है कि लोगों की मौत आग से कम और धुएं की वजह से दम घुटने से ज्यादा होती है। आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आग की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां औसतन 12 से 15 मिनट में पहुंचती हैं, जबकि आग के धुएं की वजह से पहले 3 से 5 मिनट में ही ज्यादातर मौत धुएं की वजह से हो चुकी होती है। धुएं से होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह ये है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के इस दौर में घरों में खिड़कियां कम हो गई हैं, कमरे के अंदर कारपेट, सोफा, बेड जैसी तेजी से आग पकड़ने वाले सामान ज्यादा है, इसीलिए धुआं भी तेजी से फैलता है और वेंटिलेशन या खिड़कियां ना होने की वजह से लोग दम घुटने की वजह से दम तोड़ देते हैं।
2: दिल्ली की जो बिल्डिंग्स हैं या कहीं की भी जो बिल्डिंग्स हैं आज की तारीख में, आज से जो 25 से 30 साल पहले बिल्डिंग बनती थी उनका डिज़ाइन इस तरह का था, उनकी छतें ऊंची थी, उनमें रोशनदान थे, जो घर के अंदर चीज़ें यूज़ हो रही थी वो ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं थी कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो जब कभी आग लगती थी कमरे में तो फ्लैश ओवर एक फिनोमिना होता है, जो फायर छोटी से होकर के और एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचती कि पूरा कंपार्टमेंट, पूरा कमरा इन्वॉल्व हो जाए फायर में, 600 डिग्री के करीब टेम्परेचर जब हो जाता है। तो ये फिनोमिना पहले 15 से 17 मिनट में होता था। अभी जो हमारी आज की तारीख में बिल्डिंगों के डिज़ाइन हो गए हैं, फॉल सीलिंग लगने लगी, छत की हाइट नीचे आ गई, रोशनदान खत्म हो गए, आप वॉल पैनलिंग करा रहे हो, आप कारपेट लगा रहे हो या वॉलपेपर लगा रहे हो, या बहुत सारा आपकी तारीख में फ्लेमेबल मटेरियल आपके कमरे में होता है, PU के जैसे सोफे, गद्दे, कुर्सी, ये सब जो है बहुत हाईली फ्लेमेबल है। तो आज की तारीख में ये हो गया है कि जब एक फायर शुरू होती है तो ऑक्यूपेंट को फ्लैश ओवर होने तक केवल 3 से 5 मिनट मिल रहे हैं।
1: हालांकि एक फिक्र ये भी है कि अगले 25 सालों में यानी 2051 तक दिल्ली की आबादी भी नामालूम कहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस ब्लूप्रिंट की एक अहम बात यह है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रिस्पांस टाइम किसी भी तरह 7 मिनट से कम किया जाए, जो कि अभी 12 से 15 मिनट है। हालांकि आने वाले वक्त में दिल्ली की आबादी और ट्रैफिक इसमें कितनी मददगार या दुश्वार साबित होगी कहा नहीं जा सकता। 1942 में यानी अंग्रेजों की विदाई और भारत की आजादी से 5 साल पहले दिल्ली में फायर सर्विस का जन्म हुआ। तब इनकी टैगलाइन थी, वी सर्व टू सेव। 1944 में जब दिल्ली में पहली बार दिल्ली फायर सर्विस का जन्म हुआ था तब दिल्ली की कुल आबादी 7 से 8 लाख थी, जबकि इस वक्त उसी दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। यानी 1944 के मुकाबले दिल्ली की आबादी लगभग 400 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन 3 करोड़ दिल्ली वालों के लिए आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 71 फायर स्टेशन हैं, जिनमें कुल मिलाकर 3,051 लोग काम करते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के पास आग बुझाने वाली कुल 323 गाड़ियां हैं। इन 323 गाड़ियों में से 191 गाड़ियां पंपिंग यूनिट से लैस यानी बड़ी गाड़ियां हैं, जबकि 100 QRVS यानी क्विक रिस्पांस व्हीकल हैं, जो तंग गलियों में ज्यादा काम आती है।
0: आग ऐसी चीज है जो कभी भी कहीं भी लग सकती है। दुनिया का कोई भी देश आग के इन लपटों से नहीं बच पाया है। आग लगने के ज्यादातर हादसे इंसानी लापरवाहियों की वजह से होती हैं।
1: या फिर शॉर्ट सर्किट या फिर मशीनी गलतियों की वजह से। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां फायर सेफ्टी के परफेक्ट इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका जैसे देशों में हर घर के बाहर खास फायर सेफ्टी के लिए पानी के पाइप बिछाए गए हैं। पर दिल्ली जैसे शहर की दिक्कत यह है कि यहाँ आबादी का जंगल है और बेतरतीब मोहल्ले, बस्तियां और घर, जहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही नहीं पहुंच पाती। अगले 25 सालों के प्लान में इन दिक्कतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जरूरत के हिसाब से फायर सर्विस, फायर फाइटर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद बढ़ती रही है। हालांकि तब ना दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें थी, ना आबादी का इतना बोझ और ना ही आग को दावत देने वाले खतरे। इसीलिए फायर सर्विस का काम धीरे धीरे एक तरह से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। 42 साल के बाद 1970 तक पहुंचते यानी अगले 28 सालों में दिल्ली में सिर्फ 14 फायर स्टेशन खुले। 70 से 2000 तक पहुंचने में यानी अगले 30 सालों में फायर स्टेशन की कुल तादाद 52 थी। 2000 से 2026 तक यानी बीते 26 सालों में फायर स्टेशन की तादाद बढ़कर सिर्फ 71 तक पहुंची है। आंकड़े बताते हैं कि खासतौर पर पिछले 2 दशक में दिल्ली में आग लगने पर इमरजेंसी कॉल करने वालों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है।
3: 15, 4 और 5
1: अगर सिर्फ पिछले 20 सालों के आंकड़े ले लें तो 2006 में जहां दिल्ली में 14,291 इमरजेंसी कॉल आई थी, वहीं 2026 में ये बढ़कर 36,000 के पार पहुंच चुकी है। इसी तरह पिछले 20 सालों में मरने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ी है। पर आखिर फायर सर्विस, फायर फाइटर्स, दमकल की गाड़ियां, आग बुझाने के उपकरण और आग से लड़ने के अलग अलग वो क्या तरीके हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये जानना जरूरी है। तो शुरुआत उस शुरुआती जगह से जहां से इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होती है, यानी कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम दिल्ली फायर सर्विस के हेडक्वार्टर में बना है। 102 नंबर पर जब भी कोई फायर डिपार्टमेंट को फोन करता है तो उसकी घंटी इसी कंट्रोल रूम में बजती है। इस कंट्रोल रूम में 365 दिन और 2400 घंटे कोई ना कोई फोन के पास बैठा होता है। कंट्रोल रूम में सिर्फ फोन उठाने के लिए 100 लोगों की एक पूरी टीम है। हर शिफ्ट में कम से कम 25 लोग काम करते हैं।
2: हमें जो कॉल मिलती है वो हमारे कंट्रोल रूम पे आती है। पहले कंट्रोल रूम पे आने के लिए उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि या तो किसी ने सीधा ही 101 पे कॉल किया तो हमारे पास आएगी, या 112 पे अगर किसी ने कॉल किया तो हमारे पास, हम इंटीग्रेटेड हैं उसके साथ, वो कॉल वहाँ से हमें आ जाती है तुरंत ट्रांसफ़र होके। तीसरा तरीका है कि जितने इमरजेंसी के और कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ हमारा कंट्रोल रूम हॉटलाइन से कनेक्टेड है। अगर उनको कोई फायर की कॉल मिलती है तो हॉटलाइन के थ्रू भी वो हमें ट्रांसफ़र होती है।
4: ये कॉल रिसीव करते हैं, रिसीव करने का एक यहाँ ये पैड है, इसमें कॉलर का नाम, जो कॉलर होता है उसके कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है जो इनको ये भरते हैं, उसका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क और किस थाने के लोकेशन के नज़दीक है, उसको इस स्लिप को पूरा भरने के बाद ये फिर हमारा वायरलेस सिस्टम है, वहाँ कॉल को देते हैं, वहाँ से कंसर्न स्टेशन को कॉल रिसीव हो जाती है।
1: तो ये फायर कंट्रोल रूम है, ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ पूरे दिल्ली की कॉल्स यहाँ आती है और यहाँ से कॉल जो है वो आगे की तरफ डाइवर्ट की जाती है, आगे की तरफ जो है फॉरवर्ड की जाती है और वहाँ से ये तय होता है कि कौन से थाने में ये पूरा मामला आता है, कौन से लोकेशन का, और उस लोकेशन के पास वाले फायर सर्विस पर ये कॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और वहाँ के जो फायर फाइटर्स होते हैं, वहाँ की जो टीम होती है वो पहुँचती है और वहाँ रेस्क्यू वाली जगह पर पहुँच जाती है। तो ये वो सेंटर है जहाँ से पूरी दिल्ली की कॉल इनके पास आती है और ये उन कॉल्स को जो है वो अलग अलग जगह पर ट्रांसफर करते हैं। फोन पर आग लगने की इत्तला मिलते ही कंट्रोल रूम उस फायर स्टेशन को पलटकर फौरन फोन करता है जो आग लगने वाली जगह से सबसे करीब हो। कंट्रोल रूम फायर स्टेशन को आग की इत्तला देने के साथ साथ ये भी जानकारी देता है कि आग घर में लगी है, दुकान में, मॉल में, होटल में, बहुमंजिला इमारत में, दफ्तर में या झुग्गी में। इसके साथ ही कंट्रोल रूम ये भी बताता है कि आग कितनी बड़ी या छोटी है। इसकी वजह यह है कि इससे फायर स्टेशन को ये समझने में आसानी हो जाती है कि मौके पर दमकल की कितनी गाड़ियां भेजनी है और कौन सी गाड़ियां भेजनी है।
2: जब कॉल हमारे कंट्रोल रूम में मिल जाती है तो अभी हमारे यहाँ मैनुअल सिस्टम है जो कंसर्न वहाँ पर ड्यूटी पे ऑफिसर्स होते हैं वो इमीडिएटली देखते हैं कि कहाँ की कॉल है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है फायर स्टेशन चूज़ करते हैं कहाँ से रिस्पॉन्स कराना है। साथ ही साथ प्री डिफाइंड SOPs भी हैं हमारे कि जिस तरह की कॉल होगी उसके अकॉर्डिंगली कितनी गाड़ियाँ और कितने ऑफिसर्स का टर्नआउट होना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑफिसर्स कंसर्न स्टेशन को और कंसर्न ऑफिसर्स को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं।
1: चूंकि कंट्रोल रूम से कभी भी फोन आ सकता है, इसीलिए हर फायर स्टेशन में फायर फाइटर के साथ साथ दमकल की गाड़ियां भी 24 घंटे तैयार रहती हैं। हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है ताकि एन वक्त पर वो धोखा ना दे। दमकल की गाड़ियों के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। वो पानी ही है जिससे आग बुझाई जाती है। दिल्ली के हर फायर स्टेशन में बाकायदा पानी के बोर पंप लगे हैं जो बेहद फोर्स के साथ और कम वक्त में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टैंक को फुल करते हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर से भी दमकल की गाड़ियों में पानी भरा जाता है। इसके लिए बाकायदा फायर फिलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। जिस तरह हर दिन सुबह शाम गाड़ियों की चेकिंग होती है, उसी तरह दमकल की गाड़ियों के पानी को भी चेक किया जाता है।
2: गाड़ियों में हमारे 27 फायर स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी बोर है अपना, हम वहाँ से भरते हैं या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं।

0: वहाँ से भरते हैं, या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं, या जो आसपास कहीं बिल्डिंग है हमारी, जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें भी पानी की पूरी व्यवस्था होती है, उन बिल्डिंगों से हम इन गाड़ियों को भरते हैं।
1: दमकल के अलग अलग गाड़ियों में गाड़ियों के टैंक के साइज के हिसाब से एक गाड़ी में 2.5 से 3 हजार, 4 से 5 हजार और 12 हजार लीटर तक पानी आता है। इसके अलावा कई आग ऐसे होते हैं जिन पर पानी का असर नहीं होता। ऐसी आग को फोम और खास केमिकल से बुझाया जाता है।
0: देखिए, गाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो वाटर कंटेनिंग अलग अलग है। जैसे कि मेरे पास स्मॉल वाटर टेंडर है, नॉर्मल वाटर टेंडर है और वाटर बाउजर है। तीन गाड़ियां हैं मेरे पास जो वाटर कैरी करती हैं। इनमें जो स्मॉल वाटर टेंडर है उसमें 2.5 से 3 हजार के बीच का टैंक है, और जो नॉर्मल वाटर टेंडर है उसमें 4 से 5 हजार का टैंक होता है, और जो वाटर बाउजर है वो 12 हजार लीटर का है। तो ये अब कितनी देर चलेगी, अगर आप देखें तो इसमें जो पंप लगा है वो 1800 LPM का पंप है हमारी गाड़ियों में। तो अगर मैं दोनों डिलीवरी फुल थ्रोटल यूज़ कर देता हूँ तो आप 1800 से भाग कर लें इस क्वांटिटी को, तो आपको समय पता लग जाएगा।
2: अच्छा।
0: तो यानी कि ये 4000 की जो है वो 3.5 मिनट में खाली हो जाएगी, करीब 5000 वाली। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी हमेशा ही ऐसा होता हो। इट डिपेंड्स, जो मेरा पहला ऑफिसर सीन पर पहुँचता है वो सीन का साइजअप करता है, सिचुएशन देखता है। इमीडिएटली हमें इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी ट्रेंड होते हैं हम लोग कि उसको जाते ही पता लग जाएगा कि हाँ मुझे कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कितनी ब्रांच मुझे ऑपरेट करनी है। उसके अकॉर्डिंगली वो फायर को अपग्रेड कर देता है। फोम टेंडर्स हैं जहाँ पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कुछ फायर को हम नहीं बुझा सकते। जहाँ हमें जैसे लिक्विड फ्यूल की फायर है वहाँ हमें डेंसिटी कम करनी होती है पानी की, तो उसके लिए हम फोम कंसंट्रेट वाले हमारे पास टेंडर हैं जो हम पानी में ऐड करके उसकी डेंसिटी कम करते हैं, जिनको हम फोम टेंडर्स बोलते हैं, वो हमारे पास हैं, उनको हम यूज़ करते हैं ऐसी फायर्स के ऊपर।
3: इसमें होज पाइप है, ब्रांच है, फोम ड्रम है, BS सेट है, कटिंग टूल है, ये सब चीज़ आप देखना चाहो देख सको, और लैडर, एक्सटेंशन लैडर है। इसमें पंप है, हाँ जी, आप पानी इससे, ये डिलीवरी है, ये पंप है, इससे आगे है, इसे कनेक्ट होज यहाँ कनेक्ट करके और बढ़ाते चले जाओ।
2: पानी का पाइप है वो इसे कनेक्ट कर देते
3: हैं। हाँ, इससे कनेक्ट करते हैं
2: और इसे चला देते हैं। हाँ
3: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी
2: हाँ।
3: छोटी आग के लिए एक कैमरा आया था गाड़ी के, गाड़ी को बैक करना हो उसमें दिखाई दे, छोटी मोटी आग के लिए होजरी लगी हुई है, इससे
4: काम करना हो,
3: छोटी मोटी आग के लिए इससे ही काम हो जाए, बड़ी आग के लिए पाइप द्वारा।
1: आपको शायद पता ना हो, दमकल की गाड़ियों में आग बुझाने के लिए जो पानी होता है वो बिल्कुल साफ पानी होता है। वो पानी जो हमारे और आपके घरों में आता है, पीने वाला पानी। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? असल में फायर फाइटर्स हर रोज आग बुझाने के दौरान आग के बीच उस तपिश से गुजरते हैं जब गला सूखने लगता है। पल पल आग की लौ तेज होती जाती है, ऐसी सूरत में प्यास लगने या गला सूखने पर वो आग को छोड़कर पानी पीने नहीं जा सकते, इसीलिए वो उसी पानी को पीते हैं जिससे आग बुझाते हैं।
0: गाड़ियों में हमारे 27 फायर स्टेशंस के ऊपर ऑलरेडी बोर है अपना, हम वहाँ से भरते हैं, या जो जल बोर्ड के हमारे फिलिंग पॉइंट्स हैं उनसे भरते हैं, या जो आसपास कहीं बिल्डिंग है हमारी, जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें भी पानी की पूरी व्यवस्था होती है, उन बिल्डिंगों से हम इन गाड़ियों को भरते हैं। इनके अंदर नॉर्मल जो है बोर का पानी या ड्रिंकिंग वाटर जो जल बोर्ड का है वही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं। कई बार ब्रांचमैन जो है सेकेंड ब्रांचमैन को कवर देता है पानी के से ही, पानी का शावर चला के, तो वो पानी उसकी बॉडी पे भी टच होता है, बार बार भीगता भी है वो उस पानी में। और कई बार फायर फाइटिंग करते हुए वो पानी गलती से भी पी जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उसको अंदर घुसा हुआ है, प्यास लग रही है, तो वो उस ब्रांच से पानी भी पी लेता है। तो हम इसलिए नॉर्मल वाटर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है और जो बोरिंग का वाटर है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी वाटर हम यूज़ नहीं करते।
1: फायर फाइटर्स के इन कपड़ों को तो आपने देखा होगा, तपती गर्मी में आग की तपिश के बीच कई बार ये इतने ज्यादा तापमान से घिरे होते हैं कि इनके ये कपड़े ना हो तो ये खुद जल जाए। लेकिन इन कपड़ों और इनके पहने बूटों का वजन इतना ज्यादा होता है कि आम इंसान तो ठीक से चल भी ना पाए और इन्हें तो दौड़ना होता है।
5: जैसे ही घंटी बजती है
1: कॉल आती है, पता चलता है कि जिंदगी खतरे

0: में है। पता चलता है कि आग लग चुकी है। फौरन एक मिनट के अंदर ये फायर फाइटर्स अपने इस लबादे को ओढ़कर, इस हेलमेट को पहनकर, इन बूट्स को पहनकर तैयार हो जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जल्द से जल्द, जहां पर कई लोगों की जिंदगी जोखिम में पहले से ही रहती है। अब ये सोचिए, एक मिनट के अंदर की पूरी तैयारी और उसके बाद 45 डिग्री टेम्परेचर बाहर का, और जो इन्होंने ये जैकेट पहनी है काफी मोटी जैकेट है क्योंकि ये उनको भी प्रोटेक्ट करती है आग से। ये जो हेलमेट है इसका वजन बहुत ज्यादा है, लगभग 2 किलो के आसपास का ये हेलमेट होता है। जो बूट्स इन्होंने पहने हैं, इस बूट्स का वजन भी लगभग 4 से 5 किलो का है। तो एक वजनी लबादा अपने ऊपर ओढ़े हुए ये फायर फाइटर्स फौरन निकल जाते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर आग की सूचना मिली होती है, और उसके बाद वहां पर जाने के बाद वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है आग लगने वाली जगह पर वक्त पर पहुंचना। इसके लिए बाकायदा खुद फायर सर्विस ने अपनी टीम के लिए रिस्पांस टाइम तय किया हुआ है।
1: मेट्रो पिलर नंबर 42
0: कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजने के बाद जैसे ही सायरन बजाया जाता है, उस सायरन के बजने का मतलब ये है कि अब अगले एक मिनट में फायर फाइटर्स जिस हाल में भी हो उन्हें दमकल की गाड़ी में बैठकर फायर स्टेशन छोड़ देना होता है। जैसे इस फायर स्टेशन में घंटी बजती है और कॉल आती है कि कहीं पर आग लग गई, आग लगने के बाद फौरन ये दमकल की गाड़ी और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। एक मिनट के अंदर फायर फाइटर्स यहां पर आ जाते हैं। आगे वाली सीट पर ड्राइवर होता है, एक इंचार्ज होता है, पीछे 4 फायर फाइटर्स होते हैं और इस गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से दिखती कैसी है। देखिए, इस गाड़ी में जो आगे की सीट है वहां पर एक ड्राइवर होते हैं। सर, स्पेस है अंदर आने का? हाँ, तो आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो एक इस वाली सीट पर ड्राइवर होते हैं, और उसके बाद अंदर जो है वो काफ़ी जगह होती है पीछे बैठने के लिए भी और यहाँ बैठने के लिए भी। तो ये मेरे राइट साइड पर ड्राइवर साहब बैठते हैं और यहाँ पर एक इंचार्ज होते हैं, और पीछे की तरफ जो केबिन बना हुआ है वहाँ पर 4 फायर फाइटर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर एक गाड़ी में 6 लोग होते हैं, और ये 6 लोग जिस भी जगह पर आग लगी होती है वहाँ पर फौरन एक मिनट के अंदर रवाना हो जाते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर रेस्क्यू करने के लिए।
2: एक मिनट के अंदर हमने स्टेशन को छोड़ना होता है। रास्ते में व्हीकल है, जाम की स्थिति हो है, इसमें टाइम लग जाता है, वरना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए। हेलमेट, गमबूट और फायर सूट ये गाड़ी में ऑलरेडी रखा रहा है। अच्छा। हम जैसे ही फायर सायरन सुना उठ के भगले हैं। अच्छा। चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, बाथरूम वो भी स्नान कर रहा है वो भी ऐसे ही भग लेता है। अच्छा। और गाड़ी में आके बैठ के हेलमेट गमबूट डांगरी पहन के अपने रेडी हो जाए।
0: लेकिन यही रिस्पांस टाइम रात के वक्त 1 मिनट से बढ़कर 2 मिनट हो जाता है। वजह ये कि अमूमन रात में स्टाफ आराम कर रहा होता है। असल में फायर फाइटर्स की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से नहीं बल्कि ग्रुप के हिसाब से होती है। इनकी ड्यूटी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक की होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जरूरत के हिसाब से स्टाफ कम है।
3: हम हमेशा तैयार होते हैं। हमारी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दिल्ली फायर सर्विस के जो ग्रुप सी मेंबर्स हैं वो एक दिन ड्यूटी करते हैं 24 आवर राउंड द क्लॉक, और 24 आवर उनको फिर एक ब्रेक मिलता है। जो ग्रुप बी एंड अबाव ऑफिसर्स हैं उनको 72 आवर्स वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं, उसके बाद उनको 24 आवर का रेस्ट मिलता है। ड्यूरिंग दी ड्यूटी आवर्स हमारे जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स हैं या ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं वो ऑलवेज रेडी होते हैं टू रिस्पॉन्ड एनी इमरजेंसी। रात को शाम की जो हमारी रोल कॉल होती है उससे और मॉर्निंग की रोल कॉल तक ये रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट का है, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं हमारे उस टाइम, तो सो के उठ के उनको जो है थोड़ा रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। हमें फायर स्टेशन भी 120 चाहिए जल्दी जल्दी, हमें इक्विपमेंट्स अप्लाइंसेज भी चाहिए जो कि हम डिप्लॉय कर सकें, और साथ ही साथ मैन पावर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में मेरी है, क्योंकि मेरे पास आज की तारीख में 12,000 प्लस आदमी होने चाहिए ऑपरेशन के, लेकिन मेरे पास वो 2,500 ही हैं और वो 24 आवर राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं।
0: फायर फाइटर्स के लिए स्टेशन छोड़ने का रिस्पांस टाइम बेशक एक मिनट है, पर दिक्कत ये होती है कि कई बार सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। मौका वारदात की दूरी भी स्टेशन से दूर, हर सेकंड या मिनट बेहद कीमती होता है। कई बार जिस जगह आग लगी होती है वहाँ रास्ता भी बेहद संकरा या भीड़ भाड़ वाला होता है। यही वजह है कि कई बार मौके पर पहुँचने में देरी भी हो जाती है।
4: नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी, सेकंड फ्लोर पर फ्रिज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी जो वहाँ बुझा दी गई। तो अब खतरे में कोई भी नहीं है, ना किसी को कोई चोट लगी है। घर बंद था तो घर के अंदर फिलहाल कोई भी नहीं था, जिसके कारण से किसी को कोई चोट नहीं आई।
3: मैं आज की तारीख में जो ट्रैफिक के हालात हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि मैं जहाँ पर कॉल है उसकी नियर विसिनिटी में कितनी देर पहुँचने के बाद मेरे को लोकल प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है, और एक है जो जनरल प्रॉब्लम है। दो तरह की प्रॉब्लम है। जनरल प्रॉब्लम मेरी जो है वो हर एरिया में है। जब मैं टर्नआउट होता हूँ तो ट्रैफिक इतना होता है रोड के ऊपर, उसको मेरे को मनवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जब मैं लोकल एरिया जहाँ पे की कॉल है वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ के कंस्ट्रेंट्स मेरे को एनकाउंटर करने पड़ते हैं।
0: जाहिर है मुश्किलें हजार हैं, दुश्वारियां हर मोड़ पर, लेकिन जब दिल्ली फायर सर्विस की टैगलाइन ही यही है वी सर्व टू सेव, तो फिर इस टैगलाइन को पूरा तो करना ही है। देर से ही सही, पर अगर अब भी दिल्ली फायर सर्विस के अगले 25 साल के इस रोड मैप को सरकार ने ईमानदारी से पूरा किया तो यकीनन दिल्ली आग की जलन से बच जाएगी। कैमरामैन नासिर खान और विनोद शिकारपुरी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। हर साल दिल्ली में इसी आग की वजह से न जाने कितनी ही जाने चली जाती है, करोड़ों अरबों की संपत्ति जलकर खाक हो जाती है। अगर फायर ब्रिगेड का ये प्लान सचमुच जमीन पर काम कर गया तो न सिर्फ बहुत सी जानें बचेंगी बल्कि लोगों के घर दुकान भी जलने से बच जाएंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
1: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
0: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
2: Williams keeps it. First down. Touchdown.
0: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हे। अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न, शहर शानदार आतिशबाजी, लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने दिखाया कमाल के करतब।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: मानसूनी बादलों ने दिल्ली एनसीआर में डाला डेरा, तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली के कई इलाकों में बादल हुए मेहरबान, मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में आंधी के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 10 जुलाई तक बारिश का दौर रहेगा जारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना, तापमान में 40 डिग्री के नीचे रहेगा। नोएडा के कई इलाकों में जबरदस्त बादल की मेहरबान, 30 हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश। नोएडा में बारिश के बीच विजिबिलिटी भी हुई कम, सड़कों पर हेडलाइट जला रहे हैं वाहन। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से बदल गया मौसम का मिजाज, द्वारका एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में भर गया पानी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, पानी निकलने तक रोकी गई गाड़ियां। गुजरात के गिर सोमनाथ में जोरदार बारिश, कई जगह जल जमाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी ही पानी। पर्यटन नगरी लोनावला में मॉनसून पूरे शबाब पर, पिछले 24 घंटे में 10 इंच तक हुई बारिश। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बरस रहे हैं बदरा, सड़कों पर जल जमाव। बारिश के बीच बदल गया मरीन ड्राइव का नजारा, लोग समुद्र के किनारे मस्ती करते हुए नजर आए। मुंबई में भारी मॉनसून के चलते मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, अंधेरी स्टेशन के पास तेज हवा के साथ बारिश। मुंबई के माहिम इलाके में जबरदस्त बारिश, जगह जगह सड़कों पर जल जमाव। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश से भारी पानी ही पानी, यातायात पूरी तरीके से बाधित। वसई कामण सरजा मोरी इलाके में निर्माण कार्य के दौरान 5 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए, पुलिस अग्निशमन विभाग एनडीआरएफ की टीम ने सबको बाहर निकाला। महाराष्ट्र के कुला अमरावती में 12 घंटे की झमाझम बारिश से विदर्भ हुआ लबालब, किसानों की खेले चेहरे। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे चार बच्चों को बाहर निकाला। अहमदाबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। जूनागढ़ के मांगरोल में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, हाउसिंग सोसाइटी में भी घुस गया पानी। पवित्र अमरनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन, पूरे भक्ति और उत्साह के साथ भक्त कर रहे हैं बाबा बर्फान के दर्शन। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में बाबा बर्फान के दर्शन करने के लिए तीसरा जत्था, हर हर महादेव के जयकारे। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का चौथा जत्था, श्रद्धालुओं में देखा गजब का उत्साह। अमरनाथ यात्रा के चौथे जत्थे में 6721 तीर्थयात्री शामिल हुए। बालटाल और पहलगाम रूट के लिए बांटी गई यात्रियों की संख्या। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड के टनकपुर के कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के बीच डमरू बजाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, पुंछ में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले गीता प्रवचन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का काउंटडाउन हुआ शुरू, पुरी से लेकर लखनऊ तक भव्य आयोजन। मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर में कुंभाभिषेकम का आयोजन किया गया, समारोह में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे भक्त। मदुरई के बाहरी इलाके के घने जंगलों से घिरा हुआ है ये मंदिर। मुरुगन मंदिर की दिव्यता को बनाए रखने के लिए कुंभाभिषेकम की परंपरा, गर्भगृह के कलशों में पवित्र जल से स्नान। समारोह के लिए मंदिर की भव्य सजावट, भक्तों पर पवित्र जल से छिड़काव। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ड्रोन से नजर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम का दौरा किया, अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल का निरीक्षण। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक की, यात्रा की व्यवस्थाओं को परखा। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों से भी एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। तीसरी शादी के बंधन में बने बॉलीवुड स्टार आमिर खान, पार्टनर गौरी स्प्रेट के साथ शादी की। आमिर खान ने अपने बांद्रा वाले घर पर निजी समारोह में शादी की, रजिस्टर्ड मैरिज में केवल परिवार और दोस्त। दिल्ली में 80वें फिट इंडिया इवेंट का आयोजन किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम। फिट इंडिया इवेंट साइकिल रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने दौड़ाई साइकिल। रायपुर में चिंतन योग शिविर का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। खंडवा जिले के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, विधि विधान से पूजा अर्चना। एल्डिनो जागरूकता के लिए रेत पर बनाई गई आकर्षक मूर्ति, लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संदेश दिया गया। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम और हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू होने के बाद प्राकृतिक गैस सप्लाई के नियमों में बदलाव। 9 मार्च 2026 को जारी किए गए आदेश में सरकार ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए विशेष प्रावधान लागू किए। जनजे के लिए गीता प्रेस की सौगात, गीता एक साथ 3 भाषाओं में रोमन लिपि के साथ प्रकाशित। गीता के नए संस्करण में संस्कृत के मूल श्लोक, उनका रोमन लिपि में उच्चारण, हिंदी अर्थ और अंग्रेजी अनुवाद, सब कुछ एक ही पुस्तक में। सुपौल में खाकी वर्दी में जाबाज बेटियों के कदमों की गूंज, बीएसएपी बटालियन। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर वॉशिंगटन डीसी में भव्य आतिशबाजी हुई, शानदार रोशनी से जगमग हुआ आसमान। दो सौ पचासवीं सालगिरह के जश्न में उमड़ा हजारों लोगों का जनसैलाब, 39 डिग्री की भीषण गर्मी में भी पहुंचे लोग। अमेरिकी इतिहास और मूल्यों के जश्न पर लोगों ने जताई खुशी, आतिशबाजी ने जीत लिया मन। रोशनी रंग और उत्साह से सजा अमेरिका का ऐतिहासिक समारोह। वॉशिंगटन डीसी में देखिए रोशनी और बिजली का अद्भुत नजारा, वॉशिंगटन की रात आतिशबाजी और बिजली एक साथ। अमेरिका की आजादी के जश्न की 250वीं सालगिरह के मौके पर सेना का प्रदर्शन, वॉशिंगटन डीसी के आसमान में भरी उड़ान। आसमान में गरजे F-16, F-22, C-130 जैसे फाइटर विमान। वॉशिंगटन डीसी में हवाई प्रदर्शन में पैराशूट टीमें भी शामिल हुई, आर्मी गोल्डन नाइट्स और नेवी लीफ फॉक्स ने विमान से छलांग लगाई। आसमान में देखा शानदार नजारा, लाल और सफेद धुएं की बौछार। दुनिया भर से बड़े पाल वाले और नौसेना के जहाज न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचे। न्यूयॉर्क हार्बर में अमेरिका के 250वें जन्मदिन पर भव्य एयर शो हुआ, रेड व्हाइट एंड ब्लू एयर शो में आसमान में बिखेरा रोमांच। यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स पर एयर शो की अगुवाई की गई, अमेरिका और सहयोगी देशों के 100 से ज्यादा विमानों ने भरी उड़ान। न्यूयॉर्क के आसमान में देखा शानदार हवाई करतबों का नजारा, सेल फोर्थ 250 समुद्री उत्सव का बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। न्यूयॉर्क हार्बर में हजारों दर्शकों ने एयर शो में आनंद बढ़ाया। देशभक्ति के रंग में रंगा न्यूयॉर्क आसमान में देखा शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी सेना के हवाई कौशल ने दिखाया रण कौशल। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक प्रदर्शनी की शुरुआत की गई, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की दुर्लभ कॉपी प्रदर्शित की गई। सोथबीज में 13 स्टार वाला ऐतिहासिक अमेरिकी झंडा आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। अमेरिका के 250 साल के इतिहास को 5 थीम में पेश किया गया, 1820 में छिपी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरें भी शामिल की। गार्डन पार्क्स की फोटोग्राफी ने भी खींचा सभी का ध्यान। क्रोएशिया के लोपार में रेत से बनी 15 मीटर लंबी विशाल मूर्तियां, 15वें सैंड आर्ट फेस्टिवल में 20 टन रेत से गढ़ी गई अनोखी कलाकृतियां। राजस्थान का बीच पर स्क्विड, कछुआ और मूंग सील नजर आए। ड्रोन फुटेज में दिखा अद्भुत नजारा। सैंड आर्टिस्ट ने बीच को बनाया ओपन एयर आर्ट गैलरी, 8 से 10 मीटर लंबी मॉक्सी नजर आई। पर्यटकों ने रेत की विशाल मूर्तियों के साथ जमकर खिंचवाई तस्वीरें। दक्षिण कोरिया में ह्यूमनॉइड रोबोट ने सॉकर मैदान में दिखाया दमखम। सिंगुआ यूनिवर्सिटी की टीम हेफेस्टिक बनी चैंपियन।

0: गिरते पड़ते भी रोबोट्स ने खेल पूरा करके जीता सबका दिल। सॉकर मैदान पर रोबोट्स की शानदार तकनीक। टीम हाइफेस्ट का सपना 2050 में फीफा चैंपियन बनना। रोबो कप 2026 में 45 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। चीन का रोबोट एक्सपोर्ट पहले 5 महीनों में 20 अरब युआन तक पहुंच गया। 150 से ज्यादा देशों तक पहुंची चीन की रोबोट तकनीक। यू और एशियान बने चीन के सबसे बड़े बाजार। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बढ़ी है स्मार्ट रोबोट्स की मांग। विजुअल रिकॉग्निशन वाले रोबोट्स की खूब डिमांड। चीन के ग्वांगडोंग में लाइन डांस में नन्ही कलाकारों ने बिखेरा मासूमियत का जादू। शेर की पोशाक में बच्चियों का शानदार डांस सोशल मीडिया पर वायरल। मासूम मुस्कान और शानदार मूव्स ने दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। चीन में एम्बॉडीज इंटेलिजेंस का असर दुनिया में इस्तेमाल तेज। एआई रोबोट पेमेंट लेने और सामान देने में हुआ सक्षम। लैब से निकलकर रोजमर्रा की जिंदगी में पहुंची एम्बॉडीज एआई। चीन बना रहा एक दिमाग कई शरीर वाला एआई मॉडल। बर्तन धोने और सफाई करने में माहिर। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी छात्रों ने चीन की रोबोटिक्स कंपनी का किया दौरा। अमेरिकी छात्रों ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ सीधा संवाद किया। इंजीनियर से एम्बॉडीड एआई की तकनीक को बारीकी से समझा। यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना फिर से हुआ सक्रिय। सिसिली के आसमान में लावा ही लावा। करीब 3000 मीटर ऊंचाई पर बने वेंट से लावा का बहाव जारी। एटना की आग उगलती तस्वीरें वायरल। रात के अंधेरे में लाल आसमान का अद्भुत लेकिन खतरनाक नजारा। माउंट एटना में लगातार 9वें दिन भी ज्वालामुखी गतिविधि जारी। ज्वालामुखी से राख के विशाल गुब्बार आसमान में छाए। राख और लावा निकलने का सिलसिला भी जारी। ज्वालामुखी के झटके भी लगातार किए जा रहे हैं महसूस। फिल्म अल्फा के सपोर्ट में उतरे करण जौहर। आलिया भट्ट के हुनर की जमकर तारीफ की। ऋतिक रोशन परशुराम पेटला की फिल्म की खबरें निकली अफवाह। होमले फिल्म्स ने साफ की स्थिति। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई। सलमान खान फिल्म्स ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बेबुनियाद बताया। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलेना जेटली की वापसी हो रही है। सिस्टर निवेदिता की बायोपिक से करेंगी कमबैक। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का हो गया टाइटल विकेट सने।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Hey Jack, could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
8: कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
9: प्राय घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं। तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक है मूल पाठ भी उसे कर सकता है। और इसमें प्रसंगानुकूल 4 रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
8: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा ताकि संस्कृत या हिंदी ना जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
9: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
8: तीन भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन 4 रंगों में 8 पेपर पर किया जाएगा जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
10: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है उसे इंग्लिश का ज्ञान है तो उस रोमन भाषिक के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
8: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है लेकिन अब एक ही साथ 3 भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
12: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
13: You hear it once and remember everything.
14: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
13: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश। अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद। गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का भी आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान। सामने आई पत्नी गौरी स्प्रैट संघ शादी की पहली तस्वीर। 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा। और अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न। शहर शानदार आतिशबाजी, लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट, पैरा जंपर्स ने भी दिखाए कमाल के करतब।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आखिरकार वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है जिसका सभी शिव भक्त को इंतजार था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा की खबर और ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही हम आपको दिखाएंगे बाबा बर्फानी की महिमा। देखिए, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर के पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से तीर्थयात्रियों के जत्था आज तड़के ही पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया है। आप देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और बालटाल के पास डोमेल में RFID चेक करके तीर्थयात्रियों को आगे भेजा जा रहा है और इसी तरह पहलगाम यात्रा मार्ग पर भी तीर्थयात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना होने लगे हैं। हालांकि आज तड़के बारिश के कारण यात्रा थोड़ी देर रोकी जरूर गई थी, लेकिन बारिश पर आस्था जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आई और पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए तीर्थयात्री पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह चरम पर देखा जा रहा है। इस बीच जम्मू के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी आज बालटाल और पहलगाम, जो कि दो रूट से अमरनाथ यात्रा के लिए, इन दोनों के लिए ही रवाना हो चुका है। और इसी बीच श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यात्रा मार्ग पर हर दिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा का सुचारू संचालन किया जा सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध भी किया है कि वो अपना एडवांस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और प्रशासन की ओर से बताई गई तिथि के अनुसार ही यात्रा करें। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा लगातार जारी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर इस यात्रा में शामिल हैं। बालटाल रूट से करीब आधी दूर तय करने पर उन्होंने इस तीर्थ यात्रा की रिपोर्ट हमें भेजी है और बताया है कि किस तरह से जोश और उत्साह से ये तीर्थयात्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अमरनाथ यात्रा करते हुए मैं इस वक्त बरारी टॉप पहुंच गया हूं और यहां आप देखिए कि लगातार लोग जयकारे लगा रहे हैं। बाबा बर्फानी के हर हर महादेव का यहाँ पर जयकारा लगाते हुए तमाम लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जा रहे हैं और ऊपर की तरफ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी की गुफा यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर अब बचता है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं सामने जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी रास्ते से होते हुए सब लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है इस रास्ते से होते हुए पूरी तरीके से पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच रहे हैं, कोई पालकी से तो कोई खच्चर के जरिए तो कोई पैदल ही ये पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट कर रहा है और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए सभी लोग यहां से ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं। आधी दूरी तय हो चुकी है। गुड न्यूज टुडे ने जैसा कि आपसे वादा किया था कि पवित्र अमरनाथ गुफा की हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे, अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं वो यहां पर यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं। पहला जत्था जो है वो लगभग आधी दूरी तक पहुंच चुका है और अब पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए इनको कुछ ही समय बाकी है। अगले कुछ घंटे में ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। आप देखिए कि बहुत सारे लोग खच्चर से आ रहे हैं तो कुछ पैदल और पालकी से भी यहां से आगे की ओर यात्रा कर रहे हैं। कठिन ऊंचाई है, लेकिन इस कठिन ऊंचाई के बीच जो तमाम श्रद्धालु हैं बाबा बर्फानी के, वो ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सारे लोग जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं और तस्वीरें यही बयां करती हैं कि लोगों के अंदर जिस तरीके की बाबा बर्फानी को लेकर के श्रद्धा है, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। जोशो खरोश के साथ ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से आकर के आज पहले जत्थे के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए लोग आगे पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, हर एक जगह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगाए गए हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को भी तैनात किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो वो यहां से उसको रेस्क्यू किया जा सके। और इस तरीके के पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही लगातार यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज और इसके साथ साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: तो पवित्र अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और जीएनटी लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचने लगे हैं। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाबा भोले के परम धाम श्री अमरनाथ की महिमा के बारे में। देखिए, अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिमलिंग स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दुनिया में केवल अमरनाथ की गुफा को छोड़कर और कहीं भी ठोस बर्फ का शिवलिंग अपने आप प्राकृतिक तौर पर बनता ही नहीं है। अमरनाथ धाम के कण कण से जुड़ी है आस्था और चमत्कार की ऐसी सैकड़ों कहानियां।

0: अद्भुत है वो हिमलिंग, अलौकिक है बाबा बर्फानी। सनातनी आस्था की ये कथा है सदियों पुरानी, क्योंकि आरंभ ही है बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा, जो शिव के सभी तीर्थों में महातीर्थ मानी गई है। अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलेगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। यात्रा की अवधि कुल 57 दिनों की होगी। इस दौरान लाखों शिव भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और बाबा के चमत्कार के साक्षी बनते हैं। भक्तों की बस यही तमन्ना होती है कि उन्हें बस किसी तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। चलिए अब आपको अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट के बारे में विस्तार से बताते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला 41 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रूट, दूसरा 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रूट। पहलगाम रूट अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक रूट है। यहाँ से पवित्र गुफा तक पहुँचने में आमतौर पर 3 से 4 दिन लगते हैं। इस मार्ग पर चढ़ाई धीरे धीरे होती है, जिससे श्रद्धालुओं का शरीर ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के अनुकूल हो जाता है। साथ ही रास्ते में शेषनाग और पंचतरणी के दर्शन भी होते हैं। वहीं बालटाल रूट अपेक्षाकृत छोटा रास्ता है। इस मार्ग से श्रद्धालु कम समय में यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसकी चढ़ाई काफी सीधी, खड़ी और कठिन मानी जाती है। यह रूट बुजुर्ग बच्चों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भोले भंडारी बर्फ के शिवलिंग रूप में कब से विराज रहे हैं और भक्त उनके दर्शन करने के लिए कब से वहां पहुंच रहे हैं, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी वजह से ये गुफा स्मृतियों से लुप्त हो गई थी और करीब 150 साल पहले इसे फिर से खोजा गया।
1: गुफा युगों पुरानी है, वहीं शिव पार्वती कथा से भी जुड़ी मानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका प्रमाण जो है वो मध्यकालीन से अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से ये हिमालय भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है जो बहुत ज्यादा प्राचीन है। ये गुफा जो है लगभग 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पर ये जो गुफा स्थित है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, साथ ही यात्रा को शारीरिक रूप से कठिन भी बनाती है, लेकिन अनुभव को और भी विशेष बना देती है।
0: इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार भी जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। बर्फ हटाने से लेकर अलग अलग पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए रहने का इंतजाम किया जाता है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारे के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग के साक्षी बनती हैं, तो हृदय भक्ति के भावों से भर उठता है।
2: अमरनाथ बाबा की जय, बर्फानी बाबा की जय।
1: रास्ते में भगवान शिव ने अपने साथ जितने भी उनके साथ प्रतीक चल रहे थे, उन सभी का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने नंदी को पहलगाम में छोड़ा, वहीं चंद्रमा को चंदनबाड़ी के पास छोड़ा, नाग को शेषनाग क्षेत्र में और गणेश जी को महागुणस के पास छोड़ा। इसके बाद वो माता पार्वती के साथ गुफा में पहुंचे। एक प्रसिद्ध मान्यता ये भी है कि गुफा में कथा सुनते समय 2 कबूतर इस रहस्य को सुन लेते हैं और वो अमर हो जाते हैं। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतरों का दिखना श्रद्धालु को इस कथा को जोड़ कर देते हैं।
0: अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जब महादेव माँ पार्वती को मोक्ष की कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनगिनत नागों को अनंतनाग में छोड़ा। अपने माथे के चंदन को महादेव ने चंदनबाड़ी में उतारा, बाकी दूसरे पिस्तुओं को पिस्सू टॉप पर छोड़ा। अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नाम के स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा का हिस्सा हैं।
1: जब भगवान ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाने के लिए गुफा चुनी थी तो उन्होंने सभी प्रतीकों का त्याग किया था। इनमें चंद्रमा भी शामिल थे जिसे उन्होंने यात्रा के दौरान छोड़ दिया था, और कथाओं के अनुसार चंदन बाड़ी या आगे के मार्ग में इसका त्याग हुआ था। इसलिए शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा और अमरनाथ यात्रा दोनों को जोड़कर देखा जाता है।
0: भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुंच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना नहीं रह जाती। बाबा बर्फानी तक पहुंचने के लिए दुर्गम रास्तों से गुजरना होता है। भक्तों को कड़ी परीक्षा देनी होती है, लेकिन रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, राह में मुश्किलें कितनी भी आ जाए, भोले के भक्तों के हौसले कोई डिगा नहीं सकता।
3: कहते हैं कि जीवन की हर बाधा हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाती है और भक्तों को मनोकामनाओं की पूर्ति का महावरदान मिलता है। देखिए, विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा रहस्य है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य जो इस पवित्र गुफा से जुड़ा हुआ है।

0: आस्था का सबसे अद्भुत अलौकिक सफर माना जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा अजूबा केवल यहीं होता है। पूरी धरती पर केवल यहीं पर भगवान शंकर हिमलिंग में दर्शन देते हैं। इसे आप कैलाशपति का वादी में स्थापित हिमलिंग या हिमधाम कह सकते हैं, जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही अपने आप प्रकट होता है और फिर अपने आप ही इसका लोप हो जाता है।
1: अमरनाथ गुफा में दिखाई देने वाला बर्फानी बाबा कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग माना जाता है। और ये कैसे बनता है? ये जो जितना भी प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है। गुफा के बाहर बहुत ठंड होती है और गुफा के भीतर ऊपर से जो पानी टपकता है, जो बर्फ पिघलती है, उसी की सर्दी तापमान के कारण ये पानी जो है जमकर बर्फ में बदल जाता है और धीरे धीरे उसी जगह बर्फ का एक शिवलिंग जैसा आकार बन जाता है।
0: मान्यता है कि महर्षि भगु ने अमरनाथ गुफा की पहली यात्रा की थी। अमरनाथ की गुफा में ही भगवान शिव हिमलिंग के स्वरूप में दर्शन क्यों देते हैं, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। लेकिन जितना मुश्किल बाबा बर्फानी तक पहुंचने का सफर है, उससे ज्यादा इस यात्रा की हैरान कर देने वाली पगडंडियां। जिस पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहीं से बाबा बर्फानी से जुड़ी कहानियों का अचंभित

0: कहानी सुनने के दौरान माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां मौजूद कबूतरों का एक जोड़ा भगवान शिव के कहानी सुनाने के दौरान लगातार गुटर गुटर की आवाज निकालता रहा, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी कहानी सुन रही हैं। कथा सुन लेने के चलते इन कबूतरों को भी अमरत्व प्राप्त हुआ और आज भी अमरनाथ गुफा के दर्शन करते वक्त कबूतर दिख जाते हैं। ये आश्चर्य ही है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहां कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है।
1: कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि सृष्टि में जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद अमरत्व का क्या रहस्य है। तब भगवान शिव ने उन्हें अमरता का रहस्य बताने का निर्णय लिया, लेकिन ये ज्ञान सभी के लिए नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक एकांत स्थान चुना, वो थी अमरनाथ गुफा।
0: माना जाता है कि इस दिव्य गुफा में हिमलिंग का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैसे तो उस पूरी गुफा में जगह जगह से पानी टपकता रहता है, लेकिन गुफा के भीतरी हिस्से के एक कोने में हर साल उसी स्थान पर हिमलिंग का बनना विज्ञान को भी चुनौती देता है। वहां पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो धीरे धीरे हिमलिंग में बदलता जाता है। ये बर्फ आम बर्फ से बिल्कुल अलग होती है जो गुफा के आसपास मिलती है। हिमलिंग की बर्फ बहुत ठोस होती है जो लंबे समय तक टिकी रहती है। गुफा में बनने वाले हिमलिंग का एक संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। पूर्णिमा में अपने पूर्ण आकार में आ जाने वाला चांद अमावस्या तक गायब हो जाता है। गुफा में बनने वाला हिमलिंग भी चांद के साथ ही बढ़ता जाता है और पूर्णिमा को अपने वृहद आकार में होता है। उसके बाद चांद के आकार के साथ साथ हिमलिंग भी पिघलता जाता है और अमावस्या आते आते ये अंतर्धान हो जाता है। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यताओं की कहानियां अनंत हैं। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन करने भर से मनुष्य को पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक काल से ही शिव भक्त भगवान शंकर के इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए रास्ते की सभी पीड़ाएं सहते हैं और भगवान शिव के अनंत अलौकिक हिमलिंग के दर्शन करके चित आनंद की प्राप्ति करते हैं।
2: तो चलिए इसी के साथ पवित्र अमरनाथ गुफा से यानी ग्राउंड जीरो से जीएनटी आपको लगातार तस्वीरें जो है वो दिखाता रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
3: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर।

0: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट चेक में, और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिशी रंग में भरकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच भी मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां पर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर भी कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच के धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। जी हां, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरने का ये वीडियो हाल ही में आए वेनेजुएला के भूकंप के दौरान का है। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये आगे आपको बताएंगे। तो वहीं हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल में न केवल पानी है बल्कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल्स की टंकी पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकराकर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप के दौरान का ये वीडियो है। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है, रिपोर्ट देखिए।
10: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून को एक मिनट के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। इसमें सैकड़ों इमारतें मलबे में बदल गई। भूकंप से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। अब इसी भूकंप से जोड़कर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दो बड़ी बिल्डिंगों को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि वेनेजुएला बहुमंजिला इमारत नहीं जैसे तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो जा रहा है। इतने ताकतवर भूकंप की मार कितनी देर झेलती, दोनों औंधे मुंह गिरी, लोग क्या पता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो बड़ी बिल्डिंग्स को आपस में टकरा कर नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की और पड़ताल के दौरान ये बात आई कि 24 जून 2026 को 7.2 और 7.5 की तीव्रता के भूकंपों से पूरा वेनेजुएला हिल गया। राजधानी काराकस और उसके आसपास की सैकड़ों इमारतें ढहकर कंक्रीट और स्टील के मलबे में बदल गई। कई लोग ढही हुई इमारतों के नीचे दब गए। लेकिन ये वीडियो उसी भूकंप के दौरान का है, ये जानना भी जरूरी हो गया था। तो दावे की सच्चाई जानने के लिए टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के लिए दोनों इमारतों के टकराने पर इनकी खिड़कियों का आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसके अलावा दोनों इमारतें एक ब्लॉक की तरह गिर जाती हैं, ना कि बिखर रही हैं, ना टूट रही हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। और सबसे पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी क्यों नहीं मिली, अब तक कहीं कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच क्या है।

0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो को सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें कहीं भी वायरल वीडियो से जुड़ी खबरें नहीं मिली। इसके बाद हमने वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए इसके हर फ्रेम को गौर से देखा। इसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों इमारतों के हिलने और टकराने के बावजूद उनमें मौजूद खिड़कियों की दशा में कोई बदलाव नहीं होता है, इनकी आकृतियों में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। इसलिए हमने सबसे पहले AI डिटेक्टर टूल detectvideo.ai की मदद ली। वायरल वीडियो को स्कैन करने पर इस टूल के नतीजों ने इसके AI के बने होने की 73% संभावना की पुष्टि की। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वीडियो को एक और AI डिटेक्टर टूल हाई मॉडरेशन पर चेक किया। हाई मॉडरेशन के एनालिसिस में वीडियो के 97.8% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इसी तरह साइट इंजन के एनालिसिस ने भी वायरल वीडियो के 99% AI से बने होने की पुष्टि की। इस तरह हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। वेनेजुएला में भूकंप के नाम पर इमारतों के टकरा कर गिरने का वायरल वीडियो फेक है, इसे AI की मदद से बनाया गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा ये किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल की टंकियों पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जबकि एक वीडियो में इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा भी किया गया। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, देखिए पड़ताल करती है रिपोर्ट।

0: देश में E85 पेट्रोल को 5 जून 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। ये मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है। पेट्रोल पंप पर किसी तरह के भ्रम की स्थिति से बचने के लिए E85 डिस्पेंसर को अलग ब्रांडिंग और स्पेशल लेबल के साथ पेश किया गया है। कम कीमत के कारण ये फ्यूल आम यूजर्स के लिए काफी आकर्षक विकल्प बन सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल E85 कंप्लायंस व्हीकल में ही किया जा सकेगा, जिसकी संख्या अभी बहुत कम है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीर वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल की फ्यूल टंकी पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जबकि एक वीडियो में इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा किया गया है। एक एक्स यूजर ने 11 सेकंड का ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया, अपने बाइक में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालने का ये भी एक फायदा मिल रहा है। मधुमक्खियां साथ में फ्री मिल रही है। E20 पेट्रोल में ये हाल है तो E85 पेट्रोल का क्या होगा? वहीं एक फेसबुक यूजर ने इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा करते हुए ये वीडियो शेयर किया। बिना सच झूठ जाने यूजर्स इन दोनों वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये दोनों वीडियोस खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण मोटरसाइकिल की टंकी पर मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जबकि एक वीडियो में इथेनॉल वाले पेट्रोल में पानी का दावा भी किया गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किए जा रहे हैं। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की और दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने दोनों वीडियो को बारी बारी से इसकी पड़ताल की। पहले वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले को लगे कि मधुमक्खियां पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल की वजह से यहां आ रही हैं। वहीं दूसरे वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि वीडियो हाल फिलहाल का नहीं बल्कि पुराना हो सकता है, क्योंकि सर्च के दौरान हमें इसके बारे में हालिया कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी कहीं नहीं मिली। तो सर्च के दौरान हमें यह पुख्ता जानकारी मिली कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल को और डिस्टिलेशन के बेहद जटिल प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो गुजरता है उस प्रोसेस से और इस प्रक्रिया के अंत में गन्ने या अनाज की सारी मिठास और शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। ईंधन ग्रेड के इथेनॉल में विशेष प्रकार के डेन्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। ये चींटियों और कीड़ों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाने का काम करते हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ होता तो इसके बारे में कहीं ना कहीं खबरें जरूर होती, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने दावे को सवालों की कसौटी पर कसा और सबसे पहला सवाल ये निकल कर आया कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कहीं कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं है, कोई अपडेट क्यों नहीं है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम, लोगों के बीच अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का सच और झूठ क्या है।
0: फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले मोटरसाइकिल की टंकी पर मधुमक्खियों के झुंड वाले वीडियो की तहकीकात की। यूजर के दावे के मुताबिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डलवाते समय मधुमक्खियों का झुंड आ गया था। सर्च के दौरान हमें एक भी ऐसी विश्वसनीय खबर नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि ऐसी कोई घटना हुई है। इसमें हमें वीडियो के AI निर्मित होने का शक हुआ। हमने वीडियो को ध्यान से देखा, इसमें हमें वीडियो के नीचे की ओर एक वाटरमार्क दिखाई दिया। ये ऐसे वीडियो में होता है जिसे Google Gemini AI टूल की मदद से तैयार किया जाता है। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को सिंथाइडी डायरेक्टर की मदद से चेक किया। सिंथाइडी की एनालिसिस इस वायरल वीडियो के गूगल AI की मदद से बनाए जाने की पुष्टि करती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने उस तस्वीर की जांच की जिसमें एक बाइक की पेट्रोल की टंकी के ऊपर मधुमक्खियों के झुंड को दिखाया गया है। इस वायरल तस्वीर के साथ दावा किया गया है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाने के बाद टंकी के ऊपर का ये नजारा है। हाइव मॉडरेशन टूल पर इस तस्वीर को सर्च करने पर हमें पता चला कि ये AI की मदद से बनाई गई है। हाइव मॉडरेशन की एनालिसिस इस तस्वीर के ग्रोक से बनाए जाने की अधिकतम संभावना की पुष्टि करती है। हमने इस तस्वीर को साइट इंजन डायरेक्टर टूल की मदद से भी चेक किया। इसकी एनालिसिस इन तस्वीरों की AI क्रिएट होने की अधिकतम संभावना की पुष्टि करती है। अब बारी थी उस वायरल दावे की जांच करने की, जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। सर्च के दौरान हमें कुछ पुरानी खबरों से पता चला कि वायरल वीडियो पुराना है। 13 सितंबर 2025 को छपी एक खबर में बताया गया था कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक शख्स को कार में पेट्रोल भरवाने के बाद अपनी कार मैकेनिक को दिखानी पड़ी, क्योंकि तेल भरवाने के बाद अगले ही दिन उसकी गाड़ी खराब हो गई। मैकेनिक के अनुसार पेट्रोल में पानी मिला हुआ था। सर्च के दौरान हमें भारत पेट्रोलियम की एक पोस्ट मिली 17 जून 2026 की। इस पोस्ट में उस दावे को फर्जी बताया गया, जिसमें दावा किया गया था कि E20 पेट्रोल के कारण टंकी के ढक्कन पर चींटियां लग रही है। सर्च के दौरान हमें PIB का 5 जून 2026 का एक प्रेस नोट भी मिला। इसके मुताबिक केंद्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में गलतफहमियों को दूर करते हुए कहा था कि E85 फ्यूल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए, न कि सामान्य पेट्रोल वाहनों के लिए। जब से E20 देश भर में मानक ईंधन बन गया है, तब से इथेनॉल समीरण की वजह से इंजन फेल होने या वाहन के खराब होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। E20 अनुकूल वाहन बेहतर एक्सेलरेशन और राइड क्वालिटी देते हैं, खासकर शहर में ड्राइविंग के दौरान। भारत में E20 फ्यूल के इस्तेमाल का वाहन बीमा की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है। साफ है, इथेनॉल पेट्रोल से जुड़ी वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। इथेनॉल पेट्रोल के कारण टंकी पर मधुमक्खियों के झुंड वाला वीडियो और तस्वीर AI से बनाए हुए साबित हुए, जबकि E20 पेट्रोल में पानी का दावा करने वाला वीडियो पुराना साबित हुआ। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में वक्त हो गया इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: एवरी सिटी हैज हिडन स्टोरीज, द बिल्डिंग यू पास एवरी डे, द पार्क वेयर हिस्ट्री वाज मेड, the person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त, रात 8 बजे Good News Today पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।
6: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, जब हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। एक हथिनी का अपने बच्चे के साथ प्यार भरा और लाड़ वाला पल सामने आया है। इस पल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के शुरू में हाथी के बच्चे को बड़े हाथियों के बीच खड़े देखा जा सकता है। वो खूब धुमाल मचा रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, शैतानी रुक ही नहीं रही थी। तो माँ ने अपनी सूंड का सही इस्तेमाल कर लिया, सूंड में उसका एक हाथ दबा लिया और चलने लगी। बच्चे को लटके हुए देखकर यही लग रहा है कि वो माँ से कह रहा हो, छोड़ दो मुझे और खेलना है, पर माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। खेल के मैदान से छोटे बच्चों को माएं ऐसे ही ले जाती हैं। वीडियो देखकर आपको ऐसा ही लगेगा। सोशल मीडिया पर एक हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों का दिल छू लिया है। वीडियो में एक हाथी के बच्चे और उसकी देखभाल करने वाली केयरटेकर के बीच का बेहद अनोखा और दिल छू लेने वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि केयरटेकर को पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो बेचारी मुश्किल से लंगड़ा कर चल पा रही है। हाथी भी अपनी केयरटेकर को बहुत ध्यान से देखता है और फिर बिल्कुल उसी की नकल करते हुए खुद भी लंगड़ा कर चलने लगता है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे दिखता है कि जब केयरटेकर चलते चलते थककर जमीन पर बैठ जाती है तो उसे देखकर हाथी भी बाकायदा एक्टिंग करते हुए वहीं जमीन पर लेट जाता है। हाथी के इस प्यारे और नटखट अंदाज ने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर बाप बेटी के एक बेहद भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची ने बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुंचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ में पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देख पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देख इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहे हैं। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई चल रही होती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊद बिला और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहे होते हैं। तीनों को देख ऐसा लग रहा है जैसे उनकी दोस्ती काफी गहरी हो। बच्ची डरने के बजाय खुश है और साही उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ कदम मिलाकर चल रहा है। साही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्चे से कह रहा हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं भी पीछे पीछे आऊंगा। वीडियो में बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें वो सिंगली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वह इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच जहां बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में ज्यादा समय बिताते नजर आते हैं, वहीं कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो हर किसी को अपने बचपन की गलियों में वापस ले जाते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो छोटे बच्चे जिस अंदाज में एक ही साइकिल चलाते नजर आते हैं, उसे देखकर लोग उनकी समझदारी, बैलेंस और दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बच्चे सड़क पर एक ही साइकिल चला रहे हैं। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि दोनों बच्चे एक एक पैदल चलाते हुए साइकिल को बड़े आराम से बैलेंस करते हैं। दोनों के बीच इतना अच्छा तालमेल दिखाई देता है कि साइकिल बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ती रहती है। दोनों बच्चे पूरे रास्ते इस सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। उनकी अनोखी जुगलबंदी देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। कहते हैं कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो भी यही एहसास करवा रहा है। जब एक बुजुर्ग दंपति ने ई रिक्शा चालक से कहा कि उनके पास किराए देने के पैसे नहीं है, तो उसने न सिर्फ उन्हें मुफ्त में मंजिल तक पहुँचाने का फैसला किया बल्कि अपने पैसों से फ्रूटी भी पिलाई। इंसानियत की ये छोटी सी मिसाल अब लाखों लोगों की आंखें नम कर रही है और इंटरनेट पर दिल जीत रही है।
2: कहाँ जा रहे हो?
3: सर बाहर।
2: बैठो, छोड़ देंगे।
3: पैसा नहीं है।
2: पैसा नहीं लेंगे, बैठिए, ठंडा पियेंगे, लाओ।
3: क्या हुआ?
2: मैं लाता हूँ, रुकत है, कोई मुश्किल नहीं। पी
4: मोहनी करिए, भाड़ा लेके आया थे 400 रोड
2: नहीं खुल रहा है। ठीक है, जाइए आराम से। हाँ,
4: आप रखो ना, आप मेरा माँ जैसा बेटा समझ के रख लो। ठीक ठीक जा,
2: ठीक है आंटी, जाओ। हाँ, आप आराम आराम से जाओ।
1: कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसुओं का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। इंडोनेशिया से एक बेहद हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है जहां बार बार होने वाली चोरियों से तंग आकर मकान मालिक और स्थानीय लोगों ने चोरों को सबक सिखाने का एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में हो रही है। पुलिस की सुस्ती से परेशान होकर जब लोगों ने खुद कानून हाथ में लिया तो उन्होंने चोरों को केवल पकड़ा ही नहीं बल्कि उन्हें मम्मी की तरह डक टेप से लपेट कर रख दिया। दरअसल ये पूरी घटना इंडोनेशिया के एक रिहायशी इलाके की है जहां एक दुकान में चोरी करने के इरादे से 4 चोर दाखिल हुए थे। मकान मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, रात के अंधेरे में स्थानीय लोगों ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। लेकिन चोरों को पकड़ने के बाद निवासियों ने जो किया उसने हर किसी को चौंका दिया। चोर भाग न सके इसलिए लोगों ने चमकीले नारंगी रंग के डक्ट टेप से उन्हें सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह बांध दिया। हालत ये हो गई कि चोरों का हिलना डुलना भी बंद हो गया। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग मजाकिया लहजे में कह रहे हैं कि मकान मालिक ने चोरों को एक टीवी सीरीज के मशहूर कार्टून कैरेक्टर टिंकी विंकी और उसके दोस्तों के इंसानी रूप में बदल दिया क्योंकि टेप से उनके सिर पर नकली कान तक बना दिए गए थे। पश्चिम बंगाल के एक सिक्योरिटी गार्ड का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। गार्ड की अद्भुत आवाज और रोटी कमाने की जद्दोजहद ने इंटरनेट को बता दिया कि किसी के कपड़ों से उसे जज नहीं करना चाहिए। बिना किसी म्यूजिक सिस्टम, बिना किसी ऑटो ट्यून या महंगे स्टूडियो के इस गार्ड ने इस गाने को इतनी शानदार अंदाज में गाया है कि सुनने वाले बस रिप्ले बटन दबाते जा रहे हैं।

देसी सूट पहनकर तीन लड़कियों ने ऐसा शानदार डांस किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दमदार एक्सप्रेशन, जबरदस्त तालमेल और भरपूर एनर्जी ने लोगों का दिल जीत लिया। यूजर्स इस पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और वीडियो को बार बार देख रहे हैं।

0: एक कलाकार का वीडियो इन दोनों लोगों के बीच चर्चा में है, जिसमें उसने अपनी मेहनत, धैर्य और शानदार हुनर का ऐसा नमूना पेश किया कि हर कोई उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। यही वजह है कि ये वीडियो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। वीडियो की शुरुआत में कलाकार एक पुरानी और बेकार पड़ी ट्यूबलाइट उठाता है। सबसे पहले वो बहुत सावधानी के साथ उसकी किनारी को तोड़ता है ताकि अंदर का कांच सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वो ट्यूबलाइट के अलग अलग हिस्सों को बड़ी बारीकी से तैयार करता है, फिर आग की मदद से कांच को गर्म करके उसे धीरे धीरे मनचाहा आकार देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाकार हर छोटे हिस्से पर बेहद ध्यान देता है। वो पक्षी की चोंच, गर्दन, पंख और पूंछ जैसी बारीकियों को भी इतनी सफाई से बनाता है कि तैयार होने के बाद वो किसी शोपीस से कम नहीं लगता। पूरा वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि इस कला के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि कई सालों का अनुभव भी छुपा है। जो चीज आमतौर पर टूटने के बाद सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, उसी से इतनी शानदार कलाकृति बनाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your team.
6: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
12: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सब भी पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का लुत्फ। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संघ शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके।
12: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हम, और सबसे पहले आपको बता दें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी शादी की बात करेंगे। आमिर ने आखिरकार अपनी लेडी लव गौरी स्प्रेट से तीसरी शादी कर ही ली। शादी में बहुत कम और करीबी दोस्तों समेत दोनों के परिवार वाले ही शामिल हुए। आमिर की शादी में बेटा जुनैद और बेटी भी पहुंचे।

0: प्रैट के साथ जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है। मुंबई में आमिर के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। शादी की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें आमिर और गौरी रजिस्टर्ड मैरिज करते दिख रहे हैं। इस फोटो में दोनों के परिवारों को भी देखा जा सकता है। अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी हो और बॉलीवुड के सितारे जश्न में शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आमिर और गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे पहुंचे। आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की लगभग पूरी स्टार कास्ट इस शादी में शामिल हुई। न्यूली वेड कपल को जिंदगी की इस नई पारी की शुभकामनाएं देने के लिए अंबानी परिवार और राज ठाकरे भी पहुंचे। आमिर खान की फिल्मों की ही तरह उनकी लव लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। गौरी स्प्रैट आमिर का तीसरा प्यार है जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी बनाया है। इससे पहले आमिर ने साल 1986 में रीना दत्ता से पहली शादी की थी जो करीब 16 साल चली। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव से दूसरी शादी की। हालांकि दोनों ही रिश्ते वक्त के साथ एक नए मोड़ पर आकर खत्म हुए, लेकिन खास बात यह है कि आमिर आज भी अपनी दोनों एक्स वाइफ के साथ बेहद अच्छा और दोस्ताना बॉन्ड शेयर करते हैं। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से संभालने वाले आमिर खान को अब गौरी स्प्रैट के रूप में अपना नया हमसफर मिल गया है। उम्मीद है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की असल जिंदगी की ये नई स्क्रिप्ट सुपरहिट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, देश भर में बरसते राहत के बादल ये तो बता रहे हैं कि इंडिया का मानसूनी मौसम उसका आगाज हो चुका है। दिल्ली समेत एनसीआर वालों का वीकेंड भी मौसम ने गुजार कर दिया। शनिवार से छाए बादलों ने रविवार से बरसना शुरू कर दिया है। मौसम कूल कूल हो गया है, लेकिन दिल्ली वालों पर मौसम की ये मेहरबानी अभी बरकरार रहने वाली है, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए महानगरी मुंबई में मानसून ऐसा बरसा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पुणे में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जम चुका है, लेकिन बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को सुकून जरूर दिया है। बात मौसम की निकली है तो जरा आम के स्वाद पर भी हम बात कर लेते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसी ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधी स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव व संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली में सजे विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद के दशहरी और चौसा आम बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने किसी देसी अंदाज में आम चूसते हुए नजर आए और खाते हुए नजर आए। हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत भी की गई। तस्वीरें देखिए। वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त के साथ खेती किसानी का अंदाज भी हाईटेक हो रहा है। ड्रोन एक ऐसी तकनीक जिसने हर सेक्टर में क्रांति ला दी है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं है तो वो है हमारी कृषि क्षेत्र में। इसी जरूरत को समझते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी को गांव गांव और खेत खेत तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दिल्ली में आयोजित नेशनल ड्रोन समिट 2026 में देश की पहली ड्रोन टेक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लॉन्च कर दिया गया है, जो ग्रामीण भारत में एक नई सुबह की शुरुआत है।

0: सिर्फ सरहदों की निगरानी और रक्षा क्षेत्र तक सीमित रहने वाले ड्रोन अब हमारे देश के गांवों और खेतों की तकदीर बदलने जा रहे हैं। आसमान से खेतों की निगरानी करनी हो या फिर मिनटों में कीटनाशक का सटीक छिड़काव, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब भारतीय किसानों का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में नेशनल ड्रोन समिट 2026 का आयोजन किया गया, जहां भारत की पहली ड्रोन टेक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च हुई। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण एक पंचायत एक ड्रोन उद्यमी राष्ट्रीय मिशन रहा, जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत देश के हर पंचायत में ट्रेंड और सर्टिफाइड ड्रोन उद्यमी यानी ड्रोन ऑपरेटर तैयार किए जाएंगे।
1: जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको किसान तक पहुंचाया जाए, और किसान तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हमने एक किस्म से ब्रिज तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा है एक पंचायत एक ड्रोन उद्यमी। इस स्कीम के अंतर्गत हम हर एक पंचायत से संपर्क करके उनमें से एक उद्यमी तैयार कर रहे हैं। उस उद्यमी का एम है कि वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग ले और उस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके ड्रोन को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करे। इसके लिए अलग अलग पैकेजेस बनाए गए हैं।
0: लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख ऐसे उद्यमी तैयार हों, जो गांवों में ही खेती फसल सर्वे मैपिंग और सटीक स्प्रेइंग जैसी आधुनिक सुविधाएं किसानों को मुहैया कराएं।
2: पहला ड्रोन टेक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, जिसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें 1 ड्रोन उद्यमी 1 पंचायत होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल करना, फार्मर्स को एंड यूज़र बनाना और वो स्प्रे करे ड्रोन के साथ, उसके लिए लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योर होना बहुत ज़रूरी है। हम ये पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि जब तक इकोसिस्टम नीचे बिल्ड नहीं होगा तब तक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और ड्रोन से जुड़े हुए कंपनीज जो हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगी।
0: किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस समिट में एक खास एटीवी भी लॉन्च की गई। अक्सर गांव के कच्चे और सकरे रास्तों से खेतों तक भारी ड्रोन बैटरी और केमिकल्स ले जाना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब ये एटीवी पंचायतों को ड्रोन के साथ ही दी जाएगी, ताकि किसान बिना किसी झंझट के अपने घर से खेत तक सारा सामान आसानी से ले जा सके।
1: ये एटीवी का लाभ यही है कि जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहाँ पे नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, पैदल जाने में बहुत दिक्कत है, कोई और वाहन नहीं चलता है, सिर्फ ट्रैक्टर चलता है, यह एटीवी चलती है।
0: ये ड्रोन मिशन भारत के ग्रामीण और एग्री टेक सेक्टर के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये मिशन रफ्तार पकड़ता है तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अन्नदाता आधुनिक खेती के साथ विकास की नई उड़ान भरेंगे।
3: ये है कि हर पंचायत में एक ड्रोन उद्यमी तैयार किया जाए, और आप सोचिए कि जिन कामों को किसान अभी मैन्युअली करता है, इसमें घंटों का समय लगता है, कई बार दिन लग जाते हैं उसे दवाइयों का छिड़काव करने में, केमिकल डालने में, उसे काम को अगर ड्रोन से किया जाएगा तो वो काम कितना आसान हो जाएगा, और किसान का समय जितना बचेगा उतना ही किसान के लिए देश के लिए भी अच्छा रहेगा। कैनवल शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
4: अमरनाथ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में गजब का उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। बम बम भोले के जयकारे और भारी जोश के बीच आज श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बार की यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि युवाओं में इसे लेकर भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। युवाओं के लिए यह सिर्फ आस्था का सफर नहीं बल्कि कश्मीर की वादियों के बीच एक शानदार एडवेंचर टूरिज्म भी है।

0: बम बम भोले का ये जय घोष केवल पवित्र अमरनाथ यात्रा का उल्लास भर नहीं है, ये सनातन संस्कृति की वो परंपरा है जिसके कण कण में छिपी है अमरत्व की अमर कहानी, जो श्रद्धा की पराकाष्ठा है, विश्वास का समंदर है, और तो और लीला ऐसी कि स्वयं शिव प्रकट है बर्फानी रूप के अंदर।
1: उनका जो बैच जा रहा है सभी एक्साइटेड हैं और सब ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम लोग पहुंचे और जयकारा लगाते हुए बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। बालटाल के थ्रू हम लोगों का जर्नी है और सभी एक्साइटेड हैं। सब ये चाहते हैं कि कोई भी हम लोगों को रास्ते में कोई रिकॉर्ड ना हो और सेना का हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनके जरिए ही हम लोग सुरक्षा से और शांतिपूर्ण से हम लोग दर्शन कर पाते हैं।
0: 28 अगस्त तक हिमालय की वादियाँ इसी तरह श्रद्धालुओं के शिव तपस्या की साक्षी बनेंगी। एक के बाद एक श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचेगा और भक्त बाबा के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। घाटी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने बेस हॉस्पिटल का दौरा किया और श्रद्धालुओं का हाल जाना।
2: 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ हुई है और मैं पिछले 4 यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। बिना पंजीकरण कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें।
0: अमरनाथ यात्रा को लेकर हिंदू मान्यताओं का संसार बड़ा विशाल है। कहते हैं बाबा के दर्शन मात्र से सभी कष्टों का अंत होता है। बाबा के भक्त हर बार की तरह इस बार भी 2 मार्गों से पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। एक रास्ता श्रद्धालुओं को पहलगाम से बाबा बर्फानी तक पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरा रास्ता बालटाल से होते हुए पवित्र गुफा तक श्रद्धालुओं को ले जा रहा है।
3: बाकी बहुत अच्छा है, निडर होके जा रहे, बहुत अच्छा है।

0: देखा था यार, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, नजारे अच्छे होते हैं, ऊपर दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे।
1: भगवान भोले का प्रिय सावन महीना आने वाला है। सावन महीने के हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले के न केवल पूजा आराधना में लीन रहेंगे, बल्कि दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक भी किया जाएगा। सावन महीने से पहले बाबा भोले के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा झारखंड के देवघर का भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
2: बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव की द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िये अर्घा के माध्यम से यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वही हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
3: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पे बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से करें।
2: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रही है। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
4: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
2: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्र।

0: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने को तैयार है। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
1: कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था, उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
2: प्रायः घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं। ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं। तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें। किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक के मूल पाठ भी उसे कर सकता है। और इसमें प्रसंगानुकूल 4 रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
1: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वही उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा, ताकि संस्कृत या हिंदी ना जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है, जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
2: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में। उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
1: तीन भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन 4 रंगों में 8 पेपर पर किया जाएगा, जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
3: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसे इंग्लिश का ज्ञान है, तो उस रोमन भाषा के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
1: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है, लेकिन अब एक ही साथ 3 भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: बात करते हैं अमेरिका की, जो आज आज़ादी के 250 साल का जश्न मना रहा है। इस खास मौके पर लड़ाकू विमानों ने शानदार एयर शो और फ्लाईपास पेश किया, जिसमें देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति के नए एयरफोर्स 1 विमान ने भी हिस्सा लिया। राजधानी वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क समेत तमाम जगहों पर अब तक की सबसे बड़ी आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैरा जंपर्स ने भी कमाल के करतब पेश किए, वहीं पर समुद्र में जंगी जहाजों ने भी अपना दमखम दिखाया। देश भर में एयर शो, परेड, संगीत कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताओं और आतिशबाजी के जरिए लोगों ने 250वें स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाया। न्यूयॉर्क की हडसन नदी में नेवी परेड निकाली गई और इस दौरान USS किर्सार्स और RMS क्वीन मैरी समेत कई जहाज शामिल हुए। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
7: La Que Buena.
6: ESPN Radio.
8: We know LeBron has to be the best player on the planet to
6: have. The Daily.
9: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
10: पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
14: गुड न्यूज टुडे
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
14: गुड न्यूज टुडे
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं
10: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप जहां काम करते हैं, नौकरी हो व्यापार हो, अगर काम करने की जगह आपका कार्य स्थल अगर बेहतर हो तो अच्छा काम भी कर पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। लेकिन बहुत बार कार्यस्थल पर तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके कार्य स्थल पर परेशानियां आ रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:47 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:57 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। आप जहां पर काम करते हैं, जो आपका कार्य स्थल है, उसका ग्रहों से क्या संबंध है, पहले ये समझिए। देखिए, आप जहां भी काम करते हैं, नौकरी में या व्यापार में, आपके काम करने की जगह का सीधा संबंध होता है शनि के साथ। शनि बताता है कि आपके कार्य स्थल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव यानी आपके कलीग और दशम भाव आपके काम करने की जगह भी महत्वपूर्ण है। सप्तम और दशम से आप ये समझ सकते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है। किसी भी कुंडली में बुध बड़ा महत्वपूर्ण है ऑफिस के मामले में, क्योंकि बुध की सहायता से व्यक्ति अपने ऑफिस में अपने कार्य स्थल पर एडजस्ट कर पाता है। राहु और मंगल
आपके ऑफिस में, आपके कार्य स्थल में अलग अलग समस्याएं पैदा करते हैं। कुंडली में अगर सप्तम भाव अच्छा नहीं है तो ऑफिस में अपने कलीग से और बाकी लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा। जरूरत के समय आपके साथी, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके कार्यस्थल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचिए। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान आपको मिल सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपके कार्य स्थल की स्थितियां ठीक नहीं हैं, वहां पर काम करने में आपको परेशानी होती है तो क्या करेंगे? सबसे पहली समस्या, अगर आपको अनावश्यक काम करना पड़ता है, दूसरे घूम रहे हैं और आपको बेवजह का प्रेशर दिया जा रहा है, अनावश्यक काम करना पड़ता है तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा शनिवार की शाम को, और अपने काम करने की जगह पर एक सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिएगा। अपने सामने अपने डेस्क पर शीशे के नीचे या सामने की दीवार पर रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बेवजह का प्रेशर नहीं मिलेगा, अनावश्यक काम नहीं करना होगा। बहुत बार ऑफिस में ऐसा होता है कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे कलीग हैं, वही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, चुगली करते हैं, काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप
आपको अपने कलीग से, अपने सहयोगियों से समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइएगा। ऑफिस जब जब जाते हैं, रोज जाते हैं, गुड़ खाकर जाइएगा। और हर मंगलवार को जब भी आपको समय मिले, हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करिए और अपने काम के स्थान पर एक नकली या असली लाल रंग का फूल रखिएगा या उसका चित्र लगाइएगा। सहयोगियों की वजह से आपको समस्या नहीं होगी। कार्यस्थल की समस्याओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है ऑफिस में कि आप काम बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन आपके काम का एप्रिसिएशन नहीं होता, आपके काम की प्रशंसा आपको नहीं मिलती है। क्या उपाय करेंगे कि काम का रिकग्निशन हो, काम की प्रशंसा मिले? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करिएगा। जहां पर बैठकर आप काम करते हैं, काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। और याद रखिए, एक अपनी पेन हमेशा पर्सनल रखिए, अपनी पेन दूसरों को मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम की प्रशंसा होगी, काम को आपके एप्रिसिएशन प्राप्त होगा।
बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस भी ठीक है, ऑफिस का माहौल भी ठीक है, लेकिन खुद ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खुद एडजस्ट नहीं कर पा रहे सब कुछ ठीक होने के बावजूद, तो क्या करेंगे? रोज स्नान करना आपका जरूरी है, रोज नहाइए। इसके बाद सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, चंदन की सुगंध लगाइए या चंदन की सुगंध वाला तिलक लगाइए, एक पेरी डॉट या एक मोती सलाह लेकर के धारण करिए। ऐसा करने से आपका काम में, अपने करियर में एडजस्ट करना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपके कार्यस्थल में कैसी भी परेशानी आ रही हो, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं कि योग्यता के बावजूद आपको सम्मान नहीं मिलता, आप ऑफिस के पॉलिटिक्स के शिकार हैं, लंबे समय से आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कार्यस्थल पे परेशानियां आ रही हों। दो उपाय आपको जरूर करने चाहिए अगर कार्यस्थल पे परेशानी आ रही हो। रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप अवश्य करिए और सप्ताह में एक दिन हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं और ऑफिशियल मामलों में प्रॉब्लम हो रही है तो केवल शनि देव की पूजा करके, केवल शनि देव के लिए उपाय करके आप इस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। तो आज हमने आपको बताया कि आपके कार्य स्थल पर अगर परेशानियां आ रही हैं तो उन परेशानियों को दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप।
सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, जिस भगवान के प्रति श्रद्धा है उनका नाम लें, इसके बाद अपना पैर जमीन पर रखिएगा। अगर रोज सुबह की एक आदत ये बना लेते हैं तो हर दिन आपका शुभ होगा और मंगलमय होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिए, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
10: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी, सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का लुत्फ। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संघ शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। इस खास शो में आपको दिखाने जा रहे हैं हम तस्वीरें अमेरिका में आजादी के 250 साल के जश्न की। अमेरिका में आजादी की 250वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लड़ाकू विमानों ने शानदार एयर शो और फ्लाई पास पेश किया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के नए एयरफोर्स वन विमान ने भी हिस्सा लिया। वहीं पर देखिए, राजधानी वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सहित तमाम जगहों पर अब तक की सबसे बड़ी आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैरा जंपर्स ने भी कमाल के करतब पेश किए। वहीं पर समुद्र में जंगी जहाजों ने भी अपना दमखम दिखाया। देश भर में एयर शो, परेड, संगीत कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताओं और आतिशबाजी के जरिए लोगों ने 250वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव जबरदस्त तरीके से मनाया। अमेरिका में आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इस अवसर पर मनाए जा रहे समारोह को अमेरिका 250 नाम दिया गया है। इस अवसर पर न्यूयॉर्क में लड़ाकू विमानों ने समुद्र के ऊपर जबरदस्त फ्लाई पास किया। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में नेवी परेड निकाली गई और देखिए, इस दौरान यूएस किर्सार्स और एसएमएन क्वीन मैरी समेत कई जहाज भी इसमें शामिल किए गए। देखिए, अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर देश में जश्न का माहौल है। सभी 50 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम संपन्न किए गए। आपको दिखाते हैं इनकी शानदार तस्वीरें और बताते हैं कहानी अमेरिका की। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का ऐतिहासिक जश्न मनाया। देश भर में परेड, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष समारोह आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी से लेकर फिलाडेल्फिया तक इस अवसर को केवल एक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि 250 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों के प्रतीक के रूप में मनाया गया। देखिए अमेरिका में जश्न आजादी पर खास रिपोर्ट।

स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर विवाद की उड़ान।

हडसन नदी के ऊपर आसमान में लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। अमेरिकी नौसेना के ऐतिहासिक जंगी जहाजों की भव्य परेड। अमेरिकी ताकत और विरासत की भव्य नुमाइश की ये तस्वीरें अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के अवसर की है। इस खास अवसर पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी का भी आसमान लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा।

0: F-16 फाइटिंग फाल्कन और F-22 रैप्टर सहित ब्लू एंजल्स स्क्वाड्रन के फाइटर्स जेट ने अलग अलग फॉर्मेशन के जरिए बादलों से घिरे अमरीकी आकाश में जांबाजी की एक अनूठी मिसाल पेश की। वॉशिंगटन डीसी में हुए इस एयर शो में लॉकेट C-130 हर्क्यूलस ने भी भाग लिया, तो साथ ही बेल बोइंग B-22 विमानों ने भी अपने खास फॉर्मेशन से सबका मन मोह लिया। एयर शो की खास बात ये रही कि इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एयरफोर्स वन बेड़े के नए विमान ने भी वॉशिंगटन डीसी के आसमान में F-22 के साथ उड़ान भरी। ये खास विमान कतर की ओर से अमेरिका को गिफ्ट किया गया है। वहीं अमेरिकन आर्मी की गोल्डन नाइट्स और नेवी की लीप फ्रॉग्स नाम के मशहूर पैराशूट टीम्स ने भी देश की आजादी के इस जश्न में अपने कर्तव्यों से चार चांद लगा दिए। नेशनल मॉल के ऊपर उड़ान भरती पैराशूट टीम के पैरा जंपर्स अमेरिकी झंडा लिए हुए नीचे उतरे तो लोग देखते ही रह गए। आजादी के जश्न के इस खास मौके पर अमेरिका के शहर शहर में जश्न देखने को मिला। कहीं अमेरिकी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया तो कहीं आम लोग आजादी के उत्सव में उत्साह के साथ शरीक होते नजर आए। तस्वीरें देखिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल की, जहां कई दिनों से फ्रीडम 250 उत्सव मनाया जा रहा है। और जब 4 जुलाई को ऐतिहासिक मौका आया तो माहौल देखने लायक था। तेज गर्मी और मौसम के बदले तेवरों के बावजूद लोग आजादी का जश्न मनाने में मशगूल दिखे।
1: This is America 250. We should celebrate no matter who you are, who you support. And this isn't about politics, this is about our country. And this is the most important thing we have as an independent nation of freedom. And we thank God every single day that we are the ones that are not going to get our heads chopped off because we wanted to protest something. And we're not going to be pulled into jail because we wanted to protest something. We have these abilities to have the freedoms within reason. And we've got to thank God every day for the USA.
0: वॉशिंगटन के नेशनल मॉल में दिन से रात तक इस जश्न में शरीक होने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। हालांकि लोगों को मौसम के उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई।
2: Well, 250 years of great power, kind people, wonderful country. Just love it. I'm a patriot. I enjoy it. I'm so thankful to be here. I think every American should get on their knees and thank God that they were born here or came here and can be here.
0: अमेरिका में आजादी के इस उत्सव का समापन भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ। जबरदस्त आतिशबाजी से जगमग हो उठा था आसमान। हर तरफ आतिशबाजी के कारण बेहद रंगीन नजारा दिखा। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की है। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के अवसर पर वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में करीब 40 मिनट तक शानदार आतिशबाजी हुई। आधी रात के बाद आसमान लाल, सफेद और नीले रंग की आतिशबाजी से जगमगा उठा। इस दौरान 8.5 लाख फायरवर्क शेल दागे गए। आतिशबाजी के लिए राजधानी में 50 अलग अलग लॉन्चिंग प्वाइंट बनाए गए थे। व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिका के इतिहास में स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ी आतिशबाजी करार दिया है। आतिशबाजी की ऐसी ही तस्वीरें न्यूयॉर्क से भी सामने आई। न्यूयॉर्क में करीब 25 मिनट तक चली आतिशबाजी के दौरान करीब 85,000 फायरवर्क्स शेल्स दागे गए। स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने पर सिर्फ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी ही नहीं बल्कि अमेरिका के शहर शहर में आतिशबाजी के साथ इसी तरह दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। अमेरिका की 250वीं सालगिरह के जश्न का मुख्य कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया और देश की 250 साल की उपलब्धियों को याद भी किया।
3: Over 250 years, the world has seen the great empires, vast kingdoms, mighty nations, and terrible tyrants. They came and they went. But after 2.5 centuries, this American republic still stands tall and strong, and we love each other. That showed tonight. You heard it was over, and what happened? You came back. And this American flag still waves proud and free and beautiful. We have thrived and flourished because our founders were great. Our cause was just. Our people are brave. Our culture is exceptional.
0: अमेरिका की आजादी के इस ऐतिहासिक उत्सव के खास अवसर पर फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंट नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में सभी 50 राज्यों की महत्वपूर्ण वस्तुओं के संग्रह वाला एक टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर डाला गया। इस कैप्सूल में ऐसी कुछ खास चीजें रखी गई हैं जो अमरीकी जीवन शैली, संस्कृति और इतने बरसों में देश में हुए नवाचार की झलक को पेश करती है। ये कैप्सूल सन 2276 में देश की आजादी के 500 साल पूरे होने पर खोला जाएगा। अगली पीढ़ियों को इससे ये संदेश मिलेगा कि 2026 में अमेरिका कैसा था, लोग तब क्या सोचते थे और वो भविष्य में क्या उम्मीदें रखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्तियों में गिने जाने वाले अमेरिका की कहानी केवल 250 साल पुरानी नहीं है। ये कहानी हजारों साल पहले इस धरती पर रहने वाले मूल निवासियों से शुरू होती है, फिर यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम, गृह युद्ध, औद्योगिक क्रांति और 2 विश्व युद्धों से होते हुए आधुनिक महाशक्ति बनने तक पहुंचती है। आखिर कैसे एक समय ब्रिटेन का उपनिवेश रहा देश दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकत बन गया, आइए जानते हैं अमेरिका के इतिहास की इस रोचक और प्रेरणादायक यात्रा की कहानी।
0: दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया में सबसे विकसित और सबसे आकर्षक देश, जहां जाने, रहने और काम करने की तमन्ना भला विश्व के किस कोने में रहने वाले इंसान के दिल में नहीं होती। वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका डंका दुनिया भर में बज रहा है। दुनिया के हर कोने में अमेरिका का दबदबा है, इसीलिए पूरी दुनिया हमेशा हसरत भरी निगाहों से अमेरिका की ओर देखती है। वो देश अमेरिका जब 250 साल का हो चुका है। अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना के 250 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस मकाम तक अमेरिका ने अपना सफर पूरा कैसे किया? अमेरिका की खोज सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो असल में भारत की खोज में निकला था। अंत तक कोलंबस अमेरिका को भारत ही मानते रहे, लेकिन 1501 में इटली के ही यात्री अमेरिगो वेस्पुची ने कोलंबस की मान्यता को गलत करार दे दिया। अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका को एक नई दुनिया करार दिया। 1507 में जर्मनी के एक नक्शानवीस ने अमेरिको की मान्यता पर मोहर लगा दी और उनके नाम पर इस जगह का नाम अमेरिका कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाने शुरू किए। करीब 270 साल तक इस इलाके पर यूरोपीय देशों का राज रहा, लेकिन 1776 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अमेरिका के पूर्व तट पर स्थित 13 उपनिवेशों ने बगावत कर दी और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। हर साल 4 जुलाई को अमेरिका में आजादी का जश्न मनाया जाता है। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1776 में इसी दिन अमेरिका की आज़ादी का ऐलान किया गया था। फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस हॉल में हुई बैठक में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी मिली। घोषणा में कहा गया कि हर इंसान बराबर है और उसे जीवन, आज़ादी और अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। इसी के साथ अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनियों ने खुद को ब्रिटेन से अलग और स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस महत्वपूर्ण कदम से ही संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ था। हालांकि इसके बाद भी युद्ध चलता रहा। करीब 7 साल बाद 1783 में पेरिस की संधि हुई, तब जाकर ब्रिटेन ने अमेरिका को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1787 में अमेरिका में संविधान लागू हुआ और संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। हालांकि 4 जुलाई को स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को अपनाए जाने की याद में हर साल इसी दिन अमेरिका में आजादी का जश्न मनाया जाता है। 1876 में अमेरिका की आजादी के 100 साल पूरे होने पर फिलाडेल्फिया में भव्य कार्यक्रम हुआ था। तब यूलिसिस एस ग्रांट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सेंटेनियल एक्सपोजिशन के नाम से हुए कार्यक्रम में 37 देशों के करीब 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 1926 में अमेरिका की आजादी के 150 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम फिलाडेल्फिया पे हुआ था। तब कैल्विन कूलिज अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1976 में अमेरिका की आजादी के 200 साल पूरे होने पर साल भर शानदार राष्ट्रीय उत्सव मनाए गए, जब जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 2026 में अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में USA@250 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार आजादी की वर्षगांठ के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत 31 दिसंबर 2025 को टाइम्स स्क्वायर में नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के साथ ही हो गई थी। स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में 2026 में साल भर खास कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: देखिए, समय शादी का सीजन चल रहा है, सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता शादी, ये सपनों यादों और बेशुमार भावनाओं से सबसे खूबसूरत उत्सव होता है। हर दुल्हन का सपना होता है कि अपने सबसे खास दिन पर वो सबसे खूबसूरत दिखे और सहज भी महसूस करे। आज की दुल्हन ऐसा परिधान चुन रही है जिसमें शान भी हो, सुकून भी हो, परंपरा भी और मॉडर्न स्टाइल भी। यही नहीं, नई सोच भारतीय ब्राइडल फैशन को नई पहचान दे रही है। भारी भरकम परिधान की जगह अब फोकस ऐसे डिजाइनर लिबास पर किया जा रहा है जो शादी के हर फंक्शन में अलग अंदाज दे और शादी के बाद भी वार्डरोब का हिस्सा बन जाए।
8: शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है एक बड़ा सवाल, 2026 वेडिंग ट्रेंड्स में एग्जैक्टली क्या है? हैवी लहंगास या एफर्टलेस ग्लैम, ट्रेडिशनल रेड्स या कुछ नए कलर्स? देखिए 2026 का ब्राइडल फैशन पुरानी परंपराओं के साथ एक मॉडर्न ट्विस्ट चाहता है, तो चलिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि इस सीजन में एग्जैक्टली क्या ट्रेंडिंग है।

भारतीय शादियां बदल रही हैं और उनके साथ बदल रहा है ब्राइडल फैशन भी। कभी जहां कढ़ाई वाला भारी लहंगा दुल्हन की पहचान माना जाता था, वहीं आज की ब्राइड हल्के, खूबसूरत और आसानी से पहने जा सकने वाले आउटफिट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। आज ब्राइडल कॉट्योर सिर्फ शादी के लिए तक सीमित नहीं रह गया है। अब दुल्हनें ऐसे कपड़ों में निवेश कर रही हैं जिन्हें वे शादी के बाद भी खास मौकों पर पहन सके। फैशन अब सिर्फ एक दिन की बात नहीं बल्कि लंबे समय तक साथ निभाने वाला स्टाइल बन चुका है। भारी भरकम लहंगे जो शादी के बाद हमेशा के लिए अलमारी में टंग जाते थे, अब धीरे धीरे बीती बात बन रहे हैं। उनकी जगह ले रहे हैं ऐसे डिजाइनर परिधान जो फैशन के साथ उपयोगिता

0: को भी उतनी ही अहमियत देते हैं।
1: एक टाइम था जब ब्राइड्स बंदी होती थी, उनका सिर्फ ये था कि सेरेमनीज करें, वापस जाएं, सेरेमनी आफ्टर सेरेमनी। बट नाउ द ब्राइड्स, दे वांट टू एंजॉय देयर ओन वेडिंग। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डे उनके लिए भी। ये नहीं कि पूरी दुनिया सारे जो आए हैं गेस्ट वो मजा कर रहे हैं और वो थक हार के सोने जा रही है। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। एंड नॉट टुडे, इट इज़ बीन इन अ लास्ट वन डेकेड इट हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। आज की ब्राइड ना बड़ी कॉन्फिडेंट है एंड शी लव्स हर सेल्फ। शी वॉन्ट्स टू लुक प्रिटी, शी वॉन्ट्स टू लुक ग्लैमरस। वो खुश होना चाहती है, मजे करना चाहती है। सो हेंस दे ऑलवेज कम टू मी एंड से वी डोंट वॉन्ट टू वेयर हील्स, क्या हम इनको कंफर्टेबल शूज के साथ पहन सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, व्हाई कैन यू नॉट वेयर समथिंग लाइक दिस एंड हैव अ ग्रेट टाइम।
0: आज ब्राइडल के लिए ऐसे लिबास तैयार किए जाते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ पहनने में भी आसान हो और कई मौकों पर दोबारा भी पहने जा सके। दिल्ली का फैशन लेबल नॉट सो सीरियस इसी सोच को अपने डिजाइन्स में उतारता है।
1: फ्रेंड ने मुझे एनकरेज किया था टू कॉल इट नॉट सो सीरियस, क्योंकि दे सेड आई एम वेरी नॉट सो सीरियस व्हेन आई एम हैविंग फन और मौज मस्ती जो भी, बट आई एम वेरी वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू माय वर्क। इसीलिए ये नॉट सो सीरियस नाम आ गया।
2: वैसे नॉट सो सीरियस से मुझे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वेडिंग इतना सीरियस बिजनेस है कि वेडिंग के टाइम पे, वेडिंग की शॉपिंग करते हुए आप इतना हर चीज, इतना प्रेशर होता है, यू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये जो मैंने स्टनिंग आउटफिट पहना है ये इतना लाइट वेट है, इट इज सो अमेजिंग, ये एग्जैक्टली है क्या पल्लवी?
1: सो दिस गाउन, सी आज की ब्राइड, what they want to do, they want to have fun, they want to be comfortable. Destination weddings hoti hain, they don't like to be tied down. Freedom chahiye aaj ki bride ko. So whatever you see not so serious mein, chahe wo lehenga ho, chahe evening gown ho, chahe short dresses ho, you will find them bahut halka in weight, but they give a very heavy glamorous look. So this is also not so serious ki USP. Lightweight, comfortable, jo ki you know makes you feel happy is the concept that we go by. So yes,
2: par yahi baat hai kyunki ye fabric itna light hai viewers, main aapko batana chahti hu, mujhe itna comfortable feel ho raha hai. Feathers hum dekh sakte hain, feathers seems to be coming back. Pallavi, aap feathers hamesha se karte aaiye, maine aapke bahut collection dekhe hain.
0: यहाँ मॉडर्न फैमिलिटी को भारतीय शिल्प कौशल के साथ जोड़ा जाता है। सॉफ्ट पेस्टल कलर्स, महीन हैंड एम्ब्रॉयडरी और बेहद हल्के परिधान, यही इसकी खास पहचान है। लेकिन इन खूबसूरत डिजाइन्स के पीछे सिर्फ फैशन नहीं, महीनों की मेहनत भी छिपी होती है। हर धागा, हर टाका, हर मोटिव कारीगरों की बेमिसाल कला का परिणाम होता है। एक परिधान तैयार होने में हजारों टांके लगते हैं, कई हफ्तों की बारीक कढ़ाई होती है, तब जाकर तैयार होता है ऐसा लिबास जो पहनने वाले की खूबसूरती के साथ भारतीय हस्तकला की विरासत भी बयां करता है।
2: ये स्टनिंग कलेक्शन को देख सकती हूँ, अगर आप आज की मॉडर्न ब्राइड, जो 2026 की मॉडर्न ब्राइड है, जिसे ये हैवी लहंगाज नहीं पहनने हैं, हमें कंफर्टेबल रहना है, हम हमेशा हमारी शादी अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, आपके इस वेडिंग सीजन के क्या स्पेशल पिक्स होंगे?
1: सो नॉट सो सीरियस में आफ्टर पार्टी ड्रेसेस आपको लेना ही चाहिए, आपकी वेडिंग कंप्लीट नहीं हो सकती हमारे आफ्टर पार्टी आउटफिट के बगैर। एंड इफ़ यू सी, जब आप देखोगे हमारे लहंगेज भी इस तरीके से बनाए हुए कि आपका एक टाइम यूज़ नहीं होगा, आप उन लहंगों को बाद में भी टोन डाउन करके पहन सकते हो। सो आज की ब्राइड ये नहीं चाहती कि हम ऐसी चीज़ लें जो कि एक ही बार पहने, वी वॉन्ट टू वेयर इट अगेन एंड अगेन। जो गाउन आपने पहना है इसके ऊपर अगर आपने अगर वाइट शर्ट, नॉटेड वाइट शर्ट डाल लिया होता और कैट्स पहन लिया होता, तो ये आपका एक सेमी कैजुअल फॉर्मल लुक भी बन सकता है। सो इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ स्कर्ट, ऊपर नॉटेड शर्ट। So you can actually style everything so effortlessly with NSS. If you come here, we'll tell you how to do that. जैसे कि मैंने शर्ट पहना है, and I'm wearing one of my capes. ये केप मैं साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ. I can wear it over my lehenga, I can wear it over my सलवार suit, I can wear it with formal pants. So हर चीज आप reuse कर सकते हो, restyle कर सकते हो.
0: रंगों की पसंद ही अब बदल रही है. चटक लाल और गहरे रंगों के साथ साथ आज की दुल्हन आइवरी, शैम्पेन गोल्ड, म्यूटेड ब्लश, पाउडर ब्लू और सॉफ्ट शिमर जैसे शेड्स को खूब पसंद कर रही है. इन रंगों में सादगी भी है, शालीनता भी, और एक ऐसी एलिगेंस जो बिना ज्यादा चमक दमक के अपनी अलग पहचान बना लेती है.
2: आपका 2026 ब्राइड के लिए क्या कलर पैलेट होगा?
1: पेस्टल्स रियली ट्रेंड में है. वाइट्स, ब्लश कलर्स बहुत पसंद कर रहे हैं, शिमर बहुत पसंद कर रहे हैं, गोल्ड बहुत पसंद कर रहे हैं. तो ये कलर्स आई थिंक आप 2026 में काफ़ी देखोगे. और इवनिंग फंक्शंस के लिए नेवी ब्लूज, बर्गंडी, जैसे कि ये देखिए आप.
2: वाह,
1: सो यस, इसमें भी सारा हाथ का क्या हुआ है, दे कैच लाइट रियली वेल, आपकी फोटोग्राफ्स अच्छी आती है. 2026 की ब्राइड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी शूट्स, उनके फोटोज अच्छे आए.
2: फोटोज अच्छे आने चाहिए, दैट्स ट्रू.
1: दीज आर द काइंड ऑफ कलर्स जिससे फोटोग्राफ भी अच्छी आती है आपकी.
0: भारतीय शादी सिर्फ एक दिन का समारोह नहीं होती. सगाई, मेहंदी, संगीत, हल्दी, कॉकटेल, शादी और रिसेप्शन, हर फंक्शन का अपना अलग रंग और अपना अलग मूड होता है. इसीलिए अब हर अवसर के लिए अलग स्टाइल तैयार किए जा रहे हैं. सगाई के लिए एलिगेंट गाउन, कॉकटेल के लिए स्टेटमेंट ड्रेप्स, संगीत के लिए डांस एंड फ्रेंडली लहंगे और रिसेप्शन के लिए रिफाइंड ग्लैमरस लुक.
2: क्या है ये?
1: They're very comfortable, like you said, lightweight cocktail outfits हैं, very easy to wear. And they are, so for example, ये वाला outfit आपकी जो है.
2: Wow.
1: Now, इसमें ये trail है, तो brides like की उनकी entry grand हो. So ये उसके लिए है और ये फिर आप detach कर सकते हो.
2: Wow.
1: तो ये फिर आप dance करो, party करो. इसके साथ हम gloves भी देते हैं. We give you headgears. We also help you accessorize. So जितना आपको glamorous इसको बनाना चाहे आप, वो बन सकता है.
0: आज की दुल्हन सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत दिखना नहीं चाहती, बल्कि वो पूरी शादी को खुलकर जीना चाहती है. आज की दुल्हनें डांस भी करना चाहती हैं, यात्रा भी, और पूरी शादी आराम से एंजॉय भी करना चाहती हैं. मेहमानों से मिलना, लंबी रस्में निभाना और अपनी हर मुस्कान को सहज बनाए रखना चाहती हैं. यही वजह है कि कम्फर्ट अब ब्राइडल फैशन का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है.
2: 2026 में ब्राइडल फैशन काफी बदल चुका है. हैवी लहंगा से अब हम काफी एफर्टलेस कंफर्टेबल क्लोथिंग की तरफ आ चुके हैं. सिलुएट्स जो काफी ब्रीदेबल है, सिलुएट्स जिसको आप बहुत ही मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, उस शादी के लहंगे को जिसे आप अपने कबर्ड में बहुत बहुत सालों तक बंद करके रखा करते थे, अब वो दिन खत्म हो चुके हैं क्योंकि उस लहंगे को आप कम से कम 36 अलग डिजाइन में पहन सकते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं क्षितिजा गोसावी, GNT के लिए.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए.
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा. एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा. इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है. जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दाव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया. कमाल ये है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का शगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल, एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा। वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान ज्ञान तो शून्य है जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अब भी ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ सारांश नाम आशिकी सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अन इनफॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों के सामने डांस करना फ्री बनना ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास और मैंने बोला हाँ श्यामक सर लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू तो मैंने बोला 7 But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
3: दिलचस्प बात तो ये है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म। एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पांस ही सबसे प्योर रिस्पांस होता है तो अगर कोई मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो मेरे साथ हुआ नहीं है पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए इसलिए दैट्स द रीजन नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यू तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं। पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: फॉर सम रीजन माई फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही डील विद द सिचुएशन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
8: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी. तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ.
3: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है. 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है. उड़ता पंजाब के एक महले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे. उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया. ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई. वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया. गली बुआए में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं. 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया. गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया.
0: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट.
3: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ. साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई. 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही. 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया. साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं. साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं. आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं.
0: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना. अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे.

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
3: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का लुत्फ। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्विनी ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्वेलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही, इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ज्वाइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दांव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी की होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्विनी ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयाँ हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अश्विन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नी प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
0: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15-20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही है। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पर जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
0: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिमान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिमान में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे।
3: पारंपरिक
0: आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो है वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला

0: सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
1: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक IBG एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। IBG की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो IBG एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
0: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स जो है युद्धभूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स है और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
1: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। IBG के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच्ड स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ा। IBGs पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
0: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और

0: भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रूप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रूप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
1: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार।
2: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे।
1: रणक्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
3: इसके ऊपर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर
5: जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मध्य प्रदेश शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सकुशल। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी, सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समुंदर में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का ले रहे हैं लुत्फ। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेटसंग शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने आमिर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पवित्र अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन पूरे भक्ति और उत्साह के साथ भक्त कर रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। बेलगाम के नुनवान बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए निकला तीसरा जत्था हर हर महादेव। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकला श्रद्धालुओं का चौथा जत्था, श्रद्धालुओं में देखा जबरदस्त उत्साह। अमरनाथ यात्रा के चौथे जत्थे में 6,721 तीर्थयात्री शामिल, बालटाल और पहलगाम रूट के लिए बांटी गई यात्रियों की संख्या। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हुआ रवाना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों के बीच डमरू बजाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, पुंछ में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले गीता प्रवचन का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 16 जुलाई को होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का काउंटडाउन हुआ शुरू, पुरी से लेकर लखनऊ तक भव्य आयोजन। मदुरई में भगवान मुरुगन के मंदिर में भव्य कुंभाभिषेकम का आयोजन, समारोह में शामिल होने दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। मदुरई के पहाड़ी इलाकों के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है मंदिर। मुरुगन मंदिर की दिव्यता को बनाए रखने के लिए कुंभाभिषेक की परंपरा, गर्भगृह के कलशों का पवित्र नदियों के जल से होता है अभिषेक। समारोह के लिए मंदिर की हुई भव्य सजावट, भक्तों पर पवित्र जल छिड़क कर आशीर्वाद। मुरुगन मंदिर समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ड्रोन से निगरानी। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड स्टार आमिर खान, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट के साथ शादी। आमिर खान ने अपने बांद्रा वाले घर पर निजी समारोह में शादी की, रजिस्टर्ड मैरिज में केवल परिवार और दोस्त। आमिर खान के शादी समारोह में मुकेश अंबानी के परिवार समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई, अपनी शादी में जमकर झूमे आमिर गौरी। आमिर गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे भी पहुंचे। आमिर की बेटी बेटे एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, निर्देशक आशुतोष गोवारिकर पत्नी संग नजर आए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी आमिर गौरी को बधाई देने के लिए पहुंचे, पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्राकृतिक झरना बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आम का लिया स्वाद। शिवपुरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिफेंस फैक्ट्री का शिलान्यास किया। अडानी ग्रुप 2,500 करोड़ की लागत से तैयार करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए गर्डर ब्रिज का उद्घाटन किया। थूथुकुड़ी में तमिलनाडु के मंत्री श्रीनाथ ने 80.5 लाख की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, साउथ दिल्ली में बदरपुर और संगम विहार में जल जमाव। वाटर लॉगिंग ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई फीट भर गया पानी। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से द्वारका एक्सप्रेसवे अंडरपास में भी भर गया पानी, जल जमाव की वजह से बंद। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के कारण लंबा जाम, बारिश से बचने के लिए बाइक सवारों ने फुटओवर ब्रिज के नीचे की शरण ली। मानसूनी बादलों ने दिल्ली एनसीआर में डाला डेरा, तापमान में गिरावट। दिल्ली के कई इलाकों में बादल हुए मेहरबान, मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में आंधी के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 10 जुलाई तक बारिश का दौर लगातार जारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना, तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। नोएडा के कई इलाकों में जबरदस्त बदल गया मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश। नोएडा में बारिश के बीच विजिबिलिटी भी हो गई कम, सड़कों पर हेडलाइट जला रहे हैं दिन में। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से बदल गया माहौल, द्वारका एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों में भर गया पानी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित, पानी निकलने तक रोकी गई गाड़ियां। गुजरात के गिर सोमनाथ में जोरदार बारिश, जगह जगह भर गया पानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जोरदार बारिश हुई, कई इलाकों में भरा पानी। पर्यटन नगरी लोनावला में मानसून पूरे शबाब पर, पिछले 24 घंटे में 10 इंच बारिश। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जमकर बरसे बदरा, सड़कों पर भी जल जमाव। बारिश के बीच बदल गया मरीन ड्राइव का नजारा, लोग समुद्र किनारे ले रहे हैं आनंद। मुंबई में भारी मानसून के चलते मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट, अंधेरी स्टेशन के पास तेज हवा के साथ बारिश। मुंबई के माहिम इलाके में जोरदार बारिश, जगह जगह जल जमाव। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश से भर गया पानी, यातायात पूरी तरीके से बाधित। मुंबई में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में उठी ऊंची लहरें। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में समंदर में हाई टाइड, कई मीटर ऊंची लहरें। ओडिशा के कटक में भारी बारिश के कारण वाटर लॉगिंग, रेस्क्यू टीमों को किया गया तैनात। सोनीपत में तेज बारिश के बाद गलियों में भर गया पानी, जल जमाव की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश से सड़कें बनी सैलाब, 8 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान। मध्य प्रदेश के हरदा में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर भर गया पानी, नदी और नाले उफान पर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तेज बारिश के कारण पुल निर्माण कार्य में लगे 14 मजदूर पानी में फंस गए, सेना ने बचाया। रस्सी के सहारे 10 पुरुष और 4 महिला मजदूरों को बाहर निकाला गया। सांबा में बसंतर नदी में अचानक आई बाढ़, बीच धारा में फंसे 5 लोगों को पुलिस एसडीआरएफ ने बचाया। पुलिस और एसडीआरएफ के त्वरित अभियान से टला पड़ा हादसा। वसई कामण सरजा मूरी इलाके में निर्माण कार्य के दौरान 5 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए, अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में 12 घंटे की झमाझम बारिश से विदर्भ हुआ तरबतर, किसानों के खिले चेहरे। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने तवी नदी में फंसे 4 बच्चों को बाहर निकाला। अहमदाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। जूनागढ़ के मांगरोल में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, हाउसिंग सोसाइटी में भी पहुंच गया पानी। दिल्ली में 80वें फिट इंडिया इवेंट का आयोजन किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ कार्यक्रम। फिट इंडिया इवेंट साइकिल रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने साइकिल चलाई। रायपुर में चिंतन योग शिविर का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह शामिल हुए। खंडवा जिले के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानीश कुमार। एल नीनो जागरूकता के लिए रेत पर बनाई गई आकर्षक मूर्ति, लोगों को जलवायु परिवर्तन के लिए संदेश दिया गया। अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह पर लास वेगास रोशनी से नहाया, रात में रंग बिरंगी आतिशबाजी का दिखा अद्भुत नजारा। रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूरा शहर, स्वतंत्रता दिवस के जश्न में आसमान बना रंगों का कैनवस। स्ट्रिप के होटल्स और कैसीनो की छतों से एक साथ आतिशबाजी की गई। लास वेगास स्ट्रिप पर उमड़ा लोगों का जनसैलाब भव्य नजारों को कैमरे में कैद किया। हर तरफ रोशनी और जश्न का अद्भुत नजारा देखने के लिए मिला, दास स्ट्रीट समेत कई प्रमुख जगहों पर आतिशबाजी। अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह पर न्यूयॉर्क के आसमान में रात में भव्य आतिशबाजी। 25 मिनट तक चला शानदार आतिशबाजी का शो, आसमान में करीब 85,000 आतिशबाजी की गोले दागे गए। अमेरिका के ऐतिहासिक जश्न में हजारों लोग शामिल हुए, देशभर और उत्साह से सराबोर नजर आया शहर। कैलिफोर्निया के हेंटकन के बीच अमेरिका की आजादी के शानदार जश्न में रात में आसमान और समुद्र दोनों रोशनी से जगमगा उठे। फायरवर्क्स ओवर द ओशन शो ने भी सभी का ध्यान खींचा। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर वॉशिंगटन डीसी में भव्य आतिशबाजी शो हुआ, शानदार रोशनी से जगमगाया आसमान। दो सौ पचासवीं सालगिरह के जश्न में उमड़ा हजारों लोगों का सैलाब, 39 डिग्री की भीषण गर्मी में भी नहीं टूटा लोगों का उत्साह। अमेरिकी इतिहास और मूल्यों के जश्न पर लोगों ने जताई खुशी, आतिशबाजी ने जीत लिया मौजूदा लोगों का। रोशनी रंग और उत्साह से सजा अमेरिका का ऐतिहासिक समारोह, 250वीं सालगिरह का जश्न यादगार। वॉशिंगटन डीसी में देखा रोशनी और बिजली का अद्भुत नजारा, वॉशिंगटन की रात आतिशबाजी और बिजली की चमक से यादगार। दक्षिण कोरिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने सॉकर मैदान में दिखाया दमखम, रोबो कप 2026 के फाइनल में रोबोट्स का हाईटेक मुकाबला। सिंघुआ यूनिवर्सिटी की टीम हेफेस्टस बनी चैंपियन। गिरते पड़ते भी रोबोट्स ने खेल ली पूरी पारी, सॉकर मैदान पर रोबोट्स की शानदार तकनीक। टीम हेफेस्टस के सपना हुआ साकार, 2050 में फीफा चैंपियन बनना चाहता। रोबो कप 2026 में 45 देशों के 3,000 से ज्यादा प्रतिभागी हुए शामिल, सॉकर के साथ रेस्क्यू मिशन में भी रोबोट्स ने दिखाई भूमिका। चीन का रोबोट एक्सपोर्ट पहले 5 महीनों में 20 अरब युआन पहुंचा। 150 से ज्यादा देशों तक पहुंची चीन की रोबोट तकनीक। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बढ़ी स्मार्ट रोबोट्स की मांग, विजुअल रिकॉग्निशन वाले रोबोट्स की खूब डिमांड। चीन के ग्वांगडोंग में लायन डांस में नन्ही कलाकारों ने बिखेरा मासूमियत का जादू। शेर की पोशाक में बच्चियों का शानदार डांस सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना फिर से फटा, सिसिली के आसमान में लावा ही लावा। करीब 3000 मीटर ऊंचाई पर बने वेंट से लावा का बहाव जारी। रात के अंधेरे में लाल आसमान का अद्भुत लेकिन खतरनाक नजारा। माउंट एटना में लगातार 9वें दिन भी ज्वालामुखी गतिविधि जारी है। ज्वालामुखी से राख के विशाल गुबार आसमान में छाए, राख और लावा निकलने का सिलसिला अभी भी जारी है। फिल्म अल्फा के सपोर्ट में उतरे करण जौहर, आलिया भट्ट के हुनर की तारीफ की। ऋतिक रोशन परशुराम पैटला की फिल्म की खबरें निकली अफवाह। मातृभूमि पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई, सलमान खान फिल्म्स ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बताया बेबुनियाद। 14 साल बाद बॉलीवुड में सेलेना जेटली की हो रही है वापसी, सिस्टर निवेदिता का किरदार। अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म का टाइटल होगा विकेट सनी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: भगवान भोले का प्रिय सावन महीना आने वाला है। सावन महीने के हर सोमवार को करोड़ों शिव भक्त बाबा भोले के न केवल पूजा आराधना में लीन रहेंगे बल्कि दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान का जलाभिषेक भी किया जाएगा। सावन महीने से पहले बाबा भोले के धामों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा झारखंड के देवघर का भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
4: बाद सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और झारखंड के देवघर में स्थित महादेव की द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने वाली है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक श्रद्धालु सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ धाम पूरे साल भर शिवमय रहता है और भोले बाबा की पूजा अर्चना के लिए हमेशा यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने की बात ही और है, क्योंकि ये भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। और खास बात ये भी है कि सावन में हर साल बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला लगता है, जिसका शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बैद्यनाथ धाम में इस बार श्रावणी मेला 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये मेला 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगा। इस दौरान कांवड़िये सुल्तानगंज से जल लेकर आएंगे और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे सावन भर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी और कांवड़िये अर्घा के माध्यम से यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। वही हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेले में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में देवघर में झारखंड और बिहार के सरकारी अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें कांवड़ियों के आवागमन और मेले के इंतजामों को लेकर अहम फैसले किए गए।
5: जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफी मुद्दों पर बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं, उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा मोहब्बत आ रहा है, और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्प का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करेंगे, ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया चले।
4: बताया गया है कि मेले में भीड़ पर नियंत्रण के लिए अलग अलग स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रही हैं। कांवड़ियों के ठहरने, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की डबल डेकर गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
6: सबसे ज्यादा मेजर इशू था ये डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए, तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में।
4: ये भी तय किया गया है कि अब सुल्तानगंज से हर दिन जल उठाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी पहले से ही देवघर और दुमका जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों के बेहतर उपयोग में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी जिलों में तालमेल बिठाकर इंतजाम किए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से देवघर पहुंचकर बाबा को जल अर्पित कर सके। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात मौसम की निकली है तो जरा आम के स्वाद पर भी हम बात कर लेते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसी ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधी स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव व संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली में सजे विश्व प्रसिद्ध मरियाबाद के दशहरी और चौसा आम बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने किसी देसी अंदाज में आम चूसते हुए नजर आए और खाते हुए नजर आए। हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत भी की गई। तस्वीरें देखिए।
0: गुंडे चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
8: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
7: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University transforming your passion into profession।
2: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सब भी पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में दिखा हाई टाइड। अमरनाथ यात्रा में तीसरे दिन अब तक 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का लुत्फ। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेड संघ शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो गुड लक के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके घर की समस्याओं के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन घर में लगातार नेगेटिव एनर्जी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कितनी कोशिश करने के बाद भी वो कम नहीं होती। कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, आप परेशान रहते हैं। तो इन सबके कारण क्या है और इनसे बचने के समाधान क्या है, उपाय क्या है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, शनि देव की उपासना संध्या काल में करनी चाहिए और सूर्य देव की उपासना दिन में करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूजा का सारा फल मिलेगा। आप शनि देव की पूजा सुबह भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शनि की पूजा शाम को करेंगे और सूर्य देव की पूजा सुबह करेंगे तो पूजा ज्यादा फलदायी होगी, पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 6 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:47 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 4:07 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:57 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि अगर आपका घर में घुसते ही मन जो है वो तनावपूर्ण रहता हो, आप उदास हो जाते हो, तो इसके आखिर कारण क्या होते हैं और इनको सही करने के उपाय क्या हैं?
1: जी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर में घुसते हैं, आपका मन उदास हो जाता है, आपका मन भारी हो जाता है, आपके मन में चिंता आने लगती है। अगर घर में घुसते ही आपका मन अशांत हो जाता है या घर में घुसते ही आपको उदासी महसूस होती है, घर का माहौल बड़ा भारी भारी सा लगता है, बड़ा निगेटिव लगता है, तो समझना चाहिए कि आपके घर में काफी नकारात्मक ऊर्जा है, काफी निगेटिव एनर्जी आपके घर में है। इसका दूसरा मतलब ये है कि आपका बृहस्पति कमजोर है और घर में जो शुभ अंश है, घर में जो शुभता है, वो शुभता घट रही है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो रोज शाम को घर के पूजा स्थान पर आपको दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद पूरे घर में गुग्गल की या धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर का माहौल ठीक होगा, घर की उदासी दूर होगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन, उनका राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% बेहतर भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए बात कर लेते हैं कि अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बार बार खराब हो जाते हो तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों होता है ऐसा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वो टीवी हो चाहे वो फ्रिज हो, लेकिन वो बार बार खराब होता रहता है, तो उसके समाधान क्या है।
1: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ओवन, माइक्रोवेव, ये बार बार खराब होने लगते हैं। क्या इसका भी कोई अर्थ है? अगर घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बार बार खराब हो जाते हों या अगर बल्ब और ट्यूबलाइट बार बार फ्यूज हो जाती हो, यानी बिजली के सामानों में बार बार गड़बड़ी होती हो, तो समझना चाहिए कि राहु खराब हो रहा है। और अगर राहु खराब होगा तो इसके बाद दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो रहे हैं तो घर में मुख्य स्थानों पर लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें और घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, इनके पीछे भी आप छोटा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा सकते हैं।
0: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में।
1: कर्क राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न अर्चना जी ने हमें लिखा है और अर्चना जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 9 अगस्त 2002, जन्म का समय सुबह के 7:55, जन्म स्थान है गुड़गांव। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे ने अभी ग्रेजुएशन किया है, आगे मेरे बेटे को किस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जाना चाहिए। देखिए अर्चना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर आप आगे उसको टेक्निकल पढ़ाई करें, कंप्यूटर जैसी कोई पढ़ाई करवाएं या मैनेजमेंट की कोई पढ़ाई करवाएं तो उसमें आपके बेटे के सफल होने की संभावनाएं बहुत हैं। अगर आपका बेटा आगे कंप्यूटर या मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई करे तो एक अच्छा करियर बना पाएगा। आने वाले समय में भटकाव ना हो, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, पढ़ाई में बाधा ना आए, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाइए और अपने पुत्र से कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
1: जी अगला प्रश्न अनीशा ने हमें लिखा है और अनीशा हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1993। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। अनीशा कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन उसमें परिवार की तरफ से अड़चने बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा? अनीशा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह इसी साल के अंत तक होने की संभावना बनती है। आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, इसीलिए एक बार कुंडली मिला लीजिए और अगर उसमें कोई कमी है तो पहले से उसका उपचार कर लेना चाहिए। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए जान लेते हैं कि अगर घर में बार बार बिना किसी कारण के झगड़ा हो रहा हो, कोई वजह नहीं हो लेकिन तनाव के कारण घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है और इसको दूर करने के उपाय क्या हैं?
1: बहुत बार ऐसा होता है कि घर में बार बार बिना वजह के झगड़ा होता है, बिना वजह के विवाद होते हैं और घर का माहौल खराब हो जाता है। कब होता है ऐसा? अगर घर में बार बार बिना किसी कारण के झगड़ा होता है, बिना किसी कारण के लड़ाई होती है या विवाद होता है, या वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, सदस्यों में मन मुटाव बढ़ता है, परिवार के सदस्य आपस में तनाव पालते हैं,

0: मिल करके सुंदर कांड का पाठ करेंगे हर शनिवार की शाम को। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो घर में मंगल की स्थिति बेहतर होगी, घर में अशांति दूर होगी, बेवजह के वाद विवाद समाप्त होंगे।
1: और अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को।
0: तुला राशि, काम की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं कि अगर घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता हो बिना वजह के, सर्दी जुकाम तो अक्सर लगा रहता है लेकिन कभी आपके पेट दर्द हो रहा है, कभी आपके सर दर्द हो रहा है, कभी आपका मन ही खराब है, तो इसके पीछे के कारण क्या हैं?
0: बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है। कभी पिता बीमार हैं, कभी माता बीमार हैं, कभी बच्चे बीमार हैं, कोई ना कोई घर में हमेशा बीमार रहता है। क्या कारण है? अगर घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, घर की आय, घर की इनकम दवाइयों में चली जाती है या बिना किसी कारण के लोग बीमार ही रहते हैं, बिना वजह के कोई ना कोई बीमारी घर में बनी रहती है, तो समझना चाहिए कि घर में सूर्य का प्रभाव कमजोर है। सूर्य की शुभता अगर घर में कमजोर होगी तो घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहेगा। ऐसी दशा में रोज सवेरे घर में गायत्री मंत्र का बोल बोल कर 27 बार या 108 बार जप करिए और दोनों समय भोजन बन जाने के बाद पहले भगवान को भोज

0: अर्पित करिए फिर ग्रहण करिए। अगर ये उपाय करेंगे तो घर में सूर्य की शुभता बढ़ेगी, और अगर घर में सूर्य की शुभता बढ़ेगी तो घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक प्रश्न था, घर में सब कुछ ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी घर की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए?
0: जी, ऐसा हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा भी ना हो, घर के लोगों में तालमेल भी ठीक रहता हो, कोई बड़ी समस्या भी ना हो घर में, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। तो अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, घर में पैसा नियमित रूप से ना आता हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि रोज शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा की जाए, और एक बड़ी शानदार स्तुति है माता लक्ष्मी की, इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र, रोज शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने दीपक जलाएं और इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, या इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ सुनें। अगर ऐसा नियमित रूप से रोज शाम के समय करें और प्रार्थना करें तो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि घर में अनुपयोगी वस्तुएं, कूड़ा कबाड़, ये बेवजह इकट्ठा करके मत रखिएगा, क्योंकि जो लोग घर में कूड़ा कबाड़ अनुपयोगी चीजें इकट्ठा करके रखते हैं उनके घर की आर्थिक स्थिति में दिक्कतें अवश्य आती हैं।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के तीसरे प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का तीसरा प्रश्न उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है और नीरज हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1990, जन्म का समय शाम के 4:55, जन्म स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश में, लिखते हैं बेंगलोर से। नीरज कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई है और पिछले काफी दिनों से मैं नौकरी का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आगे मुझे नौकरी कब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नीरज आपकी कुंडली में नौकरी मिलने का समय चल रहा है और ये संभावना बनती है कि अगस्त सितंबर के महीने में आपको नौकरी मिलेगी स्थान परिवर्तन के साथ, आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और उसमें आप बेहतर नौकरी पा सकेंगे। आने वाले समय में आपके करियर में कोई इतनी समस्या, कोई इतनी बाधा दिखाई नहीं दे रही है और आने वाले समय में करियर में आपकी स्थिरता बनी रहेगी। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपको लाभ होगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: आज का अंतिम प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है और अविनाश जी हमें मेल लिखते हैं जोधपुर राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1982, जन्म का समय सुबह के 5 बजे, जन्म का स्थान है जोधपुर। अविनाश कह रहे हैं कि मैं एक व्यापार करता हूं और मेरा पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा फंस गया है। हालांकि मेरा व्यापार ठीक है लेकिन पैसा फंसने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरा पैसा कब तक निकल पाएगा और आने वाले समय में मेरा व्यापार कैसा रहेगा। अविनाश, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका फंसा हुआ पैसा इस साल के आखिरी या अगले साल की शुरुआत तक काफी हद तक निकल पाएगा, काफी हद तक आप पैसे के प्रेशर से बाहर आ जाएंगे। जून 2027 के बाद आपके व्यापार की स्थिति अच्छी है, उसके बाद कोई बहुत दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। आप सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरा फल या हरी सब्जी खिलाइए। निरंतर ये उपाय 1 साल तक करते रहिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 6 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में बदलाव के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या कहती है।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर में किन जानवरों के चित्र या किन जानवरों की मूर्तियां लगा सकते हैं। घर में जंगली जानवरों के चित्र या जंगली जानवरों की मूर्तियां ना लगाएं। सुख शांति और समृद्धि के लिए गाय का चित्र या मूर्ति लगाएं और आर्थिक संपन्नता के लिए हाथी या बैल का चित्र लगाना अच्छा होगा।
1: और आइए अब जानते हैं 6 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 जुलाई सोमवार रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है सिंह राशि। इस समय धन और संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके घर के बड़ों में बुजुर्गों में बेवजह की बहस ज्यादा होती हो तो क्या करें। घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिएगा। मुख्य द्वार पर एक तांबे का छोटा सा सूर्य लगाइए और नेम प्लेट काले रंग की बिल्कुल मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर का माहौल बेहतर होगा, घर के बड़ों में अशांति नहीं होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: बात करेंगे बॉलीवुड की। देखिए, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी शादी की बात करेंगे। आमिर ने आखिरकार अपनी लेडी लव यानी गौरी स्प्रेड से तीसरी शादी कर ली है। शादी में बहुत कम और करीबी दोस्तों समेत दोनों के परिवार वाले ही शामिल हुए। आमिर की शादी में बेटा जुनैद और बेटी भी पहुंचे।

0: स्प्रैट के साथ जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर दी है। मुंबई में आमिर के घर पर आयोजित एक शादी समारोह में दोनों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। शादी की तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें आमिर और गौरी रजिस्टर्ड मैरिज करते दिख रहे हैं। इस फोटो में दोनों के परिवारों को भी देखा जा सकता है। अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी हो और बॉलीवुड के सितारे जश्न में शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आमिर और गौरी की खुशियों में शरीक होने के लिए बी टाउन के कई नामी चेहरे पहुंचे। आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान की लगभग पूरी स्टार कास्ट इस शादी में शामिल हुई। न्यूली वेड कपल को जिंदगी की इस नई पारी की शुभकामनाएं देने के लिए अंबानी परिवार और राज ठाकरे भी पहुंचे। आमिर खान की फिल्मों की ही तरह उनकी लव लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। गौरी स्प्रैट आमिर का तीसरा प्यार है जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी बनाया है। इससे पहले आमिर ने साल 1986 में रीना दत्ता से पहली शादी की थी जो करीब 16 साल चली। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव से दूसरी शादी की। हालांकि दोनों ही रिश्ते वक्त के साथ एक नए मोड़ पर आकर खत्म हुए, लेकिन खास बात यह है कि आमिर आज भी अपनी दोनों एक्स वाइफ के साथ बेहद अच्छा और दोस्ताना बॉन्ड शेयर करते हैं। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से संभालने वाले आमिर खान को अब गौरी स्प्रैट के रूप में अपना नया हमसफर मिल गया है। उम्मीद है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की असल जिंदगी की ये नई स्क्रिप्ट सुपरहिट साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त के साथ खेती किसानी का अंदाज भी हाईटेक हो रहा है। ड्रोन एक ऐसी तकनीक जिसने हर सेक्टर में क्रांति ला दी है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं है तो वो है हमारी कृषि क्षेत्र में। इसी जरूरत को समझते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी को गांव गांव और खेत खेत तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दिल्ली में आयोजित नेशनल ड्रोन समिट 2026 में देश की पहली ड्रोन टेक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को लॉन्च कर दिया गया है, जो ग्रामीण भारत में एक नई सुबह की शुरुआत है।

0: सिर्फ सरहदों की निगरानी और रक्षा क्षेत्र तक सीमित रहने वाले ड्रोन अब हमारे देश के गांवों और खेतों की तकदीर बदलने जा रहे हैं। आसमान से खेतों की निगरानी करनी हो या फिर मिनटों में कीटनाशक का सटीक छिड़काव, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब भारतीय किसानों का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में नेशनल ड्रोन समिट 2026 का आयोजन किया गया, जहां भारत की पहली ड्रोन टेक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉन्च हुई। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण एक पंचायत एक ड्रोन उद्यमी राष्ट्रीय मिशन रहा, जो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत देश के हर पंचायत में ट्रेंड और सर्टिफाइड ड्रोन उद्यमी यानी ड्रोन ऑपरेटर तैयार किए जाएंगे।
1: जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है इसको किसान तक पहुंचाया जाए, और किसान तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हमने एक किस्म से ब्रिज तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा है एक पंचायत एक ड्रोन उद्यमी। इस स्कीम के अंतर्गत हम हर एक पंचायत से संपर्क करके उनमें से एक उद्यमी तैयार कर रहे हैं। उस उद्यमी का एम है कि वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग ले और उस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके ड्रोन को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करे। इसके लिए अलग अलग पैकेजेस बनाए गए हैं।
0: लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख ऐसे उद्यमी तैयार हों, जो गांवों में ही खेती फसल सर्वे मैपिंग और सटीक स्प्रेइंग जैसी आधुनिक सुविधाएं किसानों को मुहैया कराएं।
2: पहला ड्रोन टेक मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, जिसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें 1 ड्रोन उद्यमी 1 पंचायत होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल करना, फार्मर्स को एंड यूज़र बनाना और वो स्प्रे करे ड्रोन के साथ, उसके लिए लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योर होना बहुत ज़रूरी है। हम ये पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि जब तक इकोसिस्टम नीचे बिल्ड नहीं होगा तब तक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और ड्रोन से जुड़े हुए कंपनीज जो हैं वो प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगी।
0: किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस समिट में एक खास एटीवी भी लॉन्च की गई। अक्सर गांव के कच्चे और सकरे रास्तों से खेतों तक भारी ड्रोन बैटरी और केमिकल्स ले जाना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब ये एटीवी पंचायतों को ड्रोन के साथ ही दी जाएगी, ताकि किसान बिना किसी झंझट के अपने घर से खेत तक सारा सामान आसानी से ले जा सके।
1: ये एटीवी का लाभ यही है कि जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहाँ पे नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, पैदल जाने में बहुत दिक्कत है, कोई और वाहन नहीं चलता है, सिर्फ ट्रैक्टर चलता है, यह एटीवी चलती है।
0: ये ड्रोन मिशन भारत के ग्रामीण और एग्री टेक सेक्टर के लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये मिशन रफ्तार पकड़ता है तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अन्नदाता आधुनिक खेती के साथ विकास की नई उड़ान भरेंगे।
3: ये है कि हर पंचायत में एक ड्रोन उद्यमी तैयार किया जाए, और आप सोचिए कि जिन कामों को किसान अभी मैन्युअली करता है, इसमें घंटों का समय लगता है, कई बार दिन लग जाते हैं उसे दवाइयों का छिड़काव करने में, केमिकल डालने में, उसे काम को अगर ड्रोन से किया जाएगा तो वो काम कितना आसान हो जाएगा, और किसान का समय जितना बचेगा उतना ही किसान के लिए देश के लिए भी अच्छा रहेगा। कैनवल शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
4: अमरनाथ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में गजब का उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है। बम बम भोले के जयकारे और भारी जोश के बीच आज श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि अब तक 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बार की यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि युवाओं में इसे लेकर भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। युवाओं के लिए यह सिर्फ आस्था का सफर नहीं बल्कि कश्मीर की वादियों के बीच एक शानदार एडवेंचर टूरिज्म भी है।

0: बम भूने का ये जय घोष केवल पवित्र अमरनाथ यात्रा का उल्लास भर नहीं है, ये सनातन संस्कृति की वो परंपरा है जिसके कण कण में छिपी है अमरत्व की अमर कहानी, जो श्रद्धा की पराकाष्ठा है, विश्वास का समंदर है, और तो और लीला ऐसी कि स्वयं शिव प्रकट है बर्फानी रूप के अंदर।
1: उनका जो बैच जा रहा है सभी एक्साइटेड हैं और सब ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम लोग पहुंचे और जयकारा लगाते हुए बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। बालटाल के थ्रू हम लोगों का जर्नी है और सभी एक्साइटेड हैं। सब ये चाहते हैं कि कोई भी हम लोगों को रास्ते में कोई रिकॉर्ड ना हो और सेना का हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनके जरिए ही हम लोग सुरक्षा से और शांतिपूर्ण से हम लोग दर्शन कर पाते हैं।
0: 28 अगस्त तक हिमालय की वादियां इसी तरह श्रद्धालुओं के शिव तपस्या की साक्षी बनेंगी। एक के बाद एक श्रद्धालुओं का जत्था बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचेगा और भक्त बाबा के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। घाटी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने बेस हॉस्पिटल का दौरा किया और श्रद्धालुओं का हाल जाना।
2: 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ हुई है और मैं पिछले 4 यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। बिना पंजीकरण कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें।
0: अमरनाथ यात्रा को लेकर हिंदू मान्यताओं का संसार बड़ा विशाल है। कहते हैं बाबा के दर्शन मात्र से सभी कष्टों का अंत होता है। बाबा के भक्त हर बार की तरह इस बार भी 2 मार्गों से पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। एक रास्ता श्रद्धालुओं को पहलगाम से बाबा बर्फानी तक पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरा रास्ता बालटाल से होते हुए पवित्र गुफा तक श्रद्धालुओं को ले जा रहा है।
3: बाकी बहुत अच्छा है, निडर होके जा रहे, बहुत अच्छा है। देश के सभी जवान हमारी रक्षा कर रहे, बहुत सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत अच्छा है।
0: पवित्र अमरनाथ यात्रा का एक सिरा भले अध्यात्म से जुड़ता हो, लेकिन घाटी में यात्रा के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अब इस पवित्र यात्रा में युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बाबा बर्फानी का दिव्य दरबार अब इसी तरह श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाला है। कश्मीर की वादी शिव की भक्ति और उनकी शक्ति की महायात्रा की साक्षी बन रही है, लेकिन इस साल की यात्रा युवाओं को भी खासा रास आ रही है।
4: अमरनाथ यात्रा न सिर्फ अब श्रद्धालुओं के लिए एक यात्रा बनी हुई है, बल्कि एक एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर भी युवा पीढ़ी इस यात्रा को देखती है। कई सारे युवा हैं यहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा कुछ तो कर चुके हैं, कुछ करने जा रहे हैं। आप बेटा, आपका नाम क्या है?
5: हर्षिता।
4: कहाँ से हैं आप?
5: हम गुड़गांव हरियाणा से।
4: आपने यात्रा की?
5: हाँ जी, कल कर ली।
4: एक तो ये भक्ति है, दूसरा इसको एक एडवेंचर टूरिज्म भी देखा जाता है, क्योंकि हर तरह की जो भी कुदरत की खूबसूरती है वो आपको नजर में आती है। क्या क्या चीज आपको अलग जिसको आप एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर देखेंगे
5: यहाँ पे? मतलब बहुत, एक तो ऊंचाई बहुत है और यहाँ पे मजा भी बहुत आता है। जैसे हम लोग घोड़े पे गए थे तो वहाँ पे उस पर बैठ के गए थे तो देखा था यार, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, नजारे अच्छे होते हैं, ऊपर दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे।
6: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने को तैयार है। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
7: क्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
8: प्राय घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं, तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक का मूल पाठ भी उसे कर सकता है। और इसमें प्रसंगानुकूल चार रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
7: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा ताकि संस्कृत या हिंदी ना जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
8: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
7: तीन भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन चार रंगों में आर्ट पेपर पर किया जाएगा जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
9: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है उसे इंग्लिश का ज्ञान है तो उस रोमन भाषा के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
7: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है, लेकिन अब एक ही साथ तीन भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: बात मौसम की निकली है तो जरा आम के स्वाद पर भी हम बात कर लेते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसी ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधी स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव व संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली में सजे विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद के दशहरी और चौसा आम बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने किसी देसी अंदाज में आम चूसते हुए नजर आए और खाते हुए नजर आए। हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत भी की गई। तस्वीरें देखिए।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
12: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश

0: घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर, नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह, तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संघ शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दाव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल ये है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है
2: and she's such a fine actress aur ye movie mein bhi top notch action aur full packed action hai
3: ek tha tiger tiger zinda hai war pathan tiger 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता है, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफ़ी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल, एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा। वो अपने आप को प्रूव कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा, एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
8: Sorry, sorry.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम यह था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है, लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशन में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनैलिटी जो भी क्या होता साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
9: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
9: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थीं। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थीं। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया, क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, पर देन इमीडिएटली मैंने बोला बट इट्स माय बर्थडे टुमारो, आई एम गोइंग टू बी 8 टुमारो।
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाद अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यूं तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है, लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर यह है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।

0: का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
1: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ...2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
2: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
1: तो बंदे में दम में
3: में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए।

0: इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Right field, and it will...
2: From the first pitch of the season to the stretch run.
3: And that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: बात मौसम की निकली है तो जरा आम के स्वाद पर भी हम बात कर लेते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसी ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधि स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव व संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली में सजे विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद के दशहरी और चौसा आम बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने किसी देसी अंदाज में आम चूसते हुए नजर आए और खाते हुए नजर आए। हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत भी की गई। तस्वीरें देखिए।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
1: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर, नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली NCR में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश। अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद। गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह। तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस, वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ज्वाइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दाव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी के होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहां पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब आसन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नी प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
0: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15-20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही है। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
0: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिमान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिमान में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्युनिशन होंगे।
3: पारंपरिक
0: आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं, वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रेकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपें हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रेकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रेकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
2: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
0: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है, जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास।
3: एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी।
0: उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक आईबीजी एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। आईबीजी की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आईबीजी एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स जो है युद्धभूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स है और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। आईबीजी के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच्ड स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। आईबीजीज पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगी। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5,000 से 7,000 के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार रहेंगे। छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
6: What about me, Jack? What about me?
5: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: Well played, Jack. Well played.
5: Jack FM, playing what we want.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने को तैयार है। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
9: क्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
10: प्राय घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं, तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक है मूल पाठ भी उसे कर सकता है, और इसमें प्रसंगानुकूल 4 रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
9: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा ताकि संस्कृत या हिंदी न जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
10: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
9: तीन भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन चार रंगों में आर्ट पेपर पर किया जाएगा, जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
11: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसे इंग्लिश का ज्ञान है, तो उस रोमन भाषा के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
9: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है, लेकिन अब एक ही साथ तीन भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर, नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह, तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संघ शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दांव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल ये है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता है, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा। वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
4: Sorry.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है, लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है, और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी, यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्याम अग्रवाल ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक टावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों के सामने डांस करना फ्री बनना ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास और मैंने बोला हाँ श्यामक सर लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू तो मैंने बोला 7 But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है तो अगर कोई मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो मेरे साथ हुआ नहीं है बट अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए इसलिए दैट्स द रीजन नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यू तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: फॉर सम रीजन माई फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में हो आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही विल डील विद द सिचुएशन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो, जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया, क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन

0: के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
1: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक महले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
2: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर

0: के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
2: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
1: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
3: Because people who all watch games, they hear the voice.
1: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: बात मौसम की निकली है तो जरा आम के स्वाद पर भी हम बात कर लेते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसी ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधी स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव व संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली में सजे विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद के दशहरी और चौसा आम बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने किसी देसी अंदाज में आम चूसते हुए नजर आए और खाते हुए नजर आए। हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत भी की गई। तस्वीरें देखिए।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
7: Jack, come home. It's supper time.
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: Could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
9: Good news today.
0: घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश। अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद। गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह। तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान। सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग शादी की पहली तस्वीर। 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्विनी ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्वेलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ज्वाइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दांव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी के होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहां पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्विनी ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अश्विन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नी प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
0: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही है। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिवान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पर जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिवान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10 से 500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
0: शक्तिवान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिवान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिवान में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे। पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास्त बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो है वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
2: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
0: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है, जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक आईबीजी एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। आईबीजी की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आईबीजी एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डनेंस कोर्स जो है युद्ध भूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्ध भूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। आईबीजी के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ा। आईबीजीज पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरे यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार रहेंगे। छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: गुड न्यूज टूडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स, NBC स्पोर्ट्स रेडियो इज द प्लेस फॉर यू। स्टार्ट योर डे विद NFL अपडेट्स फ्रॉम माइक फ्लोरियो, देन जॉइन डैन पैट्रिक एंड द डैनेट्स फॉर इन-डेप्थ डिस्कशंस एंड द बिगेस्ट गेस्ट्स इन स्पोर्ट्स। Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: Good news today is really good. In this case, उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने को तैयार है। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
7: क्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
8: प्रायः घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं। तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक है मूल पाठ भी उसे कर सकता है, और इसमें प्रसंगानुकूल 4 रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
7: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा ताकि संस्कृत या हिंदी ना जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
8: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
7: भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन चार रंगों में आर्ट पेपर पर किया जाएगा, जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
9: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसे इंग्लिश का ज्ञान है, तो उस रोमन भाषा के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
7: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है, लेकिन अब एक ही साथ तीन भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे,
15: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
4: है क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: और आपको समझाएंगे, देखिए
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर, नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह, तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संघ शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दांव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का शगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है।
2: And she's such a fine actress. और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल। एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा, वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी, क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा। एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस, और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: आई एम सो प्रेजेंट जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफकोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अभी ऑनेस्टली बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ सारांश नाम आशिकी सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7।
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पांस ही सबसे प्योर रिस्पांस होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यूं तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है, लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड है। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने decide किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया।

0: 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
1: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बुआ में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
2: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
1: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here

0: on TuneIn.
1: अच्छी खबर
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात मौसम की निकली है तो जरा आम के स्वाद पर भी हम बात कर लेते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसी ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधी स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव व संगठन बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली में सजे विश्व प्रसिद्ध मरियाबाद के दशहरी और चौसा आम बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने किसी देसी अंदाज में आम चूसते हुए नजर आए और खाते हुए नजर आए। हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत भी की गई। तस्वीरें देखिए।
2: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hey, it's Billy Bush. Tune in to my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह, तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भविष्य के युद्ध छोटे तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्विनी ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा हैं।
0: हाल के अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्वेलांस वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जॉइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दाव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे, रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी की होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहां पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब अश्विन प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नि प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नि ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नि प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नि प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
0: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15 से 20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही है। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पर जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10 से 500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
0: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिबाण रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिबाण में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास्त्र बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास्त्र बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास्त्र बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे। पारंपरिक आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपे हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
2: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
0: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्य प्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 आईबीजी बनाई गई है जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर आईबीजी की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक आईबीजी एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। आईबीजी की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपें होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आईबीजी एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डनेंस कोर्स जो है युद्ध भूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्ध भूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे, मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। आईबीजी के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच्ड स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। आईबीजीज पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्ध भूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5,000 से 7,000 के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार रहेंगे।
3: छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे।
0: रणक्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
5: है। घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है क्या? घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं क्या? सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
6: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने को तैयार है। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
7: क्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसे अब आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नई पहल की गई है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
8: प्रायः घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं, तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक के मूल पाठ भी उसे कर सकता है, और इसमें प्रसंगानुकूल 4 रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
7: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा ताकि संस्कृत या हिंदी ना जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
8: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
7: तीन भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन चार रंगों में आर्ट पेपर पर किया जाएगा, जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
9: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसे इंग्लिश का ज्ञान है, तो उस रोमन भाषा के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
7: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है, लेकिन अब एक ही साथ तीन भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर, नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे, सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत, वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद, गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह, तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संघ शादी की पहली तस्वीर, 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेनजीर सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई थ्रिलर में अपने एक्शन सीक्वेंस से तहलका मचा दिया है। जी हाँ, यूं तो इस अभिनेत्री की इमेज एक सॉफ्ट और सोबर लड़की की है, लेकिन यशराज फिल्म्स ने नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर बनाने का फैसला किया तो दांव इसी सॉफ्ट और सोबर इमेज वाली अभिनेत्री पर लगाया। कमाल यह है कि अपनी इमेज के उलट इस अभिनेत्री ने स्पाई यूनिवर्स मूवी में भी दमदार अभिनय कर सबका दिल जीत लिया।

0: आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म्स की वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म अल्फा की सीता यानी कि आलिया भट्ट है। जी हाँ, 3 जुलाई को रिलीज हुई अल्फा को बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की ओपनिंग नहीं मिली जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आलिया भट्ट अपने एक्शन से दर्शकों का दिल जीत रही है। साफ है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से शुरू कर आलिया ने अल्फा तक का बेमिसाल सफर तय कर लिया है। ये वही आलिया है सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है
2: and she's such a fine actress और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
3: एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार, पठान, टाइगर 3 और वार 2 जैसी स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्में दे चुके यशराज फिल्म्स ने पहली बार जब वुमन लीड स्पाई थ्रिलर अल्फा बनाई तो दांव खेला उस आलिया भट्ट पर सोशल मीडिया पर जिसकी इमेज एयरहेड की रही है। बॉक्स ऑफिस पर अल्फा की ओपनिंग बेशक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, लेकिन यशराज फिल्म्स की पहली वुमन लीड स्पाई यूनिवर्स मूवी में आलिया ने अपने नेल बाइटिंग एक्शन सीक्वेंस और संजीदा अदाकारी के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के कथानक और निर्देशन पर सवाल उठाने वाले भी आलिया की एक्टिंग की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं।
1: आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी है, सरवरी बाग की एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग में तो दे आर बोर्न एक्टर, तो उसमें तो कोई कमी निकाल नहीं सकता, लेकिन स्टोरी वाइज जो होनी चाहिए मूवी वो नहीं है।
4: बेसिकली आलिया मैम की जब बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, तो उसमें वो काफी एकदम ऐसे होते हैं ना स्वीट सी टीनेजर टाइप से रोल स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उन्होंने लव स्टोरीज वगैरह किए, फिर हम सब सरप्राइज हो गए आलिया मैम को गंगूबाई में देख के, एकदम अलग सा रोल, एंड अभी इधर अल्फा में एक्शन वाला रोल, तो अच्छा लगा। वो अपने आप को प्रूफ कर रही है कि वो सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकती है।
2: अभी मुझे मूवी से काफ़ी आशाएं थी क्योंकि इस तरह की जो स्पाई थ्रिलर मूवीज होती हैं, एक्शन मूवीज होती हैं, उसमें आलिया भट्ट की राजी मूवी याद आ जाती है हमेशा, एंड शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस और ये मूवी में भी टॉप नॉच एक्शन, बहुत ही फुल पैक्ड एक्शन है।
5: ये अल्फा मुझे फिल्म अच्छी लगी है, फिल्म का जो एक्शन है वो काफ़ी तगड़ा है, आलिया भट्ट ने एक्टिंग काफ़ी टॉप नॉच की है, और साथ ही साथ जो शर्वरी है उन्होंने केमिस्ट्री काफ़ी, मतलब दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, तो फिल्म देख कर अच्छा लगा है।
3: साफ है कि पर्दे पर अपनी सॉफ्ट इमेज के लिए मशहूर रही आलिया यशराज फिल्म की पहली नारी प्रधान स्पाई थ्रिलर में निर्माता निर्देशक से लेकर दर्शकों तक की उम्मीद पर 100% खरा उतरी हैं। स्पाई थ्रिलर मूवी अल्फा में अपने एक्शन सीक्वेंस से धमाल मचा रही ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।
6: Who is the president of India?
7: Pranab Mukherjee.
3: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
6: Who is the president of India?
3: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है, लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
7: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
7: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
3: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
8: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
3: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थी। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
8: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
3: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती है।
7: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
3: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
7: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7। But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow, I'm going to be 8 tomorrow.
3: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
7: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पांस ही सबसे प्योर रिस्पांस होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
3: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
0: अल्फा मूवी में अपने एक्शन से धमाल मचा रही आलिया यूं तो बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन रुपहले पर्दे के अपने यादगार सफर में आलिया ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साए का सहारा कभी नहीं लिया। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार है, जबकि माँ सोनी राजदान आज फिल्मों की आइकन रही है, लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी अपने माता पिता से मदद की उम्मीद नहीं की। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
3: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
7: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो वो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
3: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
7: फॉर सम रीजन माई फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही डील विद द सिचुएशन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो, जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
3: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया, क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
8: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश

0: किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक महले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतारकर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
1: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
2: तो बंदे में दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: बात मौसम की निकली है तो जरा आम के स्वाद पर भी हम बात कर लेते हैं। आम एक ऐसा फल है जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना होता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या फिर कोई खास। लखनऊ में एक ऐसी ही आम पार्टी का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से पारंपरिक अवधी स्टाइल में एक अनोखी आम पार्टी का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लॉन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव व संगठन BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक शानदार आम पार्टी का लुत्फ उठाया। नेताओं के सामने थाली में सजे विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद के दशहरी और चौसा आम बिना किसी तामझाम के सभी कद्दावर नेताओं ने किसी देसी अंदाज में

0: आम चूसते हुए नजर आए और खाते हुए नजर आए। हल्के फुल्के माहौल में अनौपचारिक बातचीत भी की गई। तस्वीरें देखिए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के खल्लारी में भारी बारिश के चलते उफान पर, नदी नाले जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण कर रहे 14 मजदूर फंसे। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वीकेंड में मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, आसमान में छाए घने बादल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जमकर हो रही है बारिश। अंधेरी सबवे पूरी तरीके से बंद। गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में देखा हाई टाइड। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह। तीसरे दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। धार्मिक यात्रा के साथ प्राकृतिक नजारों का आनंद। तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान। सामने आई पत्नी गौरी स्प्रेट संग शादी की पहली तस्वीर। 61 साल की उम्र में तीसरी बार बने दूल्हा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भविष्य के युद्ध छोटे, तेज और टेक्नोलॉजी आधारित होंगे, लिहाजा युद्ध जैसे हालात में बढ़त उसी को मिलेगी जो दुश्मन से 10 कदम आगे की तैयारी रखेगा। और भारत को भी ये अच्छे से पता है कि उसे खतरा दो मोर्चों से है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त होनी चाहिए। बास बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्विन ड्रोन प्लाटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये उसी तैयारी का हिस्सा है जिनका मकसद सेना को अधिक तेज, सक्षम, सटीक और तकनीक से जुड़ा बनाना है।
1: जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का दिया हुआ नारा, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मुहिम के तहत रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियन, अश्नि ड्रोन प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्रा बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड और IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जैसे कदम इसी सोच का हिस्सा है।
0: अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जानकारी, सर्विलांस, वेपन, कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांडर कितनी तेजी से एक साथ काम कर पाते हैं। इसीलिए सेना अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बजाय अधिक समन्वित और तेज व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है।
1: भविष्य में युद्ध और अधिक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और थिएटर ओरिएंटेड होगा, इसलिए हमारी दिशा स्पष्ट है, साथ देखना, साथ निर्णय लेना और साथ कार्रवाई करना। भारतीय सेना में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही। इन दो वर्षों में डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ज्वाइंटनेस, सिस्टम रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर तीव्र गति से काम हुआ है।
0: भारतीय सेना भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इसी दिशा में सेना ने बास बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। बास बटालियन में ट्रेन जवानों की एक स्पेशल टीम होगी जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करेगी। इन बटालियनों का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। सूत्रों के मुताबिक बास बटालियन को आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत रखा जा सकता है। बास बटालियन फ्रंटलाइन यूनिट्स और खुफिया सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी जिससे दुश्मन का दाव धरा का धरा रह जाएगा।
2: इंडियन आर्मी में करीबन 380 इन्फेंट्री बटालियंस हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन में करीबन 1000 जवान होते हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन आर्मी के जो बटालियंस हैं उनको आस्ते आस्ते बास बटालियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जैसे कन्वेंशनल इन्फेंट्री बटालियन में अल्फा कंपनी, ब्रेवो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी होती थी, अब एक छोटी सी टुकड़ी यह भी रेज की जाएगी इन बटालियंस में, जिनके पास अलग अलग तरह के ड्रोन्स होंगे। रिकनेसेंस ड्रोन होंगे जो कि छोटी दूरी के या लंबी दूरी के होंगे। इसी तरह से उनके पास अटैक ड्रोन्स भी होंगे जो कि शत्रु के ऊपर जाके हमला करके वापस आ सकें। सबसे बड़ी बात है कि इन इन्फेंट्री बटालियंस में आस्ते आस्ते सुसाइड ड्रोन यानी कामिकाजे ड्रोन इंडक्ट किए जाएंगे जो कि शत्रु के पोजीशन के ऊपर जाके लॉयटर कर पाएंगे। यानी वहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट शत्रु की लोकेशन के ऊपर घूमते रहेंगे।
0: अभी सेना की अश्नि ड्रोन पलटन पैदल सेना के साथ मिलकर कम दूरी की निगरानी करती है। दिव्यास्त्र और शक्तिबाण जैसी इकाइयां हमलावर ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करती हैं। बाज बटालियन इन सबसे ऊपर की कैटेगरी में होगी और लंबी दूरी की निगरानी, लक्ष्य पहचान और बड़े स्तर पर ड्रोन संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। ड्रोन्स का काम अब केवल निगरानी करना या फिर विशेष अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि ड्रोन की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रोन न केवल दुश्मन पर हमला कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जानकारी जुटा सकते हैं। इसी के साथ साथ रेकी के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे सैनिकों के लिए भी ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहले पैदल सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपखाने या वायुसेना के बैकअप का इंतजार करना होता था, लेकिन अब आश्रम प्लाटून का ऑपरेटर खुद दुश्मन को स्क्रीन पर देखता है और पलक झपकते ही ड्रोन से हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक करीब 1000 ड्रोन से हमला किया था। भारतीय सेना की एंट्री एयरक्राफ्ट गन और काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना ने ड्रोन फोर्स खड़ी करने का संकल्प लिया और भैरव बटालियन, दिव्यास बैटरी और अश्नी प्लाटून जैसी नई इकाइयों की शुरुआत की। सेना के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। एक प्लाटून में 20 सैनिक हैं जिन्हें FPV, सर्विलांस, स्वॉर्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। भारतीय सेना की करीब 380 इन्फेंट्री बटालियन में ऐसी इकाइयां शामिल की जा रही हैं।
2: हर इन्फेंट्री बटालियन में जब वो बाज बटालियन में कन्वर्ट होंगे तो एक एक अश्नी प्लाटून डेवलप की जाएगी। इस डिप्लॉयमेंट के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन की जो अश्नी प्लाटून होगी उनको करीबन 20 सोल्जर्स ऐसे ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि रिकनेसेंस ड्रोन को उड़ा सकें, अटैक ड्रोन को कामयाबी से अटैक करवा सकें। सबसे बड़ी बात है जो सुसाइड ड्रोन होते हैं, कामिकाजी ड्रोन, उसमें जो FPV होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी ऑपरेटर जो है वो देख सकता है कि ड्रोन कहाँ उड़ रहा है, किस चीज़ को निशाना बना रहा है। FPV रोल में इन 20 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाएगा। हर यूनिट में करीबन शुरुआती दौर में 10-10 ड्रोन दिए जा रहे हैं, जिसमें 4 ड्रोन तो रिकॉग्निशंस ड्रोन होंगे, यानी वो दुश्मन की टोह लेकर वो कमांडर को सूचित करेंगे कि दुश्मन का टारगेट कहां पर है।
0: सेना के भीतर अलग अलग आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी तैयारी का हिस्सा है शक्तिमान रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की तोपखाना के अंडर बनाई जा रही एक विशेष और आधुनिक ड्रोन केंद्रित इकाई है जो दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी और लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होगी। शक्तिमान रेजिमेंट के जवान पारंपरिक तोपों के बजाय अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए दुश्मन पर सटीक और घातक हमला करेंगे। भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना की ओर से 15-20 शक्तिमान रेजिमेंट तैयार की जा रही हैं। ये रेजिमेंट स्वॉर्म ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन और लॉन्ग रेंज UAV से लैस हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी।
2: हमारी आर्टिलरी के जो यूनिट्स हैं उनमें 20 एडिशनल शक्तिमान रेजिमेंट्स रेज की जा रही हैं। इन आर्टिलरी यूनिट्स में लॉन्ग रेंज UAV और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। आमतौर पे जो ड्रोन्स इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होंगी वो 5-10 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन जो ड्रोन और UAV इन शक्तिमान आर्टिलरी रेजिमेंट्स को दिए जा रहे हैं उनकी रेंज 10-500 किलोमीटर तक होंगी, यानी डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
0: शक्तिमान रेजिमेंट सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर सटीक पिन पॉइंट स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। आर्टिलरी में 15 शक्तिमान रेजिमेंट बनाई जा चुकी हैं और 11 बनाई जानी है। जो तोपखाना रेजिमेंट शक्तिमान में तब्दील नहीं होंगी उनमें दिव्यास बैटरी होगी। शुरू में 34 दिव्यास बैटरी बनाई जा रही है। दिव्यास बैटरी के पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे।
3: पारंपरिक
0: आर्टिलरी में केवल तोप और रॉकेट होते थे, वहीं दिव्यास्त्र की अगर बात करें तो ये तोपों को एक हाईटेक वर्जन देता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये डिजिटली और मानव रहित तकनीकों से इसे जोड़ता है। पारंपरिक तोपों और आधुनिक मानव रहित प्रणालियां यानी कि ड्रोन्स का एक हाइब्रिड मिश्रण हम इसको कह सकते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर सही और सटीक हमला कर सकता है। वैसे योजना 35 से 40 ऐसी दिव्यास्त्र बैटरियां और बनाने की भी है। दिव्यास्त्र बैटरियां पारंपरिक बोफोर्स या फिर 9 वज्र जैसी तोपों के साथ लाइटिंग म्यूनिशन और निगरानी ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करती हैं। दिव्यास्त्र बैटरी के ड्रोन पहले दुश्मन के बंकर, ठिकाने या आगे बढ़ते टैंकों को लाइव ट्रैक करते हैं और तुरंत उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स तोपखाने को भेजते हैं। इस तकनीक से तोपखाने की मारक क्षमता और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पिन पॉइंट हमले किए जा सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी की दिव्यास्त्र बैटरी जो हैं, वो आर्मी की आर्टिलरी का एक हिस्सा होंगी। इन यूनिट्स में जो रिकनेसेंस ड्रोन होंगे वो आर्मी की जो कन्वेंशनल तोपें हैं जैसे कि बोफोर्स की गन्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके फायर पावर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज में रिकनेसेंस ड्रोन्स होंगे जो कि युद्ध भूमि के पीछे यानी टैक्टिकल बैटल एरिया के आगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूरी तक रिकनेसेंस करेंगी और टोह लेंगी कि दुश्मन जो है किस दिशा से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है।
0: भारतीय सेना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा कायम करने और आधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्धों को जीतने के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड्स का गठन करने का फैसला किया है। ये सेना के आधुनिकीकरण या रीस्ट्रक्चरिंग अभियान का एक क्रांतिकारी हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथियारों जैसे तोपों या टैंकों के चलने से पहले ही दुश्मन के संचार और सैन्य तंत्र को अंधा और बहरा बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड के मुख्य कार्यों में एक है स्पेक्ट्रम डोमिनेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल, जो दुश्मन के रडार, ड्रोन, मिसाइल और वायरलेस सेट के सिग्नल्स को ब्लॉक कर पूरे स्पेक्ट्रम पर कब्जा करती है। दूसरा है दुश्मन के सिस्टम्स को जाम करना। इसमें दुश्मन के रडार नेटवर्क, एयर डिफेंस कमांड सेंटर्स और मानव रहित विमानों के डेटा लिंक को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला सिग्नल इंटेलिजेंस, इससे सैनिक दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और मोबाइल सैटेलाइट बातचीत को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की अगली रणनीति और लोकेशन का पहले ही पता चल जाता है। किलवेव इंटीग्रेशन, ये ब्रिगेड रियल टाइम खुफिया जानकारी को तुरंत अपनी तोपखाना और एयर डिफेंस यूनिट्स के साथ साझा करती है, जिससे चिन्हित किए गए खतरों को पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता है।
2: भविष्य के किसी भी युद्ध में इंडियन आर्मी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड का मुख्य काम ये होगा कि दुश्मन जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है अपने कमांडर्स के साथ या अपनी लोअर फॉर्मेशन के साथ, उसको मॉनिटर करना। अब दुश्मन के पास अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन सेट होते हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी यानी HF पे काम करते हैं, कुछ VHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, आजकल ज़्यादातर सेट UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इसकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस है उसको भांप के उसको सुनना और वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको कमांडर के सामने देना, इनका पहला काम होगा।
0: भारतीय सेना में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण अब सिर्फ नए हथियार या उपकरण लेने तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य सेना की सोच, ढांचे, प्रशिक्षण, तकनीक, कार्यप्रणाली और मानव संसाधन को एक साथ आगे बढ़ाना है। साल 2026 में भारतीय सेना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप सेना में शामिल किए जाएंगे। कुल 5 IBG बनाई गई है, जो कि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत काम करेंगी। हर IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी। इसके अलावा चीफ ऑपरेशन ऑफिसर्स का नया पद भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होगी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास। एक पारंपरिक ब्रिगेड में सिर्फ एक तरह की सेना होती है, जैसे सिर्फ पैदल सेना या फिर आर्टिलरी। उन्हें तोपखाने या फिर डिफेंस के सपोर्ट के लिए अच्छे मुख्यालयों से मंजूरी और यूनिट्स के आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके उलट प्रत्येक आईबीजी एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसमें युद्ध के लिए जरूरी सभी अंग पहले से ही एक ही कमांडर के तहत एकीकृत होते हैं। आईबीजी की संरचना क्या है वो भी आपको बताते हैं। इसमें इन्फेंट्री जमीनी मोर्चे पर कब्जा करने और लड़ने के लिए पैदल सैनिक आर्म्ड, तेजी से आगे बढ़ने और दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ने के लिए टैंक और मैकेनाइज्ड गाड़ियां, आर्टिलरी जिसमें लंबी दूरी तक भारी बमबारी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी या फिर पारंपरिक तोपे होती हैं, एयर डिफेंस जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हवा में सुरक्षा मुहैया कराता है, लॉजिस्टिक और इंजीनियर्स इनका काम रास्ते के बारूदी सुरंगों को हटाना, पुल बनाना और गोला बारूद की त्वरित सप्लाई करना होता है। साथ ही आधुनिक विंग्स इसमें शक्तिबान रेजिमेंट के ड्रोन दस्ते और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स भी सीधे शामिल होती हैं। ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना करते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आईबीजी एक सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे।
2: टैक्टिकल बैटल एरिया में आमतौर पर आर्टिलरी यूनिट्स काम करती हैं, टैंक रेजिमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इन्फेंट्री बटालियंस आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और इसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी ऑर्डनेंस कोर्स जो है युद्धभूमि में उनको पेट्रोल, डीजल, स्पेयर पार्ट्स, अम्यूनिशन सप्लाई करती है। आर्मी सप्लाई कोर जो है वह एडवांसिंग कॉलम्स को राशन मुहैया कराती है। 10,000 ट्रुप्स एक डिवीजन के अगर आगे बढ़ रहे हैं या 30,000 ट्रुप्स एक कोर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें दिन में 3 बार खाना भी तो खाना है। 30,000 सोल्जर्स को पानी पिलाने का काम बहुत ही मैराथन जॉब है क्योंकि वो 30,000 सोल्जर्स जब युद्धभूमि में लड़ रहे हैं तो कोई दाएं हैं, कोई बाएं हैं, कोई सामने 100 किलोमीटर है, कोई पीछे 10 किलोमीटर है। इन सबको युद्धभूमि में पानी पिलाना, रेगिस्तान है ना, जंगल है या हिमालय की पहाड़ियां हैं, पानी आसानी से नहीं मिलता। तो ये काम सारे जितने इन्फेंट्री आर्टिलरी आर्मी यूनिट्स हैं और सपोर्ट सर्विसेज हैं उसको एक साथ सुचालित ढंग से आगे बढ़ाना एक ही कमांडर के नीचे होगा। इनको नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप।
0: भारतीय सेना अपनी सभी लड़ाकू कोर को धीरे धीरे छोटे मारक और अत्यधिक आधुनिक एकीकृत समूहों में बदल रही है ताकि भविष्य के कम समय वाले युद्धों को आसानी से जीता जा सके। आईबीजी के फायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला है अनमैच स्पीड। दरअसल सभी संसाधन एक ही कमांडर के पास होते हैं और इसीलिए उन्हें लामबंद होने में कुछ हफ्तों के बजाय महज 12 से 48 घंटे का वक्त लगता है। फौरन फैसला लेने की क्षमता, कमांडर को तोप या फिर हवाई सुरक्षा के लिए कोर मुख्यालय से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, वो युद्ध क्षेत्र की स्थिति देखकर ऑन द स्पॉट फैसले ले सकता है। तीसरा है किल वेव से सीधा जुड़ाव। आईबीजीज पूरी तरह से डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित हैं। इनके सेंसर और शूटर आपस में जुड़े होते हैं जिससे दुश्मन की लोकेशन मिलते ही पूरी ताकत से हमला कर दिया जाता है।
2: ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होंगे ये एक युद्धभूमि में एक मेजर जनरल के तहत आएंगे और भविष्य के युद्ध में ये हाईली फ्लेक्सिबल होंगे क्योंकि इनका अपना ट्रांसपोर्ट ग्रुप होगा। यानी सडनली देखिए 10,000 ट्रुप्स को अगर लेके 200 किलोमीटर आगे ले जाना है या 10,000 ट्रुप्स को लेकर सडनली 200 किलोमीटर बाएं तरफ लेके जाना है तो आपको 100 गाड़ियां चाहिए कम से कम। तो ये जो 100 गाड़ियां हैं ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जो कमांडर होंगे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे। इससे जो आईबीजी के कमांडर हैं मेजर जनरल रैंक के होंगे उनकी युद्ध भूमि में कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और युद्ध लड़ने की क्षमता काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी और ज्यादा भी हो जाएगी।
0: आसान भाषा में कहें तो आईबीजी ऐसा सैन्य ग्रुप है जिसमें सेना के लगभग हर प्रमुख अंग के सैनिक शामिल होंगे, यानी इन्फेंट्री आर्म्ड या टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, लॉजिस्टिक और मेडिकल कोर, जो जरूरत पड़ने पर बिना किसी दूसरी यूनिट का इंतजार किए तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है इसके जवानों की संख्या। इसमें करीब 5,000 जवान होंगे जो 12 से 13 यूनिट्स में डिवाइड होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक परंपरागत ब्रिगेड में नॉर्मली 5 से 7 हजार के करीब जवान होते हैं, और अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें 10,000 या फिर इससे ज्यादा जवान होते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इसके बीच का काम करेगा, यानी जहां जरूरत होगी वहां ये सैनिक पूरी तरह से तैयार रहेंगे। छोटी टुकड़ियों में होने की वजह से आईबीजी ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक में होने वाले युद्ध में खुद को तेजी से ढाल पाने में सक्षम हो सकते हैं। मौजूदा योजना के मुताबिक 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से 4 इंटीग्रेट बैटल ग्रुप और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप बनाए जाएंगे। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं।
0: आप रहिए हमारे साथ।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: गीता प्रेस अपने प्रशासन के 100 वर्ष से ज्यादा इतिहास में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करने को तैयार है। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिभाषी संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है, और इस विशेष संस्करण में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को एक ही ग्रंथ में समाहित किया जाएगा। इससे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आसान हो जाएगा।
6: कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था उसे अब आम लोगों तक पहुँचाने के लिए नई पहल की गयी है। संस्कृत में रचे गए धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को अब एक ही पुस्तक में संस्कृत और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ने का मौका मिलेगा।
7: प्रायः घरों में ऐसा भी होता है कि बच्चे तो अंग्रेजी जानते हैं लेकिन घर की कुछ महिलाएं हैं जो हिंदी ही जानती हैं, ऐसे परिवार हम लोगों के यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं। तो उस दृष्टि से भी अंग्रेजी जानने वाले हैं अंग्रेजी में अर्थ पढ़ लें, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लें, किसी को गीता का मूल पाठ करना है तो संस्कृत का श्लोक के मूल पाठ भी उसे कर सकता है, और इसमें प्रसंगानुकूल 4 रंग के चित्र भी दिए गए हैं।
6: दुनिया भर में सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ते आकर्षण और नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता का अनूठा संस्करण तैयार किया है। इसमें संस्कृति के मूल श्लोक तो होंगे ही, वहीं उनके साथ श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा जाएगा ताकि संस्कृत या हिंदी ना जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सके। साथ ही इंग्लिश में भी उनका अर्थ दिया जा रहा है जिससे पाठक उनका सही मतलब समझ सके।
7: इसमें संस्कृत का जो मूल श्लोक है वो एज इट इज दिया गया है संस्कृत में, उसके बाद उस श्लोक को रोमन अंग्रेजी में दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, फिर अंग्रेजी में अर्थ है। ये आज की पीढ़ी को देखते हुए ये परिवर्तित रूप इसका छापा जा रहा है, संशोधित रूप छापा जा रहा है।
6: 3 भाषाओं में एक साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष संस्करण का प्रकाशन 4 रंगों में 8 पेपर पर किया जाएगा जो देखने में भी आकर्षक होगा। गीता प्रेस का मानना है कि इससे देश ही नहीं विदेशों के पाठकों तक भी गीता का संदेश आसानी से पहुंचेगा।
8: व्यक्ति अगर जिसे संस्कृत या हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसे इंग्लिश का ज्ञान है, तो उस रोमन भाषिक के सहयोग से वह श्लोकों का उच्चारण सटीक और शुद्ध तरीके से कर सकता है। गीता प्रेस यह आयोजन कर रहा है, पुस्तकें पब्लिश करने जा रही है, अगले महीने से इसका प्रकाशन शुरू हो जाएगा और पाठकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
6: गीता प्रेस की ओर से हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन तो पहले से किया जाता रहा है, लेकिन अब एक ही साथ तीन भाषाओं में श्रीमद् भगवद् गीता के प्रकाशन का ये नया प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि ये विशेष संस्करण नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय होगा और दुनिया भर में गीता के ज्ञान के साथ सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी के प्रसार में आसानी होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
10: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
11: क्या घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाता है? क्या घर में बिना वजह के झगड़े होते रहते हैं? क्या सारा पैसा घर में बीमारियों में चला जाता है? कौन सी हैं आपके घर की समस्याएं और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
13: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
12: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
14: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।